अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये किताब हकीम की आयात है, हिदायत और रहमत नेकोकार लोगों के लिए जो नमाज कायम करते हैं, जकात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। और इंसानों ही में से कोई ऐसा भी है जो कलाम दिल फरेब खरीद कर लाता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बगैर भटका दे और इस रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा दे। ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला अजाब है। उसे जब हमारी आयात सुनाई जाती हैं तो वो बड़े घमंड के साथ इस तरह रुख फेर लेता है गोया कि उसने उन्हें सुना ही नहीं, गोया कि उसके कान बहरे हैं। अच्छा, मुजदा सुना दो उसे एक दर्दनाक आजाब का। अल्बत्ता जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें उनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का पुख्ता वादा है और वो जबरदस्त और हकीम है। उसने आसमानों को पैदा किया बगैर सुतूनों के जो तुमको नजर आए। उसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढलक ना जाए। उसने हर तरह के जानवर जमीन में फैला दिए और आसमान से पानी बरसाया और जमीन में किस्म किस्म की उम्दा चीजें उगा दी। ये तो है अल्लाह की तखलीक। अब जरा मुझे दिखाओ इन दूसरों ने क्या पैदा किया है। असल बात यह है कि ये जालिम लोग सरीह गुमराही में पड़े हुए हैं। हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्र गुजार हो। जो कोई शुक्र करे उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है और जो कुफ्र करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज और आप से आप महमूद है।

0: क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में। उसने सूरज और चांद को मुसख़र कर रखा है, सब एक वक्ते मुकर्रर तक चले जा रहे हैं। और क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है, और उसे छोड़कर जिन दूसरी चीजों को ये लोग पुकारते हैं वो सब बातिल है, और इस वजह से कि अल्लाह ही बुजुर्ग बहतर है। क्या तुम देखते नहीं हो कि कश्ती समंदर में अल्लाह के फजल से चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। दर हकीकत इसमें बहुत सी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। और जब समंदर में इन लोगों पर एक मौज साहिबानों की तरह छा जाती है तो ये अल्लाह को पुकारते हैं अपने दीन को बिल्कुल उसी के लिए खालिस करके। फिर जब वो बचाकर उन्हें खुशकी तक पहुंचा देता है तो इनमें से कोई इक्तसाद बरतता है और हमारी निशानियों का इनकार नहीं करता मगर हर वो शख्स जो गद्दार और नाशुक्रा है। लोगो, बचो अपने रब के गजब से और डरो उस दिन से जबकि कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला न देगा और न कोई बेटा ही अपने बाप की तरफ से कुछ बदला देने वाला होगा। फिल वाकया अल्लाह का वादा सच्चा है। बस ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और न धोखाबाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। उस घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि माओं के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है। कोई मुतनफ़िस नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है और न किसी शख्स को ये खबर है कि किस सरजमीन में उसको मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और बाखबर है।
1: بسم الله الرحمن الرحيم

إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

हम बात करेंगे किरदार को समझने पर और देखेंगे कि उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से कितनी मिलती जुलती है। तो दोस्तों, द सीक्रेट गार्डन का सबसे बड़ा पैगाम है नेचर का ताकतवर रोल, जिसने मैरी और कॉलिन की जिंदगी बदल दी। ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक सीख है कि नेचर हमारी रूह, जहन और जिस्म को कैसे सेहतमंद बना सकता है। दोस्तों, नेचर की थेरेप्यूटिक हीलिंग की बात करें तो लिट चार्ट्स के मुताबिक गार्डन का फ्रेश एयर, बर्ड्स की आवाज और सनलाइट ने मैरी को ना सिर्फ फिजिकली कैनवियर बनाया, बल्कि उनकी रूह फ्रेश हुई, उनका मूड बेहतर हुआ। कॉलिन ने भी जब पहली मर्तबा गार्डन स्ट्रोल की तो उसका पेट भर आया और कॉलिन इनके साथी की भी सेल्फ बिलीव वापस आ गई। तो दोस्तों, कहीं भी मत जाइएगा, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, यूं गए यूं वापस आए, और आने के बाद जानेंगे कि आज की बुक का खास मैसेज क्या है।

0: एक सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
1: वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। और अभी तक की कहानी में हमने बहुत कुछ समझाने और समझने की कोशिश की है, आइए अब आगे का सफर करते हैं। दोस्तों, हम जब एक स्ट्रेसफुल दिन के बाद एक छोटी वॉक पर निकलते हैं या सुबह की हवा में खिड़की के पास चाय एंजॉय करते हैं तो इमिजिएटली हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। आज डिजिटल एज में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजिटल लोनलीनेस का सबब बना रहा है। कॉलिन की पहली की स्टेट भी एक तरह का आइसोलेशन ही था। उसे लगा वो हमेशा बीमार रहेगा और मर जाएगा। नेचर उस लोनलीनेस को टूटने में मदद करता है। एक गार्डन की चुरमुराहट, चिड़ियाओं की वो सुरीली आवाज, हल्की हवा, भाई ये सब जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस को दूर कर देती हैं। भाई वालदेन से भी दरखास्त है और एक टिप है कि बच्चों के लिए घर के अंदर थोड़े पौधे, पेड़ वगैरह, अगर आपके पास बाग है, और बाग नहीं है तो हमारे पास गुलदस्ते हैं, गमले हैं, तो कुछ प्लांट्स वगैरह घर में रखें और वीकेंड को गार्डन टाइम बनाएं, उनको प्लान करें। भाई ये उनकी मेंटल वेलबींग के लिए बेहद और बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्क प्लेस की भी बात करें तो ऑफिसेज अब इंडोर प्लांट्स और नेचुरल लाइट को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें और स्ट्रेस कम हो। द सीक्रेट गार्डन का गार्डन एक ऐसा स्पेस है जहां मैरी और कॉलिन क्रिएटिवली रीएनर्जाइज्ड होते हैं। और भाई यही एनर्जी हम अपनी वर्क स्पेसेस में भी बना सकते हैं। कम्युनिटी बेनिफिट्स और शेयर्ड गार्डन्स की बात करें तो शहरों में कम्युनिटी गार्डन्स सोशल बॉन्डिंग के लिए बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। लोग मिलकर प्लांटिंग करते हैं, बातचीत होती है, स्ट्रेस रिलीज होता है। द सीक्रेट गार्डन जैसे प्राइवेट स्पेस की जगह हम कोऑपरेटिव गार्डन्स बनाकर कम्युनिटी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। और वाकई मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कम्युनिटी के लिए पेड़ पौधों, गार्डन पे अपनी पूरी पूरी जिंदगी लगा रहे हैं। तो दोस्तों, मोरल समरी, हमेशा याद रखिए, नेचर सिर्फ डेकोरेशन नहीं, ये हमारी जिंदगी की बैकबोन है। अगर हम सुबह फ्रेश एयर लें, नेचर से रिकनेक्ट करें तो हमारी डे टू डे स्ट्रेस लेवल मैजिक की तरह से कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों, कहीं भी मत जाइएगा, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बुक्स दैट चेंज द वर्ल्ड। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, यूं गए यूं वापस आए, और आने के बाद जानेंगे कि आज की बुक का खास मैसेज क्या है।

0: सफर अल्फाज का जो दुनिया को बदल गया, किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गईं, बल्कि सोचने का रंग भर गईं, जिन्होंने तारीखों को जन्म दिया और इंसानियत को नए रास्ते दिखाए। हम आपको ले जाएंगे किताबों की उसी जहान में जो तारीख और तहजीब दोनों को रोशन करती हैं।
1: वेलकम बैक।

0: जहां पे वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हैं। इस स्पॉइल्ड अपब्रिंगिंग में पर नेचर के एनवायरनमेंट ने उनको ट्रांसफॉर्म किया। मैरी जब गार्डनिंग टास्क सीखती हैं और इसके बारे में मुख्तलिफ चीजें इख्तियार करती हैं, तो फिजिकली और मेंटली उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी और केयरिंग का हल भी ढूंढ लेती हैं। मिसाल के तौर पर एक निगलेक्टेड प्लांट जब हम केयरिंग एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं तो वो खिलता है। वैसे ही मैरी के अंदर की सारी फूल सॉरी मैरी के अंदर के फूल बाग में वापस स्लोगन बन गए। उसी की तरह से ही मैरी के अंदर के फूल भी वापस उस बाग को खुशहाल कर गए। वहीं कॉलिन क्रेमन की रेजिलेंस की बात करें तो कॉलिन इनिशियली बेडरिडन थे और कन्विंस्ड थे कि वो अब मर जाएंगे और हंचबैक बन गए। ये मेंटल ब्लॉक उनकी फिजिकल वीकनेस का सबब बनता गया। गार्डन ने उनको होप दी, वॉक्स, सनलाइट और फ्रेंडशिप की वजह से फिजिकल स्ट्रेंथ आई और सेल्फ बिलीव वापस आ गया। इसी के मद्देनजर मैं वालदेन से एक बार और कह दूं कि बच्चों के अंदर हिडन रेजिलियंस होती है। उन्हें सपोर्टिव एनवायरनमेंट, नेचर और मीनिंगफुल टास्क दें तो उनके अंदर की जो कुव्वत है, जो ताकत है, वो निकल कर आती है। तो इस बात का भी ख्याल रखें। और वहीं उनके साथी डायगन की बात करें तो इनको नेचर का परफेक्ट हम्बल गाइड समझें। भाई ये गार्डन के ट्रू गार्डियन है, एनिमल्स के दोस्त और उनके बीच में एक मीडिएटर। मैरी और कॉलिन उन्हें गार्डनिंग और पॉजिटिव थिंकिंग सिखाते हैं। दोस्तों, आपका कोई फ्रेंड जो हमेशा सपोर्ट करता है, आपका मूड, कॉन्फिडेंस और थिंकिंग इम्प्रूव हो जाती है, ये पीयर पॉजिटिविटी है। भाई साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो रिसर्च बताती है कि सेफ ग्रीन एनवायरनमेंट अर्ली चाइल्डहुड में लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव और इमोशनल बेनिफिट्स प्रोड्यूस करता है। और इसी को देखते हुए मैरी जब प्रैक्टिकली गार्डन सीखती हैं तो वो खुद से एम्पावर्ड फील करती हैं और सेल्फ रेलिएंट बनती हैं। अपने बच्चों को छोटे छोटे गार्डनिंग प्रोजेक्ट्स दीजिए, नेचर वॉक्स के लिए कहिए और ग्रुप प्रोजेक्ट से एंगेज कीजिए। ये उनमें एम्पैथी, क्यूरियोसिटी और रेजिलियंस डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सब के अंदर एक छुपा हुआ गार्डन है, इमोशनल रिजर्व्स, नेचुरल स्ट्रेंथ, अनटैप्ड पॉजिटिव एनर्जी। अगर हम अपने एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स और नेचर से जुड़ जाएं, तो हम ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ला सकते हैं। पेरेंटिंग या टीचिंग में अगर हम आउटडोर लर्निंग इंक्लूड करें तो बच्चों के अंदर मेंटल टफनेस और एम्पैथी बढ़ती है। तो दोस्तों, आज की डिजिटल एज में हम सब सोशल आइसोलेशन का शिकार हैं। मोबाइल स्क्रीन्स, एंडलेस नोटिफिकेशंस और वर्चुअल कनेक्शंस ने हमें रियल ह्यूमन टच से दूर कर दिया है। द सीक्रेट गार्डन हमें याद दिलाता है कि नेचर और ह्यूमन कनेक्शन कितनी जरूरी हैं। जब मैरी और कॉलिन अपने छुपे हुए बाग में वक्त गुजारते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है और ये सबक आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हर दिल के अंदर एक सीक्रेट गार्डन है, उसे खिलने दीजिए, अपने जज्बातों को नर्चर कीजिए, अपनी रिलेशनशिप्स को पानी दीजिए और अपने जहन को सनलाइट दीजिए। जिंदगी फिर से खिल उठेगी। जैसे हम अपने मोबाइल से ब्रेक लेकर वॉक करते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं, वैसे ही अपने जज्बात को भी ब्रेक और फ्रेश एयर दीजिए। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम एक और ऐसी ही किताब पर बात करेंगे जिसने सोच बदली और सोसाइटी पर गहरा असर डाला है। तब तक के लिए अपने दिल के गार्डन को खंगोलिए और देखिए कि क्या कुछ फायदेमंद हो सकता है। सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: The books that changed the world. RJ सरवर मिर्जा के साथ only on FM 107, दिल से देसी। अल्फाज जो तारीफ लिखते हैं।

0: FM 107, Time Check.
1: देखिए भाई साहब, 6:01 हो रहे, दुनिया रैक्स को ढूंढ रही है 1 लाख रियाल के लिए। मैं अभी अपना पेट लेके आया हूँ। बेटा हाय बोलो इनको।

शांति शांति, सलाम कह रहा है आपको, सलाम कह रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, नहीं तो क्या करता है, इसकी आदत बड़ी ख़राब है, ये ना पीछे पीछे भागता है, तो मैं आप पे छोड़ना नहीं चाहता इसको, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, बुरा मान जाएगा ये। बस कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं, नहीं भूख लगी है उसको ना, तो व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा फिर इस पर, समझ रहे हो, उस पर गले में ना पट्टा डलता नहीं है, उतना बजट नहीं है मेरा। अस्सलाम वालेकुम।

0: wake up.
1: अस्सलामुअलैकुम, मैं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड अजय भाई साहब। 6:03 हो लिए और आपके क्या हाल है? बढ़िया। मैं नू कह रहा था भाई व्हाट्सएप पे मैसेज मुझसे कर दिया करो सवेरे सवेरे, देख के ऐसी खुशी से आ जाती है, मजा आ गया आज तो। आज पता नहीं क्यों मैं ज्यादा सोया भी नहीं, जब भी मैं फ्रेश उठा हूं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आई कैन से। बट आप कैसे हैं, क्या हाल है आपके? मुझे पता, मैं आज मैंने गलती से दिन देख लिया आज क्या है, वरना मैं देखता नहीं हूं कि क्या दिन चल रहा है आज, क्या है क्या नहीं है। अभी ट्यूसडे हुआ है और मुझे ऐसा लगता है वीकेंड पता नहीं कितना दूर है। दिन मत देखा करो भाई कभी भी। मैं आज से प्रण लेता हूं कि मैं कोई भी दिन नहीं देखूंगा जब तक कि वेंसडे नहीं आ जाता है। एनीवे, आज बहुत कुछ है मेरे पास। आज भी मेरे पास जो कहानी है ना, ओए होए होए भाई साहब, कल का सिनेमा दिखाने के बाद अभी इस हफ्ते मैं आपको सिनेमा ही सिनेमा दिखाऊंगा। जो मेरे पास वीकेंड की कहानी है ना, मैं बस अपने दिल में ऐसे दबाए हुए हूँ, मैं सुना दूँ क्या, मैं रोके हुए अपने आपको, बिकॉज वो बहुत कमाल की कहानी है जो मैं सुनाऊंगा आपको थर्सडे को। बट आज भी बहुत बढ़िया कहानी है, मजा आ जाएगा आपको। ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है बट बहुत बढ़िया, और मेडिकल मिस्ट्री है और लोगों को अमूमन मेडिकल मिस्ट्री पसंद आती है। बहुत सारे डॉक्टर्स मैसेज करते हैं तो मैं उनको बीच में शो ऑफ करने के चक्कर में मेडिकल मिस्ट्री ले आता हूँ। तो अगर कोई मुझे मेडिकल फील्ड से सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं थोड़ा सा शो ऑफ करूंगा आपके बीच में। यो तो मेरे का सपोर्ट देना पूरा का पूरा। और जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर रहे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं बेटा कर रहे आपके चक्कर में, ये मेरी प्लीज, ये लोअर पार्ट देगा, प्लीज़ आप प्लीज़ मैसेज कर दो यार, ये भूख लगी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैसेज आया है, भाई कैसे हैं आप? मैं जीशान इकबाल, गुड मॉर्निंग भाई। बढ़िया जीशान भाई, आप कैसे हैं? आज मैंने मैसेज किया है, मुफ्ती कबीर रजिस्टर में नाम चढ़ा दो भाई, मेरा यासिफ भाई का नाम चढ़ा दो भाई, पुरानी इनकी उधारी बता दो कितनी है। और इनके आज मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कल का किस्सा बहुत क्रेजी था भाई, बिल्कुल एक पूरी एंटरटेनिंग मूवी थी कल, केओएस से ज़्यादा कॉमेडी थी। थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार भाई को। एक मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, वखरा वाला अब्दुल जब्बार, मैं भाई चौड़े में कह सकता हूँ मेरी जब्बार भाई से दोस्ती है। जब्बार भाई बड़ी दाढ़ी रख लो, आपके नाम पे जचेगी वो। फरद भाई वालेकुम अस्सलाम, फरद भाई ने शेर का स्टिकर भेजा है, होप यू आर डूइंग ग्रेट मेरे भाई, एकदम बढ़िया भाई। सबसे पहले फरद भाई ने मैसेज किया है शेर से डर के, मैसेज आया भाई सच में एक भी दिन नहीं देखता मगर तुमसे पता चलता है कि वीकेंड है। मैं देखता नहीं हूँ, मैं पर जिस दिन मैंने दिन देख लिया उस दिन मुझे लगता है वीकेंड बहुत दूर है। शहजादा सलीम क्या हाल है? ये शहजादा सलीम कहाँ कैसे कैसे वीडियो देखते रहते हो तुम मेरा भाई, क्वालिटी ठीक करनी पड़ेगी तुम्हारी। तौफीक साहब वालेकुम अस्सलाम, अलवखरा से इन्होंने मैसेज किया है, और मैं ये हमारे लिसनर्स ने मीटअप किया था, कुछ लोग मिले थे, शहजादा सलीम, तौफीक भाई, उसमें हमारे यूसुफ भाई सब मिले थे। मुझे हैरानी पता किसको देख के हुई, गाबा भाई को। मुझे लगा गाबा भाई होगा भाई, गाबा भाई तो बिल्कुल भाई लौंडे हैं हमारे मोहल्ले के लग रहे हो तो। गाबा मेरे भाई क्या बात है यार, तुम्हारी भी आवाज़ और पर्सनैलिटी मैच नहीं होती मेरी तरह हो तुम। कॉन्ग्रेचुलेशन, साथ मिलाओ। अच्छा तो आज जब किस्सा आएगा 7:30 बजे, इट्स अ मेडिकल मिस्ट्री, और मज़ा आएगा आपको, कुछ अलग सही है भाई। ये कौन से भाई का नंबर? नदीम भाई का, कदीम भाई का, कदीम भाई कौन है? अच्छा ओके, हाँ तो मैं कहा था, हाँ तो आज मेडिकल मिस्ट्री है और ऐसा केस है ना जो मेडिकल फील्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यू विल एब्सोल्युटली लव इट। फरद भाई क्या कह रहे हैं? भाई से मिल के रहना होगा अब तो, वरना टाइगर से कह देंगे। भाई देख लो फरद भाई, मैं इसको ये बांध नहीं पाता इसको भाई, मैं इसको भूख लगेगी और एक मरतबा अगर इसको

الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله

0: ट्राई ट्राई ट्राई
1: देखिए भाई, जब हम लोग के घर बने थे तो हमारे जो घर के नक्शेकार थे वो इतने मतलब क्या बोलेंगे, वो उस लेवल के नहीं थे।
0: अच्छा प्लीज, अच्छा
1: इंडिया में आइए आप।
0: इंडिया में कहीं हूँ मैं, आइए कहाँ में आना। हाँ फिर,
1: हाँ फिर क्या, बात खत्म, ना भूत है ना घर है, बात खत्म।
0: भाई पब्लिक बता दो, मैंने क्या सवाल पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया बता। ये दो रास्ते जा रहे हैं, आपने कहा मैं सीधे जाऊंगी, मैं कह रहा हूँ एग्जिट 63 लेना है अजरबैजान बीच जाने के लिए, ये दो रास्ते अपनाए आपने। मैं समझ गया बहन, कोई बात नहीं। अरे तो अग्री करने वाली बात ही कहाँ है उसमें। अरे भैया यार, ओह मैं ये फूल अपना सर पे मार लूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि मेरी बात पे अग्री करोगे नहीं, आप समझ रहे हैं
1: ना, भूत है। देखिए भाई, जब हमारे घर बेसमेंट में भूत कहाँ से आएगा।
0: अरे भैया,
1: उनको चाहिए रहने के लिए जगह खाली, हमारे घर में घर।
0: मैं शक्तिमान की ड्रेस पहन के ना बिल्डिंग से कूद जाऊंगा अभी। अरे मैं ये नहीं कह रहा, अरे भाई
1: आप जो भी कह रहे हैं मेरी बात पे।
0: बताइए।
1: देखिए हमारे घर पे बेसमेंट नहीं।
0: हाँ ठीक है,
1: जब बेसमेंट नहीं होते तो भूत कहाँ से आएंगे, इंसानों की रहने की जगह है भाई, भूतों के लिए नहीं। प्लीज मैं आपको फिर कह रही हूँ, आप चेंज करें अपना टॉपिक।
0: या अल्लाह भाई, मेरे लिए दुआ मांगो, इतने लोग मांग सकते हैं। सबके हाथ ऊपर है दुआ में बहन, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बच्चों के लिए दुआ, आज कोई बच्चा पिट ना जाए टीचर से, इतनी दुआ है मेरी। बेचारा कहना कुछ चाहेगा और टीचर ने कुछ और सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। आज आज आज दिक्कत है, आज मसला है।
1: ओके चले, मैं चाहती हूँ कि मैं ना पब्लिक रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि पब्लिक क्या बोलना चाहती है।
0: डन डन, ये ठीक है, यहाँ पर मैं अग्री करता हूँ। चलिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो समझ रही हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या बात हो गई है। मैं ओहो, लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम, ठीक है, वन मोर टाइम। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वेस्टर्न घरों में एटिक और बेसमेंट होता है, क्या आपको भी लगता है कि हमारे घरों में, देसी घरों में बेसमेंट और एटिक होना चाहिए कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें भूत चाहिए। कुछ मैसेज आए मेरे पास आज, मेरी जुबान लड़खड़ा गई, टीचर ने होमवर्क सही नहीं किया, सोशल का सब्जेक्ट था वो स्पेस चली गई। मैं वही कह रहा हूँ ना, आज सामने रखा था पेपर, सोशल स्टडीज है, इन्होंने कहा मैं तो चांद की बात करूँगी, और क्या। वो स्टूडेंट है जो कोई कसूर भी नहीं फिर भी पिट गया। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ फौजा जी, थैंक यू सो मच। तबसुम लिखती है अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग, क्या टॉपिक है? तो बहन ये टॉपिक है कि आपको भी लगता है कि देसी घरों में एटिक और बेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि बड़ा कूल फीचर लगता है मुझे। एटिक डेफिनेटली बड़ा कूल फीचर लगता है, बेसमेंट मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि पिक्चरों ने मुझे डरा दिया है। शायद भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? और कमालुद्दीन शेख साहब कहते हैं मान लो, मान लिया भाई, तो हार मान ली मैंने। एक मैसेज है, ब्रो यू कांट विन। मैंने पहले ही हथियार धर दिए उसमें भाई, धर दिए ये रख के फर्ज पे। और एक मैसेज शहजाद सलीम का लिखते हैं, कबीर भाई टीचर दीदी को भूत से डर नहीं लगता। अरे सुम्बोल बहन, भूत को ऐसा भगाए धूल उड़ाई हो पीछे। एक मैसेज है, वैसे भूत का कोई घर, अरे भैया। मेरे मैसेज है, मेरे भाई के घर में बेसमेंट था और अब न्यू बन रहा है। बेसमेंट था आपके भाई के घर में? अरे भी तो चिंतित करने वाली बात है भाई। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू बाय द वे, माय फेवरेट सिंगर कोलैब्ड विद, ओ रियली अरीना, हु वाज इट, आई डिडंट नोटिस, आई गेस, मुझे बताना किसकी बात कर रही हो। एक कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या लहर है, क्या लचक है, अस्सलाम है, माशाल्लाह, क्या हाल है आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: है। हाँ जी बताइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? मेरी याद में ड्यूटी चेंज करा ली। क्या कानों में बीप बजी है भाई, फिर पर्दे खुल गए पूरे। आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो भाई?
2: बस वही।
0: क्या भाई आज पता मेरी किस्मत खराब है, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना कोई बात ही नहीं करना चाहता। आपने सुना मैंने क्या पूछा आज?
2: अभी तो मैं
0: ड्यूटी स्टार्ट किया। सही गेस्ट स्टार्ट करके आज मुझे ड्यूटी पे नहीं आना चाहिए था, सबको ड्यूटी स्टार्ट करनी थी। अच्छा ठीक है, और बताओ भाई क्या चल रहा है जिंदगी में?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। तो ड्यूटी की टाइमिंग क्या हो गई भाई की?
2: 6 बजे।
0: भाई एक भाई पूछ रहे हैं कि रात में लग रहा है आप रेक्स वो बिल्ली ढूंढ रहे थे क्या आप 1,00,000 रियाल के लिए?
2: नहीं नहीं, असल में
0: ड्यूटी
2: मेरी 12 बजे तक थी।
0: अच्छा 12 बजे तक थी, सुबह उठे वापस? अरे मेरा भाई यार सोया ना। 6 बजे। अरे यार नहीं बनता है फिर तो आपका भाई, आप आराम करो भाई, चाय वाय पियो मस्त एकदम, हाँ फिर एकदम चार्ज होकर कॉल करने का, ठीक है? ख्याल रखो मेरा भाई, शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह हाफिज। आज भाई बिल्कुल मूड में नहीं थे, मैंने कुछ नहीं पूछा, मैं कहा आप भी मेरे दिमाग ने बिल्कुल डंबल उठाए कुछ देर पहले, दोबारा नहीं। एक उसामा भाई मैं समझ गया था, एक मैसेज है फरद भाई कह रहे सबको चाय पिलाओ, आज बड़ी ज़रूरी लग रही है बात मुझे। इरशादुल्लाह यूसुफ ईसाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, आज कबीर वाले नाम के बच्चे की खैर नहीं। आज सुम्बुल बहन ढूंढेंगे किस बच्चे का नाम कबीर। एक मैसेज, यहाँ 2 BHK की सफाई करना मुश्किल होता है, बेसमेंट और एटिक की सफाई कौन करेगा? मैसेज ऑन माय बिहाफ ऑन माय ऑफ माय वाइफ। अच्छा ये भाभी जी ने मैसेज किया। वाहिद भाई कह रहे हैं एक्चुअली हमारी बहन जो है हमारी भाभी वाहिद भाई की वाइफ, वो कहती हैं कि 2 BHK सफाई करना इतना मुश्किल है, ये देसी टिपिकल देसी रिप्लाई है, एटिक की सफाई और बेसमेंट की तू करेगा सफाई। मुझे लगता है देसी घरों में अगर बेसमेंट और एटिक होता और भूत गलती से बेसमेंट से आता तो उसको भी जो है ना भेज दिया जाता वापस, सफाई करके आया करो ऊपर, ये ऐसी आ गए हो डराने के लिए, वापस जाओ सफाई करके आओ बेसमेंट की। डर नहीं लगता भाई। एक मैसेज है, अच्छा ब्लैक पिंक एंड रोज ने प्रमोट किया था, ओ न्यू ट्रिक मैंने सुना नहीं, अली ना आई विल लिसन टू यू, लिसन टू इट एंड गेट बैक टू यू। एक मैसेज जकी भाई लिखते हैं, सलाम फ्रॉम फरदान एंड फरजाम, गोइंग टू ड्रॉप देम, बहुत बढ़िया। और मैसेज है, सर स्टोरी वाज वन ऑफ इट्स काइंड, थैंक यू सो मच जकी भाई, बहुत सारा प्यार दोनों बच्चों को मेरा सलाम और बहुत सारा प्यार मेरे भाई। एक मैसेज है, हमारे 2 कप चाय पार्सल करो। जी साहब अभी कर देता हूँ साहब जी मालिक। एक मैसेज है, तबसुम बहन को लिखती है, मैं तो कभी ना जाऊँ बेसमेंट, खुली खुली खिड़कियों वाला घर बनाऊँ। हाँ एटिक भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने एक मूवी देखी थी, एटिक से आवाज़ें आती हैं, ऊपर जाके देखा उन बच्चों की मम्मी को अपनी हमशक्ल मिलती है। ओए होए ये कौन सी पिक्चर है? एक कॉल आ रही है, रुको। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई,
0: क्या हाल है प्रिंस भाई, कैसा चल रहा है?
3: बढ़िया कबीर भाई, क्या हो गया सुबह सुबह?
0: मैंने ये सवाल पूछा है कि हमने देखा ना बाहर के जो घर होते हैं उनमें एटिक और बेसमेंट होता है, तो हम बड़े हुए हैं ऐसी पिक्चरें देख के जिसमें दोनों चीजें पाई जाती हैं, है ना, पर हमारे देसी घरों में तो होती नहीं है।
3: बाहर के घर,
0: अरे मतलब वेस्ट, अरे वेस्टर्न जो घर हैं जो उस विक्टोरियन स्टाइल में बने होते हैं, बाहर आप कनाडा वनाडा जाइए तो हाँ तो उनके उन घरों में बेसमेंट भी है एटिक भी है, हमारी तरफ होता नहीं है पर हम देखते हुए बड़े हुए हैं, हम हमेशा देखते हैं। तो मैं पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है कि चाहिए आपको घरों में, क्योंकि हम तो डर चुके हैं, बेसमेंट के नाम पर हमें हॉरर मूवी याद आती है, एटिक के नाम पर भी यही सब याद आता है, तो क्या आप चाहेंगे कि ऐसा घर?
3: बेसमेंट का सवाल है, देखिए अगर चाहिए उनको जिनके पास में जगह कम है।
0: अच्छा और कितनी जगह चाहिए?
3: कार पार्किंग और समथिंग लाइक दैट।
0: ठीक है, नहीं वो वाला बेसमेंट नहीं, वो तो बेसमेंट पार्किंग है, मैं कह रहा हूँ घर वाला बेसमेंट जिसके अंदर लोग लिटरली अपना सब कुछ सजा वजा लेते हैं, बसा लेते हैं, वो वाला बेसमेंट जो घर के अंदर से निकलता
3: तो है।
0: हाँ
3: ना ही चाहिए।
0: अच्छा डर गए क्या?
3: ना तो है ना ही चाहिए।
0: अच्छा और एटिक के बारे में क्या ख्याल है?
3: स्टोर रूम नहीं बनवाया है यार।
0: अरे क्यों क्यों ऐसा कहे को?
3: जो कमरा था उसको मैंने, मतलब ये कमरा है ना इसको स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर लो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनवा रहे इसमें।
0: अरे ऐसा क्यों?
3: स्टोर रूम में सिर्फ स्टोर करने वाली चीजें रखी जाती है।
0: हाँ मतलब ऑब्वियसली
3: इनकी तरफ कोई पलट के देखता ही नहीं है।
0: और प्रिंस भाई एटिक के बारे में क्या ख्याल है आपका?
3: एटिक,
0: एटिक होता है ना वो, हाँ वो सीढ़ी निकलती है छत में से ऊपर ऊपर जाते हैं उसके ऊपर, अब मैं एटिक को कैसे समझाऊं यार। एक तो मुझे सुबह से इसका उर्दू वर्ड नहीं मिल रहा, बड़ा परेशान हूँ मैं। एटिक, एटिक दिखा है आपने वो
3: अरबी वर्ड, बदला दो यार।
0: अरे आप अरबी वर्ड कहाँ से ढूंढू, उर्दू नहीं मिल रहा। अरे यार क्या करो भाई, क्या करो?
3: अब नया डिस्क्लेमर चालू करना पड़ेगा आपको।
0: हाँ, मुझे
3: मतलब किसी बात का नहीं समझाऊंगा, समझना हो तो फोन करें, नहीं
0: वही
3: तो
0: वही वाला सीन हो रहा है अभी। आप अभी जनरल स्टोर पे जाके आप इंजन ऑयल मांग रहे हैं, समझ रहे हैं आप? कैसे दे दूंगा?
3: बढ़िया है भाई। भाई मुझे तो लगता है आपको सदमा लगा है सुबह सुबह।
0: हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अभी जो है टीचर मुझे सुबह सुबह जो है खामखा डांट के गई है। समझ रहे हैं आप?
3: तो खामखा टीचर कभी डांटती नहीं है।
0: अरे खामखा डांट के गई है भाई, आज टीचर का मूड था, आज तुम छड्डूंगी नहीं, तनू छड्डूंगी नहीं।
3: तो ये बात हो सकती है कि टीचर का मूड था।
0: हाँ
3: क्योंकि हमेशा गलती तो स्टूडेंट ही होती है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह कोई कबीर नाम का बच्चा पटेगा।
3: हाँ स्टूडेंट की होती है।
0: नहीं आज मुझे मुझे डर इस बात का है कि सुबह सुबह कोई कबीर नाम का बच्चा पिटेगा। आज तो गया वो। आई रियली होप खिला हो
3: भाई। वो तो बढ़िया है, बस बहन के हस्बैंड का नाम कबीर ना हो।
0: अरे रे रे रे भैया। बहुत दुआएं, बहुत दुआएं, सिर्फ दुआ ही काम आ सकती है भाई इसमें, और तो कुछ नहीं, बाकी तो धुआं धुआं हो ही जाएगा।
3: वही कर सकते हैं
0: भाई। जी जी बिल्कुल
3: नहीं, सीढ़ियां जो आप कह रहे हैं जो यूजुअली मिजाज में असर होती भी हैं, होनी चाहिए।
0: अच्छा होनी चाहिए,
3: एक खूबसूरती होती है बस चीज के लिए, बाकी तो
0: उर्दू में अटारी कहते हैं भाई, अटारी कहते हैं। मैंने भी चेक किया अभी सुभाष भाई ने, भाई अटारी कहते हैं, अटारी हाँ मेरी अटारिया में वही तो
3: नहीं। चाहे जो भी कहते हो आप, जिन सीढ़ियों की बात कर रहे हैं, जितना मुझे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उस हिसाब से तो भाई जगह की खपत है वो, और कुछ नहीं है।
0: अरे यार तो आपसे तो इस बारे में बात करना ही बेकार है, क्योंकि आपने
3: तो लिफ्ट लगवा ले।
0: लिफ्ट लगवा ले? अरे भाई आपने और एक्सपेंड कर दिया। लिफ्ट लगवा ले
3: तो होती तो है ना घर में लिफ्ट।
0: अच्छा हर घर में नहीं होती लक्ष्मण।
3: सॉरी।
0: हाँ
3: रियली सॉरी।
0: अब आप पकड़ गए, अब आप पकड़ गए भाई, दिक्कत में हूँ बता रहा हूँ मैं। उस दिन आपने मेडिकल पेडिकल छोड़ा था, आज आप लिफ्ट छोड़ के गए। अरे भाई साहब।
3: अरे भाई
0: तो ये लिफ्ट कहाँ से कहाँ तक ले जाती है? लिफ्ट कहाँ से कहाँ तक ले जाती है आपके घर में?
3: फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे।
0: फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे। अच्छा ओके। ये तो नॉर्मल वाली लिफ्ट है, घर के अंदर कुछ लगा रखा है आपने?
3: हाँ घर के अंदर लिफ्ट ही है भाई, वो एक किस्म की।
0: ये मुझे समझाना पड़ेगा आपको, ये कैसी मतलब? अच्छा ठीक है, ओके गॉट इट। कोई अच्छी चीज ही होगी आप कह रहे हैं तो।
3: यानी यूजुअली मेट्स जो है ना, अब उनको कॉलिंग बेल अगर प्रेस किए तो जहाँ कहीं भी हो, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे कहीं भी हो, वापस ग्राउंड पे आ जाए, या फिर चाहे जो भी हो, उनके लिए सभी के लिए आसानी होती है। घर में कोई ऐसा बंदा आ गया आपके घर में ठहरने के लिए, जिनको हैवान सॉरी मेहमान कहा जाता है।
0: मैं नहीं आ रहा आपके घर भाई, बुलाने भी नहीं आऊंगा मैं।
3: अरे नहीं भाई
0: ठीक है ओके गॉट इट। थोड़ा थोड़ा गॉट इट।
3: अब्बू के घर की बात बता रहा हूँ। मेरे घर की नहीं, अब्बू के घर की बात बता रहा हूँ।
0: ओके
3: तो उनके लिए बस इस तरह से था कि कॉलिंग बेल प्रेस की या फिर इंटरकॉम पे बात कर ली, तो जहाँ भी है तो लिफ्ट से आने जाने में आसानी होती है भाई, सीढ़ियाँ हैं।
0: माय गॉड सो फैंसी मिस्टर प्रिंस, इट्स वेरी फैंसी, रियली नाइस, आई लव्ड इट। आप तो बुलाइए मेरे को,
3: मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई।
0: नहीं नहीं कुछ नहीं बोल सकते आप। आपने कॉल करके इसको और प्रीमियम बना दिया, आज प्रो मैक्स हो गया हमारा शो। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जब अपने हिसाब से घर बनाऊँ,
0: हाँ
3: इंशाल्लाह, यहाँ पे अभी तो फिलहाल बिल्कुल नॉर्मल से बना हुआ है,
0: हाँ
3: तो एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स कार मेरे बेडरूम में हो।
0: बेडरूम में आपको स्पोर्ट्स कार चाहिए?
3: हाँ भाई होती है।
0: भाई सामान बैग करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्या फायदा है इसका माइक? क्या कर रही है अपने?
3: अरे मुझे कोई महंगी वाली नहीं चाहिए भाई, मैं पगानी से काम चला लूंगा।
0: और पगानी 800।
3: बढ़िया है वो भी चलेगी।
0: ठीक है प्रिंस भाई, आज आपने जो है ना इतने ज्यादा सपने दिखा दिए कि अब सपने देखने की इच्छा मर चुकी है। थैंक यू उस चीज के लिए।
3: भाई अब सपने देखेंगे तभी तो उनको पूरा कर पाएंगे।
0: सही है। टिश्यू पेपर मेरे पास रखा है, मैं थोड़ी देर रो लेता हूँ आपकी बात सुन के। आंसू आ गए भाई, थैंक यू।
3: ये तो गलत बात है भाई, आप मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप टीचर दीदी की बात पे रो रहे हैं और ब्लेम मुझे किया जा रहा है।
0: देखिए आपको लपेटूंगा ना, बड़े भाई को बीच में पीछे जाता भाई।
3: बढ़िया भाई, आपने सुबह नाश्ता किया था?
0: नहीं भाई अभी मैं नाश्ता साथ में लेके आया हूँ, बीच में कर लूंगा मैं चुपके से, किसी को पता नहीं लगेगा।
3: आपको दवा मिल गई अर्ली मॉर्निंग, वेरी गुड।
0: बस भाई ऐसे ही प्रिंस भाई, जलवा भाई का, थैंक यू सो मच प्रिंस भाई। सुनिएगा भाई आज की कहानी, मजा
3: जलवा तो समथिंग समथिंग का होता है।

0: Ca tu, Robe.
1: Are, chiamă-le, oi. Thank you so much, Pizzeria.
0: Kuch aisa alfaz jo main istemal nahi kar sakta, jaise jalwa to something something ka hota
1: hai. Wo main samajh gaya.
0: Aapka to Robe.
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. इससे पहले हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएं, हमें यहीं रुक जाना चाहिए.
0: भाई आप ये किस चीज का टॉपिक पकड़ के लेकर आ गए अचानक से, जो रिलेट नहीं कर पा रही आज पब्लिक.
1: नहीं नहीं, रिलेट कर गई पब्लिक. दो तीन लोग रिलेट नहीं कर पाए, बाकी सब कर गए. मैसेज आ गया मेरे पास.
0: दो तीन में एक मैं भी हूँ.
1: हाँ मैं वही ना. तो
0: बेसमेंट तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, आप यकीन माने या ना माने. हाँ. बेसमेंट वल्ला ही मुझे पसंद नहीं है.
1: माशाल्लाह माशाल्लाह. नहीं मत बनाइएगा बेसमेंट, आप स्पोर्ट्स कार बनाइए घर के अंदर, ये मैं चाहूंगा.
0: हाँ वो इंशाल्लाह
1: इंशाल्लाह
0: इन फ्यूचर में जरूर करूंगा ये काम. ये छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं, वो इंशाल्लाह जरूर पूरी.
1: छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं ये छोटी मोटी ख्वाहिशें.
0: हाँ भाई
1: ठीक है भाई, आप कहते तो मान लेता हूँ. आपका तो नाम में ही प्रिंस है भाई. बनता है आपका ऐसा. अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक है, डन प्रिंस भाई. बहुत
0: प्रिंस भी टीचर से पिटा है.
1: नहीं
0: नाम प्रिंस होने से कुछ नहीं होता.
1: अरे अरे अरे अरे, डायलॉग आखिर में जो आपने
0: मारा. टीचर से पिटा है.
1: अच्छा ठीक है भाई. ठीक है प्रिंस भाई, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं.
0: हो या ना हो भाई, अगर हाँ. टीचर का मूड घर से खराब है तो उस दिन आपको बहुत ही अवेयर रहना चाहिए.
1: मैं आज अवेयर हो चुका हूँ भाई, मेरी आंख खुल गई एकदम.
0: आप नहीं थे,
1: अब हो गया होगा. अब हो गया होगा.
0: चलिए भाई, और भी लिसनर्स होंगे जो कॉल करना चाह रहे होंगे.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत लंबा टाइम ले लिया है.
1: नहीं कोई नहीं,
0: टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.
1: ओके मेरा भाई, अल्लाह
0: हाफिज़. सलाम अलैकुम भाई, कहानी का इंतजार
1: रहेगा. डन डन डन, ओके जी, अल्लाह हाफिज़.
0: ठीक है भाई, सलाम अलैकुम.
1: वालेकुम सलाम. तो प्रिंस भाई के जो छोटे छोटे सपने हैं, उनकी बात ही कुछ और है. बहुत छोटे छोटे सपने भाई. एक दो कॉल और आ रही है मेरे पास, मैं उठा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक जरा कॉल ले ली जाए. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई.
1: और नदीम भाई, छोटे छोटे सपने अपने सुन लिए अभी?
2: मैंने डिप्रेशन हो गई है सुबह सुबह का, तो से बता रहा हूँ यार. मेरे को लग रहा है सिर्फ रिसेशन साला हमको ही असर कर रहा है. बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई.
1: देख रहा हूँ दुनिया में कितना पैसा है नदीम भाई.
2: प्रिंस भाई के पास तो सोने का आईफोन होगा, मैं भी बता रहा हूँ, गोल्ड वाला.
1: तो नदीम भाई, हम अपने मिडिल क्लास सवाल पे आ जाते हैं. मेरा सवाल ये था. हाँ. कि एटिक और बेसमेंट वाला घर के आप भी सोचते हैं अपने लिए कि यार बेसमेंट होता काश का.
2: बेसमेंट तो नहीं लेकिन एटिक आई थिंक होना चाहिए. इसको नहीं समझ आ रहा ना तो वो लोग कवेलू के नीचे वाला कमरा.
1: कवेलू के नीचे वाला कमरा भाई, कवेलू समझ में.
2: हाँ, उसको एटिक बोलते हैं.
1: ठीक है,
2: तो क्या मतलब एटिक को अच्छे से सजा के प्राइवेसी रहती है, मतलब अच्छा लगता है.
1: हाँ, ये बात है.
2: अटिक को बहुत लोग सजाते हैं और बहुत प्यारा प्यारा अटिक बनाते हैं.
1: हाँ, यार यहाँ
2: वो
1: पे
2: देख
1: हाँ.
2: के दिल होता है कि एक अटिक होना चाहिए.
1: मुझे भी भाई, मैं कल
2: वो जो टीचर जी हमारे बता रहे थे, मैं बता रहा हूँ, वो अगर उन्होंने अटिक बनाया भी और भूत आ गया तो वो यही बोलेंगे कि इंसानों के रहने की जगह नहीं, साले तू कहाँ आया चल.
1: नहीं, देसी जनता को तो बेसमेंट वाला भी नहीं डरा सकता. I'm pretty sure about it. ये तो है.
2: देखो मैं तो अभी आपको पता है अपन मुंबई दिल्ली वाले हैं, तो अपने यहाँ तो सिर्फ गांव में ही बन सकता है अगर बनना है तो.
1: हाँ.
2: तो हम तो सिटी में तो सोच भी नहीं सकते ये सब बनाने की.
1: नहीं नहीं बन पाएगा. एक और वर्ड आया. हाँ. इन्होंने क्या है कि भाई हमारे देसी एटिक में क्या है, एक सेकेंड, क्या पीटी रखी होती है, क्या रखी होती है ये मैं समझा नहीं भाई. अच्छा आप बताइए. हाँ क्या कह रहे थे आप?
2: मैं बोला अपने सिटी में तो अपन नहीं बना सकते ऐसे घर, बनेंगे तो गांव में ही बनेंगे.
1: हाँ.
2: जहाँ पे अपन थोड़ा बहुत जगह लेके कुछ खर्चा कर सकते. यहाँ सिटी के अंदर तो साला 1 BHK लेने में जान निकल जाए बंदे की. तो
1: कहाँ यार नदीम भाई, अभी प्रिंस भाई इतनी भारी बात करके गए हैं, कहाँ यार आप.
2: वो तो
1: एकदम
2: प्रिंस
1: से...
2: भाई थे ना, तो वो प्रिंस भाई भाई मैं बता रहा हूँ. मैं अगर ये तो बोल रहे स्पोर्ट्स कार बेडरूम में रखने का, मैं बोल रहा हूँ मैं अगर बेडरूम के अंदर सिर्फ आगे का वो जो मालूम है सलूनों में सीट होती है सिर्फ आगे का दिखाते हैं जो गाड़ी का.
1: हाँ.
2: वो बेड बनता है उसका वैसे टाइप का.
1: हाँ.
2: वो भी बना दे तो हम लोग के लिए बहुत है यार, कि वो हम कार समझ के सो जाएंगे इसमें.
1: ये सही है, बैठ के आगे जाए गाड़ी का बम्पर लगा दूंगा, मुझे लगेगा मैं गाड़ी में सो रहा हूँ.
2: गाड़ी में सो रहा हूँ भाई.
1: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया. मिडिल क्लास आदमी की सोच कमाल की होती है माशाल्लाह. नदीम भाई बहुत बढ़िया यार, आप मुझे वापस धरती पे ले आए, थैंक यू सो मच.
2: धरती में तो ये भाई मैं तो बोल रहा था सुबह सुबह डिप्रेशन.

0: थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी डाउन टू अर्थ माय ब्रो. प्रिंस भाई जो है वापस मुझे आसमान पे ले जाएंगे. प्रिंस भाई जब आपका मन करे तो कॉल कीजिएगा, बट थैंक यू सो मच नदीम भाई, बहुत प्यारा आपका. ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज. ऑन के बाद एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे घर में है बेसमेंट और एटिक दोनों है, बहुत अच्छा होता है, होना चाहिए. क्या बात है, हाय ये तो बच्चन, हाय क्या बात है. और ये यहाँ वाले घर की बात हो रही है या फिर मतलब कहाँ के घर वाली बात हो रही है? आई एम रियली इंप्रेस्ड यार, यहीं पे एटिक और बेसमेंट भी है घर के अंदर. मेरे को मतलब थोड़ा बहुत फोटो वोटो दिखाओ, गरीब को इतना तो करो, मेहरबानियाँ. एक कॉल आ रही, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: और कमाल भाई,
1: कबीर भाई
0: बढ़िया भाई, आप सुनाइए.
1: ठीक नहीं हो गए?
0: नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा गर्म हो रहा है भाई.
1: भाई मैंने जब चालू किया वो एसी जो है, मैं इनको फोन आया था.
0: हाँ हाँ,
1: मेरे को लगा कि जो है आज वो नहीं डायलॉग सुने.
0: हाँ हाँ,
1: ये गुंडों में फंस गए.
0: हाँ वो वही हुआ था
1: भाई, अकेले ही फंस गए थे भाई.
0: कोई बचाने वाला नहीं था मेरे को भाई,
1: कोई बचाने वाला नहीं था.
0: रब्बा, तो बस बच गया भाई मैं, जैसे तैसे पतली गली से निकल गया. और कमाल भाई आपने देखा, आप माशाल्लाह काफी देखते भी हैं, मूवीज कंज्यूम करते हैं.
1: हाँ,
0: तो क्या कहना है आपका, बेसमेंट वेसमेंट चाहिए आपको, एट्रिक वेटिक चाहिए आपको, मतलब क्या है आपको?
1: हाँ, अगर पैसा आएगा तो इंशाल्लाह जरूर चाहिए.
0: अच्छा पैसा आएगा तो आपको बेसमेंट बनाने का है, ऐसा कुछ है?
1: हाँ, बेसमेंट एटिक तो समझ लो छोटा मोटा मैंने बनाया है.
0: हाँ अच्छा बनाया है आपने?
1: हाँ.
0: क्या बात है यार, वहाँ मुंबई में?
1: मुंबई में.
0: अरे क्या बात,
1: क्योंकि मेरा लास्ट फ्लोर पे रूम है.
0: अच्छा.
1: हम लोग का जो है लीगल में बिल्डिंग है, लेकिन उसमें तीसरे माले पे हम लोग का रूम है.
0: अच्छा,
1: लास्ट
0: okay.
1: पे.
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो ऊपर की जो जगह थी ना.
0: हाँ हाँ.
1: तो मैंने उसपे बनाया है.
0: अरे यार बहुत क्या व्यू आता होगा बारिश में यार, कमाल भाई
1: जबरदस्त भाई. तकरीबन नहीं बोलेगा तो 2 फीट की खिड़की है.
0: अच्छा वेरी नाइस.
1: एग्जॉस्ट फैन है.
0: हाँ हाँ,
1: एसी लगाना बाकी है.
0: ये तो
1: जाऊंगा तो एसी लगाऊंगा एक साइड में
0: भाई यार. क्या
1: हो सकता है, पोर्टेबल एसी रखूं.
0: ये आपने सपना दिया, ये आपने सपना दे दिया मुझे कमाल भाई यार. फोटो जरूर दिखाना भाई जाके, मेरे ऐसा मेरे को देखना है भाई. ये तो मजेदार व्यू होता होगा यार. सामने क्या है,
1: बहुत जबरदस्त होता है.
0: क्या दिखता है खिड़की सामने, क्या व्यू है वहाँ से?
1: सामने से पूरा एरिया दिखता है भाई.
0: अच्छा मतलब खुला खुला है कोई ऐसा?
1: पूरा खुला. हाँ, हम लोग का जो लास्ट वाला रूम है ना, तो उसमें आगे कोई कुछ बना ही नहीं सकता है, ऐसा है. और आगे पूरा खुला हुआ दिखता है. आधा समझ लो कि हम लोग के यहाँ से पूरा बर्मा से अपना क्या बोलते हैं चेम्बूर, पूरे एरिया दिखती है, ट्रेन आते हुए दिखती है.
0: क्या है
1: और बारिश होती है तो क्या सीन रहती है
0: यार. कमाल भाई आज आपने जो है मुझे जो आपकी बातों से दिखा दिया है ना, मजा आ गया मुझे देख के. एटिक तो बनाया
1: खिड़की के बाहर जो है मैंने जो है. हाँ. गमले लगा के वहाँ पे जो है क्यारी. हाँ. लगाई है फूलों की.
0: ओह वाओ क्या बात
1: और
0: है.
1: अच्छा व्यू मिलता है
0: माशाल्लाह कमाल भाई यार. ये तो आप आगे निकल गए भाई, आप तो बहुत आगे.
1: नीचे जगह नहीं है ना भाई, नीचे 2 रूम और है ना, तो बेसमेंट भी बना लेता.
0: अरे रूम नहीं बेसमेंट एटिक बढ़िया भाई. बेसमेंट को जाने दो, मेरे को लगता है डर. एटिक बहुत बढ़िया चीज है जो आपने बनाया, अच्छी बात है, वेरी नाइस. और आज की कहानी जरूर सुनिए कमल भाई, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाली है. यू विल लव इट.
1: ठीक
0: है मेरा भाई, जज़ाकअल्लाह, ख्याल रखिए अपना.
1: ओके
0: भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़. और एक और कॉल आ रही है, इट्स रेनिंग. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. और जनाब खैरियत से हैं?
0: बस चल रही है, तो अभी अभी दुकान खोली है, बोनी वोनी हो गई. आप बताइए क्या चाहिए आपको, 2 किलो चीनी पैक कर दूं?
2: दुकान खोली ना, मतलब कि भाई साहब मजा, आपको भी कोई मजा आया क्या गरीब लोगों को सुबह सुबह जो है डेली का मिनी हार्ट अटैक देने के लिए?
0: भाई मैंने कुछ नहीं कही ऐसी बात भाई, जिनको कहनी थी उन्होंने कह दी. मैं तो
2: मतलब के भाई भाई लेवल ही अलग है भाई का. हाला यहाँ पे अंबानी के पास, टाटा बिरला के पास पगानी नहीं है, उनको भाई को रूम बेडरूम में रखने के लिए पगानी चाहिए.
0: क्या कह रहे हो, बेस्ट फ्रेंड बनोगे प्रिंस भाई? ये पर बेस्ट फ्रेंड.
2: मैं तो सोच रहा हूँ छत भी खुली भी रखो.
0: सही जा रहा जस भाई, कुछ नहीं कर सकते भाई. और आप, आपको क्या लगता है जस भाई, बेसमेंट वगैरह चाहिए, मचान वगैरह एकदम खुला हुआ, क्या क्या क्या सीन है आपका?
2: ऊपर
0: वाला एटिक ना भाई मेरे को भी यार. कमाल भाई ने जो भी मुझे व्यू दिखा दिया ना, बता के कसम बता रहा हूँ मजा आ गया, मजा करा गया कमाल भाई सीरियसली.
2: नहीं अब इंशाल्लाह मेरा तो बनेगा ना, मैं बनाऊंगा.
0: हाँ तो
2: अब
0: क्या
2: मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह जाने के बाद में, तो ऊपर का बनाऊंगा मैं एटिक.
0: हाँ एटिक वेटिक बनाना भाई, बढ़िया गद्दा वद्दा डाल के आदमी खड़की देख रहा.
2: हाँ खुला हुआ एरिया है अपना उधर, जहाँ जगह मैंने लिए है उधर खुला हुआ एरिया है. एकदम से व्यू जबरदस्त आएगा देखने के लिए. वो समुद्र मंदिर तो नहीं है वैसे, ट्रेन व्रेन जाने का रास्ता नहीं है.
0: हाँ.
2: मतलब कि नेचर जो है ना, नेचर
0: देखेंगे, पेड़ वेड़ देखेंगे हिलते हुए. क्या बात है मेरा भाई, कौन सी जगह है, क्या शहर क्या है?
1: मुरादाबाद है भाई।
0: अच्छा, अरे बहुत बढ़िया यार, ये सादगी देखेंगे आप, सादगी।
1: जी बिल्कुल,
0: वेरी
1: नाइस। मैं सबसे जो है ना, मैं नीचे जो है ना, नीचे बनाऊंगा सिंपल तरीके से, ऊपर जो है ना शानदार तरीके से इंशाल्लाह, अल्लाह में शाह दो भाई।
0: प्रिंस भाई से एडवाइस चाहिए हो तो मैं नंबर दे सकता हूँ, बात कर ले।
1: भाई साहब, वो तो भाई साहब के तो भाई जो हमारे छोटे मोटे सपने होते हैं ना, वो उनपे जो है ना भाई साहब पानी फेर के चले जाते हैं।
0: जूस जूस।
1: एक तो होता रोड रोलर, हमारे ना पानी सीधा जो है ना खारा पानी मार के जाते हैं कि नामो निशान तक मिटा दे
0: खारा पानी। अरे ठीक है, बट थैंक यू सो मच जस भाई।
1: प्रिंस भाई को यार ना एक चीज है ना, प्रिंस भाई ना डेली आके ना कुछ ना कुछ ऐसा देखे जाते हैं ना भाई साहब के, पब्लिक जो है ना शॉक हो जाती है।
0: मैं खुद भाई
1: कंफ्यूज हो जाती
0: है। मैं भी 3 घंटे भी शॉक में रहने वाला हूँ, नब्ज दिखाऊंगा मैं शो के बाद अपनी। कि डाक साहब चेक करना। अरे यार बहुत बहुत शुक्रिया जस भाई कॉल करने के लिए।
1: प्रिंस भाई की बात है यार, मजा बहुत आता है
0: प्रिंस भाई। नो जोक्स ऑन यू ब्रो, बहुत सारा प्यार आपको अगर आप सुन रहे हैं अभी सोनी।
1: मजा बहुत आता है, अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है
1: भाई, ऐसे ऐसे जो है ना मिनी मिनी हार्ट अटैक दिया करो रोज। पब्लिक को आदत हो गई है।
0: वो है ना, वो जो शेर था ना, ऐसी कुछ था ना कि जब दर्द नहीं मिलता तो बहुत दर्द होता है, ऐसी कुछ करके शायरी थी ना वो। वो ठीक है,
1: दवा नहीं मिलती, पता नहीं।
0: नहीं उसमें नहीं जाएंगे हम, सेट बात नहीं करेंगे। हटाओ
1: चलो
0: ठीक है भाई।
1: अल्लाह हाफिज।
0: और जैस भाई के बाद एक और कॉल है, उसके बाद हम सारे मैसेजेस पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
0: क्या बात
3: है कबीर भाई।
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपका नाम बता देंगे एक बार पब्लिक को।
3: मैं मोइन।
0: मोइन भाई बताइए, मोइन भाई नाम तो सुना ही होगा। मैंने सुना जी भाई।
3: कबीर भाई, अपने घर में एटिक या फिर बेसमेंट नहीं है।
0: हाँ।
3: अभी रिसेंटली मतलब मैसूर में हमने घर खरीदा था, बट एटिक से ना भाई, एक मैं जब ये रिसेंटली घर खरीद रहे थे भाई, तो क्या था, एक घर था भाई।
0: हाँ।
3: जिसमें एटिक था।
0: हाँ।
3: तो हमने बहुत सारा वो मतलब ऑनलाइन सर्च वर्च करके फादर को मैंने बताया था कि भाई ये घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेना है करके। तो मेरे फादर ना थोड़ा सा बजट को लेके उसके पीछे ऑलरेडी चिड़े हुए थे।
0: अच्छा।
3: तो मैं बोला भाई वो टेंशन मत लो, अब बस घर पसंद कर लो। तो वो गए, ठीक है, वो जो ब्रोकर होता है ना जनाब।
0: हाँ हाँ हाँ।
3: तो उसने क्या, वो उसने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ। अगर मिल गया ना तो क्या हुआ, छोटा सा बजट ऊपर जा रहा था भाई।
0: अच्छा,
3: तो हमने कॉन्फिडेंस में ले लिया था फादर साहब को।
0: हाँ, हाँ।
3: कि भाई वो टेंशन नहीं है, आप बस पसंद कर लो। अब देखो सीन क्या है ना, मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ।
0: हाँ।
3: कि वो छोटा सा डिफिसिट हमारे आपके लिए क्या है ना, हम लोग यंग जनरेशन, वो बोलते हैं कि भाई ये तो हो जाएगा, टेंशन नहीं, मेरे सेविंग से मैं कुछ कर लूंगा। बट अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे फादर साहब की अगर जनरेशन के कोई है, उनको ना बहुत ज्यादा लग जाता
0: है।
3: तो वही बात हो गई, तो अंकल जी इतना ज्यादा है बट अटीक भी तो है, आप चलिए ऊपर के लिए। मेरे फादर को जो गुस्सा आया था उसकी अटीक निकाल दी भाई।
0: क्यों, पसंद नहीं आया? पसंद नहीं आया
3: नहीं, बेसिकली क्या है ना, वो जो एक्स्ट्रा बता रहा था उसको सेल करने का तरीका नहीं आया। बेसिकली उसको बोलना चाहिए था अंकल गार्डन देखो, सिटी के नजदीक देखो। उसने डायरेक्ट बोला है इतने ज्यादा लाख ज्यादा है, तो फिर अटीक भी तो है, आप चलिए अटीक देखिए। तो पूरा ये बर्बाद
0: यार,
3: तो
0: ये
3: घर हाथ से निकल गया,
0: ब्रोकर ने निकलवा दिया आपके हाथ से। ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या व्यू होगा उसका, भी अच्छा व्यू होगा ना, एटिक वैटिक होगा
3: भाई। देखो क्या था ना, आम का पेड़ था बहुत बड़ा वाला, उसमें आम नहीं लगते थे बट आम का पेड़ था। और पीपल का पेड़ पता है आपको?
0: हाँ हाँ, ऑफकोर्स
3: जी, पीपल का पेड़ था, उसके नीचे आपका अटीक आ रहा था, ट्रायंगुलर शेप में था, और आई थिंक 2-2.5 feet की खिड़कियां थी उसके ऊपर।
0: क्या बात है यार, कैसे छोड़ दिया
3: भाई, जबरदस्त था भाई। मैंने उसके बाद ना मैंने कितना रोया धोया पापा के सामने, पापा को बस वो आदमी पसंद नहीं आया, अगर नहीं तो फिर वो ले ही लेते।
0: उस ब्रोकर को ढूंढो भाई, मुझे को भी उसका नंबर देना, उसको मैं अलग से मैं भी कुछ कह।
3: अरे हम लोग बाहर गए ना तो फिर मैं उसको गाली दिया भाई, भाई तेरे को अगर बताना ही था तो ये बता देता कि भाई सिटी से नजदीक है।
0: हाँ, हाँ।
3: पेट्रोल बंक नजदीक है, स्कूल नजदीक है, ये बता दे तो ये अटीक वाली बात क्यों करी तुमने
0: भाई। मुझे सेकंड हैंड दर्द हो रहा है दिल में, बता ये बात सुनने के बाद में सही बता।
3: अरे मेरे को आज भी होता है जब भी मैं सोचता हूँ। अभी जो वो घर खरीदा है ना, वो डिसेंट सा घर है, मतलब 2 फ्लोर है और फिर मतलब बेसिक घर, मतलब उसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई।
0: एटिक बनवाओ यार मोहिन भाई, ये ख्वाहिश जो है ना ये आपकी ख्वाहिश के साथ साथ मेरी भी ख्वाहिश हो चुकी है, आपको एटिक चाहिए मेरा भाई।
3: भाई देखो मैं बताता हूँ आपको मेरा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह की मदद हो
0: इंशाल्लाह।
3: मेरा गांव है, गांव नहीं मतलब मेरे इन-लॉस का गांव है अपना शिमोगा बोल के।
0: अच्छा, ये
3: बैंगलोर से 150 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा ओके।
3: और ये लोग उधर के वो है क्या बोलते हैं आपको, पंच लोग हैं मतलब
0: सरपंच एमएलए से। अच्छा ओके ओके।
3: अरे एमएलए से प्रॉपर उधर।
0: ओके ओके ओके।
3: तो मुझे मैंने जमीन पूछी, इंशाल्लाह वो अगर दिलवा दें 3 एकड़ की उसमें बनाऊंगा भाई।
0: अरे कब्जा,
3: जो आप बोल रहे हो ना
0: कब्जा करवा देंगे मोहिन भाई, आप एक बार बोलो तो सही। नहीं बनवाओ भाई बनवाओ।
3: तो भाई इंशाल्लाह ये प्लान है, मतलब अपना घर हो ये अटीक हो भाई, बहुत जरूरी चीज है भाई। अगर आपको ना जो कुछ भी टेंशन से रिलीफ मिलना है बस आप ऊपर जाके एक कंफर्ट चेयर में बैठ जाओ भाई, खलास।
0: क्या बात है मोइन भाई, आपने मेरे सपने में और जो है केरोसिन ऑयल छिड़क दिया, तो मुझे चाहिए एटिक वाला भाई। थैंक यू सो मच।
3: चाहिए चाहिए भाई, कसम से बोल रहा हूँ। जैसे मेरे को लाइफ में ना 3 चीज चाहिए, जैसे मतलब एक बाइक चाहिए, नाम नहीं बोल सकता, बाद में एक गाड़ी चाहिए उसका भी नाम नहीं बोल सकता, दूसरी चीज भाई घर में अटिक हो।
0: हो ठीक है, इंशाल्लाह होगा,
3: नहीं तो रिटायरमेंट बेकार है आपका।
0: अरे यार ऐसा भी मतलब आप बिल्कुल क्लाइमेक्स ऐसा दे दिए ना, आप तो चाहिए ही चाहिए। मोइन भाई आपके लिए बहुत सारी दुआएं भाई, इंशाल्लाह आपको एटिक वाला घर मिले, बढ़िया नजारे वाला मेरे भाई।
3: इंशाल्लाह इंशाल्लाह,
0: बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई, बहुत प्यार मेरे भाई, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। और मोइन भाई ने जो बात कही है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा था, मैं यही मकसद था मेरा, मैं सारे मैसेज एक बार पढ़ देता हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज है मेरे पास। माज भाई कह रहे हैं कि क्या है क्या एंटीलेमेटिक होगा, होगा भाई और है माज भाई उधर है। और लिखते हैं कि समूल बहन ने क्या बोल दिया, बहुत कुछ बोल के गई है टीचर, बिल्कुल सुना के गई है। ताहिर भाई लिखा है इन बिग सिटीज ऑफ पाकिस्तान इन सम कम्युनिटीज इट्स गेटिंग कॉमन टू हैव बेसमेंट नाउ। हाँ पाकिस्तान मुझे लग रहा है काफ़ी बेसमेंट होना बड़ा कॉमन हो चुका है, इशू ये है कि रेनी सीजन में जो पानी जमा होता है वो कैसे निकालें। ये तो सोचा ही नहीं। और जैसे स्पोर्ट्स कार शेप्ड बेड मिलते हैं वैसे, उन्हें शेप्ड नहीं चाहिए, उनको गाड़ी ही चाहिए। रियाज भाई कह रहे हैं प्रिंस भाई का नंबर ब्लॉक करें, हमें बहुत गुर्बत वाली फीलिंग आ रही है। और मुना बहन ने मैसेज किया, बेसमेंट मैंने देखा है लोग अच्छा सजाते हैं, तो बंदा यूज़ भी कर ले। एटिक भैया एटिक ना हो पाएगा, एटिक की अच्छी एंडिंग मैंने कभी देखी ही नहीं है, इट्स ऑलवेज अ हॉरर स्टोरी। कहते हॉरर स्टोरी में कभी एटिक में एंडिंग अच्छी नहीं देखी। अरे मैं बताऊंगा कौन सी पिक्चर देखनी है आपको। मोहसिन भाई लिखते हैं क्या कह रहे हैं, ये क्या वो लिखा है, क्या आप डर रहे हो बेसमेंट से, हम तो डर नहीं रहे, कभी पिक्चर देखो बेसमेंट वाली। एक मैसेज है एटिक आज सबको ज़रूरत है चाय की, मुझे भी ऐसे लगता है भाइ। ये मैसेज क्या है, हिदायत भाई लिखते हैं इस मिड वीक क्राइसिस, इसे मिड वीक क्राइसिस बोलते हैं, हाफ वीक गॉन हाफ वीक रिमेनिंग ये फीलिंग आती है। और कहते हैं एटिक इज़ क्या भला खाना इन उर्दू, हर कोई अलग अलग नाम बता रहा है भाई, मैंने नींद में कॉल कर दी। बेसमेंट और एटिक ज़रूरी है, घर में लॉन होना चाहिए। अच्छा ये मोहसिन भाई का कहना है, मोहसिन भाई मैं आपकी बिल्कुल साथ हूँ। और बाकी मैसेज गुजरने पड़ते हैं क्योंकि अभी जिंगल चलाने का वक्त हो गया, उसके बाद मिलते हैं क्योंकि मैसेजेस भर भर के हैं भाई। Stay tuned.

0: FM 107 Time Check.
1: आपको तो पता ही मैं क्या कहने वाला हूँ, साथ दो और आप भी मेरा साथ दो, बहुत ज़रूरी है। और सुबह से आप साथ दे रहे हैं, ये कमाल की बात है। आज हम कुछ अलग ही डिस्कशन कर रहे हैं और इस डिस्कशन में बहुत सारे लोग बह गए हैं कतई, तो मज़ा भी आ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हम देखते हैं कि बाहर के घरों में एक होता है एटिक, आप उसको

0: कुछ लोग मचान चौबारा बहुत कुछ कह रहे हैं, और एक होता है बेसमेंट। क्या है कि हॉरर मूवीज ने हमारे दिमाग में डाल दिए, दोनों चीजें बड़ी डेंजर है। पर हम ये जो है इतना दूर हो चुके हैं कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको चाहिए ऐसा कुछ के हो आपके घरों में कि नहीं, मतलब बेसमेंट और एटिक की इच्छा है। बहुत सारे लोगों के ओपिनियन है, मैं जरा एक कॉल कर दूं माज भाई को, उसके बाद जो है मैं सबके मैसेज पढ़ूंगा। वकास फ्रॉम कराची भाई, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मैज, ओवर टू यू। माज भाई मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाएं।
1: भाई देखो, मैं जो ओरिजिनली कहना चाह रहा था, नदीम भाई ने मेजर कवर कर लिया और फिर बाकी लोग भी कवर कर रहे हैं, लेकिन हाँ। जो आपने शुरुआत की थी कि भूत बात से,
0: हाँ।
1: उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रिंस भाई ने बात बदल दी और बोला कि भाई भूत बात कुछ नहीं होता, पैसों की औकात होती है, जब पैसे की औकात नहीं होती तो भूत बात की बात होती है।
0: तो आपको कैसा प्रिंस भाई के बातों से कैसा महसूस हुआ आपको, क्या गाड़ी आपकी रुक गई थी आपकी भी?
1: तो
0: आवाज गई आपकी माज भाई,
1: नहीं कर रहे हो ये, एक हमको ना एक मीटअप वाला फंक्शन करना चाहिए।
0: अच्छा,
1: आपके सारे लिसनर्स,
0: अच्छा
1: ठीक है,
0: हाँ।
1: उस मीटअप वाले फंक्शन में आपके सारे लिसनर्स आएंगे तो हम फिर आपको छोड़ के प्रिंस भाई से दोस्ती कर लेंगे।
0: अच्छा अच्छा,
1: समझ रहे हो,
0: अच्छी चाल है, अच्छी चाल है।
1: आपको छोड़ के फिर प्रिंस भाई से बेस्ट फ्रेंडशिप कर लेंगे, बच्चों को बोलेंगे प्रिंस भाई के बच्चों को छोड़ना नहीं,
0: हाँ।
1: यही है आगे जाके सहारा।
0: अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है ये?
1: इन्वेस्टमेंट प्लान है यार, समझ नहीं रहे हो,
0: बहुत
1: मीटअप प्लान तो करो ना, बहुत लोगों का फायदा होगा इसमें।
0: नहीं मुझे
1: प्रिंस भाई हो गए, फिर वो मोइन भाई कॉल किए थे जिनके एमएलए एमपी है, किसी के आईटी क्वालिटी बने हुए हैं, मतलब आपके शो में माशाल्लाह से सिर्फ मैं ही गरीब रह गया हूँ। मुझे ही सबसे ज्यादा जरूरत है,
0: आपका छोड़िए मैं रह गया हूँ। अरे आपका
1: आप
0: छोड़ी,
1: मीटअप तो करो ना यार, आप एक मीटअप करवाओ के हम फिर मतलब सारे लिसनर्स का दोस्ती करवा के कुछ दोस्ती का फायदा तो उठाएं।
0: अरे आप अपना छोड़िए, मेरे को दोस्ती करनी पड़ेगी पहले भाई।
1: दोनों भाई साथ में मिलके तबाही करते ना, तुम करो तो सही,
0: ये आप करना पड़ेगा भाई। तो प्रिंस भाई मोइन भाई क्या फ्री है?
1: प्रिंस भाई मोइन भाई और भी मुझे लग रहा है, मतलब कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि भाई एवरेज, हाँ। एवरेज जो वर्ड है ना,
0: हाँ।
1: एवरेज,
0: हाँ।
1: आप किसी भी चीज का एवरेज निकालते हो, मीन निकालते हो, एवरेज निकालते हो, कि एवरेज से कुछ नहीं होता भाई। अगर आप अंबानी को एक लोकल ट्रेन में बिठा दो,
0: हाँ।
1: तो एवरेज हो जाएगा कि लोकल ट्रेन में बैठा हुआ हर आदमी अमीर है,
0: हाँ।
1: जबकि उसमें सिर्फ अंबानी अमीर है,
0: हाँ।
1: तो आपके मीटअप का जो एवरेज रहेगा कि उसमें रहेगा कि आपके सारे लिसनर्स अमीर है, जबकि सिर्फ प्रिंस भाई मोइन भाई अमीर है।
0: क्या बात है, ये आपने जो है और हमें एहसास दिलाया है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो,
1: आपने दिलाया, आपने टॉपिक उठाया है था कि भाई आपको बेसमेंट और एटिक चाहिए। पैसे हैं जेब में, मेरे मेरे घर का किराया नहीं निकल रहा है हर महीने, तकलीफ हो रही है मुझे, तुमको घर के किराए के ऊपर से भी बेसमेंट और एटिक वाला चाहिए?
0: भाई
1: पास बैठ के बोली, हाँ यार होना तो चाहिए था हमारे पास, कहाँ से आएगा ये किराया, कहाँ से निकलेगा इसका, महंगाई देख रहे हो।
0: एक तो मैसेज आया मेरे पास, कह रहे अरे सफाई कौन करेगा भाई, बाकी सब छोड़ो।
1: अरे हाँ भाई सफाई कौन करेगा, टीवी बोल रही है, हाँ तो काम वाला भी रख लेंगे, काम वाली भी रख लेंगे, कहाँ से रखेंगे, पैसे कहाँ है।
0: अरे भैया ब्लड प्रेशर चेक करो इनका भाई,
1: आप,
0: स्मार्ट
1: लेकर आते हो, आप लेकर आते हो गरीबी का एहसास दिलाने अंधेरों वाली टॉपिक, कि आपको एटिक चाहिए, आपको बेडरूम में स्पोर्ट्स कार चाहिए,
0: हाँ।
1: स्पोर्ट्स बाइक चाहिए जिसका नाम नहीं ले सकते, हाँ? 3 एकड़ की जमीन मिल रही है भाई, माशाल्लाह
0: माशाल्लाह,
1: बारी किसी की नजर ना लगे,
0: हाँ।
1: भाई
0: तो
1: आप लाते हो ना ऐसे टॉपिक,
0: माज भाई हाथ में लगे इसी बात भाई।
1: टॉपिक आप लाते हो, भुगतना हम लिसनर्स को पड़ता है, वो भी गरीब वाले।
0: कल मैं ठेले वेले की बात करने वाला हूँ, मैं तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए।
1: आप टॉपिक ये लाओ कि भाई एक पानी पूरी में आपको,
0: हाँ।
1: मीठी चटनी चाहिए नहीं चाहिए, भाई गरीब आदमी रिलेट कर सकता है।
0: ये ठीक है,
1: घर में आपको बेसमेंट एटिक चाहिए, अब तो महंगा ही होगी, पानी पूरी खाते खाते मैं दो बार सोचता हूँ कि भाई खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए।
0: मजा आएगा, मजा आएगा।
1: आपको बेसमेंट चाहिए, फिर आपको खुद घुसाना है, फिर गरीबी का एहसास दिलाना है
0: भाई, अपनी स्मार्ट वॉच, अपनी अपनी स्मार्ट वॉच में एक बार ब्लड प्रेशर चेक कर लेना, क्या रीडिंग आ रही है
1: स्मार्ट वॉच में, इस वक्त मेरा हार्ट रेट दिखा रहा है 115।
0: ये

0: मीटअप करवाओ, हमको अमीर दोस्तों की जरूरत है जिनके सामने हम हमारा फंड रेज
1: करें। मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ आपके लिए, घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है सबसे पहले तो। ठीक है, अरे बाप रे, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ नाज भाई, ठीक है,
0: आप कुछ करो, जरूरी है,
1: जरूरी जरूरी है, हम बनाएंगे एटिक मिल बांट के। ठीक है, चलो, हिम्मत मत हारना, मैं आपके साथ हूँ, हिम्मत नहीं आना, लो टिश्यू पेपर, लो दो टिश्यू पेपर निकाल के दे दिया आपके, लिए पकड़ो, ठीक है, ख्याल रखना। आता हूँ मैं, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो कहने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं मेरे पास, समझ रहे हैं आप। हाई हो गया भाई ब्लड प्रेशर, और एक मैसेज आया इंडिया में, एक है उन्होंने मैसेज किया है कि उनके पास इंडिया में एटिक भी है, बेसमेंट भी है। भाई सच में, मतलब सुन रहे हैं आप, सुबह सुबह सुनने वाले के जेब में रोकड़ा बहुत है माशाल्लाह। एक मैसेज, कबीर भाई सलाम अलैकुम, मैं बता रहा हूँ प्रिंस भाई के सपने, क्या वो प्लेयर मूवी के हैं जो चार हीरो के चार सपने होते हैं, प्रिंस भाई का सपना इंशाल्लाह वैसे ही पूरा हो जाए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में बताया मोहम्मद भाई। एक मैसेज है, प्रिंस भाई की बात सुन के मुझे तानिया मित्तल पर तरस आने लगा, ये अफजल खान साहब ने मैसेज किया। एक मैसेज सैयद खादर साहब का, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम प्रिंस भाई, बी लाइक लिफ्ट मेड पगानी बेडरूम स्काईवॉक अटारी व्हाट, एटिक तो नहीं पता, पेंट हाउस का आइडिया अच्छा लगता है, अरबी स्टाइल पेंट हाउस फॉर वेडिंग पार्टीज। क्या सादा रिप्लाई दिया है माशाल्लाह, मजा आ गया। और एक मैसेज इनके बाद, अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कहते हैं एटिक एंड बेसमेंट अच्छा है, बेसमेंट का फायदा ये है कि समर्स में ठंडा रहता है, अग्री ऑन दैट, पर अभी ये टॉपिक ट्रिगर कर चुका है माज भाई को। और एक हमारे और भाई, इन्होंने मैसेज किया है, शेख इरफान अल खासमी साहब, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई, कहते हैं मैं मंसूरा सिग्नल के पास एक पाकिस्तानी होटल के जहां राइडर्स के लिए डिस्काउंट है वहां बैठ के आलू का पराठा खा रहा हूं, आप भी आइए भाई। एकदम से धरती पर ले आए टॉपिक को, अरे छोड़ो बेसमेंट डैडी, आलू का पराठा खाओ यार। एक मैसेज है भाई, भूत तो नीम के पेड़ पर भी होते हैं, तो क्या हरियाली करना बंद कर दें, बेसमेंट गुड फॉर स्टोर रूम, और एटिक में अच्छे से कमरा एस्थेटिक, पर्दे लगे हों कितना सुंदर लगेगा, कुछ इंडोर प्लांट्स कारपेट तो एटिक इज गुड रखना चाहिए। ये सिद्रा बहन ने बताया, बहन ने सजा लिया रूम, सिर्फ सोचा नहीं सजा लिया। जाकिर भाई कहते हैं एटिक इन उर्दू चौबारा और ममटी, हाँ चौबारा ममटी कह सकते हैं। शहर सलीम और आसिफ भाई, कुछ देर में कॉल लगाता हूँ मैं। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम बाबा, एटिक इन उर्दू इज चौबारा, समवेयर इन पाकिस्तान दे ऑल्सो कॉल इट पर चट्टी, अच्छा बेसमेंट इज तहखाना एंड अल्हम्दुलिल्लाह बेसमेंट विद बोथ तहखाना, कितना डरावना लगता है। बेसमेंट थोड़ा कम डरावना लग रहा है। स्टे ब्लेस्ड भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज है, मुझे तो सिर्फ दो चार ओके, मैं इनका रिप्लाई पढ़ नहीं सकता हूँ, बहुत डेंजर रिप्लाई है भाई, सुबह बहुत डेंजर लिसनर। एक मैसेज है, इन आर एरिया वी हैव ओपन रूफ डिजाइन टेरेसेस, ये ओपन रूफ डिजाइन टेरेसेस क्या होता है कासिम भाई, मेरे इस गरीब दिमाग को बताओ प्लीज़। जावेद भाई वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज है एवरीथिंग इज़ हेयर, मोहम्मद इफ्तकार भाई ने क्या कमाल के मैसेज भेजा भाई, क्या कमाल का वीडियो भाई, दिल खुश कर दिया माशाल्लाह। अब्दुल खादिर अब्दुल आदि भाई ने मैसेज किया, कबीर भाई टाइम साथ दो, वो तो पढ़ चुका मैं। एक मैसेज है, मेरा दिल आर्ट्रियम की तरफ ज़्यादा है नॉट बेसमेंट और एटिक। हकीम भाई ने बहुत ही बेसमेंट सॉरी फैंसी रिप्लाई किया, बाकायदा फ़ोटो भेजा हकीम भाई, थैंक यू। नदीम भाई कह रहे हैं सेम टू सेम माज भाई, रिसेशन सिर्फ हमारे यहाँ पर है। एक मैसेज है भाई, हमेशा गरीब लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाके ग्राउंड फ्लोर को बेसमेंट समझ लेते हैं और ग्राउंड पे जाके फर्स्ट को एटिक, ये क्या बात है। आगे लिखते हैं भाई, वाकई रोने लग गए भाई, हम गरीब लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाकर ग्राउंड फ्लोर को बेसमेंट, अच्छा ये तो पढ़ा मैंने नहीं भाई, ऐसा है क्या उसाम भाई, मेरा भाई इत्तफाकन लास्ट फ्लोर है। अरसान भट्ट भाई वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं। और एक मैसेज है, कबीर भाई आई एग्री विद माज भाई, ये अग्री करते हुए माज भाई के साथ ये मैसेज किया है मुझे तनवीर अहमद भाई ने। ओके तनवीर अहमद भाई के बाद एक मैसेज, कबीर भाई आज तो मैं एक लम्हे के लिए टीचर साहिबा का रूप देखकर डर गया, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि आप बाल बाल बच गए। नौशाद अहमद कासमी भाई कॉल, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं बच रहा हूँ इसलिए मैसेज पढ़ रहा हूँ अभी, मैं पर मैं भी डर गया था। एक मैसेज है, कबीर भाई आई एग्री कोई प्रोग्राम गरीबों के लिए भी करें। उसमें बहन ने मैसेज, बहन मेरा सवाल बहुत नॉर्मल था, वो खामखा रईस हो गया। सलीम भाई वालेकुम अस्सलाम, मेरे फर्स्ट टाइम, मेरे भाई कैसे हैं। और एक मैसेज, माज भाई से कोई कहे डोंट डू चिल सुभाष भाई, मैं वही कहना चाहता था, लेट मी फिनिश एक मैसेज, कॉल मी, आप फिनिश करवा देंगे, आप फिनिश ही कर देंगे फवाद भाई, दो मिनट रुक जाओ, एक मैसेज नसीम साहब, रेस्टोरेंट का लोकेशन भेजो, फिर ब्रो इट्स

पेंटहाउस, हाँ जी पेंटहाउस। एक मैसेज है, हाई चल रही है हार्ट रेट इमाज भाई, कंट्रोल थोड़ा सा। इरफान भाई ने मैसेज किया है, नफरत हो रही है एटिक से, बस करो, क्यों दिल जला रहे हो। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं बात नहीं कर रहा इसकी। एक मैसेज, आप कब बना रहे हैं दो, क्या दोनों में से एक चीज़? मेरा मन है एटिक बनाने का, अगर इंशाल्लाह ताला का ये पैसा हुआ तो मैं ज़रूर बनाऊंगा एटिक, सही बता रहा हूँ मैं। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, द टॉपिक इज़ वेरी नाइस बट द डिस्कशंस आर गोइंग वेरी हिलेरियस। आपको लगता है सुदीप तो सर मेरे शो में कोई सीरियस रह पाएगा? कोई नहीं रह पाएगा। कहते हैं बहुत मज़ा आ रहा है, हमारे पास ना एटिक है और ना ही बेसमेंट, एक छोटी सी बालकनी है, उसमें से भी चिड़िया कचरा करके चली जाती है। सुदीप तो सर अगर मेरी गाड़ी आपने देख ली ना तो आपको पता लगेगा जिसे आप कचरा कह रहे हो क्या होता है। सैयद हमजा भाई लिखा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, लिखते हैं कुछ दिन पहले किसी ने कहा था वो लोग सिर्फ आपकी बातें सुनते हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू 107 बिकॉज ऑफ यू एंड स्टिल एंजॉइंग यू। सो भाई बहुत मोहब्बत। और लगते हैं इन कराची वी डोंट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ एटिक बेसमेंट का भी है, बट मैंशन उसको बनवाना है। अच्छा, बनवाना महंगा है, दिल तो बहुत कुछ चाहता है मगर जेब इजाजत नहीं देती है भाई की। एक मैसेज, भाई हम गरीब कहाँ जाएं, एक काम करते हैं टाइम निकाल के निकल ही जाते हैं। तो अरे भैया मोहम्मद विकास वगास इकबाल भाई थोड़ा सा काबू रखिए। एक मैसेज है, कबीर भाई द ग्रेट, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई साहब, नोमिन भाई क्या चल रहा है, सैयद रसलान बुखारी साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज, सलाम मुर्शीद आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देन एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, आज का टॉपिक सुन के गाना याद आ गया, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। इरफान अली लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम आज कबीर, होप यू वेल। भाई हमने तो मॉल्स के बेसमेंट ही देखे हैं, ये देखो ना। माजिद भाई वालेकुम सलाम, कहाँ जाऊँ मैं, गाना ही चला देता हूँ मैं, किधर है गाना, किधर है रब्बा, ये कौन सा गाना है मुझे भी नहीं पता, मैं चला रहा हूँ बस। सादिक भाई कह रहे हैं आपके शो में अगर कफन की भी बात होगी तो दो ग्रुप बन जाएंगे प्रिंस भाई की वजह से। अरे भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हु जस्ट ट्यून इन, क्या बात है। चलो जी,

0: भाई दो छोटी छोटी कॉल्स ले लेते हैं जल्दी से फटाफट और उसके बाद हम सीधा पहुंचेंगे कहानी की तरफ. ये कॉल मिलाई मैंने उसके बाद सीधा हमारी हमारी तला भाई को. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है?
0: हाँ भी मैं बस यूरोप घूमने निकला हूँ, आप आएंगे ज्वाइन करने जाएंगे?
1: लेकिन ना आपको एहसास ना हुआ लोगों के दिलों का.
0: अरे मैंने क्या कर दिया भाई,
1: लोगों के दिल तोड़ने पे लगे हुए, आपको कोई एहसास नहीं है किसी का भी. ठीक है,
0: सुबह से मेरा टूटा भाई दो तीन बार, तो क्या बताऊं मैं आज.
1: नहीं, कोई एहसास नहीं किसी का आपको कि भाई अगर किसी के पास रेस्पिरेटरी अटैक नहीं है तो उसके पास शायद दोनों भी हो सकती है.
0: अच्छा ये अब इधर आके बैठ के बात करो, कुर्सी लगाओ उनके लिए. हाँ फवाद भाई बताओ किसके पास है, दोस्ती करूंगा मैं उनसे, किसके पास है?
1: सर मैं तो कुछ नहीं बात कर रहा, मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ. अच्छा, बेसमेंट एटिक होना दोनों से कुछ नहीं होता सर.
0: मुझे क्यों शक हो रहा है?
1: ऊपर नहीं होता नौकरी के बाद.
0: मुझे क्यों शक हो रहा है?
1: ये सिर्फ बातें करा ले.
0: मुझे आप पे शक हो रहा है
1: सर. ये आप बातें करा ले, मेरे घर में बेसमेंट भी है एटिक भी है लेकिन कोई भी नहीं चढ़ता ऊपर. मौसम अच्छा हो.
0: अच्छा दोनों बनवा रखे हैं माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात है. तभी तो ऐसी एक्टिंग, बहुत बुरी एक्टिंग थी फवाद भाई, पूरे 50 रियाल कटेंगे यार, बहुत बुरी एक्टिंग थी.
1: सर आपने प्रिंस भाई को बुला बुला के ना लोगों को खराब करना शुरू कर.
0: हाँ वही मैं सोच रहा हूँ.
1: जिसके अब्बे के वो पैसा होगा जाके बोले अब्बा मुझे भी एटिक चाहिए, मुझे भी एटिक चाहिए.
0: मैं वही बच्चा हूँ भाई, मैं वही बच्चा हूँ. मुझे भी एटिक चाहिए. पर क्या करें,
1: तो ये बात
0: क्यों नहीं जाते एटिक में मेरा भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है?
1: सर अब्बू ही जाते
0: हैं. अरे अच्छा अच्छा बना है,
1: पुरानी फिल्में और सीडियां और केस्टे सब वही रह गई
0: है
1: बस.
0: अरे यार फवाद भाई मैं वही सोचूं, मैंने कि एक आदमी कह रहा है कि मैं यूरोप घूम के आया हूँ पूरा, और वो कह रहा है एटिक नहीं है, जम नहीं रहा था, अभी जम गया, अभी बैलेंस कर दिया आपने. वेरी गुड, नाउ इट इज बैलेंस्ड, वेरी नाइस फवाद भाई.
1: सर पाकिस्तान में पता नहीं इंडिया में कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन इस्लामाबाद में, मैं तो इस्लामाबाद रहता हूँ तो वहाँ तो बेसमेंट का भी कॉन्सेप्ट है और हम ममटी भी बोलते हैं उसको.
0: हाँ ममटी, हाँ
1: सबसे ममटी का भी कॉन्सेप्ट है क्योंकि लोगों को एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए थी, जब घर बन रहा था कहते बना लो ऊपर तक.
0: तो आपने बेसमेंट में क्या रखा हुआ है बेसिकली?
1: बेसमेंट में सिर्फ लिविंग रूम है बड़ा सा, एक कहते हैं स्टोरेज सा है, ठीक है, और बड़ा सिटिंग एरिया और एक बाथरूम है.
0: ये सब कुछ बेसमेंट में?
1: बारिश, हाँ जी, और बारिश तक कनाल का है ना सर, 500 गज है.
0: ओह ओके ठीक है,
1: तो उसमें जगह बड़ी थी. तो उसके बाद उसके अलावा कहते हैं आप बारिश के लिए पंप शंप लगवा लेते हैं, मोटो हमने स्टैंड बाय पंप भी रखा हुआ है ताकि हमें पता है बारिश में फंस जाएगा कभी कुछ भी हो सकता है इधर.
0: आपने चार चांद लगा दी फवाद भाई. एक भाई ने मैसेज किया है, ये कह रहे हैं फवाद भाई से पूछो क्या मुझसे दोस्ती करेंगे. क्या हो रहा है आज, आज कुछ अलग ही.
1: हाँ सर क्योंकि जरूरत है,
0: जरूरत है.
1: अब अगले दो घरों में भी यही बनवाएंगे साथ ही
0: भाई, इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह. आज आज मेरे को समझ में आ गया. हाँ तो आवाज चली गई आपकी फवाद भाई.
1: सबको अल्लाह ताला अपना अपना घर दे,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह. आमीन आमीन आमीन मेरे भाई, आमीन.
1: और मन पसंद दे, ठीक है.
0: हाँ
1: बीवी भी और घर भी,
0: इंशाल्लाह. आमीन आमीन आमीन. ये बात ऐसी कर दी ना, इसमें कुछ आदमी बोल ही नहीं सकता आमीन के अलावा. जी भाई बिल्कुल. आपने चुप करा दिया घर जगह और क्या. एक भाई कह रहे हैं भाई हमारे बेसमेंट में स्विमिंग पूल है, एटिक क्या होता है? एटिक क्या होता है बताइए इनको.
1: सर ममटी को कहते हैं एटिक.
0: अब क्या बताऊं इसके अलावा कोई मेरे. क्या क्या छज्जा. अरे यार छज्जा तो नहीं होता फवाद भाई, बिल्कुल ही मतलब उल्टी नदी बहाओगे क्या, मैं समझा नहीं पाऊंगा. नहीं पर ठीक है, ममटी इज द राइट वर्ड. वेरी गुड वेरी गुड.
1: तो दूसरा ये कि गाड़ी गाड़ी अब अल्लाह ताला नसीब करे सबको. हम तो कहते हैं साइकिल पे ही बैठे हुए हैं.
0: और कुछ और कुछ भी दुआ मांग ले आज, सोने की बिस्कुट और कुछ चाहिए.
1: और बस गाड़ी ख्वाहिश तो अच्छी है.
0: हाँ?
1: वो जो जैसा प्रिंस साहब की है ना बी वाली गाड़ी की ख्वाहिश.
0: अच्छा
1: तभी नाम नहीं ले रहे ना वो भी.
0: हाँ हाँ हाँ मैं समझा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही.
1: तो बाइक की ख्वाहिश हमारी भी है.
0: हाँ
1: हमें घर वाले चलाना ही देते.
0: नहीं आपको कुछ भी करने नहीं देना चाहिए, आप हद से आगे निकल जाते थे। कंट्रोल कंट्रोल फवाद कंट्रोल बेचे।
1: सिर्फ कंफर्म कर लिया मैंने, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कहते हैं इंशाल्लाह नवंबर में जा रहा हूँ फिर सात समुंदर पार अमेरिका की तरफ, तो फिर आप बताएं।
0: अच्छा कब जा रहे हैं, नवंबर में जा रहे हैं?
1: इंशाल्लाह
0: भाई, बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से फवाद भाई।
1: आप साथ चलेंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपके लिए तो मैसेज आया है, माज भाई कह रहे हैं कि मीटअप में फवाद और प्रिंस भाई दोनों को बुलाना पड़ेगा, आपको बुला रहे हैं।
1: तो कर ले मीटअप, कोई मसला नहीं,
0: कोई मसला नहीं, ठीक है दोस्ती आप करा दी, ठीक है ठीक है, डन हो गया फवाद भाई। मिलते हैं फिर फवाद भाई, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार। तो ये चल रहा है मामला, एक मैसेज, ममटी हमारे है चार घरों में है, जमाल भाई ने भी अपने घर दिखा दिया, उसमें भी छत डल रही है, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे। एक मैसेज है जैज भाई का, लिखते हैं फवाद भाई टॉप पे। एक मैसेज जकी भाई का लिखते हैं, ब्रो ये ममटी इसलिए पता है मुझे, वी हैव दिस इन आवर हाउस व्हेन आई वाज बोर्न। माशाल्लाह पैदाइशी आपका जकी भाई, मुबारक हो भाई। अहमद भाई ने मैसेज किया है, सच में भाई आज का टॉपिक इंडिया पाकिस्तान करवा के मानेगा? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी, अहमद भाई ने कोई तीसरा ही टॉपिक सुन लिया, इसमें इंडिया पाकिस्तान कुछ नहीं है भाई। अरे एक मैसेज से सवाल, अहमद कॉरिडोर बिग एक्सीडेंट फ्रॉम अलवाब टू एयरपोर्ट हैवी ट्रैफिक। जहूर भाई फ्रॉम कश्मीर, उन्होंने मैसेज किया है, भाई प्लीज़ ड्राइव सेफली, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये एक रोड एक्सीडेंट हुआ है तो अलवाब से एयरपोर्ट रोड थोड़ा सा बिजी चल रहा है। और एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या बोलूं, दुनिया तो वो लोगों के लिए है, हम तो इधर आईडी एंड पासपोर्ट बनवाने के लिए, उसकी गलती सुधारने के लिए है। आज वाला भाई ने अलग ही एकदम डिप्रेसिंग मैसेज कर दी। याया भाई लिखते हैं, भाई हम फकीर हैं, बस एटिक कभी देखा नहीं और बेसमेंट सिर्फ पार्किंग का देखा है और सुनना है, लगता नहीं मुझे आया भाई आप पे मुझे शक है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, मेरे घर का आंगन रोज सुबह चिड़िया आती है। ये फात भाई ने मैसेज किया, भाई आंगन आपका बेहद खूबसूरत लग रहा है भाई, नो डाउट अबाउट इट। और एक मैसेज है, बेसमेंट बोलो या तहखाना, मिसाल ऐसी है कि डर ही लगता है। और एक दो मैसेज और है, डन विद माई क्या ग्लास ऑन टॉप विल गिव यू एग्जॉटिक लुक, किधर की बात की आपने मुझे बताएं जरा। एक मैसेज नदीम भाई का, आज का टॉपिक तो इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती करवा रहा है, एक्चुअली में दिस इज फ्रेंडशिप मेरा भाई। और एक मैसेज है, इस्लामाबाद में तो आजकल कॉमन है एटिक एंड बेसमेंट। ये मैंने सुन के बड़ा हैरान हुआ जकी भाई, आई डिडंट नो दिस, मुझे ही पता लगा भाई इस्लामाबाद के कितने बहुत पैसे वैसे होते हैं इस्लामाबाद के पास, माशाल्लाह भाई क्या बात है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई मैसेज करने के लिए। एंड किधर गए भाई, एक दो मैसेज और थे भाई, मैं करूँगा कॉल, ओके मैं कॉल करूँगा, ओके हाँ आपकी कॉल अभी आई नहीं है बट नो प्रॉब्लम, मैं एक कॉल कर ही लेता हूँ, ये इन्होंने मुझे बोला है तो मैं लास्ट कॉल एंड देन हम सीधा कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज मेडिकल मिस्ट्री है जो लोग सुनना चाहें, बिकॉज आज की कहानी ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लेगी आपका, कल तो 37 मिनट की कहानी थी भाई, 37 मिनट बोल रहा हूँ लगातार, मुझे बाद में अंदाजा हुआ। कॉल कर रहा हूँ मैं ये अहमद भाई को, अहमद भाई कॉल उठाएं, अस्सलाम वालेकुम।
1: थैंक यू कबीर भाई, थैंक यू,
0: नो प्रॉब्लम अहमद भाई, बताइए कैसे हैं भाई।
1: नहीं आपको एंटिक और बेसमेंट का जिक्र करना था, तो हमको एक कहानी याद आ गई छोटी सी,
0: छोटी सुनाना क्योंकि कहानी सुनानी है मुझे भी। बताइए। हाँ बताओ बताओ।
1: छोटी सी कहानी है कि आदमी 3 एकड़ में घर बना रहा है, किसी को घर में कार पार्किंग चाहिए। हम तो सिर्फ अपने फादर साहब से कहे थे कि जो हमारा रूम होगा ना उसमें अटैच बाथरूम दे दीजिएगा।
0: अच्छा।
1: वो इतना झारे थे अल्लाह तब से तो बोलना ही बंद कर दिया था, लेकिन वो क्या है घर में इतना पैसा लग गया लेकिन वो अटैच बाथरूम बना ही नहीं।
0: अरे क्यों यार, ये तो नॉर्मल चीज सी बन जानी चाहिए थी अहमद भाई।
1: ये वही बोला अभी नहीं, 5-7 साल पहले घर बनाया है तो हाँ। उसमें नॉर्मल है, अभी के टाइम में तो हर चीज नॉर्मल ही है, लेकिन वो बनाया नहीं, इतना क्या फालतू में अटैच बाथरूम, एक बाथरूम है ना बाहर में रहेगा, 2 बाथरूम में जाओ।
0: सलाम भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत
1: हमारे फिर ख्वाहिश हुआ कि ऊपर घर बनाओ उसमें एक स्विमिंग पूल और छोटी सी एक बालकोनी के जैसे गार्डन वगैरह होती है ना डालू। फिर अभी तो ऐसे अम्मी को शेयर किया था, भड़क गए एकदम से
0: भाई, एक्स्ट्रा बाथरूम ना बनने के बाद आपको तो ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए थी, आप तो ऊपर स्विमिंग पूल बनाने के सोच रहे भाई। अलग ही लेवल,
1: बड़े बड़े आदमी लोग बड़े सपने देख रहे हैं, छोटे अटैच बाथरूम का
0: नहीं बनता भाई। भाई मैं आपके साथ हूँ भाई, भाई क्यों बड़े बड़े लोग सपने देख रहे हैं, मैं क्या बाथरूम ना सोचू, सही है भाई आपके साथ
1: छोटी सी बाथरूम नहीं बने, चलिए अल्लाह खैर।
0: ठीक है अहमद भाई,
1: बरकानी की तमन्ना भी नहीं रहा, देख रहा हूँ बड़ा बड़ा घर बन रहा है, कोई बुलडोजर उड़ा गिरा दे रहा है और कोई पानी आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, डूब जा रहा है, सब सूत्र जो है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना छोटा ही घर, ज्यादा बड़े का शौक नहीं, टूट जाएगा तो बहुत तकलीफ होता है।
0: नहीं नहीं भाई, हिम्मत रखें, हिम्मत रखें, हम आपके साथ हैं अहमद भाई, फिक्र नहीं। थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज है, दोहा मॉल ऑपोजिट एक्सीडेंट ऑन सबा अहमद कॉरिडोर, भाई प्लीज ड्राइव सेफली। मैं सुबह से डर रहा था, ऐसी कोई खबर ना आए, मगर सैडली अल्लाह हुम्मा हाफिज़ना, ये सबा अहमद कॉरिडोर पे हुआ है, यूज़ अनदर रोड गाइज, बहुत लॉन्ग लाइन है, ये दिस इज़ वेयर दोहा मॉल ऑपोजिट एक्सीडेंट ऑन सबा अहमद कॉरिडोर, ओके, बी वी वेरी वेरी केयरफुल एंड दूसरा रास्ता ले लीजिएगा, ओके। तो अब एक गाने की बात सीधा कहानी की तरफ में आ रहा हूँ, आज की स्टोरी एक मेडिकल मिस्ट्री है और बहुत कमाल की स्टोरी है, तो अगर आप सुनने वाले हैं लाइव तो मुझे एक डॉट छोड़ दीजिएगा 666-22107 पे, एंड फिर ज़रा कहानी सुनते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबी कहानी नहीं है, कल की तरह नहीं है, बट यू माइट एज वेल लाइक इट, मजा आ जाएंगे आप, इतना बात। ओझला और साथ में एवी, आजो जी, आजो आजो। एक भाई कहते हैं मेरा तो नाम ही अतीक है, मेरी बात हो रही है क्या? अरे भाई सुबह की जनता।

Ferah ne oldu la? Let's go. तैयार हैं आप? क्योंकि मैं तो भाई पूरी तरह तैयार हूँ और अब जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ आई एम प्रीटी श्योर आप इसके लिए तैयार नहीं है। एक मैसेज आया है भाई, मैं ड्राइव कर रहा था इसलिए मैसेज नहीं कर सका, प्लीज़ मीटअप प्लान कर लें, हम गरीब भाई अमीर देख लेंगे लाइव। अरे भैया यार मज़ा आ जाता है शो में ना, आप लोग चार चांद लगाते हैं। शहजादा हम्माद गुलेर, ओके थैंक यू सो मच भाई, अस्सलाम वालेकुम। ओके तो शुरू करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है, FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है एंड इट इज़ अमेजिंग ब्रो। ये एक मेडिकल मिस्ट्री है और हो सकता है कि किसी के काम आ जाए, तो जब आप ये सुनेंगे और फॉरवर्ड करना चाहें तो प्लीज कीजिएगा। मैं शुरू कर रहा हूं अब, वॉल्यूम बढ़ा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, और आज का जो किस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड में, तो जितने भी अगर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं अस्सलाम वालेकुम स्पेशली आपको। तो आज का किस्सा शुरू करने के लिए मैं आपको ले चलता हूं इन द लेट 90s, टू बी प्रिसाइज 1999 का ये

फरवरी टू मार्च वाला महीना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था एक फैमिली के लिए. जगह थी नॉर्दर्न कैलिफोर्निया और एक फैमिली थी जॉर्डन फैमिली, मैरी जॉर्डन और रिच जॉर्डन. इन दोनों की एक 4 साल की बेटी थी, उस वक्त 4 साल की थी और सब जिंदगी में एकदम शानदार बढ़िया चल रहा था. एंड सडनली दे प्लान्ड आउट कि हमारी जो लाइफ है थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं अपनी फैमिली को. सो उन्होंने डिसाइड ये किया कि क्यों ना हम अडॉप्शन के लिए अप्लाई करें. तो मैरी और रिच ने दोनों ने जाके अडॉप्शन के लिए अप्लाई किया और उनकी किस्मत ऐसी खुली कि उनको एक ट्विंस के बारे में पता लगा कि भाई ट्विंस हैं, दोनों लड़के हैं और आइडेंटिकल ट्विंस हैं, क्या आप अडॉप्ट करना चाहेंगे. तो इससे बड़ी खबर तो कोई हो ही नहीं सकती थी. एंड विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट मैरी ने कहा मुझे तो मतलब ये दोनों बच्चे चाहिए. देखा तक नहीं उनकी तरफ, शी जस्ट फेल इन लव विद द फैक्ट कि ट्विंस हैं और अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं. सो शी वाज रियली रियली हैप्पी. एंड रिच जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने भी कहा कि व्हाई नॉट, तो दोनों के दोनों गए एंड दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी. दोनों को देख के बड़े खुश थे क्योंकि बच्चे दोनों बहुत हेल्दी नजर आ रहे थे और इन्फेंट बेबी से. तो एक का नाम था जो उन्होंने रखा, नाम एक का नाम पैट्रिक रखा और दूसरे का नाम जोई रखा. तो दोनों वैसे तो आइडेंटिकल ट्विंस थे लेकिन सेहत का थोड़ा सा फर्क था दोनों में. तो जोई जो था वो 3 किलो के आसपास का था और पैट्रिक जो था वो 2.5 किलो के आसपास का था. ज़्यादा फर्क नहीं मगर दोनों के दोनों काफ़ी हेल्दी बेबीज, हेल्दी ट्विंस. दोनों के दोनों जब घर आ चुके थे, उन्हें अडॉप्ट कर लिया गया, तो मैरी और रिच जो थे वो दोनों नोटिस कर रहे थे इन ट्विंस को. तो फिजिकली तो चेहरे भी मिल रहे थे, सब कुछ एकदम सेम ही था दोनों का, लेकिन पर्सनैलिटीज इनकी धीरे धीरे पता लग रही थी कि बहुत अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, हालांकि दोनों फिजिकली एकदम सेम है. तो पैट्रिक जो था वो वैसे बच्चे होते हैं ना, चुप रहते हैं, ना रोते हैं ना कुछ करते हैं, भूख लगती है तो हल्की सी आवाज़ कर देते हैं तो ठीक है, समझ में आ जाता है कि बच्चे को भूख लगी है, बहुत शांत किस्म का बच्चा. मगर जोई जो था वो शुरू से ही बहुत रोता था, मतलब उधम काट देता था वो. और उसे मतलब जरा सी उम्र में भी, चंद महीनों का है लेकिन उसको चाहिए, खाना चाहिए उसको, चाहिए उसे, फीड करते रहो. उसे बॉटल भी जब दी जाती थी तो मैरी ने नोटिस किया कि बॉटल तो वो उसे दे दी जाती है लेकिन उससे बॉटल ना पहली मर्तबा किसी बच्चे से बॉटल छीननी पड़ रही है क्योंकि वो सांस भी नहीं लेता हुआ, ऐसा लगता है कि बच्चा भूल गया बीच में सांस लेना, तो उससे बॉटल खींचनी पड़ती है तब जाके वो एक लंबी सांस लेता है. यानी बड़ी अजीब बात लगी मेरे को कि ये क्या बात हुई. और मिनटों में बॉटल खत्म कर देता है वो, मिनटों में. जैसे बच्चे ना थोड़े धीरे धीरे पीते आराम आराम से, लेकिन नहीं, मिनट्स में. और फिर मिनट्स में वो बाहर भी आ जाता है सब कुछ, तो ब्लैंकेट्स खराब हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और थोड़ा सा टेंशन में आए. अब नए नए माँ बाप बने इन ट्विंस को अडॉप्ट किया थे, वो जस्ट वांटेड टू चेक के क्या है क्या नहीं है. एंड उन्होंने जो है सीधा पेडियाट्रिशियन को कॉल करी कि भाई अब जो है बात बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि क्या सीन है क्या नहीं है. एंड पेडियाट्रिशियन के पास जब गए तो डॉक्टर्स ने कहा भाई सब कुछ ठीक है, दोनों बढ़ भी रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, दोनों वजन भी गेन कर रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, इट इज नॉर्मल, सब ठीक हो जाएगा आगे. मगर प्रॉब्लम ये थी कि पैट्रिक जो था वो अभी भी एक शांत बच्चा ही था और दिन हफ्ते महीने जैसे ही आगे बढ़ रहे थे. जोई जो था वो चुप ही नहीं होता था, रात भर वो जगता था, रात भर, और उसे हमेशा भूख और प्यास लगती रहती थी हमेशा. आलम ही हो गया था कि मैरी और रिच को अपने दोनों बच्चों से जोई को दूर रखना पड़ता था क्योंकि जोई इस कदर उधम काटता था रात भर कि बाकी उनके दोनों बच्चे वो सो नहीं पाते थे. तो जोई को अलग रूम में ले जाके और टर्न लेनी पड़ती थी कि एक दिन एक रात मैरी एक रात रिच संभालते थे उसे, क्योंकि उसको संभालना एक अलग ही टास्क बन चुका था. जागना ही पड़ता था, उसकी एपेटाइट उसकी जो भूख थी वो काफ़ी अलग थी, नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी. और मैरी ने यह भी नोटिस किया कि एक चीज नहीं, दो तीन और चीजें बड़ी ऑड हैं. समझ में नहीं आ रहा था कि इतना कंजप्शन हो कैसे रहा है, इतना इतनी इसे प्यास भूख कैसे लगती है. एंड जब डायपर की बात भी आती थी तो हर 2 घंटे में डायपर चेंज करने पड़ते थे जो कि बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है. जब 6 महीने के हो गए दोनों,
तो मैरी ने डिसाइड किया कि मैरी वापस डॉक्टर्स को जाके दिखाएंगी, बिकॉज इन दोनों बच्चों में कुछ तो अलग है. मतलब पैट्रिक तो नॉर्मल है, मगर जोई के साथ कुछ परेशानी है जो समझ नहीं पा रहा है कोई भी. और इस बार एक नए पीडियाट्रिशियन के पास लेके गए. ये डॉक्टर साहब भी बोले कि कोई दिक्कत नहीं है बच्चों के साथ. दिक्कत उन्होंने उल्टा मैरी को बोली कि आप माँ हैं, आपकी प्रॉब्लम है. तो मैरी ने बोला अरे मेरी क्या दिक्कत है. तो बोले नहीं, आप समझती नहीं है बात को, आप इन्हें बिगाड़ रही हैं. जब रात में जोई रोता है तो आप उसे बोतल ना दें, डोंट फीड हिम, उसकी आदत ख़राब कर रही हैं आप. आप खुद पर काबू रखें, अपने जज्बात पर थोड़ा काबू रखना सीखें. उन्होंने बोला डॉक्टर साहब लेकिन वो रात भर रोता है, मैं माँ हूँ, उससे नहीं रहा जाता, वो इतना रोता है, चीखता चिल्लाता है. मैं पड़ोसी भी हैं हमारे, वो अभी तक आए तो नहीं लेकिन वो कल को वो भी आ जाएंगे कि कैसा बच्चा है ये. डॉक्टर ने बोला नहीं, आपको काबू करना पड़ेगा, आप बच्चे की आदत बिगाड़ रही हैं. डॉक्टर ने तो उल्टा मैरी को ही सुना दिया. मैरी ने कहा अच्छा ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं. और मैरी ने डिसाइड किया कि अभी वो कंट्रोल करेंगे इस बात पे. व्हेन शी वेंट होम, उन्होंने पहली रात ही कोशिश करी. उनका बेटा जोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और वो कोशिश करेंगे बोतल ना दूं मैं, ना दूं मैं, ना दूं. पर वो माँ की ममता तो फिर अलग चीज़ होती है ना, तो वो रुक नहीं पाई. उन्होंने कहा नहीं, मेरे मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे देख नहीं सकती, बिगाड़ना है तो बिगाड़ना ही सही. तो उन्होंने जैसे तैसे उसको सुनाने की कोशिश करी, मगर शी वॉज वरीड. अंदर एक डर पैदा हो गया था कि कुछ तो गलत है जो डॉक्टर समझ नहीं पा रहे. मैं कैसे टफ रहा हूं, मैं कैसे मान लूं कि सब कुछ ठीक है. डॉक्टर्स को तो ये लग रहा था कि ज्यादा सोचती हैं ये, अभी इनको आदत नहीं है बच्चे संभालने की, और वो जजमेंट डॉक्टर्स की आंखों में नजर आ रहा था. धीरे धीरे दोनों ही बच्चों का, इन ट्विंस का जो पैटर्न है वो चेंज होता नजर आ रहा था. जहां जब ये छोटे थे तो इनका फिजिकल अपीयरेंस सेम था, दोनों सेम कद काठी के नजर आते थे, लेकिन दो साल के बाद दोनों का पैटर्न अलग दिख रहा था. पैट्रिक जो बचपन से काफी शांत बच्चा था, वो अभी जोई से बड़ा दिखने लगा था और हेल्दी लग रहा था. मगर जोई जो उसका ट्विन है, ट्विन ब्रदर है, वो पतला होता चला जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है. एंड ये बड़ा वरिंग था क्योंकि ऐसा कुछ अलग दोनों को ट्रीटमेंट दे नहीं रही थी मेरी, तो दोनों का इक्वल ख्याल रख रही थी, तो फिर ये कैसे हो रहा है. और मेरी ने दो साल के बाद फिर से दो तीन डॉक्टर्स को दिखाया, और सारे डॉक्टर्स ने ये कहा कि अरे इट्स ओके, इट्स फाइन, होता है, इट्स ओके. मगर मेरी इन बातों पर यकीन नहीं कर सकती थी. शी सेड नहीं नहीं, इट्स नॉट ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है जो कोई समझ नहीं पा रहा है. ये सामने नजर आ रहा है लेकिन डॉक्टर्स फिर भी कह रहे हैं इट्स ओके, होता है, कोई बच्चा ऐसे ग्रो करता है, कोई बच्चा वैसे ग्रो करता है. बट डिफरेंस बहुत ज्यादा था. और आने वाले वक्त में एक और बिहेवियर चेंज देखने को मिला जिसने एक वार्निंग ट्रिगर करी. हुआ ये कि मैरी ने नोटिस किया कि जोई जो है वो बाहर नहीं निकलता सनलाइट में. जब वो सूरज की रोशनी में बाहर निकलता भी है तो उसको सनग्लासेस चाहिए ही चाहिए होते हैं. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमारा बेटा खुश रहे, उसको बैटमैन वाले, टेलीटबी वाले, अलग अलग किस्म के फैंसी फैंसी सनग्लासेस दिलाए, उसके बिना वो बाहर ही नहीं निकलता था. अब उसकी एक बड़ी बहन है, ऑब्वियसली एक भाई भी है, सबको ये लग रहा है ये शो ऑफ कर रहा है, ये अटेंशन सीख रहा है ये बच्चा. इनफैक्ट मैरी की जो बहन है उनको भी ये लगता था कि वो कहती थी मैरी तुम्हारा ये बेटा जो है ना जोई, इसको अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं, इसे सिखाओ थोड़ा सा, ये गलत है. और मैरी को लगता था नहीं, मेरा बेटा अटेंशन नहीं चाह रहा है, ये जेन्युइनली बाहर आता ही नहीं है बिना सनग्लासेस के. पर प्रॉब्लम क्या है ये समझ में नहीं आ रही कि ऐसा है क्यों. और जो फादर थे रिच, उन्होंने नोटिस किया कि उनका बेटा जो है वो जब बाहर खेल के वापस अंदर आता है, सनग्लासेस उतारता है, तो अपने हाथों पे हल्के से वो जुबान लगाता है, उसके बाद अपनी आंखों को मलता है और बार बार ऐसा करता है. तो पहले तो उन्होंने कहा नॉर्मल है, आई थिंक मॉइस्चर चाहिए होगा उसकी आंखों को. पर जोई की आंखों में कोई ऐसा पेन नहीं था जो वो बता रहा हो, आंखें तो एकदम ठीक हैं. हो सकता कि बाहर गर्मी का मौसम है, ड्राई मौसम है, तो शायद आंखें ड्राई हो रही हों. उन्होंने इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करी लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात फंसी हुई थी कि ये हो क्या रहा है. और फिर एक और चीज जो देखने में आई, जो
बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, जिस चीज़ ने इस केस को और बड़ा किया वो था खाने का तौर तरीका। जहाँ बच्चे अब बेबी फूड और बॉटल से आगे बढ़ चुके थे, जोई के आसपास जितने बच्चे थे, उसके भाई बहन और बाकी मोहल्ले के बच्चे, यहाँ कुछ अलग था जोई के साथ। बच्चे जहाँ कैंडीज मांग रहे थे, जहाँ चीज़ें खा रहे थे, जोई को चाहिए था नमक, उसे नमक चाहिए, हर चीज में उसे नमक चाहिए, भर भर के नमक चाहिए। और दूसरे बच्चे सोच के उससे दूर रहने लगे थे कि ये क्या है मतलब। और दूसरे बच्चों के माँ बाप इनफैक्ट, क्योंकि ये लोग ऐसे एरिया में रहते थे जो एक कंपाउंड की तरह था, तो बाकी बच्चों के जो माँ बाप थे वो भी कहते थे यार दिस इज डिस्गस्टिंग, ये बच्चों को कैसी आदत डाल रखी है कि नमक ही खाता रहता है, हर चीज में नमक चाहिए इसको, और ये बहुत ऑड है। और मैरी ने भी नोटिस किया कि अगर इसे नमक ना दो, सॉल्ट ना दो, तो चिल्लाता है बुरी तरह से, दहाड़ दहाड़ के रोता है। पैट्रिक अभी भी सुकून से सोता है, रात भर एकदम सुकून से, मगर जोई के साथ ही हो रहा था कि जोई दिन में 3 से 4-5 बार उठ ही जाता था और देर रात को उठ के पानी मांगता था, कई बार पानी मांगता था और कई बार ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीता था। दोनों माँ बाप परेशान हो चुके थे, देवर एग्जॉस्टेड कम्प्लीटली डन, क्योंकि उनको 1.5 घंटे 2 घंटे की नींद मिल रही थी, वो भी आपस में नींद बांटनी पड़ रही थी। अब बच्चे बड़े भी हो चुके हैं, उसके बावजूद उनको नींद नसीब नहीं हो रही थी, और ये समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट टू डू, क्योंकि कोई भी डॉक्टर के पास जाओ तो कहते हैं नॉर्मल है, इसमें क्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप खामखा सोच रहे हैं। और ये 3 साल ऐसे ही चलता रहा एंड इट वॉज टू मच टू हैंडल, क्योंकि अब जो मोहल्ले के लोग हैं वो जोई को देखने लगे हैं जैसे कोई सर्कस में कोई कुछ यूनिक चीज़ देखने को मिलती है कि अच्छा, उनको होता ना मोहल्ले में बात फैल जाती है और उनका बेटा तो सिर्फ नमक खाता है, दैट टाइप ऑफ सिचुएशन हो चुकी थी, जहाँ पे मैरी के लिए भी घर से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था एंड जोई तो बिल्कुल बाहर निकलता ही नहीं था। पर ऐसा चलता रहा 3 साल तक, डॉक्टर्स कह रहे हैं नॉर्मल है। फिर मैरी ने कहा कि नहीं, हम दूसरी स्टेट में दिखाएंगे, और मैंने कहा हम दूसरे स्टेट में जाके जो है दिखाते हैं कि कुछ दिक्कत ऐसी है जो शायद किसी के समझ में नहीं आ रही। उन्हें मिले एक डॉक्टर जिनका नाम था डॉक्टर मिचेल अर्नस्ट। डॉक्टर मिचेल जो थी वो यंग थी, रिसेंटली डॉक्टर बनी थी, बहुत फ्रेंडली थी, और उन्होंने पूरी की पूरी बात सुनी माँ बाप की और जोई की भी अच्छे से, एंड शी वॉज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव, ओके बताइए और बताइए, हेलो जोई हाउ आर यू, उस तरीके का उनका नेचर था। और पहली ऐसी डॉक्टर थी जिन्होंने ये नहीं बोला कि आप माँ हैं, आपकी गलती है, आप संभालना नहीं जानती, ऐसा कुछ नहीं बोला। शी वॉज रियली कम्प्लीटली ट्यून्ड इन जो भी बताया जा रहा है, और वो हर चीज़ को जांच रही थी। और इनफैक्ट डॉक्टर मिचेल ने नोटिस किया, जो एग्जाम रूम होता है ना डॉक्टर्स का, जहाँ पे आप मिलते हैं अपॉइंटमेंट के बाद, एग्जाम रूम में उन्होंने नोटिस किया कि 20 मिनट की बातचीत में जोई जो उस एग्जाम रूम में था वो 4 मरतबा पानी मांग चुका था, 4 मरतबा। एक 3 साल के बच्चे के लिए पानी पीना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, जो कि अपने आप में ऑड था और वो अपने आंखों से देख रही थी। तो डॉक्टर मिचेल ने बोला, सीधा मैरी से सवाल किया जो माँ है, उनसे बोला कि आपने क्या अपने बेटे का डायबिटीज के लिए चेकअप कराया? तो मैरी ने बोला नहीं, किसी भी किस्म का कोई चेकअप नहीं कराया, नेवर। तो डॉक्टर मिचेल ने बोला देखिए हो सकता है कि डायबिटीज हो इसको, पहली चीज़ यही चेक करेंगे हम, क्योंकि एक्सेसिव पानी पीना, प्यास लगना ज़रूरत ज़्यादा किसी बच्चे के लिए, इट कैन बी अ साइन। तो यूरिन एनालिसिस जो होता है, जो यूरिन टेस्ट होता है, वो सब कुछ उन्होंने करवाया एंड उसमें ये आया कि जोवेनाइल डायबिटीज़ तो नहीं है उसको, मगर फिर भी उसका जो शुगर लेवल है, जो प्रोटीन लेवल है, वो बहुत हाई है। इसका मतलब ये कि मसला किडनी विडनी में कहीं है। उन्होंने कहा कि आप एक डॉक्टर के पास जाइए और वो शायद आपकी दिक्कत को समझ पाए। तो डॉक्टर मिचेल ने रेफर किया एक पीडियाट्रिक किडनी स्पेशलिस्ट को जिनका नाम था डॉक्टर शेल्डन ऑरलॉफ, कि डॉक्टर शेल्डन जो है इस केस को देखें। तो डॉक्टर ऑरलॉफ ने नोटिस किया कि दोनों ट्विंस में लिटरली बहुत फर्क है, सामने से पता लग रहा है। डॉक्टर ऑरलॉफ ने देखा जोई को, बात करी, फैमिली से बातचीत करी और फिर कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी।
उन्होंने कहा कि देखो ये एक्सेसिव जो वॉशरूम जाना होता है इसका, लगातार पानी पीता ही रहता है, तो इसको पहले हम रोकते हैं,

0: फिर बाकी चीजों पर काम करेंगे। जिससे थोड़ा आराम आया भी इस दवाई से, तो फाइनली माँ बाप थोड़ा सा सो पा रहे थे एक्स्ट्रा। फिर उन्होंने किडनी का अल्ट्रासाउंड किया और बोले हाँ मसला देखो यहां पर है, मगर इसके लिए किडनी बायोप्सी करनी पड़ेगी। किडनी बायोप्सी बेसिकली क्या होती है, किडनी को जो है ना उसका थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो यूज किया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं डॉक्टर्स, और फिर उसे देख के बताते हैं कि भाई स्पेसिफिक क्या बीमारी है, कि बिल्कुल तह तक पहुंचते हैं ऐसे। तो वो उन्होंने किया और उसके बिल्कुल तह तक पहुंचे। माँ बाप तो सोच रहे हैं अरे बाप रे इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, किडनी बायोप्सी सुन के डर जाते हैं ना माँ बाप, क्यों नहीं डरेंगे, उनको लग रहा है उनके बच्चे की अंदर किडनी विडनी ना फेल हो जाए, ये क्या हो रहा है, बहुत डर रहे थे वो। डॉक्टर ने उनके सामने फैक्ट रखे जो मैं आपके सामने भी रखता हूँ। तो यूजुअली जो हमारी किडनी होती है 40 गैलन पानी हमारी ब्लड स्ट्रीम से हर दिन फिल्टर करती है। एक फिल्टर एपरेटस बना हुआ है हमारा, पूरा फिल्टरेशन सिस्टम होता है हमारी किडनी की तरफ, जो हर रोज 40 गैलन के आसपास पानी हमारी ब्लड स्ट्रीम से फिल्टर करता है। पर यहां पे क्या है, फिल्ट्रेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी किडनी में। अब वो क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करना है। बायोप्सी में ये आया कि किडनी, हमारी किडनी बहुत मेन होती है ना, तो उसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं खाने में से, पानी में से, उसे जज्ब करके रखे, अब्सॉर्ब करके रखे, और जो टॉक्सिन्स हैं जिनका कोई काम नहीं है उनको फिल्टर करके आगे बढ़ा दे। पर यहां पे क्या हो रहा है, इसकी किडनी के साथ सब कुछ पास हो रहा है, कुछ भी फिल्टर होके रुक नहीं रहा है। जैसे न्यूट्रिएंट्स रुकते ना हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह रुक पाती है किडनी, इसके पास बच्चे के सब कुछ पास ऑन हो रहा है। तो इस कंडीशन को एक नाम दिया गया, इस कंडीशन को कहते हैं फैनकोनी सिंड्रोम। तो फैनकोनी सिंड्रोम सिर्फ एक नाम दे के बात खत्म नहीं होती, ये एक निशानी है एक बड़ी बीमारी की। अब क्या है, ये एक किस्म के ऑर्गन को अटैक करती है जब ऐसा हो जाता है तो, और आसपास के ऑर्गन को नहीं, आंखों को। तो डॉक्टर ऑलोफ ने इन्हें रेफर किया ऑप्थोमोलॉजिस्ट को, वहां बोला कि वहां ले जाइए एक बार चेक कराइए। तो डर ये था कि कहीं ब्लाइंडनेस ना आ जाए, हमारा बच्चा आंख ही ना खो दे। तो वहां जो है डॉक्टर ने कहा कि देखिए आंखों में क्रिस्टल्स हैं। आपको बोले आंखों में क्रिस्टल्स है, एक आम आदमी कहां समझेगा आंखों में क्रिस्टल्स हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि आप वापस एक बार डॉक्टर ऑलोफ के पास जाइए, वो आपको बताएंगे। डॉक्टर ऑलोफ के पास गए तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आपको बताऊं कि आपके बेटे को एक किस्म की बीमारी जिसे कहते हैं सिस्टिनोसिस। ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक बीमारी है। ये क्या है कि माँ बाप से आती है, ये दोनों अडॉप्ट किए गए थे तो ये माँ बाप से जेनेटिक बीमारी आती है। इसमें होता क्या है, इसमें अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में होता है वो सिस्टीन बनाता है, जो बॉडी का दुश्मन बन जाता है। मतलब मैं आसान अगर भाषा में एक आम आदमी को समझाऊं तो यूं समझिए कि एक हेल्दी इंसान, एक सेहतमंद इंसान में सिस्टीन जो है वो किडनी जज्ब कर लेती है ना। पर सिस्टिनोसिस अगर ये बीमारी किसी को होगी तो उसमें ये बढ़ता चला जाता है और जमा हो जाता है, कहीं जा नहीं पाता है, और फिर क्रिस्टल बनाना शुरू कर देता है, और फिर ये टिश्यूज को, हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करता है, और ये जेनेटिक होता है, माँ बाप से आता है। ये फिर जो क्रिस्टल होते हैं ये सीधा जाके आंखों की ओर बढ़ते हैं, जिससे रोशनी से डर लगता है, इसलिए वो बाहर सूरज में जा नहीं पा रहा था, उसे सनग्लासेस पहनने ही पड़ते थे, आंखों में चुभन होती है रोशनी से। और दूसरी तरफ किडनी में क्योंकि क्रिस्टीन क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि फिल्ट्रेशन बंद हो गया, अब न्यूट्रिएंट्स और पानी दोनों एक बराबर है, दोनों के दोनों फिल्टर होकर निकल जाएंगे, और जिसकी वजह से बार बार बच्चे को वॉशरूम जाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, डिहाइड्रेशन, लो पोटेशियम बॉडी के अंदर, और लगातार प्यास लगती रहती है, क्योंकि किसी भी किस्म का न्यूट्रिएंट जो है वो जज्ब नहीं कर पा रही किडनी, तो ग्रोथ रुक जाती है, और ग्रोथ रुक रही है तो किडनी फेल होने का डर है, और अगर वो फेल हो गई तो फेल होगी, आखिर आपको पता ही, आई डोंट इवन वॉन्ट टू से दिस। तो इसमें क्या है, बच्चों को प्यास और नमक खाने की तलब बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी कि वो खाना कुछ खाएंगे नहीं, उन्हें आप एक नमक की ढली लाके दे दीजिए और पानी दे दीजिए, बस दैट्स ऑल दैट मैटर्स, उनको खाना पसंद ही नहीं आएगा, किसी भी किस्म की कैलोरीज वो लेंगे ही नहीं, तो ग्रोथ कहाँ से होगी। अब मैरी को इतना सब कुछ डॉक्टर सामने बताया तो ऑब्वियसली जहन में हजारों लाखों बातें आ चुकी थी कि क्या करें, घर आके अब माँ बाप इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं, उन दोनों ने पढ़ा और रात भर रोए कि क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट पे कहीं लिखा है किडनी ट्रांसप्लांट, फलाना फलाना चीज़ें लिखी हुई हैं। दे वर रियली स्केयर्ड कि उनके बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि देखिए उस टाइम भी डॉक्टर ओलाफ ने बड़ा क्लियरली कहा कि सिस्टेनोसिस एक ऐसी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है, मगर कुछ दवाइयां हैं जो जिंदगी भर खानी पड़ती हैं, जिसे जिंदगी बस खींची जा सकती है। तो उन्होंने एक आई ड्रॉप दी कि भाई आंखों में डालना ताकि बाहर जा सको, ग्रोथ हॉर्मोन्स की दवाई दी, और यह भी बताया कि पहले बच्चे बच नहीं पाते थे तो एटलीस्ट शुक्र करिए खुदा का कि अभी आपके पास इतना तो है। सिस्टेनोसिस बड़ा डिफिकल्ट, मगर हॉर्डन फैमिली बड़े लकी थे। दुनिया में मैं आपको बताऊं 2000 के आसपास केसेस ही हैं इसके, ज्यादा केसेस नहीं है, बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी है ये भी। मगर डॉक्टर अर्न्स, डॉक्टर मिचेल, डॉक्टर ओलाफ, इन्होंने हार नहीं मानी है, इतने इम्पॉर्टेंट केस को समझने की कोशिश करी और ये काबिले तारीफ है। मेडिकल फील्ड में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन थिंग्स आर कॉमन एंड यूजली कॉमन चीज ही दिमाग में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई डॉक्टर अगर किसी को देख रहा होता है तो जो भी वो सामने देखता है, पेशेंट बता रहा है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि डॉक्टर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, तब जाके कोई रेयर बीमारी डिटेक्ट कर पाता है। तो दोनों डॉक्टर्स काबिले तारीफ काम किया उन्होंने। जोई जो है, जब उसको सब कुछ दिया गया तो वो फाइनली बाहर जाके खेलना उसका शुरू हुआ एंड आई ड्रॉप्स देनी पड़ी। अब मस्त बाहर घूमता फिरने लगा, वो घूमने फिरने लगा, स्विमिंग पूल तक में जाने लगा, फुटबॉल तक खेलना उसका शुरू हो गया। दवाई उसको बता दिया गया है हमेशा हमेशा लेनी पड़ेगी उसको, और एक पॉइंट आएगा, जो पॉइंट आने वाला है मैंने रिसेंट चेक किया है अपडेट ऑन जोई एंड किडनी ट्रांसप्लांट का वक्त आ गया है। सो नाउ ही नीड्स टू गेट दैट किडनी ट्रांसप्लांट डन एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो अभी वो पॉइंट आ चुका है, बिकॉज कहानी को भी बहुत टाइम हो चुका है, आई थिंक 22 साल हो चुके हैं इस बात को, अभी 22 साल के ऊपर हो चुका है मेरे ख्याल में। हाँ, तो अभी मैंने रिसेंटली चेक किया तो जोई जो है दे आर लुकिंग फॉर किडनी ट्रांसप्लांट एंड होपफुली वो ये करवा भी लेंगे। बट दे नाउ हैप्पी, ही इज़ डूइंग रियली रियली वेल, और आपको ये जान के खुशी होगी। इट्स वन ऑफ दोज केसेज जहाँ पे आखिर में खुशी ही होती है, बट ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे बस अल्लाह हम सबको बचा के रखे, बच्चों को हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। तो दिस इज़ वन ऑफ द केसेस, यानी ये केस जो है मुझे एक डॉक्टर, डॉक्टर सारा इस्माइल, उन्होंने मुझे केस दिया था, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, एंड मुझे भी ये पढ़ के बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच, रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी। तो ये था आज का किस्सा। अब आपके हवाले 666-22-107, 666-22-107, और आप भी बताइएगा कि आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा। मैं लाइन भी ऑन कर देता हूँ और साथ में व्हाट्सएप के मैसेजेस भी मैं चेक कर लेता हूँ, तो मुझे बताइएगा ज़रूर, आई वुड लव टू नो दिस। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ब्रो, नाइस स्टोरी, बट डोंट यू थिंक मेडिकल मिस्ट्री स्टोरी कुछ ज़्यादा हो गई है? नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं हुई है, इस हफ्ते तो एक ही हुई है भाई, इस हफ्ते लिटरली एक ही हुई है, एक ही तो सुनाई इस हफ्ते, ज़्यादा सुनाई भी नहीं थी चंद भाई। एक मैसेज है, सिर्फ 10 मिनट से सुन पाया इसलिए मैसेज का जवाब दे भाई, रिप्लाई क्या, क्योंकि अब टाइम नहीं मिल रहा आपको पूरा सुनने। कोई बात नहीं कलीम भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक मैसेज है, जिनके भी एटी को बेसमेंट है सपने अधूरे रह जाते हैं उनके। हाँ सही बात है। हाँ तो कहानी के बारे में बता देगा, 666-22-107, 666-22-107, एंड डू लेट मी नो कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट यू वांट टू नो। एक्सीलेंट कॉल करो ना भाई, रुको कर ही लेते हैं आपको, लेकिन शहजादा सलीम अगर टॉपिक से भटके तो फिर देखना। एक सेकंड में कॉल कर रहा हूँ शहजादा साहब को, उठाई लो खटिया जाड़ा लगी, उठाओ भाई। हाँ अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह की बरकातहू।
0: जी मेरा भाई बताइए, हुकुम करें।
1: शुक्रिया आपने कॉल कर दी मुझे।
0: जी बताइए भाई।
1: मेरी तो उंगलियां थक गई थी, सुबह लगा देते
0: हैं। बताओ।
1: जी जी जी, ये जो आपने ये स्टोरी है ना अपना इसकी किडनी के बारे में ना, तो मैं जब इंडिया में जब मैं था तो मैं मेरे दोस्त के ना अब्बा को लेकर गया था बॉम्बे टू नासिक।
0: अच्छा।
1: वहां पर एक स्पेशलिस्ट थे किडनीज के ना, तो उनका वो दिखाने के लिए गए थे। तो मैं और हम उनके अब्बा, हम वो कैबिन में ना डॉक्टर साहब के साथ ही बैठे थे। तो मैंने सवाल किया था उसी टाइम पे ये डॉक्टर से, मैं बोला आते हैं बहुत कॉमन हो गया है कि बाईपास हो रहा है और किडनी फेल है कि क्यों ऐसा। तो वो बोलते किडनी फेल है ना, हम लोग हम खुद इसके ना कहीं हद तक जिम्मेदार है। मैं बोला वो कैसे? बोले जब भी यूरिन आती है ना आपको, जब भी पेशाब आती है, आप फौरन करो हर चीज काम छोड़ के।
0: अरे वो तो ठीक है, वो आपने बताया इम्पोर्टेंट मुझे, लेकिन सलीम भाई टॉपिक से हटके नहीं है, आज की कहानी में बात करो। आज की कहानी में क्या कहना है आपका?
1: आज की कहानी सुपर ना, वो सुपर डुपर हमेशा की तरह
0: नहीं, वो चीज आप बता रहे हो सबको पता है भाई, इसमें मेडिकल उसमें नहीं जाने वाले, मैं ज्यादा मेडिकल डीप डाउन नहीं करना चाहता, वो कॉमन नॉलेज है।
1: सिम्टम वो इसमें हाँ, बच्चों में इस तरह के ना सिम्टम इस तरह थे, लेकिन माँ बाप उनको ना बहुत केयर कर करे ना, इतनी फिक्र कहाँ कहाँ लेके धक्के खाए, आखिरकार कुछ ना कुछ रिजल्ट तो हाथ आया ना, कि भले दवाइयाँ खानी पड़ी लेकिन एक आसरा तो मतलब एक उम्मीद तो जागी।
0: सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए हमेशा, बेसिकली सेकंड ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
1: इसी तरह बहुत जबरदस्त। और फिर रहा सुबह का जो टॉपिक है ना बैट्समैन वो वगैरह का जो है ना, तो हमारे यहाँ तो भाई गरीब है तो बहुत बड़ी बात है बॉम्बे जिस एरिए में, तो वैसे बिल्डिंग के नीचे जो बैट्समैन होते हैं ना, तो जब मैं जॉब करता था तो वहाँ जब भी गाड़ी निकालने जाओ ना नीचे बैट्समैन में, ऐसा लगता है कि कोई इंतजार कर रहा है, कोई अभी आवाज देगा, एकदम मतलब वैसा लगता
0: भाई है। मत बनाना का बेसमेंट, तुम मुंबई वालों तुम्हें कोई बनता नहीं तुम्हारा
1: नहीं। और बॉम्बे के ऐसे ऐसे टावर के नीचे जो अंडरग्राउंड जो कार पार्किंग है ना, दो दो तीन तीन नीचे से नीचे नीचे से नीचे,
0: नहीं भाई आप जिस हिसाब से आप लोगों के यहाँ बारिश होती है, आपका बनता भी नहीं है भाई, आप लोगों का बनता भी नहीं है। नहीं पर बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब है,
1: लेकिन लेकिन बेसमेंट जो है ना मतलब है ही है, बहुत है, बेशुमार है, लेकिन ड्रेनेज भी इस तरह से है ना, ब्लॉक नहीं होता इतना भी, कितनी भी बारिश पड़े बॉम्बे में, तो बॉम्बे तो एवर ग्रीन, पूरा समंदर में ही जाता है फिर।
0: अरे तुम लोग भाई मुंबई वालों के बारिश है तब भी भाई मुंबई एक नंबर है ये तो मैं मानता हूँ। ठीक है
1: जी जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई।
1: ओके बहुत
0: शुक्रिया, तो चुका है जिंगल का वक्त, इसके बाद आपसे मुलाकात होती है, जाना आपने, यानी स्टे ट्यून्ड।

0: हाजी wake up रे। हाँ जी, तो वेकअप तो हो ही चुके होंगे आप। बहुत सारी कहानियां मैंने सुना दी हैं आपको, और आज भी एक ऐसी कहानी थी जो बड़ी जरूरी थी। इट वॉज सजेस्टेड बाय वन ऑफ द डॉक्टर्स, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सारा जी। ओके, तो कुछ मैसेज पढ़ दूँ। सबसे पहले तो एक मैसेज है, हैप्पी मॉर्निंग, लव यू ब्रो, वेरी वेरी नाइस स्टोरी एंड इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच कादर भाई। और ये मुझे हैदर भाई ने मैसेज किया, हैदर भाई थैंक यू सो मच भाई। एक मैसेज है फराज भाई का, अस्सलाम वालेकुम, जस्ट लॉग्ड इन एंड हर्ड द लास्ट पार्ट, अल्हम्दुलिल्लाह ही सेफ नाउ। जी भाई, और मलिक वकास साहब, जी भाई करता हूँ मैं कॉल। एक मैसेज है प्रिंस भाई के, लिखते हैं भाई स्टोरी तो ज़बरदस्त थी, मुझे तो लगता है कि आप स्टोरी सुनाते सुनाते हाफ डॉक्टर बन ही जाएंगे। मैं बहुत चीज़ें रट चुका भाई। एक ही बस सन, हाँ फरज भाई कैटेगरी बहुत बड़ी है, आपको पता होना चाहिए अभी तक तो। नदीम भाई कहते हैं ये स्टोरी में स्पेशल मेंशन टू पेरेंट्स अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए, इतना परेशान बहुत कम लोग होते हैं। एब्सोल्युटली भाई नदीम भाई, ये पार्ट तो हमने एकदम सीखा, एंड आई ऑल्सो वॉज मोर इंट्रीग्ड बाय द फैक्ट कि एक दोनों अडॉप्टेड थे, इसके बाद भी लोग इतने ज़्यादा इनका दिल लगा के प्यार किया इन दोनों ने, तो ये बड़ी बात है। दे डिजर्व्ड इट कि वो अच्छे हो गए, भले चंगे हो गए। एक मैसेज, ग्रेट स्टोरी एंड सिनेमेटिक नरेशन। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत प्यार आपको और दिल बना के भेजा, नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव स्टोरी, थैंक यू सो मच अमजद भाई, बहुत सारा प्यार किया। और एक मैसेज है भाई, ये खाली वीडियो नहीं घर का, खाली वीडियो नहीं मेरे घर का, हाँ वही मैंने देखा भाई वीडियो, इफ्तकार भाई। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैं अब्दुल जौनपुरी, आज की कहानी नंबर वन भाई, अच्छी मालूमात दी है आपने। देखा जाए तो भाई आज के टाइम में किडनी का मसला ज़्यादा हो रहा है। जी भाई, और क्या है ना कि जो बच्चों में देखा जाता है ना, ज़्यादा पानी पीने की वजह से हो जाता है, तो ये चेक करा लेना चाहिए। एक मैसेज, सुपर स्टोरी, हम लोग अलग जोन में चले जाते हैं आपकी स्टोरी सुनते सुनते, उस टाइम लगता है कि अलग अलग ट्विस्ट हैं। स्टोरी आपने लाया कबीर भाई, जादू चलेगा, वही है कबीर भाई, दुआ वाला हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बट आज बंदा नहीं मारा। आदत हो चुकी है ना कि ऐसे ट्विस्ट आएगा, मोहम्मद आलम सिद्दीकी मत छेड़ो मुझे, कल की कहानी फिर टपका दूंगा मैं किसी को। एक मैसेज आया है रसल साहब का, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कहते बहुत दिनों बाद, सारी उम्र गुजार दी हमने चाहत में तेरी, न जाने कितने खुशनसीब होंगे मुफ्त में पाने वाले। श्रद्धा की याद आ गई, श्रद्धा कपूर की तो कोई सेंस नहीं बनता है याद आने। असल भाई कुछ भी चिढ़ाने के लिए, चिढ़ाने के लिए कुछ भी। कादिम भाई वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, एंड एक कॉल आ रही है, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: एकदम बढ़िया, आप सुनाइए भाई।
1: अपनी भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है
0: जी।
1: किडनी की जो आप बात कर रहे थे
0: जी भाई,
1: तो हमारी मैडम की किडनी फेल है, मैं डायलिसिस के लिए हफ्ते में 3 दिन लेके जाता हूँ,
0: अल्लाह खैर करे,
1: और ये रेगुलर चल रहा है 2018 से।
0: अरे भाई बहुत दुआएं भाई उनके लिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत।
1: और वहाँ मैं जाता हूँ तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं भाई, एक लड़का आता है, तकरीबन उसकी उम्र होगी 30 उसके करीब, लेकिन वो इतना हाइट में कम है और दिखता भी 20 उसके।
0: मैं समझ सकता हूँ भाई, बहुत बहुत बहुत बहुत पेनफुल होता है भाई ये सारा प्रोसेस ना,
1: तो भाई किडनी वालों का तो जो है ऐसा है कि उसके हाथ देखोगे ना तो हर जगह नसें जो है मुड़ जाती है।
0: आई नो भाई मेरी बहुत सारी
1: मैडम का तो हाथ में था, तो प्रॉब्लम तो उसने जो है अभी सीने में जो है वो करवाई है
0: भाई। बस अल्लाह ताला सेहतमंद रखे जिनको भी किसी भी छोटी छोटी इस चीज से परेशानी है। मेरी तो बहुत दुआ है भाई, दिल से मेरी दुआ है। इसलिए मैंने कहानी सुनाई भी भाई, ये कहानी ना इसलिए मैंने स्टोरी सुनाई भी, बिकॉज आई थिंक ये जितनी जल्दी समझ में आ जाए लोगों के काम आ सके तो इम्पोर्टेंट है। कुछ कहानियां मसाले से हट के ऐसी भी होती है।
1: मेरे दोस्त का था, यहाँ पे आया हुआ था
0: जी,
1: तो हम लोग साथ में ही थे 2012 से ही।
0: जी जी जी,
1: यहाँ पे 2018 में वो भी आया, मुझे चला रहा था, अचानक उसको ये तकलीफ हुई, चेक कराया तो मालूम पड़ा किडनी फेल हो गई, घर गया वहाँ पे इलाज उलाज करवाया, नहीं हुआ कोरोना के टाइम से, पहले कोरोना से पहले की बात है।
0: अच्छा,
1: तो उसमें हम लोग को फोन किया, हम लोग सब दोस्त लोग ने पैसा से जमा करके बोला कि भाई मेरी वाइफ देने को तैयार है किडनी, किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे।
0: हाँ।
1: तो सब दोस्तों ने मिलकर पैसे से भेजे, भेजने के बाद वो कोरोना चालू हो गया, उस टाइम पे जो है ट्रीटमेंट उसका हुआ नहीं।
0: हाँ।
1: नहीं हो पाया तो पूरा पैसे जो है, मालूम है अपने यहाँ पे बहुत पैसा खर्चा है इसके लिए। एक टाइम पे समझ लो कि 3,000-3,500 जाता, हफ्ते में 2 बार कराना ही पड़ता कंपलसरी है, और हमारी मैडम 3 बार कराती है, लेकिन इंडिया में भी जाती है 3 बार कराती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि 2 बार अगर कराए तो भी जो है उतना खास होता नहीं है, तो उसका जो नहीं हुआ, और कोरोना के मतलब दो साल या 2.5 साल कुछ हुआ, उसका इंतकाल भी हो गया, नहीं करा पाए कोरोना के टाइम पे, हुआ नहीं और पैसे पूरे जो ट्रीटमेंट में चले गए।
0: वही अल्लाह खैर करे कमाल भाई, मैं तो ये कहूँगा, इसलिए तो मैं ये कहानी मैंने सुना दिया, मैंने कहा भैया किसी काम आ जाए, अल्लाह रहम करे, बाकी तो
1: नहीं, सब बहुत भाई बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, ये मत खाओ वो मत खाओ ये मत करो। बस शुगर में तो समझ लो आदमी खा भी लेता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वो रहता है, पानी ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है,

0: don't really understand what happens in medical conditions. So the information you shared was very, very useful and eye-opening. It also reminded us as parents to pay more attention to our children's health and notice things like how often they are going to washroom and whether everything is normal. Thank you so much for sharing such valuable and informative content. May Allah bless you and continue to give you the important opportunity to educate and help people. This is what I thrive for. Matlab, ye hai award. Ye Faraji ne message kiya mujhe. Faraji, this is what I live for. And isliye isi din ke liye main RJ banta hu. Bana tha main. Isliye main har roz aata hu. Ye jeet hai. This is what I want in life. Ke ye message aa gaya na, aapne mera din set kar diya. Kahani sunane ka maqsad Faraji pura ho gaya. So thank you so much. I'm out of words. I'm speechless right now. Thank you so much. Ki aapki kahani kaam aaye ya main kisi ki bhi kaam aaye. But thank you so much. All main mera thank you sunke ye main sochega sirf thank you bol raha hai. Main ye bahut bada hai iske piche paragraph hai jo main keh nahi pa raha hu because I'm so overwhelmed. Thank you so much. Ek call le lete hain sabse pehle. Assalamu alaikum. Wa
1: alaikum
0: assalam. Jamal bhai kamal kar dijiye. Kaise hain aap?
1: अरे यार भाई कितने बिजी रहते हो आप माशाल्लाह से
0: भाई क्या करें यही रोजी यही रोटी है आप कैसे हैं
1: सही है यार ये तो एक बहुत बड़ी बात है पहली लाइन ही धमाकेदार जिनके साथ मशगूलियत नहीं होती है वो बेचारे मशगूल होने के लिए कितनी तगोदो करते हैं कितनी जद्दोजहद करते हैं ये भी अल्लाह का शुक्र है
0: अल्हम्दुलिल्लाह भाई बताइए भाई जमाल भाई क्या कहें
1: भाई एक पहले अवलम तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आज मैं किसी काम की वजह से नीचे उतरा तो मैं कहानी मिस कर दिया तो मुझे भेज दीजिएगा
0: अरे बिल्कुल
1: क्योंकि
0: बिल्कुल.
1: मैं सुनता हूँ हर कहानी बहुत गौर से
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल.
1: आज है ना आज कुछ हमको इमरजेंसी कॉल था इसलिए हम जो है ना जहाँ जान बूझ कर कहानी सुनने के लिए लेट करते थे वहाँ कॉल की वजह से पहले जाना पड़ा
0: ये तो पिक्चर में ट्विस्ट आ गया जमाल भाई ये क्या बात है
1: कबीर भाई आपकी कहानी सुनने के लिए उस कस्टमर को मैं रोज 15 मिनट लेट सामान देता हूँ
0: अरे यार इस वो बेचारा कस्टमर भाई उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है भाई I'm really sorry
1: पता है आपको उसकी बाकायदा तौर पे गाड़ी खड़ी होती है मेरी वेट में और मैं रोज उसको रोज कुछ ना कुछ नए नए बहाने जैसे स्कूल में नहीं मदरसे में मतलब में रोज रोज बहाने बनाते थे वैसे रोज कुछ ना कुछ बहाना करना
0: भाई उनको मेरा नाम मत बताना पता नहीं मेरे नाम के वो कितने कितने जारी कर देंगे
1: रात की है उसको भी ये आम कर देगी तुम्हारी दोस्ती अगर मुझे बदनाम कर देगी हाँ। सिस्टम नहीं है
0: वो मुझे लगता है कि वो जो है ना मेरे नाम की गुड़िया बना देंगे अगर उन्हें पता लगा कि मैं मेरी वजह से लेट हो रहा हूँ उनका
1: आज उसको बेचारे को थोड़ी इमरजेंसी थी तो उसने पहले ही मैसेज कर दिया था तो उसी से लेट हो
0: गई
1: और बाकी पूरा टॉपिक और सारे लोगों के कॉल्स वगैरह सुनते हुए आया हूँ मैं पूरे रास्ते
0: जी जी जी
1: मैं कंपनी से निकलता हूँ तो मेरा पहला स्टॉप बलखोर में होता है
0: अच्छा ओके
1: वो जो रास्ता है
0: हाँ।
1: जिसमें अक्सर मुझे कभी कभार पहले नींद आ जाया करती थी
0: हाँ।
1: तो वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा हादसा है ना जो मेरे साथ होता था
0: हाँ।
1: नींद वाला वो चल गया है क्योंकि फिर हमारे और दिगर भाई जो कॉल करते हैं जिनसे आपकी गुफ्तगुनीद होती है जिसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें होती है जिसमें कह कहे लगते हैं
0: हाँ।
1: जिसमें ठहाके लगते हैं मुस्कुराहटें बिखेरी जाती है उसमें मैं भी शामिल हो जाता हूँ तो फिर एक साथ दो चीजें जमा नहीं हो सकती है नींद और मुस्कुराहट दोनों एक साथ नहीं हो सकती ना तो फायदा ये हो जाता है मेरा
0: नहीं भगा देंगे लट लेके भागेंगे नींद के पीछे भाई कैसी टेंशन ले रहे हैं आप कोई टेंशन नहीं है
1: नहीं भाई बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं आपका हाँ। ठीक है
0: नहीं थैंक यू
1: अब तो वो क्या नाम है अरे आपके नाम की गोटी रखूंगा मैं
0: थैंक यू जमाल भाई दैट इज सो स्वीट ऑफ यू भाई और बड़ा अच्छा लगता है कि आप जो है हमें कॉल करते हैं तो लगता है कि जमाल भाई खुश सुनाई दे रहे हैं खुशी होती है जमाल भाई आप सीरियस बातें ना करके जब आप खुश मिजाजी अपनी दिखाते तो मजा आ जाता है भाई आई एम रियली रियली हैप्पी क्या मेरे साथ
1: मैं कुछ मजाक आदमी हूँ यार
0: अरे नहीं मेरे कहने का मतलब सुनो मेरे कहने का मतलब आज मैं आपको एकदम सच बताता हूँ ठीक है सुनोगे आज मैं एक सच बताता हूँ जब आप सीरियस ना होके ज्यादा संजीदगी से बात ना करके आप ऐसे खुश रह के बात करते हैं ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है तो ज्यादा डीप नहीं जाते तो मुझे अच्छा लगता है मैं ये कहना चाहता हूँ
1: नहीं वो आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा कभी कभी होता है ना कि कोई चीज समझने में जरा थोड़ा सा वक्त लग जाता है और एक तो थोड़ा कुंद जहन और कभी हूँ मैं जहनी एतवार से
0: धीरे धीरे
1: टाइम लग गया मगर ये है कि भाई रास्ते पे आ ही गए
0: नहीं

0: आपका भाई, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया भाई जमाल भाई, आपकी मोहब्बत है और कहानी तो पूछ जाएगी।
1: और सारी मेहरबानियाँ और सारे क्या कहते हैं, अरे जितने भी तशक्कुर के अल्फाज अदा किए जाए आपके उसमें कम है। बहुत शुक्रिया आपका, आपको पता नहीं है, देखिए आंख बंद हो जाए गाड़ी चलाते हुए तो हादसा कितना बड़ा हो सकता है
2: भैया।
0: ऐसा ट्विस्ट नहीं चाहिए, अल्लाह ताला आपको हमेशा भाई अपने जुबान में रखे मेरे भाई।
1: आपकी वजह से ना मेरी वो नींद भाग गई है, सच बता रहा हूँ मैं, यकीनी अल्लाह इसमें जरा सी भी कोई अमेजिश नहीं है।
0: चलो
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं निकलता हूँ ट्यून करता हूँ और उसके बाद फिर बहुत सारे मेरे हबाब, किन किन का नाम लू मैं, जो लोग मुस्तकिल आते हैं और उनका मुस्तकिल आना आपसे भरपूर मोहब्बत का पैगाम है,
0: बहुत
1: और सबूत भी दलील भी है वो।
0: बहुत प्यार, बहुत प्यार जमाल भाई, क्या आपने गाड़ी जोड़ में तारीफ करी है तो चौड़े में घर जाऊंगा।
1: देखिए मतलब उसी सिलसिले की एक कड़ी मैं हूँ, मैं भी ख्वाहिशमंद होता हूँ, कभी कभी आपको मैसेज भी कर देता हूँ। वो होता नहीं है कि आदमी जब कभी कभी यानी मोहब्बत में पागल होने लगता तो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता।
0: अरे नहीं नहीं भाई, अब मैंने आपका फोटो भी देखा, आप घर बनवा रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाब करे मेरे भाई आपको।
1: वो मेरा देरीना ख्वाब था सच बता रहा हूँ मैं। अब वो इस वजह से हो पाया है कबीर भाई कि हमारे साहबजादे आ गए और फिर वो शाना बसाना मेरे साथ कदम मिला के चल रहे हैं
0: माशाल्लाह,
1: अल्लाह ताला मतलब उनकी तरह से और आगे भी, तो ये चीज मुमकिन हो पाई, वरना मैं तो बच्चों की पढ़ाई से ही उभर नहीं पा रहा था।
0: नहीं नहीं भाई, अल्लाह ताला काम में रखे आपको, वो अलग चीज है, पर आप खुश रहें जमाल भाई और बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी खुशी हमारे साथ शेयर करी भाई, बहुत प्यार आपको।
1: हाँ भाई, वही एक छोटा सा बना रहे, अभी तकमील को तो नहीं पहुँचा, इसीलिए मैंने कहा कि तमाम भाइयों से दुआ की अपील, दरख्वास्त।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जमाल भाई, हमेशा खुश रहे मेरे भाई, थैंक यू सो मच।
1: जी जी मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बस वो स्टोरी भेज देना मुझे।
0: डन डन डन, पहुँच गई आप तक, ठीक है
1: जी, बहुत शुक्रिया भाई,
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो जमाल भाई की बात मैं एक लास्ट कॉल कर दूं, एंड फराजी थैंक यू सो मच, एक मैसेज और मेरी कॉल आया है, मैं इनको ज़रा बात कर लूं फिर मैं एक गाना चला दूंगा। एक मैसेज और है, अस्सलाम वालेकुम, शानदार ज़बरदस्त, अच्छा ओके। इस पे आ जाना, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: हाँ भाई पाजी, क्या हाल है
3: भाई? हाल तो बहुत बुरा है कसम खुदा,
0: क्या हो गया भाई?
3: नहीं मतलब भाई कबीर भाई, हम गरीबों का भी ख्याल रखो, थोड़ा हल्का हाथ मारो जरा।
0: नहीं होता ना भाई, अपन क्या करें भाई,
3: भाई इतना इतना महंगा हाथ मार दिए भाई, तुम रोज रोज कुछ ना कुछ महंगा महंगा सब लेके आ रहे भाई।
0: नहीं भाई, कल कल अपन थोड़ा अपने हिसाब से ले जाएंगे।
3: नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ भाई तुम लेके आओ, मालूम पड़ेगा हकीकत हम लोगों को भाई, हम लोगों को हकीकत मालूम पड़ेगी लोगों की यहाँ पर
0: भाई। हम में मैं भी हूँ भाई, मुझे भी मालूम पड़ेगी कोई नई नई चीज।
3: नहीं कबीर भाई मैं बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ कबीर भाई, आप ना स्क्रॉल जरा कम करो भाई, स्क्रॉल बहुत कर रहे हो आजकल, एक के बाद स्क्रॉल पे स्क्रॉल करे जा रहे हो और हम लोग की वाट लग रही
0: है।
3: तुम यकीन मानोगे भाई, मैं आता हूँ तुम्हारा शो सुनने के लिए, बाकी मैं बोलता हूँ भाई क्या बोलूँ कबीर भाई को, मैं फोन करके बोलता हूँ कबीर भाई प्लीज भाई स्किप कर दो।
0: स्किप कर दो। नहीं तो क्या आपको क्या लगा आज, आज, आज आपको प्रिंस भाई की बात कैसी लगी, मजा आया आपको? नहीं बाबू, जबान नहीं निकल भाई, कुछ कह नहीं पा रहे, शब्द नहीं
3: भाई। मेरी एक बात बोलता हूँ भाई, बुरा नहीं मान, मेरी जबान मतलब मराठी है। मेरी हर मतलब हर लाइन के बाद ना एक हम लोग की गाली निकलती है। तो ऐसा ना हो कभी भाई मैं बोल दूं और आप मुझे ब्लॉक कर दो। मुझे एफएम पे ब्लॉक कर दोगे?
0: नहीं नहीं नहीं भाई, आप
3: जिसके जिसके जिसके ऊपर भाई मैं बोलूंगा वो वाला मेरे पे केस कर देगा। इसलिए भाई मैं गपचुप बैठ के सिर्फ सुनता हूं। ये मुझे मालूम है भाई,
0: ये साउथ की डबिंग वाली लाइन थी प्रिंस भाई की, क्यों हिला डाला ना।
3: मेरे को तो भाई हंसी आई थी मास भाई के ऊपर भाई, मैं बोला भाई ये बंदा का ब्लड क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया। याद है फिर मैं घुस के कभी भाई को बोलेगा भाई मीटअप करवा अभी के अभी।
0: हाँ मास वाले अभी मीटअप करना है मुझे, मुझे प्रिंस भाई फरहत भाई से मिलना है। नहीं पर
3: भाई
0: अच्छा।
3: वो बंदा प्रिंस भाई वही है ना जो नाखून काटने के लिए हाँ, सलून में जाता है हाँ, वही है ना ये
0: हाँ।
3: मैं तो भाई फैन हो गया भाई का। भाई 2500 लूंगा, बोलो भाई ड्राइविंग करने आ रहा हूँ घर पे।
0: प्रिंस भाई वैकेंसी निकालिए। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई,
3: बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका,
0: ख्याल रखो मेरी जान। और सॉरी मैंने लेट कॉल लगाई है, मगर कॉल लगा ली है।
3: नहीं एक और बात छोटी सी बात है,
0: बोलो ना।
3: कल ना भाई कल मैं तुमको मैसेज में बोलता हूँ भाई, नहीं तो भाई पब्लिक को मालूम हो जाएगा।
0: ना मैसेज करो
3: डन डन भाई,
0: ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज। और इनके बाद जो है आसिफ भाई के बाद एक एक और हमारे भाई हैं, किधर है मेरा भाई, ये इनका नाम है मलिक वकास. मलिक वकास साहब मेरा कॉल उठाओ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है. कॉल उठाओ, कॉल उठाओ. 7 मिनट का वॉइस नोट भेजा मुझे किसी ने. भाई साहब, भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. क्या हाल है कबीर भाई?
0: क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है मलिक वकास साहब?
1: जी जी, आपकी आवाज आ रही है. आपको मेरी आवाज आ रही है?
0: बिल्कुल आ रही होगा, सब मजाक कर रहा था.
1: माशाल्लाह माशाल्लाह कबीर भाई, क्या मस्त शो चल रहे हैं आपके.
0: थैंक यू भाई, बहुत
1: क्या जबरदस्त स्टोरीज चल रही हैं.
0: जज़ाकअल्लाह भाई,
1: बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन. बाकी जो है आज वाला टॉपिक था
0: जी जी जी,
1: बेसमेंट वाला, यकीन करें कि उससे तो खौफ ही आता है. हमारे कॉलोनी में एक बेसमेंट थी, यकीन करें आज भी वहां से गुजरता हूं ना तो वहां से एक ना अजीब सा खौफ आता है कि शायद जहाँ के अंदर ना कोई डेड बॉडी या भूत ही होगा.
0: वो पिक्चरों ने डर बिठा दिया मलिक वकास भाई, वो पिक्चरों ने डर बिठाया.
1: यही बात है.
0: हाँ, वही वही सीन
1: है. लेकिन शौक भी है कि अपना घर बनाऊंगा तो उसमें बेसमेंट जरूर बनाऊंगा.
0: क्या बात है, क्या क्या रखेंगे बेसमेंट में आप?
1: बेसमेंट में एक अपना एक सेटिंग करूंगा, जैसे बड़ा सा रूम होता है ना.
0: हाँ,
1: जो फुल उसमें टीवी टाइप, सिनेमा मिनी टाइप, इस टाइप का.
0: क्या बात है यार, क्या शौक, बड़ी चीज है. सही है,
1: शौक का कोई मोल नहीं होता ना.
0: नहीं, सही है सही है, सही जा रहे हैं. मैं आपके साथ हूँ भाई.
1: छोटी छोटी ख्वाहिशें है ना, वो पूरी करनी चाहिए जिंदगी.
0: आज आज की स्टोरी सुन पाए, नहीं सुन पाए आज?
1: नहीं, अभी नहीं सुनी, लेकिन पिछले कल वाली स्टोरी सुनी. क्या बैंक की रोक, क्या चोर बनेगा रे तू. क्या चोर बना है वो.
0: क्या चोर बनेगा रे तू. अब वही वाली
1: और उससे पीछे वाली वो माउंटेन एवरेस्ट वाली, तो वाकई ही जबरदस्त स्टोरी थी. क्या उस बंदे की लगन थी, खत्री साहब की, जो उसने उनको रेस्क्यू किया.
0: जे,
1: और
0: जे,
1: उसके
0: जे.
1: बाद वो बंदा किस तरह जिंदा हुआ.
0: हाँ,
1: वो एक अलग स्टोरी है.
0: अलग स्टोरी भाई. अभी एक बहुत जबरदस्त कहानी है, वो वीकेंड पैक. इंशाल्लाह आप तैयार रहिए, बस फुल लोडेड हूं मैं.
1: मजे कर रहे हैं हम तो हर दम तैयार है आपके साथ.
0: थैंक यू सो मच,
1: आपकी स्टोरी आए और हम सुने बस.
0: थैंक
1: यू सो मच. बाकी ये मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो आपने हमें एक्सप्लोर की है, वो हमें नहीं पता था. हमने उनके नाम सुने थे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, न्यूटन था, टेस्ला था.
0: जी जी,
1: ये हमने इनके नाम सुने, इनकी रियल स्टोरी क्या थी, इनकी स्ट्रगल क्या थी, वो हमने नहीं सुनी, वो आपने हमें एक्सप्लोर की है.
0: थैंक यू सो मच.
1: उसके लिए थैंक यू वेरी मच. जैसे लियोनार्डो विंची था, उसकी क्या ही मैं कहता हूँ कि इंस्पायरिंग स्टोरी थी. और क्या उसने जिंदगी गुजारी, इतना बड़ा होके भी आखिर में क्या उसका एंड ऑफ लाइफ थी.
0: जी.
1: तो ये वाकई आपने एक्सप्लोर किया, वरना हम तो वही सिर्फ नाम सुने हुए थे और बस इससे ज्यादा हमारा कोई आगे का था ही नहीं. लेकिन आपकी स्टोरी सुनने के बाद ना, मैं तो पर्सनली जो हूँ वो मैं सर्च करता हूँ विकिपीडिया पे.
0: थैंक यू भाई.
1: और वो सेम टू सेम मिलता है तो और वो हो जाता है, याद देखो ये हमारी नॉलेज में इजाफा हो गया एक किस्म का.
0: जज़ाकअल्लाह भाई, बहुत बड़ी बात है मलिक वकास भाई, ये आपने एंड में जो बात की. थैंक यू सो मच.
1: और आपकी मेहनत है, और आपकी जो मेहनत है कि आप जैसे उसको बयान करते हैं ना, वो कमाल है.
0: थैंक यू.
1: उसका कोई मैं कहता मुकाबला ही नहीं है. वो ऐसे ही चल रहा होता है जैसे एक मूवी चल रही है, एक फिल्म चल रही है, स्क्रीन सामने है और वो कैरेक्टर बिल्ड हो रहे हैं, वो चल रही है.
0: आपको सीरियसली थैंक यू सो मच.
1: बहुत सारा प्यार, अल्लाह आपको खुश आबाद रखे
0: धन भाई,
1: और सही जिंदगी इसी तरह आप स्टोरी सुनाते रहे
0: बिल्कुल भाई. इंशाल्लाह इंशाल्लाह मलिक वकास भाई, ख्याल रखिए बस अपना.
1: चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कबीर भाई आपने कॉल की.
0: नो प्रॉब्लम मेरे भाई, ख्याल रखिए अपना. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. तो भाई साहब आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बट्टे बट्टे हो गया मेरा. क्या बात.

जिधर भी ट्रैफिक है, अच्छी बात है, ट्रैफिक नहीं होगा तो आप मुझे टाइम कैसे देंगे? बढ़िया है, ट्रैफिक में है आप। अस्सलाम वालेकुम। बस भाई जहाँ पे जो है गाड़ी वाड़ी थोड़ा सा छोटा मोटा माइनर या मेजर एक्सीडेंट है, अल्लाह माफिज़ ना, अल्लाह हमें बचा के रखी इन चीज़ों से, और आप भी जरा ड्राइव सेफली, सुबह सुबह जोशो खरोश में ना निकलें। अंदर गाड़ी के शीशे बंद करके सामने वाली पब्लिक को गाड़ी को सुनाना एक अलग बात है, और अपना होश खो देना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो प्लीज़ बी इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। बाकी तो मैं हुई आपके साथ, टेंशन को नहीं भाई। म्यूजिक

भाई बात यूँ दिखे है कि न्यूज बाकी है तो सबसे पहला तो मैं न्यूज पढ़ दूं भाई। कुछ मैसेज आए ये पढ़ देता हूँ। ये फलक ने मैसेज किया है। फलक क्या कह रही है, इतनी तारीफ कुछ ज्यादा भरे हुए थे भाई। वे फलक इस बात पे ना तो वो कहना चाहूँगा, मेरी एक खाला है, मैं हमेशा उनकी एक्टिंग करता हूँ, बेबी खाला है, मैं उनकी आवाज़ों तो रिप्लाई करूँगा। अरे भैया ऐसी ऐसी लड़कियाँ जल जाएं सरान सरान सी बात पे। नहीं फलक थैंक यू सो मच। अच्छा एक वॉइस नोट भी है, मीटअप मेरा नाम ऐड करो। कहाँ हो रहा है मीटअप मुझे ही नहीं पता है। अरे बंसारी भाई कह रहे हैं भाई वो मीटअप कौन सा वाला मीटअप, मैंने कुछ नहीं डिज़ाइन किया। अरे भाई मतलब ये बात कहाँ से, मेरे को पता ही नहीं है। फरहत भाई कह रहे हैं कोई ना कोई अपनी पूरी कोशिश करता है कि ये बंदे को रुला दूँ, लेकिन कबीर भाई हैं सख्त दिल्ली वाले। भाई मैं अंदर इमोशनली थोड़ा चार्ज हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। पर क्या करें क्या करें बेटा। चलो मैं कहानी की तरफ बढ़ता हूँ, सॉरी न्यूज़ की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले तो सबसे पहली खबर है कतर और उज़्बेकिस्तान के बारे में। तो कतर और उज़्बेकिस्तान ने आपस में मिलकर जो एक आर्टिस्टिक और कल्चरल अप्रोच दिखाई है, उसका नतीजा ये हुआ है कि एक कोऑपरेशन सेट हुई है जिसमें एग्जीबिशंस देखने को मिली हैं और मिलने वाली हैं। आर्टिस्ट का एक्सचेंज हुआ है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स रखे जा चुके हैं और रखे जाएंगे, और रिसर्च इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं विच इज़ फिनोमिनल। ये जो है ना ईयर ऑफ कल्चर चलता रहता है, हर साल कोई ना कोई होता है, एंड दिस इज़ ट्रू गुड। ये कतर की अप्रोच जो है बड़ी कमाल की है। इसके अलावा कतर मीडिया कॉरपोरेशन यानी हमारी QMC और कतर यूनिवर्सिटी ने मिलकर साइन किया है एक अग्रीमेंट जिसमें मीडिया कवर किया गया है, साइंटिफिक रिसर्च, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब कुछ दी जाएगी। जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया है बाय हिज एक्सेलेंसी शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज अल थानी द CEO ऑफ द कॉरपोरेशन एंड डॉक्टर उमर अल अंसारी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। और मकसद है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच की जाए और एक ऐसा स्टेज दिया जाए जहाँ पे नेशनल मीडिया टैलेंट बाहर निकल के आए, हर डिपार्टमेंट का, नॉट जस्ट द फ्रंट बट द बैक एंड एज वेल। और बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है ये। इसके अलावा कतर ने लॉन्च किया एक नया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कतर इन्वेस्टमेंट, जिसका मकसद है मैनेज करना, और कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ इसमें हर पोर्टफोलियो को मॉनिटर करेंगी। एंड जो कतर के प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने ये भी अनवील किया कि 5 साल की पाइपलाइन इसमें तैयार की गई, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं विच इज़ मोर देन $60 billion ऑफ वर्थ। तो इतनी बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। एक मैसेज है भाई रेक्स कैट मिल गई, मैं अगर मिल गई होगी तो बताऊँगा क्यों, बताओ। वैसे तो नहीं मिली अभी तक। एक मैसेज है भाई क्या उतना ही होगा लेकिन लेट उठा भाई, भाई है उठना ही होगा लेकिन लेट उठा भाई। हुसैन भाई क्यों लेट उठ रहे हैं आप, मेरे शो में उठिए बैठे, अच्छी बात होती है। और एक मैसेज फराज जी ने किया है, लिखते हैं इंशाल्लाह टुमारो आई विल लिसन टू योर स्टोरी अगेन एंड डेफिनेटली लीव अनदर नाइस कमेंट। अरे भाई आई रियली लव योर स्माइल एंड द वे यू लाफ। थैंक यू सो मच। आप बहन ने कह दिया तो फिर तो मानना पड़ेगा। और इस स्माइल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स अबाउट मॉर्निंग, वैन यू लाफ इन द मॉर्निंग इट रियली मेक्स आर डे। मैं आज ट्रॉफी उठा के जा रहा हूँ, यू नो आफ्टर गेटिंग द किड्स रेडी एंड ड्रॉपिंग दैम ऑफ वी कम बैक होम, स्विच ऑन FM 107 एंड देन हियर योर वॉइस इन द ब्यूटीफुल लव, समहाउ इट ब्रिंग्स स्माइल टू आवर फेसेस। आई जेन्युइनली लव दिस लिटिल मॉर्निंग मोमेंट, इट बिकम्स सच अ लवली पार्ट। थैंक यू सो मच बहना, और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, बच्चों को भी भर भर की प्यार। थैंक यू सो मच। आज भाई हो गया काम, टिश्यू भर दूँ। थैंक यू, मीन्स अ लॉट टू मी, ड्रामे नहीं कर रहा मैं, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है पार्टनर। मैं बढ़िया पार्टनर अफजल उस्मानी भाई, दिन भर भाई DP चेंज करा मेरा भाई आज सूट बूट में, ज़्यादा खुश हैं तो आज पार्टी दे दो। नहीं इतना भी खुश नहीं पार्टी दे दो। अच्छा ये UP वाले बहुत तेज हो रहे हैं। एक मैसेज है शाहिद भाई का है मीटअप, अरे कौन सा, नहीं नहीं वो कोई मीटअप नहीं है, वो ऐसी बात चल रही मीटअप नहीं है वो। कमाल हो गया कि महीने का कोटा पूरा हो गया कबीर भाई का। फलक एकदम सही कहा आपने, आप बिल्कुल सही कहा एक तरीके से। कल तो मतलब वो घड़ा भर जाएगा मेरा तो, लोगों के पापों का घड़ा भरता है, मेरा प्यार का घड़ा भर जाएगा। एक मैसेज वॉइस नोट है तो मैं अभी वॉइस नोट सुन नहीं पाऊंगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बाकी एक और मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने भाई 7 मिनट का वॉइस नोट भेजा है। या अल्लाह मुझे उठा के बीच पे पटकते, 7, 7.5 मिनट का है वॉइस नोट भाई, इतना लंबा तो भी मैं सुन नहीं पाऊँगा, लेकिन ये आपने मोहब्बत ही भेजी है इसमें। कासिर शहबाज साहब कह रहे हैं कि ये वॉइस नोट अपनी टीम को सुना दीजिएगा, तो मैं अपनी टीम को फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो सुन के बता देंगे। एक मैसेज, गुड मॉर्निंग भाई क्या हालचाल है कबीर भाई, आज मुझे स्टोरी सुनने को टाइम नहीं मिला, क्या आप मुझे स्टोरी भेज सकते हैं, बहुत मेहरबानी होगी।
अच्छा एक मैसेज और है भाई आपने क्या क्या लिखा भाई अपने बच्चे डरा दिए दोबारा नहीं आया कौन सा वाला बच्चा अच्छा वो अवैर है वो उन्होंने कॉल करी थी वो आ नहीं पाया वो स्टोरी भी सुनाएंगे किधर क्या स्टोरी भेज देना वो भी स्टोरी सुनाएंगे कौन स्टोरी सुनाएंगे किसको सुनाएंगे ये क्या बात चीत हो रही है जो मुझे समझ में नहीं आ रही एक मैसेज है भाई आप क्या आपसे मिलना कैसे होगा अच्छा वॉइस नोट वाले फलक कह रही है वॉइस नोट वाले भी स्टोरी सुनाई होगी कंपटीशन चल रहा है फलक ये कंपटीशन है हेल्दी कंपटीशन है ये एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई सुबह सुबह आपकी आवाज़ रेडियो में सुनता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है फिर सरवर भाई नाजिया बहन को जब स्टूडियो में आते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे अर्थ को एक आ गया हो जिस्म के फुरसे हिल जाते हैं एक अलग ही टाइप की थेरेपी देते हैं अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे तंदुरुस्त रखे आमीन यासिन भाई मैं बताऊँगा सरवर भाई को कि आपने उनकी आने की उनकी आमद को अर्थ को एक से कनेक्ट किया है मैं ये बताऊँगा उनको आपको क्या लगता है बताऊँगा नहीं फरहत भाई क्या कह रहे हैं ये जो कबीर भाई सॉन्ग प्ले कर देते हैं इमोशनल टॉपिक के बाद ये नीचे बैठ के रोते हैं हाँ भाई मैं ये जो स्टूटर बना हुआ है इसके नीचे बैठ के मैं रोता हूँ बैठ के मैं नहीं रोऊंगा बहुत गंदी आवाज़ निकलता हूँ रोने की ये एक लौती एक्टिंग है जो मैं नहीं कर पाता हूँ समझ रहे हो बाकी कोई मिमिक्री करा लो ये नहीं हो पाएगी एक में से भाई ये बात तो सच है क्या पूरा दिन बना देते लव यू सो मच अरे भाई का बहुत सारा प्यार थैंक यू सो मच अरे भाई बहुत सारा प्यार क्या इसी बात पे गाना और ये गाना जो है ना उन लोगों की तरफ से है जिन लोगों को कुछ कहना है किसी से समझ रहे हैं आप ये यू नो व्हाट आई मीन मैं चला दूंगा समझ जाएंगे आप भाई गाना है कति देसी गाना भाई दिल दे बैठी है कि छोरी ने भाई छोरी ने भी हो सकता है अगर आप यू नो इफ यू लुक इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव डांडा भाई का गाना है भाई दिल दे बैठी हाय जो बात दिल दे बैठी एक छोरे ने मागा जी

क्लॉक एंड ऑल आई कैन से इज आई हैव वोकन अप बढ़िया तरीके से. एक मैसेज है प्रिंस भाई का, लिखते हैं भाई आप लाते टॉपिक कैसे, बस हम लिसनर्स की तरह अपना ओपिनियन रखता हूँ. प्रिंस भाई आपने चार चांद लगा रखे हैं एंड एवरीबॉडी लव्स यू ब्रो. सो ये सब कुछ एक कम्युनिटी फॉर्मेशन जो होती है वो अच्छा लगता है. भाइयों में मजाक चलते रहना चाहिए, क्यों प्रिंस भाई? खादर अब्दुल अजी भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपकी आवाज़ शत्रुघ्न सिन्हा हैं? शत्रुघ्न सिन्हा जैसी नहीं भाई. चैनों से कहना कि कबीर आया था और एक और मैसेज आया है. क्या खामोश जकी भाई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ब्लो कैन यू प्रे, ये कौन सा गाना है जकी भाई? मैं समझा नहीं भाई. और एक मैसेज है जहाँ पर आदाब आदाब शेखू. आदाब तो तुम पहले भी कर चुके हो, ये नया आदाब क्यों किया आपने? अभी लेटेस्ट भी आदाब किया आपने, वेरी नाइस.

आई लाइक इट, बहुत आगे जाओगे. और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई. क्या मैसेज क्या है कबीर भाई, आपने सोशल मीडिया पे पिक्चर कब की है? बहुत पुरानी है भाई, चेंज नहीं किया मैंने. ये देखो ये अब ये आवाज़ वगैरह अमिताभ बच्चन की आवाज़ मत करो यार, वो पता है मैं मैं बह जाता हूँ जज्बात से बच्चन साहब की आवाज़ में बात करते हुए. और यहाँ से भाई आप जो है हमें जब कॉल करते हैं तो मन तो करता है कि थोड़ी लंबी बात की जाए, लेकिन फिर रेखा जी की कॉल आ जाती है और बहुत सारी धरी की धरी रह जाती है. आग आग, ऑलवेज रिमेम्बर आसिफ भाई, आग. प्रिंस भाई कह रहे हैं मजाक होगा तभी तो मॉर्निंग में फील आ गया है. यही एग्जैक्टली भाई, यही अप्रोच चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच चाहिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट सपोर्ट. बढ़िया बात है, ऐसे ही रहना चाहिए. ओके जी, तो मैं ये कह रहा था कि कुछ रिकमेंडेशन आपको दे देना चाहता हूँ मैं. देर आर सर्टन थिंग्स एंड सर्टन मूवीज जो आपने शायद नहीं देखी होंगी, जो आप देख सकते हैं आप मुझे बताइएगा. रिसेंटली एक चीज़ देखी जा रही है, मतलब मेरे घर पे भी देखी जा रही है, मैंने अभी खुल के बात नहीं करी इसके बारे में. चुंबक एक सीरीज आई, आई थिंक सीरीज ही है, तो जिसने चुंबक नहीं देखी है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है, आप जरूर देखिए भाई. बहुत जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और अच्छा ह्यूमर है, अच्छा ह्यूमर है जो घरेलू वाला ह्यूमर है. यू कैन सिट एंड वॉच विद द फैमिली एज वेल. बहुत बहुत अच्छी जा रही है, मैंने बिट्स एंड पीसेस में देखी है, बट रिव्यू बड़े कमाल के हैं. और क्योंकि मेरी घर पे ही देखी जा रही है तो मेरे कानों में, कानों की पर्दों पे उसकी आवाज़ें पड़ती रहती है, तो आई कैन ऑब्वियसली टेल यू दैट इट्स अमेजिंग. सो इफ़ यू हैवंट सीन इट, और आपको अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है कि इंडियन सिनेमा से अच्छा ह्यूमर बन सकता है, तो उस उम्मीद को बरकरार रखिए क्योंकि चुंबक बहुत बढ़िया जा रहा है भाई. जकी भाई ये गाना मेरे पास नहीं है जो आपने बताया है, बट श्योरली पॉइंट टू बी टेकन, मैं ही रखूँगा अपने पास. पता नहीं कौन सा आप बता रहे हैं, बट मैंने ढूंढा, मेरे पास नहीं है इस नाम से. एक मैसेज भाई, कल एक मूवी का ट्रेलर देखा, रेसिडेंट ईविल. रेसिडेंट ईविल बहुत बढ़िया है भाई, क्योंकि मैं बहुत हैवी गेमर हूँ तो मुझे पता है कि रेसिडेंट ईविल बहुत शानदार है. अभी रिलीज़ हो चुकी है एंड उसकी रेटिंग्स भी अच्छी आई है. उसको देखो, देखने के ना दो नज़रिए हैं, मैं आपको बताऊँ. नज़रिया क्या है, नज़रिया नंबर वन इज़ कि आपने कभी गेमिंग करी और आप देखने जा रहे हैं तो आप उसको अलग नज़रिए से देखेंगे. अगर आपने कभी भी नाम ही नहीं सुना है इसका, पूरी फ्रेंचाइज का, और तब आप थिएटर में देखने जा रहे हैं तो आपका नज़रिया अलग हो सकता है. तो हो सकता है कि आसिफ भाई आपको थोड़ी सी ओवर द टॉप लगे, समझ रहे हैं आप, पर अगर आप मुझसे थोड़ा ज्ञान लेके जाएंगे उसके बाद देखने जाएंगे तो यू विल लव इट, बहुत मजा आएगा आपको. प्रिंस भाई कहते हैं ह्यूमरस कॉमेडी, आई लव द कैरेक्टर्स. आपने आपने देखी चुंबक? दिख रहे हैं आप प्रिंस भाई, बहुत अच्छी है, वेरी गुड कैरेक्टर्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत कमाल का है, तो आई थिंक ये देखना चाहिए. एक मैसेज, कबीर भाई आपका डायलॉग शेखू वेरी नाइस. वो तो मैं शहजाद सलीम को बोलता हूँ, शेखू हाजिर किया जाए. एक मैसेज है, कबीर भाई मुझे आपसे मिलने का तजस्सुस हो रहा है, माशाल्लाह. जो उर्दू में रिजाना आपने बोला, मुझे भी मिलने का तजस्सुस है, बस टाइमिंग निकालनी है. आप कैसे हैं भाई वैसे रिजवान भाई? थैंक यू सो मच, आपने चाहत जाहिर करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो या कमिंग बैक टू द टॉपिक, रेसिडेंट ईविल रिसेंटली रिलीज हुई है, उसका रिव्यू FM 107 पर आपको मिल ही चुका होगा. बट क्योंकि आई हैव बीन फॉलोइंग द होल सीरीज, तो आप क्या क्या द फ्यूरियस मूवी देखो. फ्यूरियस मूवी कब की है ये? फ्यूरियस मूवी कब की है? मैंने देखी नहीं. द फ्यूरियस नाम है इसका. एक सेकेंड ना, कब रिलीज़ हुई है? मैंने इसका नाम नहीं सुना इससे पहले. लेट मी सी के ये कब की पिक्चर है. अच्छा 2026 की, 25 की है. ओके ओके, नाइस नाइस, आई लाइक इट. ये तो देखने वाली यार, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, थैंक यू सो मच. नहीं 25 की है, 26 में शायद यहाँ पर रिलीज़ होगी, पता नहीं, पर इसमें दिखा रहा है कि ये कुछ तकरीबन 2 घंटे की है. द फ्यूरियस वेरी नाइस, अच्छी रेटिंग है, ज़रूर देखूंगा मैं ये रिव्यू, ज़रूर करूंगा. 25 की मूवी, 26 की नहीं. जैस भाई ने देख तो ली लेकिन आपकी बता रहे हैं, पुरानी है बेटे, 1 साल पुरानी है, समझो मेरी बात को. बाकी 8:42 666-22107 नंबर है. एंड अपने रिकमेंडेशन बताएगा, कोई ऐसी मूवी या सीरीज जो आप फॉलो कर रहे हैं तो लेट्स मी नो. इस गाने के बाद मिलते हैं उन रिकमेंडेशन के साथ, फिर मैं भी आपको बता दूंगा कुछ ना कुछ, थोड़ा सा मीठा मीठा गाना भी हो जाए. क्या है ना, अभी आपको सुबह से बिरयानी नहारी खिलाई है तो एंड में थोड़ा सा मीठा भी तो होना चाहिए. हाँ हाँ कभी साहब, क्या सेल करते हैं आप गाने. इस गाने में ठीक है भाई, ऑलमोस्ट आई वॉच द ओल्ड एपिसोड्स ऑफ सारा भाई और सारा भाई, और से सारा भाई फ्रेंड्स भाई कोई टक्कर नहीं है भाई. 8:43, गुड मॉर्निंग.

0: मजा आ गया, मजा आ गया। अमूमन मेरे शो में ऐसे गाने चलते नहीं, आप रिलेट भी नहीं कर पाते, और फिर जब मैं आ जाता हूँ ऐसे गानों के बाद तो सरप्राइज भी लगता है, अरे इसका शो ये वाले गाने तो कैसे कैसे हो गए, हाउ
1: रेडियो पे धुआ बातें हैं फायर ख्यालों का कुआं भेजे के कसरत और बोली से सुनवा कंपटीशन को नहीं मारा रेडियो का फूफा सुबह आएगी एनर्जी लगे सो

0: रूम कर शेक अप, आंखों में फायर लेवल मेकअप, कल जो ख्वाब थे आज चेज अप, दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप। ए दोहा वाला मैं कबीर,
1: हां जी
2: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप।
1: अस्सलाम वालेकुम। और एक मैसेज आया है, एक और मूवी का रिकमेंडेशन दिया है, एक्शन मूवी है, जस भाई कहते हैं बीकीपर। बीकीपर हाल के मैंने देखी है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है भाई। इधर उधर की बात नहीं, सीधा मेन मुद्दे की बात है, फुल ऑन एक्शन। और एक मैसेज आया है, कबीर भाई आपके कहने पे मैंने, अच्छा आपने देखी, ओहो यही तो मुझे घर पे दिखानी। एक भाई ने लिखा है, आपके कहने पे मैंने ओल्ड बॉय देखी, शुरुआत में तो मैंने बंद कर दी, मुझे लगा समझ में नहीं आ रही है, बोर है, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके देखी। भाई क्या मूवी थी, बहुत बहुत मज़ा आया। मैं कह रहा था ना, जिसने ओल्ड बॉय नहीं देखी है ना, आप बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हैं सिनेमा का, मैं बता रहा हूँ आपको। इफ़ यू हैवंट सीन इट, अभी की नहीं है, पुरानी मूवी है, लेकिन बहुतों ने नहीं देखी है, और ये तो देखनी ही चाहिए अगर आपको एक्शन प्लस सस्पेंस प्लस ट्विस्ट आखिर में चाहिए ना। कोई कंपटीशन नहीं है इस मूवी का, मैं बता रहा हूँ आज भी। हालांकि इसका एक फर्स्ट कॉपी बनाई थी बॉलीवुड वालों ने, पर वो फर्स्ट कॉपी नहीं देखना, उसके बारे में मेंशन भी नहीं करूंगा। बट डू वॉच द ओरिजिनल वन, अगर आपको सबटाइटल्स के साथ मिल जाती है या अंग्रेजी हिंदी में मिल जाती है तो और भी बढ़िया है। ओल्ड बॉय इफ यू हैवंट सीन इट, पुरानी है बट ऐसा कुछ आपने नहीं देखा होगा अभी तक, तो आर्ट इज़ अबाउट ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। एनीवे आज कुछ दिन है जो इंटरनेशनली मार्क्ड है, उनके बारे में जरा मैं बात करना चाहता हूं, तो एक एक करके बता दूं आपको कि क्या क्या है। आज है वर्ल्ड राइनो डे। एक सेकेंड, एक मैसेज है मेरे पास, भाई माय कॉल पिक होने की उम्मीद छोड़ दी है, मैसेज पर ही काफी हो गया है। किधर कॉल करी आपने भाई, कॉल किधर की आपने, मैं तो यही नहीं समझा।

0: सिगरेट ने कॉल लगा लेता हूँ भाई, कह रहे हैं उम्मीद ही छोड़ दिया भाई मैंने, तो आपको आपकी कॉल आई नहीं मेरे पास, ये कैसे हुआ? एक सेकंड रुको, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, रुक जाओ ये व्हाट्सएप पे जो कॉल कर रहे हैं वो वाली कॉल नहीं उठती भाई, ये कॉलिंग का नंबर ही दूसरा है, रुको भाई मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। शेख इरफान अल खासमी साहब, मैं इस गम के साथ नहीं जा पाऊँगा कि मैंने आपको कॉल नहीं करी, पर कॉल लग नहीं रही है, लगी क्या? पता नहीं, शायद लगी है शायद नहीं लगी है, आई डू नॉट नो। अस्सलाम वालेकुम। भाई आपने कब कॉल करी? आप मुझे नहीं दिखी थी कॉल, मुझसे मिस हो गई मैं मानता हूँ, लेकिन आप मैसेज कर दिया करें भाई, ऐसे उम्मीद मत छोड़िए भाई मुझसे प्लीज।
1: ऐसी कोई बात नहीं है कबीर भाई
0: जी, बताइए।
1: दरअसल मैं इस नंबर से कॉल नहीं करता हूँ, दूसरे नंबर से कॉल करता।
0: अच्छा, ओके।
1: पर्सनल नंबर होता है।
0: अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। हाँ
1: जी,
0: चलिए कॉल लगी,
1: अगर कॉल आए तो मैं उठा लेता हूँ।
0: चलिए,
1: मुझे
0: बता दिया करें भाई, मैं कॉल कर लूंगा, बिल्कुल ना उम्मीद ना हो करें।
1: असल में आप मसरूफ होते हैं और हम ड्राइविंग पे रहते हैं।
0: अरे कोई मसला नहीं भाई, कभी गाड़ी साइड में लगा के कब चाय पीने अगर बैठे हैं आप तो बता दीजिएगा, मैं कॉल लगा लूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है।
1: मैंने तो आपको आलू का पराठा का दावत दे दिया था।
0: ये आलू का पराठा आपको कहाँ से आपने जुगाड़ के लिए, ये बाहर से खाया है या फिर ये घरेलू बना हुआ था, ये कहाँ का था? ये बाहर से खाया। चलिए पेट भर गया, सुबह सुबह नाश्ता पानी हो गया भाई का, रियली हैप्पी।
1: और बताओ। सर ये है ना सिग्नल के पास है, दुकान है, नाम नहीं बता रहा हूँ।
0: हाँ सही है,
1: जहाँ पर राइडर वालों के लिए भी बहुत
0: सीख गए इरफान भाई, इरफान भाई सीख गए, नाम नहीं बताना। बहुत बढ़िया इरफान भाई। अच्छा तो कैसा रहा इरफान भाई, कहानी वानी सुनी आपने?
1: माशाल्लाह, मैंने कहानी जब सुना था ना तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये आमतौर पर हम लोगों के हर किसी के मतलब होता रहता है।
0: जी, जी।
1: जैसे हमें प्रेशर आया थोड़ा सा जमीन का, तो हम इसको दबा रखते हैं।
0: सेंसिटिव है, सेंसिटिव है। इसको मतलब ये समझना चाहिए,
1: करना चाहिए बिल्कुल।
0: डेफिनेटली।
1: और वीकली ऐसा एक स्टोरी होना चाहिए, हर वीकली।
0: डन डन डन इरफान भाई, डन। ऐसी काम की कहानी आती रहेंगी भाई,
1: बहुत फायदेमंद होता है।
0: थैंक यू सो मच मेरे भाई इरफान भाई, ख्याल रखिए अपना और मुझे बता दिया करें कभी कॉल ना लग रही हो तो मैं कॉल बैक कर लूंगा आपको, टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, वालेकुम सलाम भाई, ख्याल रखिए अपना। तो इरफान भाई की बात कुछ दिन में बता रहा था आपको, जो आज के दिन मार्क्ड है, तो आज वर्ल्ड राइनो डे है, इसके अलावा आज वर्ल्ड कार फ्री डे है। नॉट पॉसिबल। अगर कोई कतर में कह दे कि मई जून के महीने में कार फ्री डे है, ज़रा साइकिल वाइकिल पे जाओ, रहने दो भाई। और आज है आइसक्रीम कोन डे, मैं खाता नहीं था बटाई पर आइसक्रीम कोन वाली, मेरे को बड़ा पसंद आता है, वो जो चटर पटर होती है कोन के साथ, उसका मज़ा ही कुछ और है। आज मेरा खामा खा मन भी कर गया पढ़ने के बाद। इसके अलावा है फॉल प्रिवेंशन अवेयरनेस डे, ये किसने सोचा होगा, तो ऊपर से गिरने के डर के बारे में अवेयरनेस फैलाने का दिन आज। अवेयरनेस के होने के बावजूद अगर गिरोगे तो कोई गिरेगा भाई, नो बडी कैन हेल्प, मगर प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। एक मैसेज आया है, मैं बाद में पढ़ता हूँ। एक दिन और है, आज है एलिफेंट अप्रिसिएशन डे, एलिफेंट अप्रिसिएशन डे। मुझे पता है अगर ये नाजिया बहन और सरवर भाई ने ये दिन पढ़ लिया है तो इस दिन को लेके बहुत बातें होने वाली है। और आज है इंटरनेशनल वीक ऑफ सीड गैदरिंग सीजन, बीज कलेक्ट करने का दिन है ये, तो बिल्कुल ही हो मूड खराब हो गया, कैसा दिन है। एनीवे, मेरे आपसे जल्द लेने का वक्त आ गया है। हाइड्रोफोबिया डे, हाइड्रोफोबिया आ जाएगा जकी भाई, आप मुझे नहीं पता था। अगर है तो ठीक है, मुबारक हो भाई सबको। जाते जाते शायरी ज़रूर सुनना, मैंने सुनी है आपकी शायरी शायद सलीम जो मुझे था। बट फॉर नाउ दिस इज़ कबीर साइनिंग ऑफ, इंशाल्लाह आपसे बाद में मुलाकात होगी, कल मिलेंगे कल सवेरे 6 बजे आपसे मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ, बहुत सारी बातों के साथ। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन, एंड फॉर नाउ दिस इज़ दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

के उन हमसाया ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बाईपास करने वाली पाइपलाइन के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी। उन्होंने कहा कि हम अपने हमसायों के शुक्रगुजार हैं, लेकिन यह भी याद रहे कि हर किस्म की अशिया पाइपलाइन के जरिए मुंतकिल नहीं की जा सकती। अरब के अहम मौक़ों से आगाही हासिल करने के लिए सऊदी अरब के एक तजारती वफ्द ने कतर डेवलपमेंट बैंक और फ्री जोन्स अथॉरिटी का दौरा किया। वफ्द में कतर सऊदी मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के सऊदी जानिब के अरकान शामिल थे और उनकी क़यादत चेयरमैन सऊदी साइड ऑफ द काउंसिल हमद बिन अली अल शुवाइर कर रहे थे। ये दौरा कतर चैम्बर की जानिब से मुनज़्ज़िम किया गया था और इसमें सरमायाकारों के लिए मौजूद सहूलियात इंसेंटिव्स और माशी इंजमाम को फ़रोग देने में प्राइवेट सेक्टर के किरदार पर तवज्जो दी गई। कतर टूरिज्म और ओल्ड दोहा पोर्ट ने स्पेन के शहर ग्रैन कैनारिया के लास पाल्मस क्रूज पोर्ट में 16 से 17 सितंबर को मुनाकिदा सी ट्रेड क्रूज मेड 2026 में शिरकत की। ये शिरकत कतर को बैन अल-अक़वामी क्रूज मंजिल में मजीद मुस्तहकम मकाम दिलाने और इस शोबे की मुसलसल तरक्की की हिमायत के लिए की गई। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट जेपी मैप ने 20 मिलियन अमरीकी डॉलर के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माहदे के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत का ऐलान किया है। इस शराकत का मकसद पब्लिक और प्राइवेट मार्केट्स में दोनों इदारों की सरमायाकारी की सहूलियात से फ़ायदा उठाना है। कतर फ्री जोन्स अथॉरिटी ने कतर इकोनॉमिक फोरम पावर्ड बाय ब्लूमबर्ग यूएनजीए स्पेशल एडिशन 2026 में शिरकत की। अथॉरिटी ने इन्वेस्ट कतर और कतर फाइनेंशियल सेंटर के साथ मिलकर एक खास बिजनेस लाउंज का भी एहतमाम किया जहां कतर के इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम से मुतालिक अहम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। और कतर स्टॉक एक्सचेंज का जनरल इंडेक्स ट्रेडिंग सेशन के अख्तिताम पर 8.61 पॉइंट्स या 0.09% के इजाफे के साथ 9,559.05 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेशन के दौरान तमाम शोबों में 25,807 ट्रांजैक्शंस के नतीजों में 26 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 24 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई, जबकि 4 कंपनियों ने अपनी साबिका क्लोजिंग प्राइसेस को बरकरार रखा।

0: ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स। आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
2: अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में, कतर ओलंपिक कमेटी ने पीर को 20th एशियन गेम्स आईची नागोवा 2026 के मौके पर अपनी रस्मी रिसेप्शन का अहतमाम किया। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 की लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आईची नागोवा 2026 एशियन गेम्स के दौरान जापान के नागोवा शहर में बैथ कतर पर टूर्नामेंट के हवाले से प्रमोशनल इवेंट्स का एक सिलसिला मुनक्किद कर रही है। कतर की स्विमिंग टीम ने एशियन गेम्स में 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कतर की मर्दों की बीच वॉलीबॉल टीमों ने एशियन गेम्स में पीर के रोज शानदार जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया। और अंडर 16 बास्केटबॉल लीग में अल गराफा ने अल वकरा को शिकस्त दी, जबकि अल अहली ने अल शमाल को हरा दिया। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
3: FM 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद

0: Kaan Şahit.
1: साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी आज अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे, जिसमें इलाकाई और बैन अक्वामी उमूर, अमन, तरक्की और आलमी शराकत दारी के हवाले से कतर का मौकिफ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने GCC के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा के राबता इजलास में शिरकत की, जिसमें मुश्तरक तआवुन, इलाकाई सूरत हाल, कशीदगी में कमी और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादले ख्याल किया गया। न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 21वें इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने मुतअद्दिद आला हुक्काम और बैन अल-अक़वामी शख्सियात के साथ अलग अलग मुलाकातों के दौरान खित्ते में कशीदगी में कमी और अमन के क़याम के लिए जारी मुश्तरक सफारती कोशिशों और राबताकारी पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आदल व वज़ीर मुमलकत बराए काबीना उमूर इब्राहिम बिन अली अल-महनदी ने शामी वफ्द से मुलाकात के दौरान कानूनी और निगरानी के शोबों में दो तरफ़ा तआवुन, तजर्बात और मालूमात के तबादले को फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया। इसी के साथ साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडियो से तकनीकी मुआविन नूर और सोशल मीडिया से इंतखाब आलम, न्यूज़ रूम से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्ज़ा और मुझे फरकान शाहिद को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
2: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामिनी किराम, आज के हलके में ज़करिया अलैहिस्सलाम की मजीद एक और दुआ समाअत फरमाइए। ये वो दुआ थी जो उन्होंने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में तन्हाई और वारिस की कमी के एहसास के साथ मांगी थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में औलाद की दुआ करते हुए यह अर्ज किया, رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين। اے میرے رب، مجھے تنہا بلا وارث نہ چھوڑ۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسے نیک بیٹے سے نوازا۔ آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اپنی ضروریات اور کمزوریوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور یقین رکھے کہ اللہ سب سے بہتر وارث اور کارساز ہے۔ آئیے ہم سب عاجزی سے یہ دعا پڑھیں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
4: दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल करते वक्त सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करना एक्सीडेंट्स को रोकता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखने में मदद देता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए कुछ जरूरी इकदाम जानिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल सेफली करें, मखसूस रास्तों का इस्तेमाल करें, ज्यादा स्पीड पर ना चलें, रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहने और स्कूटर की लाइट ऑन रखें, हमेशा हेलमेट ठीक तरह से पहने। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या ई स्कूटर्स राइडर्स को अपनी और दूसरे रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए। ई स्कूटर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स बाईसाइकिल के बराबर हैं, जैसे राइडर्स का हेलमेट पहनना और फ्रंट और बैक पर लाइट्स लगाना। ई स्कूटर राइडर्स को रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहननी चाहिए जो दूसरे रोड यूजर्स को दिखाई दें। उन्हें रोड पर डेजिग्नेटेड जगह इस्तेमाल करनी चाहिए जो

0: या तो साइड वॉक्स पर या रोड क्रॉसिंग के साइट्स पर हैं, जो पेडेस्ट्रियंस के लिए डेजिग्नेटेड होती हैं, बिल्कुल साइकिलिस्ट की तरह। याद रखिए, ई स्कूटर से होने वाले वायोलेशंस बाईसाइकिल एक्सीडेंट्स की तरह ही होते हैं। अगर ई स्कूटर राइडर्स एक्सीडेंट का सबब बनता है तो वो दूसरी पार्टी को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार होगा। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
0: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
4: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी बैटिंग या विकेट कीपिंग की वजह से मशहूर नहीं होते बल्कि अपनी लीडरशिप टेम्परमेंट और मैच विनिंग एबिलिटी की वजह से एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाईलाइट। और आज हम बात इंडिया के एक लेजेंडरी क्रिकेटर की हम करेंगे और सबको पता चली गया होगा उनका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। एमएस धोनी का इंटरनेशनल करियर 2004 में शुरू हुआ जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया। शुरू में उनका एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल और लॉन्ग हेयर इन लंबे बालों पर उनकी पहचान अपने लोगों ने बोला यार लंबे बाल वाले क्रिकेटर कौन है वो, अच्छा धोनी है, कोई धोनी आया है रांची से, इंडिया का एक शहर है झारखंड में है और वहाँ से ये लड़का आया है, काफ़ी यंग है, एक्सप्लोसिव है, यानी एक्सप्लोसिव बैटिंग में बड़ा एक्सप्लोसिव है और काफ़ी कुछ उनके जो बैटिंग का स्टाइल है कुछ डिफरेंट है। लेकिन बहुत जल्द दुनिया को समझ आ गया कि ये खिलाड़ी सिर्फ स्टाइल नहीं सब्सटेंस भी रखता है। 2005 में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट सीरीज में अपनी बैटिंग का इम्प्रेशन जो था ना दोस्तों वो छोड़ा और वो सबको मुतासिर किया। टेस्ट क्रिकेट में धोनी ने 90 मैचेस खेलकर 4876 रन बनाए और उनका हाई स्कोर 224 था जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया। टेस्ट करियर में उनके नाम 6 सेंचुरीज और 33 फिफ्टीज रही। लेकिन धोनी की असली पहचान बनी वनडे क्रिकेट में। 350 ओडीआईस में धोनी ने 10773 रन स्कोर किए। उनका बैटिंग एवरेज 50 से ज्यादा रहा और स्ट्राइक रेट तकरीबन 87.5 था। उनके नाम 10 सेंचुरीज और 73 फिफ्टीज हैं और उनकी सबसे मशहूर ओडीआई इनिंग्स में से एक थी श्रीलंका के खिलाफ 183 नॉट आउट जो विकेट कीपर के लिए उस वक्त एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन धोनी की बैटिंग का सबसे यादगार चैप्टर आया 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ 275 रन का टारगेट मिला। धोनी ने प्रेशर में खुद ऊपर आकर बैटिंग की, यानी अपने आप को प्रमोट किया बैटिंग ऑर्डर में और 91 नॉट आउट की मैच विनिंग पारी खेली। That was a captain's knock. और फिर वो मोमेंट, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट और गेंद स्टेडियम की बाउंड्री के पार। इंडिया 28 साल बाद वर्ल्ड कप चैंपियन बना और धोनी वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने वाले कप्तान बन गए। लेकिन दोस्तों धोनी की ग्रेटनेस सिर्फ बैटिंग तक महदूद नहीं थी। 2007 में उन्हें इंडिया की T20 टीम का कप्तान बनाया गया। ये सुनिए, ये वो वक्त था जब T20 क्रिकेट अपनी शुरुआत के दौर में था। साउथ अफ्रीका में पहला T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जो हुआ था और धोनी ने एक यंग इंडियन टीम को लीड किया। इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त देकर इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। यहीं से दुनिया ने धोनी को एक नए नाम से जाना, कैप्टन कूल। 2008 के बाद धोनी इंडिया के ऑल फॉर्मेट कप्तान बन गए। उन्होंने इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर वन रैंकिंग तक पहुंचाया और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी जबरदस्त सक्सेस हासिल की। उनकी कप्तानी में इंडिया ने 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 ODI वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ओवरऑल इट वाज अ फ्रॉम अ कैप्टन्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इंडियन कैप्टन्स पॉइंट ऑफ व्यू इज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स। यानी धोनी क्रिकेट हिस्ट्री के वाहिद कैप्टन बने जिन्होंने ये तीन मेजर ICC व्हाइट बॉल ट्रॉफीज जीती हैं। T20 इंटरनेशनल्स में धोनी ने इंडिया के लिए 98 मैचेस खेले और 1617 रन बनाए। उनका हाई स्कोर 56 था। लेकिन T20 क्रिकेट में उनकी वैल्यू सिर्फ बैटिंग से नहीं बल्कि विकेट कीपिंग, फिनिशिंग और प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी से थी। विकेट के पीछे भी धोनी एक मास्टर थे। उनकी लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग्स और उनका यूनिक ग्लोव वर्क बैट्समैन के लिए नाइटमेयर था। ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने 123 स्टंपिंग्स किए जो उनकी विकेट कीपिंग लेगेसी को समझने के लिए काफी है। और फिर आती है आईपीएल की कहानी। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ धोनी 2008 से आईपीएल का सबसे आइकॉनिक फेस बन गए। उनकी लीडरशिप में चेन्नई ने कई टाइटल्स जीते और धोनी खुद आईपीएल के सबसे
सक्सेसफुल कप्तानों में शामिल हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी धोनी का फैन बेस कम नहीं हुआ। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी शायद ये थी कि वो प्रेशर के वक्त घबराते नहीं थे, चाहे वर्ल्ड कप फाइनल हो, लास्ट ओवर हो या एक बहुत ही डिफिकल्ट रन चेस, धोनी हमेशा काम नजर आते थे। इसीलिए उन्हें सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक फिनिशर, विकेटकीपर, कप्तान और लीडर के तौर पर याद किया जाएगा। एमएस धोनी ने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, ट्रॉफीज, रिकॉर्ड्स, मेमोरेबल इनिंग्स और सबसे बढ़कर एक लेसन, प्रेशर में भी अपना दिमाग ठंडा रखो, अपने फैसले पर भरोसा करो और आखिरी गेंद तक फाइट करो। यही था कैप्टन कूल एमएस धोनी। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का स्पोर्ट्स हाईलाइट का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे नी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। जैसे हमने कहा था, कल भी बात करी थी इस बारे में कि अभी जो टेक अपडेट है ये हमारी रह गई थी, पेंडिंग थी, और इसमें रिव्यू मैं कर रहा हूँ लगातार। और आईफोन के फोल्ड के बारे में, डुओ के बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी बात करूंगा उसके प्रो और प्रो मैक्स के बारे में। देखो, जो बेस मॉडल है आईफोन 18 का, वो बड़ा बाकमाल है। कलर्स इस बार लॉन्च किए गए हैं, जो बर्गंडी कलर आप देख रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी कतर टाइप, तो अच्छी बात है कि कतर का उसमें कलर है। उस जोश में आके सबसे ज़्यादा बिक्री मुझे लगता है कि आईफोन के इस नए रंग की कतर में होने वाली है, डेफिनेटली। ये तो मेरे से लिखवा लो आप। अब ज़रा एक एक सीरियस रिव्यू पर आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो लोग देखते हैं, जो कि सिर्फ नहीं देखनी चाहिए, मगर सिंस एवरीबडी इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट कैमरा कैसा है, तो सबसे पहले कैमरे के बारे में बात कर लेता हूँ। कैमरे के अंदर जो आईफोन में इस बार फीचर्स दिए गए हैं, बहुत अच्छे हैं। हालांकि बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो बाकी फोन्स ऑलरेडी कर चुके हैं, मगर आईफोन, सिंस आईफोन ये कर रहा है, तो थोड़े अलग अंदाज से कर रहा है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने अपने एआई को इंटीग्रेट किया है फोटो की प्रोसेसिंग में। जैसे कि अगर आप अपने फोन में कोई फोटो खींचते हैं और उसके बाद उसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट, थोड़ा सा स्लाइटली राइट करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। दे आर कॉलिंग इट अ न्यू फीचर, हालांकि बाकी लोग कर चुके हैं। आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल अबाउट इट, बट दे आर डूइंग इट नाउ, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दे आर नाउ यूजिंग द अपर्चर। अपर्चर बेसिकली कैमरा का वो फीचर जिसमें लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, कितनी लाइट आए कितनी लाइट ना आए, विच इज नाउ ऑन एप्पल, जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, इट्स फाइनली देयर। बैटरी को उन्होंने इंक्रीज किया। इस बार का जो प्रो मैक्स है, आईफोन 18 का प्रो मैक्स, उसकी बैटरी इज लार्जर देन एनी अदर फोन इन द लाइनअप, और पिछली बार से कहीं गुना ज्यादा है। सो आई एम रियली हैप्पी दैट दिस टाइम दे हैव केप्ट इट हायर। तो ये लाइनअप डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ प्रो मैक्स की और पिछले वाले एक प्रो मैक्स से कंपेयर करूँ 17 से, तो डेफिनेटली अ बेटर मॉडल। और इस बार के प्रो और प्रो मैक्स में उन्होंने डिफरेंस जो रखा है वो एक्चुअल डिफरेंस है, वरना पहले मुझे कहना पड़ता था कि यार कोई फर्क नहीं है, स्क्रीन बढ़ी है और क्या करोगे, लेकिन इस बार एक्चुअल में फर्क है। तो मेजर फर्क, जैसे मैंने कहा कि बैटरी का है, दूसरा मेजर फर्क है साइज का, एंड तीसरा जो उन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस किया वो कलर्स, एंड देयर एआई इज नाउ बीइंग रूटेड इन विद इन द फोन मोर इन अ बेटर वे बेसिकली। तो अभी सीरी कैसा काम करेगा, वो हैंड्स ऑन जब फोन हाथ में आएगा तब उसके बारे में अच्छे से रिव्यू किया जा सकता है। अभी जो उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिस कर दिए विद द न्यू चिप, उसमें उन्होंने कहा है कि मच मोर कूलेंट इस बार फोन होगा, गर्म वरम नहीं होगा, तो ये बातें कर तो दी है उन्होंने। 35% बैटरी की हाइक के बारे में भी बात कर दी है। आई एम नॉट सेइंग डू नॉट ट्रस्ट देम, मगर एप्पल कई मरतबा कुछ चीजें बहुत ही 10 गुना आगे जाके अपनी चीजों को बेचता है, तो उसमें से कितना ट्रस्ट करना है कितना नहीं, आई कैन नॉट से, मगर जो कमिटमेंट के हिसाब से है तो डेफिनेटली दिस कैन बी द बेस्ट लाइनअप। मतलब आईफोन 18 कैन बी द बेस्ट लाइनअप आफ्टर सो मेनी ईयर्स। मुझे याद है जब 5S लॉन्च हुआ था, सबके सब दीवाने हो गए थे। आपको याद है 5S आया था, जो नया मॉडल आया था, लोग दीवाने हो गए थे भाई, हर किसी के हाथ में था। उसके बाद से वो रेज एक मरतबा देखने को मिला था जब आईफोन ने अपना थोड़ा डिजाइन बदला था, 10 जब आया था बीच में, और उसके बाद से देखने को नहीं मिला। 11 हालांकि बहुत बिका, फिर वो एक स्लाइड ड्रॉप आया। अभी 17 के डिजाइन के बाद, ऑरेंज के बाद, वो उम्मीद जागी है, एंड 18 ने डेफिनेटली वो काम किया जिसका लोगों को इंतजार था। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आईफोन क्या करेगा वो तो मार्केट में आके पता लगेगा। द बेस्ट पार्ट इज के रेट जो हैं आईफोन्स के, प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ाए गए हैं, दोनों के बीच में $100 का फर्क है अगर आप प्रो और प्रो मैक्स की बात करें। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी जेनरस है एप्पल के लिहाज से, बिकॉज उनका स्टैंडर्ड जो है ना शायद कहीं ना कहीं इजाज़त नहीं देता है कि वो सिर्फ $100 का फर्क छोड़े। बस इन दी हैव डन इट, गुड जॉब डन एप्पल। साथ साथ मैं जो हूँ बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में एप्पल की बात करता रहूँगा, मगर आपको अगर हैंड्स ऑन अभी तक कोई रिव्यू मिल जाए तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। FM107 Qatar, ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, एंड प्लीज आइए, जरा इस बारे में बात करनी बड़ी जरूरी है। ऑफ कोर्स वी आर लेट एट द पार्टी, लेकिन रिव्यू तो करना बनता है। दिस वाज द अपडेट, मैं दुहा वाला कबीर FM107 पे, एंड स्टे ट्यून्ड।
1: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने, और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर, हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए. ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: दिल से देसी.
1: स्कैम अलर्ट. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज नए जमाने के नए स्कैम के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं. और उम्मीद करता हूं कि इस स्कैम के शो से आप सीख रहे होंगे और साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर्स या फिर आप नए स्कैम से बचने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर ये शो सुनकर बच भी रहे होंगे. तो आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये आपके साथ किसी भी दिन हो सकता है, क्योंकि ये ग्रोसरी के कूपन या ग्रोसरी कूपन से रिलेटेड एक स्कैम है. वेल, इसका नाम है फेक ग्रोसरी कूपन स्कैम. काम कैसे करता है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं. स्कैमर्स जो बहुत ही ज्यादा फेमस शॉप्स होती हैं, स्टोर्स होती हैं, उन लोगों का नाम लेके आपको फेक डिजिटल कूपन्स या $100 के या 100 कतरी रियाल के या यू नो हजारों रुपए के फ्री ग्रोसरी वाउचर्स का लालच देते हैं. ये ऑफर्स सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स या स्पैम ईमेल्स के जरिए शेयर किए जाते हैं. जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपसे एक सर्वे फिल करने को कहा जाता है, जिसमें आपका पूरा नाम, घर का एड्रेस और फोन नंबर मांगा जाता है. आखिर में एक छोटी सी शिपिंग फी पे करने के लिए आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगी जाती हैं. फ्री फूड मिलने के बजाय या फ्री की डिटेल्स या फ्री कोई चीज मिलने के बजाय या वाउचर मिलने के बजाय आपके कार्ड पर हिडन मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस लग जाते हैं और आपका अकाउंट धीरे धीरे खाली होता रहता है. लेकिन इस स्कैम से बचने के कुछ तरीके हैं जिससे आप बच सकते हैं. वेल, अगर आप इस तरह के स्कैम में सेफ रहना चाहते हैं तो इन कुछ ऑफिशियल या कहें इन कुछ टिप्स को फॉलो जरूर करिए. सबसे पहला है ऑफिशियल वेबसाइट को या एप्स को चेक करें. किसी भी ऑफर या कूपन पर आंख बंद करके कभी भी ट्रस्ट ना करें. हमेशा उस ग्रोसरी स्टोर जैसे कि आपके आसपास जो नजदीकी आपके स्टोर है उस स्टोर पर जाएं या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर जाकर ही चेक करें कि क्या सच में ऐसा कोई ऑफर चल रहा है जहां पर वाउचर वगैरह मिल रहे हैं. उसके अलावा यूआरएल्स और लिंक्स को केयरफुली वेरीफाई करें. स्कैमर्स आमतौर पर फेक वेबसाइट्स बनाते हैं जो बिल्कुल असली जैसी दिखती है. हमेशा चेक करें कि यूआरएल सही है या नहीं. असली वेबसाइट हमेशा से https/ से शुरू होती है और उनका डोमेन नेम सिंपल और करेक्ट होता है. पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा शेयर कभी भी किसी से ना करें. ये सबसे ज्यादा अहम बात है और इस पर ही आपको फोकस करना है. कोई भी जेन्युइन कंपनी फ्री कूपन देने के लिए आपसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या CVV नंबर या बैंक की डिटेल्स नहीं मांगता. और अगर ऐसा करे तो आप खास तौर पे बैंक पे शिकायत भी कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई सर्वे आपसे सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो ये आप समझ जाइए कि वो 100% स्कैम है. उसके अलावा हर बार जो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ वो है टू गुड टू बी ट्रू. ऐसा कोई भी ऑफर जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे कि यार वो सच हो ही नहीं सकता, ऐसे में हमेशा आपको शक की निगाहों से देखना चाहिए. अगर कोई ऐड या पोस्ट आपको सिर्फ एक सिंपल सर्वे भरने के लिए या फिर सिंपल से काम को करने के लिए हजारों डॉलर, कतरी रियाल या 500 तक का फ्री वाउचर वगैरह दे रहा है तो समझ लें कि ये एक ट्रैप है. इंटरनेट पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, ये सच है. उसके अलावा एंटीवायरस और स्पैम फिल्टर का यूज करें. अपने मोबाइल और लैपटॉप में एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें. अपने ईमेल अकाउंट का स्पैम फिल्टर ऑन रखें ताकि ऐसे फिशिंग और स्कैम ईमेल्स आपके इनबॉक्स तक पहुंच ना सके. लेकिन फिर भी अगर आपके साथ इन सब बातों को या फिर स्कैम से बचने के लिए जो सॉल्यूशंस मैंने दिए उन सब के बावजूद आपके साथ कभी स्कैम हो जाए तो क्या करना है, बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें. अगर आपने गलती से फेक वेबसाइट पर कार्ड डिटेल्स डाल भी दी हैं तो तुरंत अपने बैंक को कॉल करके कार्ड ब्लॉक करवाएं. पासवर्ड चेंज करें अपने ऑनलाइन बैंकिंग और इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के पासवर्ड को फौरन बदल दें. रिपोर्ट करें इस फ्रॉड की कंप्लेंट अपनी लोकल साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करें ताकि बाकी लोग इससे बच सके. तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स हैं जिनके बारे में हमने बात करी, और इन सॉल्यूशंस को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% श्योरिटी है, या फिर अगर आपके पास से पैसे कट भी जाएं तो बैंक को इत्तला करना, पासवर्ड चेंज करना, साइबर सेल में रिपोर्ट करना, ये कुछ ऐसी चीज हैं जिनसे आप आसानी से बच सकते हैं फ्रॉड होने से, आपके पैसे दोबारा आ सकते हैं। ऐसे के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी से नेक्स्ट यानी कि कल एक नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
4: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
5: स्मार्ट मनी।
6: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स की। माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट है? देखिए माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स आप जानते हैं कि छोटे छोटे अमाउंट्स और उनको रेगुलरली इन्वेस्ट करना ताकि वक्त के साथ इन्वेस्टमेंट ग्रो हो सके। इसमें आपको हजारों या लाखों रुपयों की जरूरत नहीं होती, आप छोटी सी रकम जैसे 10, 20, 50 या 100 डॉलर से भी शुरुआत कर सकते हैं। माइक्रो इन्वेस्टिंग का मकसद लोगों को इन्वेस्टिंग की आदत डलवाना और धीरे धीरे उनके वेल्थ को बिल्ड करना है। देखिए आजकल कई इन्वेस्टमेंट एप्स और प्लेटफॉर्म्स फ्रैक्शनल शेयर्स की सहूलियत देती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी का एक शेयर बहुत महंगा हो तो आप उस शेयर का छोटा हिस्सा भी खरीद सकते हैं। अब माइक्रो इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है? देखिए माइक्रो इन्वेस्टिंग का बेसिक आइडिया ये है कि आप छोटे अमाउंट्स को बार बार इन्वेस्ट करते रहते हैं, और ये अमाउंट्स डेली, वीकली या फिर मंथली हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अली हर वीक 20 कतरे रियाल इन्वेस्ट करता है, एक मंथ में 80, एक साल में 960। अगर ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी जनरेट करे तो टाइम के साथ अमाउंट और ज्यादा बढ़ सकता है, और इस प्रोसेस को लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। देखिए माइक्रो इन्वेस्टिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये फंड होते हैं जो कोई भी कंपनीज में जो है वो इन्वेस्ट करता है। अगर आप मंथ में 50 कतरियाल किसी ETF में इन्वेस्ट करते हैं जो 100 कंपनीज का पोर्टफोलियो रखता है, इससे आपका रिस्क कम हो जाता है क्योंकि पैसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं रहा, और आपकी इस तरह से छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। वहीं एक और चीज है फ्रैक्शनल शेयर्स। मान लीजिए किसी फेमस कंपनी का एक शेयर 1000 कतरी रियाल का है, अगर आपके पास सिर्फ 100 कतरी रियाल है तो आप उस शेयर का 10% हिस्सा खरीद सकते हैं, और ये हैबिट कहलाती है माइक्रो इन्वेस्टिंग। वहीं एक और टेक्निक है राउंड अप इन्वेस्टिंग। कुछ ऐप्स हर परचेज को राउंड अप करती हैं और बाकी पैसा इन्वेस्ट कर देती हैं। आप कॉफी पीते हैं जो कि है 8.5 कतरी रियाल की, आप अमाउंट को 9 कतरी रियाल कर देते हैं और 50 कतरी रियाल इन्वेस्ट हो जाते हैं आपके। और देखा जाए तो 0.50 कतरी रियाल जो है वो आपके इन्वेस्ट हो गए। रोजाना ऐसा करने से महीने के आखिर तक अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट हो जाती है। वही एक और टेक्निक है गोल्ड माइक्रो इन्वेस्टमेंट। आप फिजिकल गोल्ड खरीदने की बजाय छोटे अमाउंट से डिजिटल गोल्ड या गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर मंथ 25 कतरे रियाल गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना, और इस तरह धीरे धीरे गोल्ड एक्सपोजर मिलता जाता है। देखिए माइक्रो इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें ये एक बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन इसका फायदा तब मिलता है जब आप 5, 10 या 15 साल तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहते हैं। इसके बेशुमार फायदे हैं। लो स्टार्टिंग अमाउंट है ये, बिगनर्स के लिए बड़ा आसान है, सेविंग हैबिट्स को डेवलप करता है, डाइवर्सिफिकेशन मिलते हैं, वहीं लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना आसान हो जाता है।

दोस्तों जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगी कि माइक्रो इन्वेस्टमेंट एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप छोटे छोटे अमाउंट्स को रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, चाहे ETF हो, फ्रैक्शनल शेयर्स हो, गोल्ड फंड्स हो। माइक्रो इन्वेस्टिंग बिगनर्स के लिए इन्वेस्टिंग की दुनिया में एंट्री का एक बहुत ही आसान तरीका है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कंसिस्टेंसी। जी हाँ, छोटे अमाउंट भी अगर रेगुलरली इन्वेस्ट किया जाए तो वक्त के साथ बड़े इन्वेस्टमेंट बन सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक

0: अस्सलामुअलैकुम वबरकातुहू साथियों, हाँ जी कैसे हैं जी? गोभी दें फुल्लो, जरा आ जाओ खुशबू लगा के। और इस वक्त एफएम 107 की घड़ी में बज रहे हैं 10:02। मैं हूँ सफा और माविश भी हमारे साथ ही हैं, कहीं नहीं है, यहीं पर हैं।
1: और अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सब लोगों के? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मेरी आवाज़ कम आ रही है ना?
0: मुझे माविश, मैं दिल से सुनती हूँ आपकी आवाज़, फुल ऑन आती है मुझे।
1: अब कैसी है?
0: अब थोड़ी सी बहुत ज्यादा आ रही है।
1: अब ज्यादा आ रही
0: है? मैंने बहुत नहीं, मुझे बहुत ज्यादा दिल पे लगा लिया क्या?
1: एक मिनट, अब मैं बोलती हूँ। नहीं नहीं, सही है, अभी हाँ,
0: सही है। हाँ, चलो ठीक है भाई।
1: चले जी, तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पे और उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। यू मैटर्स में आ गए और यू मैटर में आ गए बेसिकली, और इसके साथ 10:02 हो रहे हैं, 11 बजे तक हमारा आपका साथ रहना है। और आज ये वाली कैफियत रही है मेरी सफा कि मुझे लग रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है ना, कुछ तो मसला है, कुछ तो
0: नहीं चल रहा,
1: मतलब मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ या मैं बीमार हो रही हूँ।
0: मुझे मेरा exactly
1: यही वाला हाल है।
0: ये जो गर्दन है ना, ये मेरी यूं नहीं हो रही, लेफ्ट राइट नहीं जा रही।
1: पूरे रास्ते ना मैं वैसे क्या करती हूँ, मैं कुछ ना लगा कर सुनती भी आती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं सुना, क्योंकि सुनने से क्या होता है, नींद आ जाती है,
0: झपकी आती है।
1: तो आज मैं पूरे रास्ते मतलब अपने आप से बातें करती गई हूँ, मैं विश पहुंचना है थोड़ी देर की बात है बस। आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बस कुछ और नहीं है।
0: हाल था आज, मैंने पता है क्या किया आज? मैंने वो हरकत की जो मैंने कभी नहीं की। मुझे इतनी शदीद नींद आ रही थी कि मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है, मैंने अपना मूड धोया
1: कर चुकी हूँ रमजान में,
0: मूड धोया है। मैंने कहा भाई लगेगी गाड़ी, लगेगी। मैं 5 मिनट में लिटरली रोड पे साइड पे खड़ी रही, मैंने कहा गाड़ी चलाऊं नहीं चलाऊं,
1: क्यों हो रहा है ये भी नहीं पता मुझे। जब सो गई थी रात में,
0: मैं 8:30-9 बजे सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला।
1: मौसम बदल रहा है, चक्कर ये ऐसा नहीं है कि नींद पूरी नहीं हुई।
0: और कल मेरी हालत ऐसी थी कि मैं, मुझे समझ में नहीं था, मैं, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, जिंजाकुटा बनी हुई थी मैं,
1: वो तो मैंने देखा था।
0: सारा काम कर लिया, खाना बना लिया, घर साफ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो अजीब बाइपोलर पर्सनैलिटी ना मेरे अंदर से निकल कर आई, जिसने पहाड़ खोद दिए।

0: फिर भी समझ में नहीं आता, कुछ कुछ था जो मिसिंग था.
1: हाँ तो या तो फिर वो उसकी थकन होगी तुम्हें,
0: पता नहीं क्या था भाई.
1: अच्छा कल मेरे पास इतना भी काम नहीं था, लेकिन कल मैंने जब बस रिकॉर्डिंग से फारिग हुई ना यहाँ पे 1 बजे, तो उस वक्त ही मुझे लक पता गया था, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और मुझे अंदाजा हो गया था कि यार मतलब गला तो खराब है. तो उस वक्त मुझे लगा शायद बहुत बोलने की वजह से ये हुआ है.
0: लेकिन देयर इज ऑलवेज गुड इन समथिंग, और वो गुड पता है क्या है?
1: यस,
0: मौसम चेंज हो रहा है.
1: मौसम चेंज हो रहा है, बस अल्लाह करे हो जाए. आज भी सुबह इतनी ह्यूमिडिटी मतलब शदीद वाली, ये खुश करता है. अब मैंने देखा यहाँ पे कोई स्टार दोबारा भी होता है. पता है मुझे सितारों के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन कतर आके मिली है, इससे पहले मुझे कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं
0: थी. अच्छा, ये सितारे पहले जमाने में भी लोग इन्हीं को देख कर रस्ते भी ढूंढते थे, मौसम भी पता चलते.
1: अच्छा मौसम का नहीं पता था मुझे, रस्तों का पता था
0: मुझे. खुद ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ टाइम पहले जाकर पता चला है कि क्योंकि अर्थ की रोटेशन होती है ना, जो सितारे वहीं पर रहते हैं, ये जो अर्थ घूम रही होती है उससे फिर वो उस रोटेशन में
1: उस जगह नजर आ जाता है,
0: फिर पता चलता है अच्छा ये रोटेशन चेंज हुई है, अर्थ इस जगह पहुंचा है. और वो टिल्ट की वजह से फिर वो जब हमें नजर आते हैं तो हमें चलता है अच्छा मौसम है ये वाला होने वाला.
1: पहले सुहेल नजर आया, जान में जाना ही, लेकिन सुहेल हमेशा बस खुश करता है, उसके बाद करता कुछ नहीं है.
0: धोखा दे गया. नहीं नहीं, वो
1: अब आया दोबारा.
0: दोबारा
1: हां, अभी मैंने देखा नया कि स्टार दोबारा नजर आ गया.
0: सो विंटर इज
1: दोबारा, तुम ही कुछ कर देना.
0: तो भाई मौसम चेंज हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीकेंड तो अल्लाह करे इंशाल्लाह
1: बस अल्लाह ताला मतलब तबीयत ठीक रहे. अभी आके मैंने पहले ना दरियाफ्त किया लोगों से कि पैनाडोल है किसी के पास, तो पता चला कि नहीं है. मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, मतलब पैनाडोल खा के सोना पड़ता है ना.
0: सरवर भाई के खजाने में होगी.
1: होगी, वो सरवर भाई निकल गए, मैंने अभी भी देखा.
0: मुझे पता है खजाना कहाँ है. वो जो हमारा हमारे ना ऑफिस टेबल के जो मॉनिटर है ना उसके पीछे
1: भाई लोगों के पास बड़े बड़े खजाने होते हैं. किसी के पास बिस्किट्स का खजाना है, किसी के पास जो है वो दवाइयों का खजाना है, किसी के पास
0: दवाइयों का खजाना है,
1: किसी के पास सुपारियों का खजाना है.
0: आप मेरा ड्रॉर खोल लें, आपको सारे खजाने मिलेंगे.
1: एग्जैक्टली. तो खैर जी हम आ गए और आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये बिल्कुल भी नहीं है.
0: हाँ टॉपिक ये बिल्कुल भी नहीं है जिसके हमने गप्पे मार लिए. देखो भाई आज का टॉपिक ये है एक्सेप्टेंस की पावर जो होती है ना, वो सब कुछ जो जो चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते ना उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. ये सोचते रहना कि हर चीज मेरे बस में है इज गोइंग टू मेक यू ट्रेवल टू अ बस विच विल लीड यू टू एंजाइटी. तो द पावर ऑफ एक्सेप्टिंग वॉट वी कैन नॉट चेंज. और ये बहुत बड़ा माइंडसेट है भाई.
1: यस यस यस यस,
0: ये बहुत बड़ा माइंडसेट है. ये बोलने में बहुत हल्की सी बात लगती है कि अच्छा नहीं नहीं हो सकता ना इसका कुछ, तो हमारे बस में थोड़ी है. ये बोलना बहुत आसान लगता है लेकिन इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है भावेश.
1: ऐसे ही
0: लोगों के गले में ना हड्डी अटक जाती है ये एक्सेप्टेंस करते हुए.
1: एक्सेप्टेंस का ही है सारा का सारा मसला. आप देखो जब तक ना डिनायल फेज में रहते हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, तो उस वक्त तक आप परेशान रहते हो. आप स्ट्रेस में रहते हो. आपको समझ में नहीं आ रहा होता, आपको बेचैनी होती है, आप ना एक अजीब सी अंदर जो पैनिक वाली सिचुएशन होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि आप डिनायल में होते हो. जैसे ही आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाती है ना तो आप पुरसुकून शांत.
0: एग्जैक्टली मैं ये बात मानती हूँ, मैं ये बात मानती हूँ.
1: समंदर में जो ना वो तुकियानी खत्म हो जाती है.
0: क्या क्या
1: नहीं समझ रहे. समंदर में तुकियानी खत्म हो जाती है. तुकियानी नहीं पता, तुकियानी का मतलब होता है वो जो लहरें जो है ना बहुत ऊंची ऊंची मौजे जो है उछल उछल के जो
0: आराम से सीधा सा बोल सकती थी ना लहरें जो है वो.
1: अरे यार मैं मतलब देखो मतलब समंदर में तुकियानी खत्म हो जाती है एक लफ्ज आपको बताना पड़ेगा जो लहरों का. अच्छा इससे मुश्किल बोलूं, लहरों का मधु जजर जो है ना वो जरा मधम पड़ जाता है.
0: नहीं मधु जजर मुझे पता है.
1: ओए होए होए होए होए
0: ये पता था. ये पता चल गया. मुझे तो ऐसा लगा किसी किसी की कास्ट बोल दी है आपने कि क्या बोल दी है, सरनेम बता दिया किसी का.
1: तुकियानी किसकी कास्ट होती है
0: मुझे क्या पता लगा.
1: जब वैसे खैर आप लोग एक्सक्यूज कीजिएगा हमें, जब तबीयत खराब होती है ना मेरी तो मैं बहुत बोलती हूँ. खैर जी कोई कॉलर है. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
0: जी कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है दादी अम्मा.
0: दादी अच्छा भी नसीम भाई कैसे हैं? ठीक है.
2: जिस तरह समुंदर में तुगियानी खत्म नहीं हो सकती उसी तरह आप दोनों की गप्पा भी खत्म नहीं हो सकती.
1: समुंदर में जैसे तुगियानी खत्म नहीं हो सकती ऐसे ही आप दोनों की गप्पे भी खत्म नहीं हो सकती.
0: देखिए हम
1: अब ये इनको तुगियानी की ना आपको डिक्शनरी से निकाल के देना पड़ेगा कि भाई ये है क्या क्या होता है. सबको पता है तुम्हें नहीं पता. लुगत
0: डिक्शनरी ढूंढेंगे. डिक्शनरी
2: समुंदर में जो थपेरा आता रहता है ना
0: वो बड़ी बड़ी लहरें.

0: उसी को
1: तो ज्ञान है
2: बोलते समझ में आ गई लहरें पते
1: हाँ नसीम भाई की डिक्शनरी से हमने बता दिया समझ में आ गई नसीम भाई अच्छा भाई नसीम भाई ये बताएं कि आज जो है वो आप

0: कर सकते राइट
1: जी।
0: सही हो गया।
1: जैसे दादी अम्मा की बात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
2: देखो जरा
0: घूम फिर
2: सही है नसीम भाई, ठीक है गीले तौलिए में लपेट के मार रहे हैं बस। सही है सही है, मेरा भी टाइम आएगा आएगा, अभी रुके मुझे जरा कुछ रिबटल आए मुझे, मैं फंस गई मैं इस बात में।
1: आप जब तक बाल कलर कराएं
0: तुम्हारी तुम्हारी सारी राज जो है ना ऑनियर बोल दिया करो
2: भाई। देखिए मुझे मेरे बाल बड़े पसंद हैं, मेरे लोग कहते थे कि ओ वाइट बाल, मैं कहती मैंने कहीं सुना था जितना अम्मा अब्बा प्यार करते हैं ना किसी औलाद से उतने ज्यादा वाइट बाल होते हैं।
0: नेकी की भी निशानी होती है।
2: देखा मैं कितनी नेक हूँ, मैं इतनी नेक हूँ, मैं कहती हूँ अपने बाल ऐसे ही छोड़ दूं जैसे हैं, लेकिन कोई मुझे करने नहीं देता।
0: हाँ
2: हाँ
0: कोई चाहता नहीं है तुम नेक बन जाओ।
2: हाँ ना दुनिया चाहती नहीं है कि मैं शरीफ हो जाऊँ।
1: बहुत शरीफ
2: मैं वही तो मैं कह रही हूँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि मुझे कोई मतलब कोई चाहता ही नहीं है मेरी शराफत दिखे।
0: अंदर से तो हूँ बाहर नहीं आ पा रही।
2: बाहर नहीं आ पा रही। लॉक लगा लॉक।
0: चलिए नसीम भाई क्या कहना चाहेंगे, इन्होंने कुछ कह दिया कि नहीं?
2: इन्होंने कहा कि हाँ इंसान को एक्सेप्टेंस होनी चाहिए इस चीज की कि हर चीज के ऊपर
0: कंट्रोल नहीं कर सकते। राइट राइट राइट। चले नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी।
1: शुक्रिया आप लोगों के,
0: आप लोगों आपका भी शुक्रिया। थैंक यू यानी आप लोगों का भी शुक्रिया। आज कुछ अजीब ही जोन चल रहा है भाई। तो खैर जी हो क्या गया है, एक और कॉलर आ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सब कॉलर्स इतने आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं?
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
3: खैरियत?
0: जी बिल्कुल खैरियत। अब तो ये सैयद भाई लग रहे हैं।
3: पहचान लिया मैडम आपकी आवाज़ नासाज थी आपकी तबीयत।
0: हाँ मतलब पता नहीं क्या नासाज है कि नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन कुछ तो है, कुछ है गड़बड़। आवाज लग रही है आपको मेरी? वो बैठी बैठी लग रही है
3: स्टूडियो में। जी स्टूडियो में बैठ के दो गरम कड़क मंगा लीजिए भाई, महमेश खान को कड़क चाहिए बोल के और दो लौंग डाल के उसका पिए।
2: लौंग डाल के इतना मजे की चाय बनती है ना।
0: जब मैं सोच रही थी मैंने उनसे पूछा ना, मैंने कहा कि आपको लग रही है मेरी आवाज, जब हम छोटे हुआ करते थे तो कोई कहता था ना आवाज चेंज हो रही है या नाक जो है ना रेड हो रही है, तो हम कितने खुश होते थे, अच्छा नाक रेड हो रही है,
2: ब्लश ऑन लगाने की इजाजत नहीं थी ना।
0: तो ये जो है ना ये छोटी छोटी खुशियां हैं, अभी भी मुझे खुशी हो रही है इस बात पे।
3: जी
0: सैयद भाई
3: आप लोग कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी।
0: आप बताएं भाई क्या चल रहा है, सब सेट है, सब कुछ ठीक ठाक है?
3: अल्हम्दुलिल्लाह सब जबरदस्त
0: ग्रेट।
3: एडमिशंस का सिलसिला चल रहा है ना बच्चियों का, अपने उसमें रीनीट हुआ था ना, फिर से बताया था, तो अभी तक काउंसलिंग चल रही है इंडिया में।
0: क्या हुआ था ना एक दफा
2: वो जो एडमिशंस का जो मसला हुआ था इंडिया में, जो अभी पिछले दिनों
3: नीट एग्जाम होता ना मेडिकल का, नीट एग्जाम हुआ था।
0: तो आपके बच्चों का चल रहा है?
3: एडमिशंस हो रहे हैं। हां जी बच्ची का।
0: अच्छा आपकी बच्ची का, माशाल्लाह माशाल्लाह
2: करेगा इंशाल्लाह।
0: चले इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर दुआ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो डॉक्टर बनने का इरादा बच्ची का?
3: इसीलिए परसों वो पूछा सब्जेक्ट का नाम लिया, सपा मैडम तो
0: आपने उसे जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे सैयद भाई वही मतलब हम सभी बड़े हो रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा होता ना कि हम इतने बड़े हो गए हैं, तो मुझे लग रहा था आपके छोटे छोटे से बच्चे होंगे।
3: मैं बहुत छोटा हूँ भाई।
0: है ना हम सब छोटे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं बस।
3: मैं छोटा हूँ भाई भी।
2: मैं भी किसी का बच्चा हूँ।
0: आपने लास्ट टाइम जिक्र किया था ना उस वक्त मुझे लगा था छोटी छोटी सी बेटियां।
2: चले
0: अल्लाह ताला जो चाहती है इंशाल्लाह जरूर हो, और अल्लाह ताला सब कुछ मतलब खैर खैरियत के साथ हो, मुस्तकबिल रोशन हो इंशाल्लाह ताला। आमीन
3: आमीन।
0: आमीन। जी सही भाई। तो क्या कहेंगे एक्सेप्टेंस?
3: एक्सेप्टेंस का बोल रहे थे सही है ना, बस चीजें बस में नहीं होती है, बट वो मतलब थोड़ा अपने आप को समझाना मुश्किल होता है दिल को दिमाग को ना, कि भाई ये अपने बस में नहीं है तो कैसा करेंगे, तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए जरूरी है, तो ताकि फिर अपन मेंटल स्ट्रेस में नहीं रहे, उसकी तरफ से नेगेटिव थॉट्स में नहीं रहे। بس میں نہیں ہے چیز, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ اللہ تو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ

0: इंसान को वही पूछने वाले हैं उतनी ही पकड़ करेंगे जितने उसके पक्ष में है, जो पक्ष में नहीं है वो नहीं करेंगे। शान में
1: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही।
0: आपके बस के बाहर से कोई चीज जा रही है और उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, अगर गलत हो रही है तो आपको तकलीफ हो रही है तो आपका बस नहीं है उस पर, मतलब आप वो नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते उसको।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे
2: मुझे भाई की बात से ना एक चीज बड़ी अच्छी याद आ गई कि जितना बस में है ना, जैसे अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के बहुत बाहर होती हैं, जैसे हम लोग अक्सर औकात कह लेते हैं कि भाई फलानी जगह पर कोई काम ऐसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि हक तलफी हो गई या कुछ ऐसा मामला हो गया, तो इंसान उसके लिए थोड़ी बहुत आवाज जितनी अपनी उठा सकता है उतनी उठाए। अल्लाह ताला ने कहा पकड़ उतनी ही होगी, ये बात बिल्कुल सही कर रहे हो, उतनी होगी जितना इंसान के बस में था,
1: बस में था।
2: आपने आवाज उठाई, आपने लोगों को बोला कि हाँ भाई ये गलत चीज है, वो उतना आपके बस में था कि आपने उस चीज के ऊपर अग्री नहीं किया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मामला ऐसे होते हैं जो इंसान के हाथ में नहीं है ना, आप कुछ कर नहीं सकते उनके बारे में, तो एटलीस्ट आपने आवाज उठाई और आपने ये डिसएग्रीमेंट दिखाया अपना, बस आपकी उतनी ही पकड़ होगी कि आपने अपने पास से क्या किया जितना आप कर सकते थे।
1: एग्जैक्टली, और इसीलिए दूसरों की ना नियतें जज करने को भी मना किया गया है कि हमें नहीं पता, अल्लाह ताला बेहतर जानता है
2: किसी की कितनी इस्तेआत है ना,
1: किसी की कितनी इस्तेआत है और सारा। और जब मतलब आप ये बात सोचो ना, अभी जैसे सैयद भाई ने कही है, तो जब मैंने पहली दफ़ा ये बात सुनी थी ना कि अल्लाह ताला इंसान की उतनी ही पकड़ करेगा जितनी उसकी इस्तेआत है, तो मुझे मतलब मैं हैरान हो गई थी इस बात पे कि आप देखो अल्लाह ताला का एक जो इंसाफ है ना, जब अल्लाह ताला अपने आप को कहता है कि वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, तो वाकई मतलब आप सोचो इस चीज़ के ऊपर ना, तो आपको अंदाज़ा होता है कि अक्सर लोग शिकवा भी कर रहे होते हैं कि हमारी तो नहीं इतनी हिम्मत है, ये है सब कुछ, तो अल्लाह ताला वैसे ही करते हैं मामला।
2: जैसे रिश्तेदारों में अक्सर औकात होता है ना कि सैयद भाई, अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपने किसी रिश्तेदार के लिए बहुत किया, फाइनेंशियल हेल्प की, इमोशनल हेल्प की, उनके बच्चों के लिए खड़े रहे, उनके लिए खड़े रहे, आखिर में जाकर वो रिश्तेदार रंग बदल जाते हैं। तो उसके लिए भी ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला, और फिर एक मामला ऐसा आता है कि फिर आप कहते हो कि नहीं बस अब इनसे ना किनारा कर लिया जाए क्योंकि हमने जितना करना था हमने उतना कर लिया। अक्सर औकात लोग ये कहते हैं कि नहीं अपने आप को ना आप पुश करते रहो हर चीज के लिए। नहीं, अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि आप जितना कर सकते हो आप उतना करो, लेकिन एक आपकी अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक आपका अपना भी मामला होता है, जितना आप कर सकते थे आप उतना करो और फिर किनारे हो जाओ।
1: एग्जैक्टली,
2: क्योंकि उनका रिएक्शन फिर क्या होता है, वो बदल जाए, वो हो जाए, तो वो आपके बस में थोड़ी है,
1: आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वही वाली बात है।
0: बिल्कुल, मगर अब कुछ बात बोलूंगा एक दो समझ जाइए, तो मगर उल्टा चल रहा माशरा में क्या है कि अब बस ऐसे से है कि जब बस में है वो आप काम कर सकते मगर नहीं कर रहे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला का डर दिल से हट गया है और दूसरों का डर आ गया है इंसानों का, तो जो बस में है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला बेहतर जानते हैं कि वो तुम्हारे बस में है या नहीं है। अब लोग आजकल ज्यादा ये बनाने की बस में, उसके बस में रहता है बट मगर अवॉइड करने के लिए भाई ये मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, तो भाई
2: खबरदार
0: हो जाओ, अल्लाह सुब्हानहू ताला पकड़ने वाले, अल्लाह को मालूम है कि वो तुम्हारे बस में है, मगर आप ये जता रहे हैं कि ये मेरे बस में नहीं है।
1: ये बात सही है,
2: इस बात पे आपकी अग्री करते हैं हम कि ये छोटी छोटी चीज़
1: कोशिश तो करो ना, उसके बाद फिर वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी कोशिश करो। फिर दूसरी चीज वो ये कि हम देखें दुनिया के साथ रियाकारी कर सकते हैं, दोगलापन कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला से तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, हमारे दिल में आने वाला ख्याल छुपा हुआ नहीं है। सीरियसली आप दुआ मांग रहे हो, कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं दुआ मांग रही होती हूँ और एक दूसरी तरफ आपका वसवसा और ये सब कुछ चल रहा होता है, तो उस वक्त वो चीज़ आ रही होती है और मैं खुद दुआ मांगते हुए सोच रही होती हूँ कि अल्लाह ताला आपको तो पता है, सब कुछ पता है, लेकिन जो है ना कहीं मैं मतलब कुछ अजीब सी, तो मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूँ, ये मैं नहीं हूँ जो ये इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं, तो ये होता है हम सब लोगों के साथ। और अल्लाह ताला वो ही है कि एक एक चीज आपका ख्याल जान रहा है, आपकी इतनी सी थॉट वो कम्प्लीट नहीं होती, वो अल्लाह ताला को पता होती है, तो आप अल्लाह ताला के साथ नहीं कर सकते रियाकारी।
0: बेशक अल्लाह सुब्हानहू ताला की वो शान है। देखिए मैडम आप सुनिए, परसों में बयान में मैं बैठा था, नमाज के बाद बैठ गया तो बोल रहे थे कि वी कैनॉट, मतलब सोच भी नहीं सकते कितनी बारीकी है। देखिए हम जो सांस लेते हैं और सांस मतलब जैसा छोड़ते हैं, जैसा सांस आ रही है और जा रही है, तो कैन यू बिलीव वो सांस अल्लाह सुब्हानहू ताला का परमिशन लेके जाती है और परमिशन लेके आती है, इतनी बारीकी।
1: सुब्हानअल्लाह
0: सुब्हानअल्लाह, अल्लाह की ये शान है। और अपन मतलब अपन तो लाइट लेके जिंदगी गुजार देते हैं।

0: sonuçta hepiniz var hemen. Onlara tek yapayınca trans zaten sırada da zikr kar, zikr kar. Çünkü jab ek sans jab wo aati hai jaati hai to Allah subhanahu wa taala ka permission leke aata hai. Aisa nahi hai ki aap sans le rahe hain.
1: Badi baat hai yaar. Waqai. Badi baat hai. Sahi baat. बहुत जबरदस्त है सैयद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू।
0: छोटी बात बोल दूंगा फिर एक मिनट देंगे तो
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक बयान में परसों बता रहे थे वहां पर जमात में कि अब जैसा देखिए आपका भी इस पे गौर किए नहीं किया नहीं मालूम, उसको एक्सप्लेन करके बताया हदीस में आया है, जैसा सूरज एक जगह दिखता है दूसरी जगह डूबता है, ये है ना, एक मुल्क में उभर रहा है एक मुल्क में गुरूब हो रहा है, राइज हो रहा है फॉल हो रहा है, सनराइज सनसेट है। तो अपने दिमाग में बचपन से एक जगह के भाई ये अपन ये कंट्री में तो अपने को सूरज सनराइज हो रहा है, वो कंट्री में अब सो गए लोग सनसेट हो रहा है। तो अल्लाह सुभान तआला की ये शान है कि अल्लाह सुभान तआला ने ऐसे फिक्स किया है ना चांद और सूरज एवरीथिंग, तो वो सूरज जब इधर डूबता है इधर से डूबता है तो अपने को दिख रहा है कि डूब रहा है मगर किसी दूसरी जगह तो राइज हो रहा है, तो पता है आपको क्या भाई वो किधर जा रहा है, वो पूछे हमको ऐसे जमात में, हम आंसर नहीं दे सके तो फिर वो आंसर दे, तो मैं भी आपको आंसर देता हूँ, वो अल्लाह सुभान व तआला को सजदा करके वापस आता है। यहाँ से जब डूब रहा है तो वो सजदा कर रहा है अल्लाह को जाके, और फिर राइज हो रहा है, फिर दूसरी जगह डूब रहा है, फिर अल्लाह सुभान व तआला को सजदा करके आता है, ये शान है अल्लाह की।
1: सही। अच्छा ये तो सुना है हमने कि अल्लाह ताला को सजदा तो करता है, सूरज भी करता है रोज़ाना और निकलता भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही है पूछ कर, लेकिन साइंटिफिकली थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाती है ना, क्योंकि
2: सूरह रहमान में जो ना बड़ा बड़ी खूबसूरती से इस चीज़ को बयान किया गया। सूरह रहमान में अल्लाह ताला यही कहता है कि हर चीज़ मीज़ान में, मैंने हर चीज़, और तुम्हें क्या लगता है कि ये जो चांद तारे सूरज हैं ये अगर हम ना होते तो ये कर पाते, ये ऑर्गेनाइज होते, हमने इन्हें एक सख्त में बांध दिया, एक मुकर्रर कर दिया इन्हें। तो वो सूरज का निकलना, दिन होना, रात होना, चांद आना, सूरज आना, ये अल्लाह ताला, वाकई में अल्लाह ताला की मर्जी है ये।
1: कैसे निज़ाम चल रहा है, वाकई आपकी अकल जो ना दंग रह जाती है इसके
2: ऊपर। इंसान नहीं कर सकता ना इसके ऊपर, कुप नहीं कर सकता, कभी कभी तो लोगों को समझना ही बड़ा मसला होता है इन चीज़ों को।
1: एग्जैक्टली यार, सही है। चले जी सैयद भाई, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन।
0: टॉपिक को चल रहा था, मैं एक दो बातें।
1: नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात, अच्छा लगता है, मतलब इंसान सोचता है उसके ऊपर, गौर फिक्र करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सैयद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉलर बस हमारे साथ होल्ड पर है, ठीक है, चले ओके, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो सिलसिला ये है कि हमारे साथ एक और कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक्सेप्टेंस क्यों ज़रूरी है? हेलो,
3: हेलो, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
3: जी, आप दोनों भाई के साथ बात कर रहे थे तो मैं भी दूसरे मोबाइल पे बिजी हो गया था।
1: जी करीम भाई,
3: जी जी जी जी, एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी करीम भाई, क्या कहेंगे?
3: क्या कहूँ, आपका मौजू अगर सुन लूंगा तो शायद उससे थोड़ी सी बात कर सकूँ।
2: अच्छा भाई, एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है इस चीज की कि इंसान हर चीज को तो काबू नहीं कर सकता ना, वी कैन नॉट चेंज एवरीथिंग।
3: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अल्लाह ताला ने कहा भी एक आयात पे है कि आप इज्तिमाई इस्लाम नहीं ला सकते, लेकिन आपको अपने हिस्से का कोशिश करना होगा। जब आप अपने हिस्से का कोशिश करेंगे, हो सकता है आपकी उस कोशिश से कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक नबी ने, मैं माजरा के साथ नाम भूल गया, 900 साल तबलीग करके 70 आदमी को राह राह पे लाया। तो हम तो बहुत कमजोर है, तो फिर इंसान जितनी भी हैं वो एक मुख्तलिफ शक्लों पे, फिक्रों पे अल्लाह ताला ने बनाया है। बस यही तो अल्लाह का एक निज़ाम है, तो फिर उन सबको लाना एक प्लेटफॉर्म पे, मैंने अपनी इस उम्र में कभी देखा भी नहीं है, और खास करके आजकल के दौर में तो हो ही नहीं सकता। एक दस्तरखान पर बैठे रहते हैं लेकिन नजरें आ गए सोच अलग है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए, अजीब एक मुसलमान जो अल्लाह ने जहां तक हमें इसका उसूल बनाया हुआ है कि आप यहाँ तक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें जब उस इंसान के ऊपर खुद गुजर जाते हैं ना, खुद, तब जाके, जिसे मैंने कल बोला था ना कि जब ये दिल बड़ा हो तब होता है ना, जब लोग उसको चाकू मारे ना, धर दे, चीर

0: सब बंदे को समझ में आ जाती है बात कि ये क्या हो रहा है। तो ये वो चीजें हम अपने हिस्से का कोशिश, जैसे कि अभी आप दोनों यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तक ये बात पहुंची जाए, फिर इस बात से हम बातें बनते हैं तो लोग आते हैं इसके ऊपर बात करते हैं, कुछ हम सीख लेते हैं कि हाँ वाकई ऐसा है। बाकी ये तो मुमकिन ही नहीं है। इंसान खता का घर है, अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है इंसान को कि वो कंप्लीट नहीं है। वो हमारे पश्तों में मिसाल है, तर डबर है, तर खाने सख्त, तर गुल नाजुक, यानी पत्थर से सख्त फूल से नाजुक। इंसान जो है पत्थर से सख्त है,
1: फूल से नाजुक।
0: देखो ना वो चीजें, आप अपने आप को जैसे भी करें जिस्मानी तौर पर आप कोशिश करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं,
1: सही,
0: बहुत कुछ। लेकिन जब हम अपने आप को हमारा, और आजकल की दौर में तो ये नामुमकिन है, क्योंकि हमारी जो जो लाइफ का जो जो डेली का जो रोजमर्रा का जो टाइम है वो तकरीबन लोगों के पास है क्या टाइम। ऐसे लोग भी आजकल दुनिया में हैं जो 7 घंटे फोन को देते हैं। आप बीच रहे क्या, 7 घंटे फोन में गए, पीछे रह गए 17 घंटे, सोना भी तो है ना, काम भी तो करना है। तो यही वो चीजें हैं कि अभी उस दिमाग को इस वक्त अभी जो कंट्रोल करना है वो किसी की बस की बात नहीं है, और खास करके एआई के दौर, अभी तो कोई किसी का बात भी नहीं मानता, जिसे कहो कि ऐसा है वो ChatGPT निकाल के उधर से पूछ रहा है।
1: लोगों को ना असल में एआई को ना टूल एज अ टूल यूज करना नहीं आ रहा, लोगों को ये लग रहा है कि एआई को ना हमारे दिमाग की जगह पे इस्तेमाल करें। हमारे दिमाग से ज्यादा कोई और चीज हो ही नहीं सकती, उसको टूल बना के इस्तेमाल करना नहीं आ रहा।
0: हमारे दिमाग ने वही चीज बनाया, लेकिन बदकिस्मती से आप उसको समझाओ नहीं, बस एआई टीवी बनाओ एआई, किसी जगह का पूछो एआई, कोई कोई बात बताए हदीस के बारे में एआई। अभी एआई की जनरेशन बन रहा है भाई, तो आप किसको समझाएंगे। पहले तो कोई थोड़ा बहुत समझ सकता था कि चलो बंदा कुछ बता रहा है, अभी तो अल्लाह माफ करे, मैं मुझे नहीं लगता।
1: इसमें भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आजकल की जो जनरेशन आ रही है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बदल नहीं सकते। हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक एक्सेप्टेंस है।
0: 2035 में वो आपको बोल देगा, बोलेगा भाई तू साइड में बैठ जा, तू आप बूढ़ा हो गया।
1: जैसे हमने पिछले वालों को बोला था।
0: यकीन जाने मैं, ये हम जो अभी तीनों यहाँ पे अभी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, ये बात मैं लिख के देता हूँ, अगर अल्लाह हमें लंबी जिंदगी दे, ये 2035 में ये बात सुनेगा अपने फैमिली में, मैं हर कोई कि भाई अभी आप थोड़ा साइड पे हो जाए, हमें काम करने दे। तो बड़ी तकलीफ की बात है।
2: चलिए वैसे पता है क्या, ये वाली चीज मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए।
1: मैं भी यही बात बोलने वाली थी
2: कि मतलब आपको साइड पे होना पड़ेगा, मतलब ये वालेकुम सलाम, मेरा ख्याल कॉल वो रखना चाह रहे हैं। अच्छा ये वाली एक्सेप्टेंस जो है ना सफाई, ये होनी चाहिए कि हमें ना डेफिनेटली दूसरे लोगों ने रिप्लेस करना है।
1: अच्छा ये एक्सेप्टेंस पिछली जो हम कहते हैं ना जनरेशन, उसके अंदर नहीं थी, उनके अंदर ये था कि हमने 30-40 साल या जब तक जिंदा है तब तक इसी सीट पे ही उठना है।
2: एग्जैक्टली
1: ठीक है, ये एक्सेप्टेंस मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन में होगी, होगी और हमसे आगे वालों में और ज्यादा होगी।
2: एग्जैक्टली मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि आपको ये रियलाइज करना चाहिए वाली एक्सेप्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका ना रोल चेंज होता है हर जगह पे। सिर्फ ऑफिसेज के हवाले से बात नहीं कर रहे हम घरेलू लाइफ के हिसाब से भी बात कर रहे हैं। अगर आप देखो ना हमारे जो बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये होता है कि यार मतलब लोग ना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं एक जगह पर पहुँचाते हैं, और उसके बाद फिर वो समझते हैं कि यार अब हमने अपनी ज़िंदगी की मेहनत कर ली, अब हमने बैठना है तख्त के ऊपर और हमारे सामने जितने भी लोग होंगे वो नौकर होंगे, अब हम जो मतलब कहेंगे वो होगा और अब ये रात चलेगा।
1: और फिर तो, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी आ जाती है मां बाप की उसके अंदर।
2: तो वहां ये वाली जो चीज है ना, ये थोड़ी सी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हर बंदे का अपना वक्त होता है। मैंने देखा है ऐसा कि वो बहुओं के साथ जो कॉम्पिटिशन हो रहे हैं कपड़ों के ऊपर और चीजों के ऊपर कि उसने जो लेना है वो आपने लेना है। एग्जैक्टली, तो ये वाली एक्सेप्टेंस अगर आप में नहीं आएगी तो सॉरी टू से मसाइल तो होंगे,
1: आपको खुद भी अपने लिए मसला बनोगे, दूसरों के लिए भी मसला बनोगे।
2: आप एक्सेप्ट कर लो, डिनाइल फेस से निकलो कि हाँ जो चीजें हैं हमने अपनी लाइफ जो गुजरी यार मतलब जैसी गुजरी, जरूरी नहीं है कि आपने बेहतरीन जिंदगी देखी हो तो उसके बाद आप ये एक्सेप्ट करो, आपने जैसी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब जो है वो अगले का जो वक्त है, तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपके साथ

0: कुछ इनजस्टिस हुआ था आपके साथ, वो चीज नहीं हुई जो आप चाहते थे, तो एक प्रोवाइडर बनो यार आप, दो दूसरे को दो और अपने आप को जरा पीछे करो हर जगह पे। इसी तरह से ऑफिसेस का मामला भी यही है। चलिए खैर एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनको ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, फिर हम गाने की तरफ चलेंगे। हेलो
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अरे कुछ और वेरीफाई करते तो थोड़ा सा आसानी हो जाता मुझे जवाब देने
0: में। कौन है हमारे साथ?
1: एफएम 107।
0: एफएम 107 वो तो है, लेकिन हमारे साथ कौन है?
2: मैं नाम कैसे भूलूं, मुझे मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया।
0: रईस भाई है क्या? रईस भाई है रईस भाई, आज पहले ही मैंने बता दिया था, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मतलब लोगों को मैं नहीं पहचान पा रही हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरा तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक
0: नहीं, मेरी ठीक नहीं है भाई, मेरी ठीक नहीं है।
1: हाँ थोड़ी आवाज में, लेकिन सुन कान का तो तबीयत सही है ना?
0: लो यही आवाज हुई, मतलब ये आवाज हुई, कान मेरे अलग चल रहे
2: हैं। ऑक्टोपस है क्या मामेश?
1: नाक नाक नाक के आवाज,
0: नाक और गला खराब है, कान के नहीं, मैं तो ठीक हूँ।
1: कान कानपुर तो सही है ना, नागपुर का प्रॉब्लम है।
0: ये सोचो जरा क्या बात हो रही है।
2: आज मावेश बता नहीं पा रही है कि मावेश का दिमागी तवाजुन
0: वो ठीक रह रहे बैठ बैठ। पता है क्या हो गया है कि एक महीना तकरीबन होने वाला है, तो अब तो ये होगा, ये तो होगा।
2: इनकी रईस भाई, मुझे इनकी इनकी बात करने से याद आया, कल मैं अपने घर का रास्ता भूल गई, मैं वाकरा निकल गई।
0: अब ये देख लें, अब अगर मैं 24 दिन कितने दिन 22 दिन
1: हमको
0: लगातार
1: साल हो गया गाड़ी चलाते, कभी कभी हम लोग भी धोखा खा जाते हैं, ये तो मसला कोई बड़ी बात नहीं।
2: रईस भाई मैं घर की गली को क्रॉस करके आगे वाकरा निकल गई, और मैं वाकरा घूम रही हूँ, वो वाकरा का वो जो फ्री जोन है ना, उससे आगे निकल गई।
1: दिन था
2: जबकि मुझे दिन के टाइम याद रहता है, सब कुछ नजर आ रहा था।
1: अच्छा असल में मैं खुद कभी कभी सनैया के मतलब अंदर ही मैं खुद का, इसके लिए मैं लोकेशन रखा हूँ, कभी कभी रात में कंफ्यूज हो जाते हैं।
2: हाँ, रात में तो मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, रात को मैं तभी निकलती नहीं हूँ बाहर।
1: उस दिन मैं तुफेल भाई के साथ में था, तो लेके गए वो ज्यादा सलीम, थोड़े बाद में मुझे मुझे
0: तौफीक है वो तौफीक भाई, सब सबका उल्टा चल रहा है मामला आज।
1: तुफेल ने कह दिया क्या
0: गलती? जी आपने तुफेल बोला,
2: लास्ट टाइम भी तुफेल बोला था, मैंने सही किया था इनको।
1: हाँ असल में गलती से मैंने लिख के भी रखा था, तो आज मैंने नाम को बल्कि चेंज किया।
0: एक बात मुझे समझ में आ गई कि आप सफा को नहीं समझा सकते, क्योंकि आप खुद सफा की कैटेगरी के,
2: हम गजनी कैटेगरी के।
1: मैं खुद मतलब मैं बोला यार उस दिन मुझसे गलती हुआ था, महवस ने या मतलब सपा ने करेक्ट किया था।
0: हाँ।
1: तो मैं यार तो मुझे याद आया, तो अचानक मैंने मोबाइल उठाया और पहले मैंने नाम को मतलब सही किया।
0: अच्छा।
1: और फिर मेरे जबान से वही देखो जो जहन में चल रहा होता ना कभी कभी।
0: हाँ।
1: तो तुफेल भाई ने कहा कि यार रास्ता अभी बताओ, और मैं बोला भैया लोकेशन मैं चालू करता हूँ, मैंने फौरन लोकेशन चालू कर लिया। मैं बोला ये देखो रात में भाई कंफ्यूज हो जाता
0: हूँ, ये मेरी तबीयत खराब थी, मुझे लग रहा पूरे शहर ये खराब है, ये वायरल हुआ है।
1: तो बिल्कुल मैंने जब चालू करके मेरा जहन खुद खराब हो गया, तो मैंने जब लोकेशन फट से चालू किया तो मैं बोला भाई बोले सही जा रहा हूँ, मैं बोला हाँ सबसे बस लोकेशन पे चलते रहो तौफीक भाई, मसला नहीं है। मतलब हम दोनों साथ में आए, फिर जब सीधा रास्ता जब समझ में आ गया रास्ता, तो मैं बोला आप लोकेशन फिर मैंने बंद कर दिया, मैं बोला हाँ आप जाओ सीधा, मैंने उनसे नहीं कहा कि मैं कंफ्यूज खुद हो गया हूँ। लेकिन ये होता है, ऐसा कभी कभी मसला होता है।
0: आपके साथ कब से चल रहे हैं हालात? रेडियो पे आप किसका शो सुनते हैं ये बताएं।
2: मेरा ज्यादा तो नहीं सुन लिया था।
0: मुझे ये लग रहा है सफा का चल रहा है लूप पे।
1: सफा को सुनने लगे हैं ना, तो भाई
2: बस ये तो होगा,
0: ये तो होगा,
2: ये तो होगा।
1: ये होता है, ये होता है, होता है, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं। अच्छे अच्छे कभी कभी हम लोग वहीं पे अपने गली में भी कभी कभी कंफ्यूज।
0: रईस भाई ने एक बात कर दी, उसको कवर करने में कितनी बातें कर चुके हैं वो, कवर कर चुके हैं।
1: आप लोगों ने बात की थी, हाँ आला ये उर्दू की जो लेक्चरर इनकी अम्मी खुद हैं, और ये तुगयानी का अल्फाज ये हमें हमें बना रही है।
2: मैंने ये एक्सेप्ट किया,
1: समझ रही,
2: मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं उर्दू में जीरो। देखिए रईस भाई मामला पता क्या है, लाजमी नहीं जैसा पेड़ हो वैसा उसका फल भी होगा।
1: लेकिन अल्फाज तो इस्तेमाल होते हैं माशाल्लाह, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, तो मैं बोला कि हम लोग सीख लिए, आप कैसे मतलब इससे वो हो रहे हैं।

0: वो मास्टर डिग्री ली
1: हुई उर्दू में, ड्रामे नहीं देखती वजह ये है क्योंकि उर्दू ड्रामे नहीं देखते।
2: कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो उर्दू के हमें पता है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते।
1: अरे यार तुम मेरे बेटे को देखो, मतलब ये एक वो होता है ना, उसने माशाल्लाह ऐसे ऐसे मुश्किल लफ्ज सीख लिए उर्दू के कि मैं अब उसको देख रही हूँ, तुम्हें कहते ये भी पता है, मतलब उसको नहीं आती थी बिल्कुल लेकिन 2 साल में सीखी है उर्दू।
2: वाह।
3: असल हम लोगों की जो मतलब जो पढ़ाई किताबों की होती है ना, उसको वो जहन में जब बोलने बोल चाल में आते हैं ना तब समझ में आता है। असल में जो उर्दू के अल्फाज हम लोग सरसरी पढ़ते जाते हैं लेकिन वो उस वक्त उतना जहन में नहीं आता।
2: सलीस उर्दू सही तरीके से आती है, जो लुगवी उर्दू होती है ना वो थोड़ी सी
3: जी,
2: उसका मिजानिया दुरुस्त नहीं है मेरा।
3: थोड़ा सा
1: बस फरजाना सफदर ने हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया घर पे, ये समझ में आता है।
3: सही जो एकदम करेक्ट उर्दू पे जब आ जाएंगे ना तो वो मुश्किल हो जाता है समझना, क्योंकि हम लोग पाक और हिंद के उसके हैं तो ये हम लोगों के उसपे दोनों हिंदी को भी खींचना पड़ता है, कुछ फारसी को, ये क्योंकि ये लश्कर का उर्दू का मतलब भी है कि ये
1: लश्करी जबान
3: बनी है जी, लश्करी जबान है।
1: सही हो गया सब
3: करेक्ट।
1: हाँ तो एक्सेप्टेंस तो वहीं रह गई, तो गयानी के ऊपर आपने ज्यादा ध्यान लगाया लेकिन एक्सेप्टेंस वहीं रह गई।
3: एक्सेप्टेंस का देखो मतलब एक अलग अलग उसके मैं अलग अलग मैं बांटूंगा कि हर चीज को एक्सेप्टेंस भी करना सही नहीं है हमारे लिए। कुछ चीजें हैं जो कि मतलब हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, जहाँ पे हमारे दीन के ऊपर आए बात वहाँ पे हमें मतलब उसके ऊपर जैसे अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है हमें उस पर तदब्बुर और सही जो रास्ता है उसको समझना चाहिए। बस मैं ज्यादा इस पर लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि ये बस शॉर्टकट में यही बात।
1: अच्छा, जिसका जो दिल चाह रहा है वो बोल रहा है कि टॉपिक पे
2: और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं,
1: हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक एक दफा फिर बताओ सफा।
2: भाई टॉपिक ये है
3: एक्सेप्ट की, हाँ की एक्सेप्ट एक्सेप्ट मतलब हम हर चीज को एक्सेप्ट मतलब कोई दुनिया में चल रहा है इसके ऊपर हम मतलब कोई चीज को अपनी मन मर्जी का नहीं मनवा पा रहे हैं तो हमको एक्सेप्ट करके चलना चाहिए, ये कहने का शायद था कुछ की क्या था, थोड़ा सा फिर से ये कर दें तो।
1: चले हम फिर से बताते हैं ठीक है, लेकिन अब गाना चला के बताते हैं।
3: अल्लाह चलो चला लो भाई
1: एक्सेप्ट करें, आपके पास कुछ चारा ही नहीं है, कुछ चेंज नहीं कर सकते आप अभी, तो चलें जी एक्सेप्ट कीजिए, हम गाना चलाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई, थैंक यू जी,
3: थैंक यू, थैंक यू,
1: इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज रई जी। तो सफा मुझे ऐसा लग रहा है
2: चलाने से पहले एक दफा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, टॉपिक ये चल रहा है कि जिन चीजों को हम तब्दील नहीं कर सकते ना, चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, उन्हें कबूल करने की ताकत इंसान के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है सूरह बकरा की वही दो आयतें मुझे याद आती हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर इतना बोझ नहीं डालता है तुम बर्दाश्त ना कर सको। तो इंसान के अंदर ये समझ होनी चाहिए कि जो चीज मुझे दी गई, जो टास्क मुझे दिया गया है, उसमें से कितनी चीजें मैं कर सकता हूँ कितनी नहीं कर सकता। तो वो जो चीज जिस चीज को आप नहीं चेंज कर सकते एक्सेप्ट करो ना भाई, मैं इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता, आई एक्सेप्ट
1: मैं गाना चला दूं,
2: मैं लुगत उर्दू नहीं कर सकती।
1: ओए हाय वो वाला गाना चला गया, नहीं तो हम वही गाना लगाएंगे आपके लिए, फिर दोबारा लगाएंगे और सफा
2: अब मैं चुप हो जाऊंगा।
1: हाँ अब आप चुप हो जाइएगा। दानियाल जफर
2: ओके ओके

0: जी राइट, हम आ गए एक दफा फिर से। अभी कुछ दिनों से मोहित चौहान की आवाज आप सुन रहे थे और इसके साथ ही हम यहाँ पे मौजूद हैं। सफा आ जाइए।
1: जी जी मैं यहीं पर हूँ।
0: यहीं पर हैं आप? अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर

0: बहुत देर से हैं, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो
1: है, पहले हम इंतजार कर रहे थे, अभी इंतजार करवा रहे हैं.
0: हाँ नहीं, अच्छा ये कोई थे, उन्होंने जैसे ही हमारी हेलो सुनी फोन बंद कर दिया. किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे. वो होता था ना पहले घर पे डम कॉल्स आती थी, आप उठाओ रख देते थे,
1: प्रैंक कॉल्स, प्रैंक कॉल्स.
0: फिर कोई और उठाता था तो उससे बात करते थे. तो ये वाला सीन है. ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह.
0: जी कौन बात कर रहे
1: हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह,
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र.
2: जी खुर्रम शहजाद बात कर रहा हूँ.
0: जी खुर्रम शहजाद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं
2: जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का. आप दोनों ठीक हैं?
0: जी जी अल्लाह का शुक्र.
2: जी वो सवाल आपने किया था कि कौन सी चीज जो है जो आप चेंज नहीं कर सकते, तो उस पे उसको जो है वो किस्मत पे छोड़ देना चाहिए. वो एक है ना अलादीन और जैस्मिन वाला एक फिल्म है, एक उसमें जीनी कहता है कि एक तो मैं मरे को जिंदा नहीं कर सकता और एक जो है वो गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं ला सकता, बाकी जो कुछ मांगना है वो मांगो. तो इसी तरह जो है अगर किसी की आदत है, एक खानदान में नई बहू ब्याह के आती है, उसकी आदत, कोई कजन है आपका, कुछ भी है, वो उसकी आदत को आप अगर उसी इनकी आदत के साथ आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी भी आसान होती है. और उनकी ये आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हैं उनकी जिंदगी को कुछ भी, हाँ वो अपने तौर पर बदलना चाहें तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर है कि वो खुद जो है वो इस चीज को जज करके घर का माहौल कैसा है और वो खुद चेंज होना चाहिए. लेकिन आप किसी के ऊपर बलडोज करके किसी चीज को मेरे ख्याल आप चेंज नहीं कर सकते. तो दूसरी किसी की किस्मत है, जैसे आपको अल्लाह पाक ने दिया है, अगर आप नेक काम कर रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द जो है वो नेक लोग ज्यादा होंगे. और किसी की किस्मत है, अल्लाह पाक ने उसे बहुत दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल उसके साथ हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसको जो है वो चेंज नहीं कर सकते. जी वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और हसद में आप अपना भी बेड़ा गर्क करोगे और अगले बंदे का भी बेड़ा गर्क करोगे. और अगर कोई आपके साथ ये काम कर रहा है तो वो भी जो है वो गलत कर रहा है. और अगर आप कर रहे हैं, किसी की आदत होगी या किसी की किस्मत होगी, मेरे ख्याल ये अगर दो चीज आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दें तो मेरा ख्याल है कि हमारी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी. ये दो चीजें मेरी समझ में आ रही हैं.
0: वेरी नाइस, बहुत अच्छा, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, थैंक यू सो मच. थैंक यू. वालेकुम सलाम. अच्छा पहले, अब इससे पहले कि सफा कॉल की तरफ जाए ना, हम मैसेजेस पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इग्नोर हो रहे हैं काफी लोग. अस्सलाम वालेकुम मैम, सेम हालत मेरा भी है, हड्डियाँ गर्दन सब कुछ दर्द कर रहा है कुछ दिनों से. ये मौसम चेंज हो रहा है. ये नाम है अरबाज खान इनका, और इसके साथ ही जी शहजादा सलीम है. शहजादा सलीम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, शायरी जरूर सुने. इन्होंने भेजी है शायरी, जरूर सुने, सुनेंगे बाद में. मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुड मॉर्निंग मावा जी एंड सफा जी, कैसे हैं आप दोनों? और कहते हैं कि एक्सेप्टेंस जरूरी है, क्योंकि हर चीज हम चेंज नहीं कर सकते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इंसान को एडजस्ट तो करना पड़ता है. एक्सेप्टेंस ना भी चाहते हुए करते हैं. रिश्तों के मामले में भी ऐसा होता है, हम एक्सेप्ट करते हैं और जैसे भी हैं. रिश्तों को निभाने के लिए भी एक्सेप्टेंस बेहद जरूरी है. और इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि मावा जी कितनी बार कहेंगी सफा चुप हो जाओ, जोक्स अपार्ट, आई वुड से
1: फिर भी सफा नहीं करेगी चुप.
0: देखो फिर बोलना शुरू हो गया, मुझे नहीं बोलने दे रही. आई वुड से आप दोनों भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शो कर रही हैं, आप दोनों भी ओके ठीक है.
1: ये जो भी था ना, ये ठा करके लगा है,
0: ये मतलब आप दोनों भी कर ही रही है, वो वाली फील आई. लेकिन सभी शो एक घंटे के हो गए एक्सेप्ट सुबह कबीर का शो, लिस्टनर्स को थोड़ा सा मुश्किल हो रही है कॉन्टेक्ट करने और अपनी अपनी बात रखने में. हाँ ये बात तो है. और इसके साथ ही जी क्या है हमारे पास, हमारे पास है वक्त, सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए. ओए होए होए, ये बू यासिर था, वो यासिर कमाल कर गए. अच्छा जी, और इसके साथ ही हाउ ग्रेसफुली वी एक्सेप्ट व्हाट लाइफ ब्रिंग्स, अज्जू. अज्जू की बात ना बड़ी सोबर होती है, बहुत सोबर
1: बात,
0: सोबर पर्सनालिटी. जब आते भी हैं तो बहुत सीरियस, बहुत सोबर इस तरह के होते हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उनके साथ ही आ गए मुबीन बुखारी डांस करते हुए और कह रहे हैं कि जो ना यानी बुड्ढा घर पे है वाला सीन हो जाता है फोन उठाने.

0: पे जो मैंने कहा था ना, फोन उठाओ फोन बंद हो जाता है, वो वाला सीन है। चले जी, और इसके साथ ही हमारे साथ जो आखिरी कॉलर है उनको लें कि नहीं, सलाम दुआ तो कर लेते हैं बेचारे, मतलब आ चुके हैं ना, बस सिर्फ सलाम करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम, जो आपकी तारीफ हुई थी।
2: We were praising your style, अज्जू भाई।
0: और इस बस हमने कहा कि हम आपसे ना सलाम दुआ की हद तक बात करते हैं, ठीक है? अज्जू सिर्फ ले लिया था आपको, तो इसलिए मतलब सलाम, और फिर अब हमारा
2: अज्जू भाई का मैसेज तो हमने
0: अज्जू भाई का पढ़ लिया हमने, और अब हमने आपकी पहले ही एडवांस में तारीफ कर दी ताकि आप बुरा भी ना माने, ठीक है अज्जू भाई?
2: अच्छा, इसके अंदर ये बहुत डीप बात है।
1: हर चीज को ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास है, दूसरा के पास नहीं है, आपके पास है, लेकिन आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपका गिल्टी फील एंड समथिंग विल हैपन, राइट? आपका गॉड जो दिया आपको एक्सेप्ट करने का जरूरी है।
0: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है जो, थैंक्स अ लॉट जो, क्योंकि बस हमारे अब टाइम हो गया जाने का, तो आपसे बस इजाज़त लेंगे, सो सॉरी कि आपको इस वक्त ज़्यादा वक्त नहीं दे सके हम, ठीक है? ख्याल रखिएगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच रई जी। तो बहुत ही अच्छे इंसान, और यूसुफ जो है ना वो परेशान हो गए, तो इसलिए जाते जाते बस उनका मैं तस्करा कर दी चलूँ। वो कह रहे हैं आप लोगों ने गलत मतलब ले ली, नहीं हमने गलत मतलब नहीं लिया, हम ऐसे इंजॉय कर रहे हैं ना, और कोई भी बात नहीं, हम बिल्कुल सही समझ में, हमें पता है कि आपको अच्छा लग रहा है हमारा शो, हम ऐसी तफरी कर रहे थे। चले जी, तो इसी के साथ सफा हो गया है हमारे जाने का वक्त। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये वाला शो शुरू होता है और खत्म हो जाता है, और अभी जब मैं रिकॉर्डिंग करूंगी तो वो 2 घंटे क्यों नहीं गुजरेंगे, मुझे कोई ये बताए।
2: इसे कहते हैं जो चीज दिल पे भारी हो वक्त वहां पे रुक जाता है।
0: यही मसला है। चलें जी, 2 घंटे अभी मैंने वैसे स्टूडियो में गुजारने हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के साथ। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होती है कल हमारी तरफ से।
2: सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
0: अल्लाह हाफिज।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम कुरान के मोती में आपका खैर मकदम है। वैसे एक अहम मौजू पर आज गुफ्तगू होगी जिसका ताल्लुक है तसव्वुर खुदा, अल्लाह पर ईमान और जिंदगी को हम किस जाविये से देखें। ठीक है सामिन किराम, इन जो मौजूआत पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अल्लाह की रहमत की बात आ जाती है और सबसे पहला जो सवाल है वो ये कि रहमत इलाही कहाँ है या इस दुनिया में अल्लाह की रहमत कहाँ है। खुसूसन जब इंसान अपने गिर्द दुख बीमारी आजमाइश महरूमी और परेशानी देखता है तो कभी दिल के किसी गोशे से ये सवाल उठता है कि अगर अल्लाह रहमान रहीम है तो फिर उसकी रहमत हमें कहाँ दिखाई देती है। अच्छा जी, अगर इस सवाल को एक दूसरे जाविये से देखने की कोशिश करें कि ये पूछने के बजाय कि अल्लाह की रहमत कहाँ है, यूँ पूछिए कि इस कायनात में आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह की रहमत नहीं है, वो कौन सी मखलूक है जिस तक उसकी रहमत का कोई हिस्सा नहीं पहुँचा। कुरान हमें मलाइका की एक नहायत खूबसूरत दुआ सुनाता है, अर्श उठाने वाले फरिश्ते और उसके गिर्द मौजूद मलाइका अपने रब की हम्द व तस्बीह करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं और अहले ईमान के लिए मगफरत मांगते हैं। अर्ज करते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना वसिअत कुल्लशैइर रहमतन वइल्मा فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ تو یہاں غور کیجئے سامعین کرام، فرمایا گیا کل شیء ہر چیز، یعنی کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس رحمت کے دائرے سے باہر ہو، आसमान और उसकी वसतें, ज़मीन और उसके रहने वाले, इंसान और जिन, परिंदे और चरिंदे, सब

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi. Your health matters.
1: Assalamu alaikum listeners. Your health matters. Aapki sehat ahem hai. हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को अहमियत देते हैं, अपना काम, घर, जिम्मेदारियाँ, बच्चों की पढ़ाई, ख़ानदान और मुस्तकबिल। लेकिन एक सवाल हमें खुद से ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या हम अपनी सेहत को भी इतनी ही अहमियत देते हैं। तो अक्सर हम कहते हैं अभी बहुत काम है, बाद में काम कर लेंगे, ये मामूली सी तकलीफ है, खुद ही ठीक हो जाएगी, चेकअप की क्या ज़रूरत है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सेहत का ख्याल सिर्फ उस वक्त नहीं रखना चाहिए जब हम बीमार हों। सेहत की हिफाजत बीमारी से पहले शुरू होती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में चंद छोटी छोटी आदतें हमारी सेहत पर बहुत ही अच्छा असर डालती हैं।

0: واقعی اہم ہے۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें, ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से ना सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज

0: के बाद से देखने को नहीं मिला। 11 हालांकि बहुत बिका, फिर वो एक स्लाइड ड्रॉप आया। अभी 17 के डिजाइन के बाद, ऑरेंज के बाद वो उम्मीद जागी है, एंड 18 ने डेफिनेटली वो काम किया जिसका लोगों को इंतजार था। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आईफोन क्या करेगा वो तो मार्केट में आके पता लगेगा। द बेस्ट पार्ट इज के रेट जो हैं आईफोन्स के, प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ाए गए हैं। दोनों के बीच में $100 का फ़र्क है अगर आप प्रो और प्रो मैक्स की बात करें, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी जेनरस है एप्पल के लिहाज से, बिकॉज उनका स्टैंडर्ड जो है ना शायद कहीं ना कहीं इजाज़त नहीं देता है कि वो सिर्फ $100 का फ़र्क छोड़ें। बस इन दी हैव डन इट, गुड जॉब डन एप्पल। साथ साथ मैं जो हूँ बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में एप्पल की बात करता रहूँगा, मगर आपको अगर हैंड्स ऑन अभी तक कोई रिव्यू मिल जाए तो मुझे जरूर जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। FM107 Qatar ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, एंड प्लीज प्लीज आइए, जरा इस बारे में बात करनी बड़ी जरूरी है। ऑफ कोर्स वी आर लेट एट द पार्टी, लेकिन रिव्यू तो करना बनता है। दिस वाज द अपडेट, मैं दुहा वाला कबीर FM107 पे, एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज नए जमाने के नए स्कैम के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं। और उम्मीद करता हूं कि इस स्कैम के शो से आप सीख रहे होंगे और साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर्स या फिर आप नए स्कैम से बचने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर ये शो सुनकर बच भी रहे होंगे। तो आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये आपके साथ किसी भी दिन हो सकता है, क्योंकि ये ग्रोसरी के कूपन या ग्रोसरी कूपन से रिलेटेड एक स्कैम है। वेल, इसका नाम है

0: फेक ग्रोसरी कूपन स्कैम काम कैसे करता है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। स्कैमर्स जो बहुत ही ज्यादा फेमस शॉप्स होती हैं, स्टोर्स होती है, उन लोगों का नाम लेके आपको फेक डिजिटल कूपन्स या $100 के या 100 कतरी रियाल के या हजारों रुपए के फ्री ग्रोसरी वाउचर्स का लालच देते हैं। ये ऑफर्स सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स या स्पैम ईमेल्स के जरिए शेयर किए जाते हैं। जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपसे एक सर्वे फिल करने को कहा जाता है, जिसमें आपका पूरा नाम, घर का एड्रेस और फोन नंबर मांगा जाता है। आखिर में एक छोटी सी शिपिंग फी पे करने के लिए आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगी जाती हैं। फ्री फूड मिलने के बजाय या फ्री की डिटेल्स या फ्री कोई चीज मिलने के बजाय या वाउचर मिलने के बजाय आपके कार्ड पर हिडन मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस लग जाते हैं और आपका अकाउंट धीरे धीरे खाली होता रहता है। लेकिन इस स्कैम से बचने के कुछ तरीके हैं जिससे आप बच सकते हैं। अगर आप इस तरह के स्कैम में सेफ रहना चाहते हैं तो इन कुछ ऑफिशियल या कहें इन कुछ टिप्स को फॉलो जरूर करिए। सबसे पहला है, ऑफिशियल वेबसाइट को या एप्स को चेक करें। किसी भी ऑफर या कूपन पर आंख बंद करके कभी भी ट्रस्ट ना करें। हमेशा उस ग्रोसरी स्टोर, जैसे कि आपके आसपास जो नजदीकी आपके स्टोर है, उस स्टोर पर जाएं या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर जाकर ही चेक करें कि क्या सच में ऐसा कोई ऑफर चल रहा है जहां पर वाउचर वगैरह मिल रहे हैं। उसके अलावा यूआरएल्स और लिंक्स को केयरफुली वेरीफाई करें। स्कैमर्स आमतौर पर फेक वेबसाइट्स बनाते हैं जो बिल्कुल असली जैसी दिखती है। हमेशा चेक करें कि यूआरएल सही है या नहीं। असली वेबसाइट हमेशा से https/ से शुरू होती है और उनका डोमेन नेम सिंपल और करेक्ट होता है। पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा शेयर कभी भी किसी से ना करें। ये सबसे ज्यादा अहम बात है और इस पर ही आपको फोकस करना है। कोई भी जेन्युइन कंपनी फ्री कूपन देने के लिए आपसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या CVV नंबर या बैंक की डिटेल्स नहीं मांगता। और अगर ऐसा करे तो आप खास तौर पे बैंक पे शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सर्वे आपसे सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो ये आप समझ जाइए कि वो 100% स्कैम है। उसके अलावा हर बार जो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ वो है टू गुड टू बी ट्रू। ऐसा कोई भी ऑफर जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे कि यार वो सच हो ही नहीं सकता, ऐसे में हमेशा आपको शक की निगाहों से देखना चाहिए। अगर कोई ऐड या पोस्ट आपको सिर्फ एक सिंपल सर्वे भरने के लिए या फिर सिंपल से काम को करने के लिए हजारों डॉलर, कतरी रियाल या 500 तक का फ्री वाउचर वगैरह दे रहा है तो समझ लें कि ये एक ट्रैप है। इंटरनेट पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, ये सच है। उसके अलावा एंटीवायरस और स्पैम फिल्टर का यूज करें। अपने मोबाइल और लैपटॉप में एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें। अपने ईमेल अकाउंट का स्पैम फिल्टर ऑन रखें ताकि ऐसे फिशिंग और स्कैम ईमेल्स आपके इनबॉक्स तक पहुंच ना सके। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ इन सब बातों को या फिर स्कैम से बचने के लिए जो सॉल्यूशंस मैंने दिए उन सब के बावजूद आपके साथ कभी स्कैम हो जाए तो क्या करना है, बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। अगर आपने गलती से फेक वेबसाइट पर कार्ड डिटेल्स डाल भी दी हैं तो तुरंत अपने बैंक को कॉल करके कार्ड ब्लॉक करवाएं। पासवर्ड चेंज करें अपने ऑनलाइन बैंकिंग और इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के पासवर्ड को फौरन बदल दें। रिपोर्ट करें इस फ्रॉड की कंप्लेंट अपनी लोकल साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करें ताकि बाकी लोग इससे बच सके। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स हैं जिनके बारे में हमने बात करी और इन सॉल्यूशंस को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% श्योरिटी है या फिर अगर आपके पास से पैसे कट भी जाएं तो बैंक को इत्तला करना, पासवर्ड चेंज करना, साइबर सेल में रिपोर्ट करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप आसानी से बच सकते हैं फ्रॉड होने से, आपके पैसे दोबारा आ सकते हैं। इसके साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट यानी कि कल एक नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी बैटिंग या विकेट कीपिंग की वजह से मशहूर नहीं होते बल्कि अपनी लीडरशिप टेम्परमेंट और मैच विनिंग एबिलिटी की वजह से एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर करते हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाईलाइट और आज हम बात इंडिया के एक लेजेंडरी क्रिकेटर की हम करेंगे और सबको पता चल ही गया होगा उनका नाम महेंद्र सिंह धोनी है एमएस धोनी का इंटरनेशनल करियर 2004 में शुरू हुआ जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया शुरू में उनका एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल और लॉन्ग हेयर इन लंबे बालों पर उनकी पहचान अपने लोगों ने बोला यार लंबे बाल वाले क्रिकेटर कौन है वो अच्छा धोनी है कोई धोनी आया है रांची से इंडिया का एक शहर है झारखंड में है और वहाँ से ये लड़का आया है काफ़ी यंग है एक्सप्लोसिव है यानी एक्सप्लोसिव बैटिंग में बड़ा एक्सप्लोसिव है और काफ़ी कुछ उनके जो बैटिंग का स्टाइल है कुछ डिफरेंट है लेकिन बहुत जल्द दुनिया को समझ आ गया कि ये खिलाड़ी सिर्फ स्टाइल नहीं सब्सटेंस भी रखता है 2005 में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट सीरीज में अपनी बैटिंग का इम्प्रेशन जो था ना दोस्तों वो छोड़ा और वो सबको मुतासिर किया टेस्ट क्रिकेट में धोनी ने 90 मैचेस खेलकर 4876 रन बनाए और उनका हाई स्कोर 224 था जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था टेस्ट करियर में उनके नाम 6 सेंचुरीज और 33 फिफ्टीज रही

लेकिन धोनी की असली पहचान बनी वनडे क्रिकेट में। 350 ओडीआईज में धोनी ने 10,773 रन स्कोर किए, उनका बैटिंग एवरेज 50 से ज्यादा रहा और स्ट्राइक रेट तकरीबन 87.5 था। उनके नाम 10 सेंचुरीज और 73 फिफ्टीज हैं और उनकी सबसे मशहूर ओडीआई इनिंग्स में से एक थी श्रीलंका के खिलाफ 183 नॉट आउट, जो विकेट कीपर के लिए उस वक्त एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन धोनी की बैटिंग का सबसे यादगार चैप्टर आया 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ 275 रन का टारगेट मिला। धोनी ने प्रेशर में खुद ऊपर आकर बैटिंग की, यानी अपने आप को प्रमोट किया बैटिंग ऑर्डर में और 91 नॉट आउट की मैच विनिंग पारी खेली। दैट वाज अ कैप्टन्स नॉक और फिर वो मोमेंट, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट और गेंद स्टेडियम की बाउंड्री के पार। इंडिया 28 साल बाद वर्ल्ड कप चैंपियन बना और धोनी वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने वाले कप्तान बन गए। लेकिन दोस्तों, धोनी की ग्रेटनेस सिर्फ बैटिंग तक महदूद नहीं थी। 2007 में उन्हें इंडिया की T20 टीम का कप्तान बनाया गया। ये सुनिए आप, ये वो वक्त था जब T20 क्रिकेट अपनी शुरुआत के दौर में था। साउथ अफ्रीका में पहला T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जो हुआ था और धोनी ने एक यंग इंडियन टीम को लीड किया। इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त देकर इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। यहीं से दुनिया ने धोनी को एक नए नाम से जाना, कैप्टन कूल। 2008 के बाद धोनी इंडिया के ऑल फॉर्मेट कप्तान बन गए। उन्होंने इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर वन रैंकिंग तक पहुंचाया और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी जबरदस्त सक्सेस हासिल की। उनकी कप्तानी में इंडिया ने 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 ODI वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ओवरऑल इट वाज अ, यू नो, फ्रॉम अ कैप्टन्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इंडियन कैप्टन्स पॉइंट ऑफ व्यू, इज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स। यानी धोनी क्रिकेट हिस्ट्री के वाहिद कैप्टन बने जिन्होंने ये तीन मेजर ICC व्हाइट बॉल ट्रॉफीज जीती हैं। T20 इंटरनेशनल्स में धोनी ने इंडिया के लिए 98 मैचेस खेले और 1,617 रन बनाए। उनका हाई स्कोर 56 था, लेकिन T20 क्रिकेट में उनकी वैल्यू सिर्फ बैटिंग से नहीं बल्कि विकेट कीपिंग, फिनिशिंग और प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी से थी। विकेट के पीछे भी धोनी एक मास्टर थे। उनकी लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग्स और उनका यूनिक ग्लोव वर्क बैट्समैन के लिए नाइटमेयर था। ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने 130 स्टंपिंग्स किए, जो उनकी विकेट कीपिंग लेगेसी को समझने के लिए काफी है। और फिर आती है आईपीएल की कहानी। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ धोनी 2008 से आईपीएल का सबसे आइकॉनिक फेस बन गए। उनकी लीडरशिप में चेन्नई ने कई टाइटल्स जीते और धोनी खुद आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कप्तानों में शामिल हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी धोनी का फैन बेस कम नहीं हुआ। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी शायद ये थी कि वो प्रेशर के वक्त घबराते नहीं थे। चाहे वर्ल्ड कप फाइनल हो, लास्ट ओवर हो या एक बहुत ही डिफिकल्ट रन चेस, धोनी हमेशा काम नजर आते थे। इसीलिए उन्हें सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक फिनिशर, विकेटकीपर, कप्तान और लीडर के तौर पर याद किया जाएगा। MS धोनी ने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, ट्रॉफीज, रिकॉर्ड्स, मेमोरेबल इनिंग्स और सबसे बढ़कर एक लेसन, प्रेशर में भी अपना दिमाग ठंडा रखो, अपने फैसले पर भरोसा करो और आखिरी गेंद तक फाइट करो। यही था कैप्टन कूल MS धोनी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का स्पोर्ट्स हाईलाइट का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे नी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamualaikum. आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट. मैं हूं आपकी आरजे महावश. इस पांच मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की. यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है. आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें. कतर की सकाफत में मौसीकी और लोक गीत, खुशी, मेल जोल और वर्से की खूबसूरत पहलू हैं। पुराने वक्त में जब लोग सफर करते, समंदर में काम करते या खानदानी महफिलों में जमा होते तो गीत और धुनें उनकी जिंदगी का हिस्सा बनती थी. ये धुनें खुशी का इजहार भी थी और एक दूसरे से राबता मजबूत करने का जरिया भी. कतरी रिवायती मौसीकी में आवाज, ताल और जज्बे वाला अंदाज अहम होता है. गीत अक्सर किसी मौके, सफर, खुशी या सामाजिक मुलाकात से मुतालिक होते हैं. इनमें इंसानी जज्बात, उम्मीद, मेहनत और रिश्तों की खूबसूरती का इजहार होता है. कतर का समंदरी वर्षा गीतों के बगैर मुकम्मल नहीं होता. पुराने जमाने में कश्तियों पर काम करने वाले अफराद मिलकर गीत गाया करते थे. एक शख्स आवाज शुरू करता और दूसरे उसके साथ अपनी आवाज मिलाते. इस तरह गीत का जारी रहना लोगों में हम आहंगी और एक दूसरे का साथ देने के जज्बे को मजबूत करता था. समंदरी गीतों में सफर, मेहनत और उम्मीद का पहलू नजर आता था. कश्ती चलाना, जाल तैयार करना और मुश्किल

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाया, थमने ना पाया। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: स्पोर्ट्स राउंड अप, स्पोर्ट्स राउंड अप विद आवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एशियन गेम्स में कतर ने अपना मेडल्स का खाता जो है खोल चुका है। या वेलकम टू एफएम 107 के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है स्पोर्ट्स राउंड अप, और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, और हर खेल का हर पहलू सिर्फ आपके लिए। एंड कतर हैज फाइनली ओपन देयर अकाउंट इन द एशियन गेम्स। एशियन गेम्स 2026 जो है दोस्तों, बता दूं अभी एशियन गेम्स ही बेसिकली न्यूज़ में है। सो स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के इस प्रोग्राम में एशियन गेम्स से मुतालिक जितने भी अपडेट्स हैं मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। क्रिकेट की खबरें भी हैं साथ में, और साथ साथ फुटबॉल का भी एक न्यूज़ है जो आप लोगों को बताऊँगा, उसमें भी कतर इन्वॉल्व है। फिलहाल एशियन गेम्स जारी है, 19 सितंबर को ओपनिंग सेरेमनी के बाद 20 सितंबर को इसका जो मेन इवेंट्स जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एंड कितने भी इवेंट्स में, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनमें से अगर कतर की बात करूं तो कतर ने कराटे में शानदार परफॉर्मेंस दिखाकर दो मेडल्स अपने नाम कर लिए दोस्तों। और पहला मेडल जो था परसों के रोज़ अब्दुल रहमान अब्दुल हमीद ने गोल्ड नहीं सिल्वर मेडल जीता है। एंड दिस सिल्वर मेडल जो है कुमीटे कराटे के एक कैटेगरी है, कुमीटे में अंडर 60 कैटेगरी किलोग्राम वेट कैटेगरी में ही हैज वन द सिल्वर, दैट इज कतर्स फर्स्ट। आज सुबह एक और मेडल वो है अब्दुल रहमान रशद, उन्होंने कराटे की ही एक इवेंट है जिसमें अंडर 80 किलोग्राम के जो कैटेगरी है उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इस ब्रॉन्ज और इस सिल्वर के साथ जो है कतर के पास अभी फिलहाल मेडल्स टैली में दो मेडल्स हैं, सिल्वर और मेडल। अभी बहुत सारे चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारे मेडल्स की उम्मीद कर सकते हैं जिसमें गोल्ड मेडल भी शायद इंक्लूडेड हों, स्पेशली बीच वॉलीबॉल। एंड बीच वॉलीबॉल में कतर इज़ वन ऑफ द फेवरेट टीम टू विन द गोल्ड, और अपने नेक्स्ट राउंड तक वो पहुंच चुके हैं। एंड कतर की दो टीमें हैं ए एंड कतर टीम बी, सो दीज टू टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। अगर हैंडबॉल की बात करूं, कतर तीन बार के अगर देखें चैंपियन रहे हैं, दिस डिफेंडिंग चैंपियन है इस इवेंट में यानी एशियन गेम्स के एक हैंडबॉल इवेंट में, और उनका शानदार आगाज हुआ है हांगकांग को हराकर और चीन को हराकर, और ग्रुप ए में सबसे टॉप पोजीशन पर है अलोंग विथ जापान जो कि होस्ट कंट्री है। 3x3 बास्केटबॉल की बात करूं तो उन्होंने भी टीम कतर ज़बरदस्त ओपनिंग कैंपेन जो रहा है अगेंस्ट इंडोनेशिया के साथ और चाइनीज ताइपे के अगेंस्ट में, ये मैचेस जो है दो मुसलसल मैचेस जीत कर कतर की टीम जो है उस लेवल तक है कि हो सकता है कि कतर कैन विन अ गोल्ड इन 3x3 बास्केटबॉल। स्विमिंग की बात करूं तो आली तामर ने कतरी नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर 100 मीटर फ्री स्टाइल हीट्स में 48.65 सेकंड की टाइमिंग के साथ हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड, और रिताज अल यफी उन्होंने कैरियर बेस्ट ऑफ 620.8 इन द वुमेन्स एयर राइफल कॉम्पिटिशन में सबसे बेस्ट जो स्कोर रहा है वो उनका रहा है। एंड हो सकता है कि स्विमिंग और एयर राइफल शूटिंग में कतर को कुछ मेडल्स आ जाए। अभी तो 2 वीक्स का इवेंट है, ये एशियन गेम्स है, और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखने को सुनने को सब कुछ मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को अपडेट्स मैं देता रहूँगा, नेक्स्ट एशियन गेम्स के जितने भी मैचेस होंगे सुबह शाम आप लोगों को स्पोर्ट्स न्यूज़ के ज़रिए हम बताते रहते हैं, और ये जो प्रोग्राम है स्पोर्ट्स राउंड अप और साथ ही साथ इसका गोल्ड प्रोग्राम जो है इतवार और जुमेरात को, इसमें भी आप लोगों को अपडेट्स मैं देता रहूँगा। अभी मेडल्स टैली की बात कर लेता हूँ। मेडल्स टैली में अगर देखा जाए चीन हमेशा के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम है इन दिस ओलंपिक जो स्पोर्ट्स हैं, ओलंपिक खेलों में अगर देखा जाए चीन हमेशा से स्ट्रॉन्ग है। तो एशियन गेम्स में 23 गोल्ड 10 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज के साथ दे आर टॉपिंग द ग्रुप मेडल्स टैली राइट नाउ, और जापान जो है 8 गोल्ड 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज के साथ सेकंड पोजीशन, और साउथ कोरिया

5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 15 ब्रॉन्ज, और कजाकिस्तान 4 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज के साथ चौथे पोजीशन पर है। अपडेट देता रहूंगा। और अभी एक सवाल जो आप लोगों से मैं पूछता हूं दोस्तों, आप लोगों ने अगर एफएम 107 ट्यून इन कर चुके हैं तो आप ये सवाल को ज़रूर सुनिएगा, और ये क्रिकेट से है, क्रिकेट से इसलिए कि आप लोगों को जोड़ने का एक बड़ा अच्छा मौका मिलता है आप लोगों को इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। क्रिकेट के अलावा और कोई सब्जेक्ट जो है मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इतना दिलचस्पी के साथ और उस जुनून के साथ आप लोग जो जवाब देते हैं, शायद कोई और स्पोर्ट्स हो तो शायद इतना आप लोगों को मज़ा नहीं आता होगा, लेकिन क्रिकेट अगर हो तो आप लोग फौरन जुड़ जाते हैं। तो आज का सवाल यह है कि पहली मर्तबा इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्रिकेट में, पहली मर्तबा वर्ल्ड कप क्रिकेट में, ओडीआई की बात कर रहा हूँ, टी20 नहीं, वर्ल्ड कप ओडीआई क्रिकेट में पहली मर्तबा इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने कब हुए थे? आपको ये आसान सा सवाल है, आसान सा जवाब जो है आपको बताने हैं, और ये जवाब जितने भी आप लोग देंगे ना, आप लोग रिप्लाई देते हैं 666-2107 यानी एफएम 107 के जो व्हाट्सएप नंबर पर आप देते हैं, नाम ज़रूर बताइएगा कि वर्ल्ड कप क्रिकेट में पहली मर्तबा इंडिया और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने कब हुई थी, तो आपको ये जवाब देने हैं। और यहाँ पर मैं लूँगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ, वर्ल्ड कप क्रिकेट की तारीख में पहली मर्तबा इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने कब हुए थे, आपको ये बताना है 666-2107। आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड अप शो, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, और यहाँ पर एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, एंड कीप लिसनिंग टू एफएम 107, दिल से देसी।

8662107 so that aap log thoda involve ho jate hain. Sports ka program hai aur hum baat kar rahe hain Asian Games mein. Not only just Qatar, balki India aur Pakistan ke bare mein bhi hum discuss karenge. Qatar ne, jaise maine kaha tha, Qatar ne medals ka khata jo hai khol chuka hai. And Qatar has won a silver and a bronze aur ummeed hai ki aur bhi medals aane hain aur hame intezar karna hoga. Aur isi beech agar hum India ki baat kare aur Pakistan ki baat kare to Indian team, yani India ki jo contingent hai, team India, Indian team ko kaafi kuch मिल चुका है. I mean, Indian team right now अगर देखा जाए 6 medals हासिल कर चुकी हैं. Indian team को आज पहला gold अगर मिला है तो वो cricket से और T20 women's cricket final में India ने श्रीलंका को हराकर पहला gold India को दिलाने में मदद की. So first gold for India comes through the cricket T20 women's cricket final जहां पर आज final हुआ है और India को जीत. और एक और बात बता दूं कि सिल्वर मेडल्स कहां का किस किस इवेंट्स में सिल्वर मेडल्स आया है. शूटिंग इवेंट्स में इंडिविजुअल और टीम 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरीज और ब्रॉन्ज मेडल 4 सिल्वर मेडल्स हैं शूटिंग में और ब्रॉन्ज मेडल्स 2 हैं और वो है रुद्रांश पाटिल शूटिंग में और सुचिका तारियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में फर्स्ट टाइम मेडल जीतने वाली ये है सुचिका तारियाल. तो इंडियन टीम राइट नाउ वो भी ठीक ठाक पोजीशन पर हैं मेडल्स जीतने के उसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स जीते हैं और मेडल्स जीतने के बाद वो पोजीशन पे कम से कम उनका टारगेट ये है कि फर्स्ट फिफ्थ पोजीशन पे अपना ओवरऑल स्टैंडिंग्स को थोड़ा सा बेहतर बनाए. पिछले एशियन गेम्स में इंडिया ने 100 मेडल्स का जो टारगेट था उसने क्रॉस कर लिया. तो अब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं. पाकिस्तान भी कमाल कर चुका है. पाकिस्तान फाइनली 2 ब्रॉन्ज मेडल्स पाकिस्तान की टीम जीत चुकी है और वुमेन्स टीम को मुबारक. क्रिकेट टीम को बांग्लादेश को 31 रन से इस मैच में हराने के बाद पाकिस्तान वन द फर्स्ट मेडल ऑफ द 2026 एशियन गेम्स वुमेन्स क्रिकेट फाइनल में. और इसमें सबसे अगर देखा जाए कप्तान फातिमा सना जो है उन्होंने लेड फ्रॉम द फ्रंट विद द क्रूशियल 45 रन बनाए और स्पिनर उम्मे हनी उन्होंने 10 रन देकर 3 विकेट्स और यहीं से पाकिस्तान को एक मेडल. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू द पाकिस्तान टीम. ये पाकिस्तान का 3rd हिस्टोरिकल मेडल इन वुमेन्स क्रिकेट एट द एशियन गेम. और ब्रॉन्ज मेडल एक और ब्रॉन्ज मेडल है कराची के असीम खान ने मिक्स मार्शल आर्ट मेंस इवेंट में उन्होंने पाकिस्तान का ओवरऑल मेडल काउंट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है एक ब्रॉन्ज मेडल क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. तो एक गारंटेड ब्रॉन्ज मेडल है फॉर पाकिस्तान इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट. सो दिस इज फ्रॉम द पाकिस्तान पॉइंट्स आई मीन मेडल टैली. इंडिया का मेडल टैली आपको बता चुका हूँ. आज जो फाइनल खेला गया था इन द वुमेन्स क्रिकेट फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया. सो दैट इज द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द एशियन गेम्स. और एक चीज़ और भी आप लोगों को बता दूं कि आज एक मैच हुआ था तारीखी क्रिकेट मैच और इस मैच में इंडिया ने किसको जापान को ये जापान का फर्स्ट एवर क्रिकेट मैच था दोस्तों बता दूं और इस मैच में इंडिया की जीत हुई है 2 रन से. 5 ओवर्स में जापान की टीम 30 रन बनाए 3 विकेट पर. अच्छा ये उन्होंने कहा ये T20 है लेकिन ये शॉर्ट फॉर्मेट गेम है वन ऑफ T20 और 5 ओवर्स क्योंकि जापान इज़ अ न्यू कमर इज़ अ न्यू टीम इन द क्रिकेटिंग फ्रंट में. तो 5 ओवर्स में जापान 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर और वहीं अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करके 5 ओवर में 32 रन बनाए थे और 4 विकेट के नुकसान पर. तो जापानीज टीम चेज द टारगेट लेकिन वो टारगेट से थोड़ा सा मिस हो गए हैं सिर्फ 2 रन नहीं बना पाए और इसीलिए इंडियन टीम 1/2 रन. ये एक हिस्टोरिक एक सिंबॉलिक मैच था. आने वाले टाइम में हमें मैचेस देखने को मिलेंगे इंडिया वर्सेस जापान और जापान धीरे धीरे एक ट्रेडिशनल जो ओलंपिक स्पोर्ट्स की चैम्पियन टीम रही है जापान जहाँ पे दे पार्टिसिपेट इन फुटबॉल हैंडबॉल बास्केटबॉल स्विमिंग जिमनास्टिक्स क्रिकेट को उन्होंने अपनाया है. और क्रिकेट को अपनाने के बाद उन्होंने ये सोचा कि वाई नॉट प्ले अ गेम बिफोर वी प्ले इन द एशियन गेम्स और एशियन गेम्स में दे विल बी प्लेइंग एंड इन द मेंस कैटेगरी. सो दोस्तों ये जो मैचेस अपडेटेड मैचेस और ये मैं आपको क्रिकेट के हवाले से बता रहा था. और पाकिस्तान जो है हॉकी में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है. पाकिस्तान कबड्डी हॉकी टीम्स हॉकी और
पाकिस्तान की हॉकी और कबड्डी टीम जो है उन्होंने आज मंगल के रोज आज

भी विनिंग रन पर हैं और पूल बी के एक मैच में पाकिस्तान की टीम ने उज़्बेकिस्तान को एक के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। मोहम्मद अम्माद जो है ओपनिंग स्कोर किया उन्होंने 18 मिनट में और वहीं पर उज़्बेकिस्तान ने एक इक्वलाइज कर दिया था और उसके बाद पाकिस्तान को थोड़ा सा संभलने में टाइम लगा, बट जब टाइम उनको संभलने में लगा लेकिन उसके बाद जब वो लौटे तो काफ़ी ख़तरनाक साबित हुए और 3 मिनट्स आफ्टर द रीस्टार्ट सुफियान खान ने पाकिस्तान को लीड दी 2-1 और पेनल्टी कॉर्नर और इनका वो 3rd गोल था 2 मैचेस में। अब्दुल रहमान उन्होंने 40th मिनट में गोल किया और अबू महमूद उन्होंने एक और गोल करके इस मैच को कम से कम देखा जाए तो उज़्बेकिस्तान के हाथ से छीन कर पाकिस्तान के जेब में डाल दिया। और पाकिस्तान का पहला मैच जो था आपको बता दूं कि 9-0 से थाईलैंड के खिलाफ हुआ था और नाउ पाकिस्तान विल फेस चाइना जिन्होंने थाईलैंड को एक के मुकाबले में 8 गोल से। और कबड्डी टीम के भी कमाल शानदार परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान की कबड्डी टीम ने 2nd win ऑफ द कॉम्पिटिशन और उन्होंने नेपाल को हराया इन ग्रुप बी मैच तोकाई सिटीजन जिमनाशियम और पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं मुदस्सर अली और इसमें पाकिस्तान भी कबड्डी अगर देखा जाए कबड्डी थोड़ा सा गल्फ रीजन के लोगों के लिए थोड़ा सा नया गेम लगेगा बट कबड्डी हैज़ अ मास प्रेजेंस इन द एशिया स्पेशली ईरान की टीम बहुत मजबूत है कबड्डी में। जबकि ये गेम जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का गेम है और कबड्डी में आज इंडियन टीम once upon a time Indian team was very good लेकिन ईरान चैंपियन है, ईरान एशिया में चैंपियन है ईरान इंडिया को हरा कर। लेकिन आज एशियन गेम्स में हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू विन अ मेडल इन द कबड्डी मेन्स कबड्डी। सो अब ये मैच जो है नेक्स्ट पाकिस्तान का मैच होगा थाईलैंड से वो कल होने जा रहा है। फेंसिंग में पाकिस्तान के बरियाल खान और मोहम्मद यासिन खान हार गए हैं, लॉस्ट ऑल 5 ऑफ द बाउट्स इन द मेन्स फॉयल इंडिविजुअल और यानी फेंसिंग में पाकिस्तान के हाथों में कुछ नहीं लगा। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी कुछ मौका है पाकिस्तान इंडिया कतर इन तीनों ममालिक के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी चांसेस हैं, फुटबॉल टीम है U23 फुटबॉल कंपटीशन है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जीत सकते हैं। अच्छा अगर थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात करूँ कि क्या क्या हो रहा है, ये तो एशियन गेम्स की बात थी, अब देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें क्या कुछ देखने को मिला है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा आशियन कप 2026 के लिए 23 मेंबर का एक स्क्वाड ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, और एक बात और भी बता दूं कि इंडियन टीम जो फुटबॉल टीम है उनका सामना होने जा रहा है पनामा से, 25 सितंबर को ये मैच होगा बेंगलुरु शहर में। ये फीफा कैलेंडर का मैच है, फीफा रिकॉग्नाइज मैच है और ना सिर्फ पनामा बल्कि इंडियन टीम इज़ गोइंग टू प्ले ब्राज़ील 3 अक्टूबर को कलकत्ता में और इसके पहले इंडियन टीम विल प्ले उरुग्वे। सो तीनों वर्ल्ड कप पर टीम के अगेंस्ट में इंडियन टीम फ्रेंडली मैचेस खेलने जाती है। सो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग हमें फुटबॉल के लिहाज से देखूँ तो इंडिया में क्रिकेट ही क्रिकेट है और लेकिन यहाँ पे फुटबॉल के ताबड़तोड़ ये जब तभी टीमें हैं उनको इनवाइट करके इंडिया ने थोड़ा सा आई विल से लाइमलाइट को थोड़ा सा खींच लिया इंडियन फुटबॉल ने अपनी तरफ। तो बेस्ट ऑफ लक टू द इंडियन फुटबॉल टीम। और यहाँ पर कतर बास्केटबॉल के हवाले से एक न्यूज़ दे दूँ कि कतर बास्केटबॉल फेडरेशन जो मेन लीग चैंपियनशिप है उसका आगाज़ होने जा रहा है 10 अक्टूबर से आगाज़ होने जा रहा है और 9 क्लबें इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम द फॉर्मूला वन रेस जो 2027 वाले जो कैलेंडर है 2027 के जो कैलेंडर है वो बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी गई है और इस कैलेंडर के मुताबिक फॉर्मूला वन कतर ग्रां प्री की लोसैल इंटरनेशनल सर्किट पर वापसी होगी जहां रेस 3 से 5 दिसंबर 2027 तक मुनक्किद होगी। तो दोस्तों ये तो टोटल आप लोगों के सामने मैंने आज अपडेट्स हमने पूरा दे दिया जहां मेडल्स भी है हार भी है जीत भी है और स्पोर्ट राउंड अप शो में आप लोगों को मैं तय दूँ। और इस सवाल पे आता हूँ कि वर्ल्ड कप क्रिकेट की तारीख में इंडिया और पाकिस्तान की टीमें कब पहली मर्तबा आमने सामने हुई थी। तो जवाब ये भी लोगों को लग रहा है कि ये काफ़ी कठिन यानी सख्त सवाल था लेकिन ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, ये इजी एक जवाब है। आरिफ अंसारी साहब वालेकुम अस्सलाम, आपने जवाब दिया है एंड आई थिंक ये करेक्ट है। 1992 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पहली मर्तबा 1975 यानी 1975 को वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ था, उसके बाद से इंडिया पाकिस्तान कभी नहीं मिले। लेकिन 1992 जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो उस टूर्नामेंट में
इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हुए और उस मैच में पाकिस्तान को हार मिली और इंडिया की जीत। और आज की आज तक वर्ल्ड कप की तारीख में अगर देखें कोई भी मैचेस उठा लीजिए, इंडिया हैज़ डिफीटेड पाकिस्तान इन अ वर्ल्ड कप, एक जिंक्स्ड है। और 1992 वो मैच हमें आज भी याद है जहां पे एक बड़ा ही मज़ेदार एक सीन हुआ था, जावेद मियांदाद और किरण मोड़े जो इंडिया के विकेट कीपर थे और विकेट कीपर के तौर पर वो इंडिया की बड़े नाम था उनका। और उन्होंने बैटिंग करते वक्त जावेद मियांदाद के पीछे कुछ बड़बड़ा रहे थे और जावेद मियांदाद इससे चिढ़ गए थे और उनका जो एक इमोटिव एक्शन था वो क्रीज पर कूदने लगे थे। एंड वो आज भी मीम बनता है, आज भी मीम्स में हमें दिखने को मिलता है जावेद मियांदाद और किरण मोरे के दरमियान वो जो एक थोड़ा बहुत आई वुड से एक मज़ेदार एक आर्ग्यूमेंट नहीं बल्कि एक स्लेजिंग कह लीजिए, किरण मोरे कुछ डिस्टर्ब कर रहा, आई मीन ही वॉज डिस्टर्बिंग द बैट्समैन जो कि जावेद मियांदाद थे। और जावेद मियांदाद इससे थोड़ा सा परेशान होकर उन्होंने पूछा भाई तुम कहना क्या चाहते हो, तो इसमें जावेद मियांदाद ने अपना एक इमोटिव एक्शन में उन्होंने बल्ले को हाथ में लिया और वो कूद पड़ गए ऑन द क्रीज पर, ही स्टार्टेड जंपिंग ऑन द क्रीज। सो दैट मैच वॉज अ वेरी एक्साइटिंग मैच एंड पाकिस्तान लॉस्ट इट, लेकिन पाकिस्तान अल्टीमेटली वन द वर्ल्ड कप। दैट वॉज वन ऑफ द टर्न बैक, ग्रेटेस्ट फाइट बैक ऑफ अ पाकिस्तान टीम हमें देखने को मिला। नो अगर आज भी हम याद करते हैं कि पाकिस्तान वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द 1992 वर्ल्ड कप, लेकिन टर्न अराउंड इतना ज़बरदस्त रहा है उस टूर्नामेंट में, तो पाकिस्तान फाइनली इंग्लैंड को फाइनल में हराने के बाद 1992 वर्ल्ड कप फाइनल टुक इट बैक होम एंड दैट वाज हाउ पाकिस्तान्स कैंपेन एंडेड ऑन अ विक्टोरियस टर्न। नेवरदलेस कि पाकिस्तान लॉस्ट टू इंडिया इन द ग्रुप स्टेजेस। सो दोस्तों ये अपडेट्स आप लोगों के सामने मैंने पेश किया और आप लोग जो है FM 107 सुनते रहते हैं और ये प्रोग्राम जो है हर हफ्ते मंगल को मैं पेश करता हूँ। और आज का स्पोर्ट्स राउंड अप, अगर आप लोगों को मजीद स्पोर्ट्स न्यूज़ अपडेट्स चाहिए तो FM 107 को सुनते और देखते रहिए, बिकॉज सोशल मीडिया पे भी हम लोग हैं और सोशल मीडिया पे भी हम लोग अपडेट्स देते रहते हैं, खासकर स्पोर्ट्स के अपडेट्स आप लोगों को सुनना बहुत जरूरी है। अच्छा जाते जाते एक अपडेट दे दूँ कि कल से अरब रीजन का जो गल्फ कप है जिसको हम बहुत ही अहमियत देते हैं बिकॉज ये इस रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, उसमें कतर के नेशनल टीम इज प्लेइंग। कतर इज इन ग्रुप बी विद बहरेन, यूएई एंड यमन। और कतर का पहला मैच जो होने जा रहा है परसों है, कतर इज प्लेइंग और फुल टीम लेकर कतर टीम पहुंची है जहां पे अकरम अफीफ भी है, हैदोस भी है और तमाम सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में खेले थे। और कतर को टारगेट है अपना फोर्थ टाइटल के लिए। 2014 रियाद में कतर की टीम की जीत हुई थी, उसके बाद से कतर हैज़ नॉट वन दिस रीजनल कॉम्पिटिशन। सो कतर के सामने ये टारगेट है, दे वॉन्ट टू विन द गल्फ कप जो कि इस बार एक नए डिज़ाइन पे एक मार्केटिंग किया गया है, द लोगो एवरीथिंग हैज़ बीन done in a neatly way. So Qatar is hoping to begin their campaign against Bahrain with a win day after tomorrow, yani parso ko, in a group B match. To aaj ka sports roundup yahi khatam hota hai, agle hafte dobara milte hain naye jazbe aur updates ke sath sirf FM 107 par. So for more updates on sports sunte aur dekhte rahiye sports news, sports roundup aur it's a gold show only on FM 107, dil se desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 1:30
4: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी,
5: ऑल राइट, सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप सब जो हैं सुन रहे हैं शोनर जी आर और सर्वर भाई, कितनी अच्छी बातें करें, बोलिए बोलिए। और माइक इन्होंने बंद कर रखा है, तो भाई कुछ लेकर आया करो, कुछ नहीं तो कम से कम अकल तो लेकर आया कीजिए। क्या मसला क्या है आपका? ये इनका हाल है भाई दोस्तों। आप अगर ऑन एयर सीन, मतलब जो आपको सुनाई दे रहा है वो तो अलग है, लेकिन जो यहाँ दिखाई दे रहा होता है ये सिर्फ हम, यानी मैं और सारा, हम दो लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं और आपको बता नहीं सकते हैं बहुत सी चीज़ें कि हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है। खैर चलिए, हम अपनी बात तो करते रहेंगे, एक घंटा है हमारे पास।

0: बहुत सारी बातें करेंगे और आज का दिन भी कुछ खास है, कुछ इंटरेस्टिंग सा है, उस पर भी बात होगी। उसी हवाले से आज का हमारा टॉपिक भी है जिसे बस अब हम जो है थोड़ी देर में ही उसको डिस्क्लोज करने वाले हैं। बट बिफोर दैट आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे नंबर्स के थ्रू, यानी आप हमें कॉल अगर करना चाहते हैं तो नंबर है 4434347 और अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो नंबर है 666-22107।
1: बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए और जैसा कि नाजिया ने बताया पूरे एक घंटे हम एक साथ रहने वाले हैं जहां पर आपकी दिल की बात जो है वो हम तक पहुंचेगी और हम समझते तो हैं ही आपको बैठ के भाई कि कुछ ना कुछ नया ही लेकर जाएं। अब मैं तो समझने के लिए ही आता हूं,
0: नाजिया
1: जी जो है जरा सिखाने के लिए
0: तो
1: आ ही जाती है। तो क्या कहती है नादिया, मैसेजेस से शुरुआत कर दी जाए यहाँ पर? ओके, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई और नादिया, कैसे हैं आप? शाद आरिफ हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर बड़ा अच्छा सा स्टीकर भी भेजा हुआ शाद भाई ने, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद भाई, मोहम्मद अनाथ, अच्छा बहुत लंबा लेटर है यार, ये तो पढ़ना पड़ेगा भाई पूरा, मैं इसको पढ़ के और
0: तो
1: फिर
0: पूरी पढ़ाई नहीं
1: की। चल हम हैं आपके साथ FM एक्सदाद, शहजादा सलीम हमारे साथ जुड़ गए। तो ये कुछ तीन मैसेज अभी तक, अब करते हैं शो का बाकायदा आगाज और श्रेया घोषाल और साथ मुजर्रद, मुझे सारा ने सिखाया ही। एक ही बार बोलता हूँ सीखने के बाद ही ला मुजर्रद सीख लो जरा कुछ तुम भी और एंजॉय कीजिए ये बड़ा ही मीठा सॉन्ग, बड़ा ही प्यारा सॉन्ग खास आपके लिए। सरवन नादिया जुड़ गए, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर आपको बताइए दिल से।

0: साथ भाई कितने प्यार से गाना गाया, कितने प्यार से बुलाया, कितने प्यार से मुखातिब हुए हैं, कोई बात ही कुछ और।
1: आप भी सीखिए।
0: तो भाई लाइन जो है पूरी तरीके से खुल चुकी है और प्रोग्राम में आप हमारे साथ हिस्सा बन सकते हैं।

0: 3443777 पे कॉल करके और वहीं अपने मैसेजेस भेज सकते हैं आप 666-22-107 पे।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर सर्वर उनासिया, हम दोनों आपके साथ हैं 137 ऑन द क्लॉक एंड वी आर कनेक्टेड। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं और इनसे बात तो करेंगे लेकिन उसके पहले हमें टॉपिक भी बताना है आपको। दोस्तों आज है 22 सितंबर और आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही खास दिन है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड कार फ्री डे, यानी ये दिन जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं इनकरेज करता है कि वो अपनी कार को घर पे छोड़कर और जो दूसरे मीन्स हैं लाइक वॉकिंग, साइकिलिंग या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब के लिए खुद को जो है थोड़ा सा मोटिवेट करें, इनकरेज करें। देखिए वैसे हम आप जानते हैं कि कार रोड्स पर होती हैं तो ट्रैफिक का भी मसला है, एयर पोल्यूशन भी है, नॉइस पोल्यूशन भी है और हमारी हेल्थ पर और इन्वायरमेंट पर कहीं ना कहीं असर तो पड़ रहा होता है। तो शायद इसीलिए आज का दिन यानी 22 सितंबर सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड कार फ्री डे। तो हमने सोचा कि चलिए आज इसी पर बात कर लेते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं, अगर आज पूरे दिन आपसे कहा जाए कि आपको कार का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप किस ट्रांसपोर्ट का जो है इंतखाब करेंगे, किस ट्रांसपोर्ट को पिक करेंगे, चूज करेंगे और क्यों? तो बस इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक कॉलर यहाँ जुड़ गए हैं।
0: और बिल्कुल साथ में आप ये भी बता सकते हैं हमें कि भाई छोटी सी दूरी को मुकम्मल करने के लिए या थोड़े से फासले में जाने के लिए क्या आप गाड़ी निकाल लेते हैं या आप ये कहते हैं कि नहीं भाई चलो पैदल होके आता हूँ।
1: आप तो एक घर भी जाना
0: आज बड़े प्यारे प्यारे दिन हैं, दूसरे दो तीन हेल्दी दिन भी हैं। आज एलिफेंट एप्रिसिएशन डे है, आज राइनो डे है, सीरियसली राइनोसोरस डे भी है,
1: बहुत मुबारक हो
0: और साथ में बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया। तो आज बड़े हेल्दी वेल्दी दिन भी है और साथ में ये तो ही है, ये हमारे साथ रहे या नहीं रहे जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं
2: है जी
1: जी जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह। 443-443-77
1: आपको रहना है हमारे साथ। बिल्कुल
2: जी जी, हाँ मैं आपके साथ SM107।
1: वाह शहजादा जी,
0: ये नहीं बोलेंगे तो बात नहीं करेंगे आगे।
1: ये सही किया है कि पहले मुझे समझो मैं हूँ कौन
2: जी। बिल्कुल जी।
1: मैं शहजादा जी। अच्छा शहजादा जी, आज है वर्ल्ड कार फ्री डे, अगर आपसे कहा जाए कि गाड़ी का इस्तेमाल आज नहीं करना है तो आप कौन सा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो पिक करना चाहेंगे अपने लिए और क्यों?
0: हाथी पकड़ेंगे, घोड़ा पकड़ेंगे, क्या किस पे जाके सवारी, ऊंट पकड़ेंगे?
2: मैं एक मेरा मतलब पैशन है ना, एक अच्छा मेरा पैशन है, मैं ना इसके
0: क्या है पेंशन
2: पेंशन इतना जल्दी अल्लाह खैर करे, चुप चुप बोलिए सरोज भाई,
0: अच्छे बोलना, अल्लाह ताला वहां तक पहुंचाए आपको यार, ये सब चीज हुआ क्या होगी इंशाल्लाह ताला। हां पेंशन है, अच्छा
2: जी जी,
0: मोटरसाइकिल पेंशन उस पे उसकी बात कर रहे हैं इंडिया वाली?
2: मैं मोटरसाइकिल का तो अलग हो गया और एक दूसरा है,
0: एक और दूसरा है
2: अपना स्केटिंग है ना, जो चार टायर है ना अपना शूज के साथ, ये ना स्केटिंग करके। हाँ सबसे बेस्ट
0: तुमसे जो देखते ही प्यार हुआ, याद आ रही है सलमान खान की, याद आ रही है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें क्या कोई ट्रैफिक नहीं और कोई पेट्रोल नहीं, कोई गैस नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी गली में भी और कहीं पर भी
0: नहीं। नहीं गैस, अच्छा गैस नहीं, ओके मैं समझ गया,
1: कोई
0: सिलेंडर नहीं है, मतलब
1: एनर्जी का,
0: ओके कोई भी एनर्जी खुद की, मतलब खुद की तो एनर्जी निकल ही रही है ना,
1: जनरेट हो रही
0: कहीं ना कहीं, थक तो नहीं है,
2: बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं,
0: बिल्डिंग
2: के रोड के हिसाब से तो क्या कहने का,
1: क्या बात है,
2: कहने।
0: और किसी का भी हाथ पकड़ लिया बीच में और चलते चले गए दूर तक,
2: चलते चले गए। हाँ लेकिन
0: यार अच्छी लाइन, मैंने सोचा भी नहीं था वाकई कि ये स्केटिंग का इस्तेमाल करेंगे, मैं सोच रहा था वाकई कोई हाथी घोड़ा पकड़ेंगे ज्यादा था
1: बहुत ही अच्छा, मैं भी समझी शहजादा है तो शायद उसी जमाने के हैं ना,
0: मैं भी यही सोच रहा था, मगर ये तो बड़े साधारण शहजादे निकले भाई, स्केटिंग करके जाना,
1: मॉडर्न वाले निकले हैं,
0: क्या बात है,
2: एकदम मॉडर्न और स्टाइलिश वाले। और हेलमेट तो लाजमी लगाना पड़ेगा, और क्योंकि अगर शुरू में अगर किसने कोशिश करी शुरू में बिना समझे, बिना सोचे, बिना प्रैक्टिस के, तो फिर अहमद हॉस्पिटल।

0: जानते हैं आप स्केटिंग जानते हैं शायद भाई?
1: हाँ मैं पहले बहुत खेला था जब इसमें बैचलर में था ना तो मैंने किया था और अभी तो पता नहीं है लेकिन अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा रोड वगैरह कैसे है ना उसे थोड़ा तो प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी वरना फिर आगे ना थोड़े से दांत है खूबसूरत
0: वो भी नहीं रहेंगे खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला दांतों को सलामत रखे
1: तो बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लेकिन ये बहुत है ना एक एक्सरसाइज भी है और एक बहुत अच्छा मतलब एक्टिविटी है।
2: मुझे लगा कहेंगे मैं वॉकिंग या साइकिलिंग कर लूंगा बट इन्होंने नहीं कहा ये वाली बात।
0: जरा बचाना चाह रहे हैं। अच्छा बताइए थोड़ी दूर जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं या अवॉइड करते हैं?
1: नहीं नहीं बहुत अवॉइड करता भाई सुबह से बैठ के स्टेरिंग पे सीट पे मतलब
0: स्टेरिंग पे बैठ रहे हैं आजकल। अच्छा
1: सीट पे बैठ के और जब भी मौका मिलता है ना अभी हमारे यहाँ से तो वॉकिंग डिस्टेंस में लेता हूँ 15 से 20 मिनट का हो ना मैं बिंदास लेता हूँ कार नहीं लेता हूँ। नहीं नहीं
2: बहुत अच्छा
1: निकालता ही नहीं हूँ मैं। हाँ वॉकिंग
2: 11 नंबर
1: की बस बहुत अच्छी है। हाँ 11 नंबर की बस बहुत अच्छी है। हाँ
2: दूर से देख के आके पिक करके जाती है
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और वो अपनी खुद ही अपनी खुद की होती है अपनी जाती होती है। हाँ। और क्या कहने फिर आपकी एक्टिविटी का इस्तेमाल करके देखे 11 नंबर की बस यकीन करे
2: बस इन्हें उतार देगी
1: वजन कम होता है बहुत वजन कम होता
2: बस
1: है
2: बस का वजन जो बढ़ेगा वो इन्हें उतार इधर चढ़ाए उतार प्लीज।
1: सरवर भाई आपने वीडियो जब देखा होगा कि ये सन 1919 की टी शर्ट रही अभी भी वो आ रही है इसी बंदे के बराबर शोल्डर में तो कोई फर्क क्यों नहीं नजर आया। तो ये 11 नंबर की बस का कमाल है सारा।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं यार ये तो आपकी मोहब्बत है और अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसी सेहतयाब रखे हमारी यही दुआ है और इसी तरह आप हंसते रहे खेलते रहे और आप इंशाल्लाह पेंशन भी लें बहुत लंबी पेंशन भी लें आप इंशाल्लाह
2: इतनी प्यारी बस 11 नंबर वाली उसमें सफर भी करते रहे
0: आप खैर के साथ। बहुत शुक्रिया शहजादा भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू
2: अल्लाह हाफिज
0: अल्लाह हाफिज।
2: ऑलराइट और यहाँ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो
3: वरहमतुल्लाह वबरकात।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकात। ये तो खादिम जी हैं भाई
0: मुझे भी ऐसे ही लग रहा है।
2: हाँ
3: जी क्या हाल खैरियत
0: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं खादिम साहब? खैरियत से हैं इंशाल्लाह।
3: मैं खैरियत से हूँ बिल्कुल। आपने सरवर भाई मुझे ऐसे धूप में बिठाया हुआ है कि अगर मैं आपको फोटो भेज दूं तो आप भी बोलोगे यार अंदर जाओ एसी में बैठो।
0: अरे यार वेरी सॉरी आपको वेट करवा दिया।
2: प्लीज आप अंदर जाइए
0: ब्रेक में आते हैं हमसे बात करने के लिए वो भी बाहर। और आज तो भाई फील्स लाइक भी 50 है
2: नहीं 44 है
3: गर्मी 44-45 है।
2: हां 50 फील करवा रहे हो आपके लिए फील्स लाइक समथिंग डिफरेंट फॉर यू इज डिफरेंट।
3: नहीं वो तो माशाल्लाह एसी मेरे ख्याल में 13 में रखते हैं।
2: हां इनका अरे
3: एसी 13 में रखते हैं ना।
2: कैसे पहचाना आपने?
3: बस ये तो मुझे मालूम है
2: मतलब हालत ये है हम लोगों की। जी नहीं हाँ सरवर भाई ये नहीं है रख लीजिए। सरवर भाई मानने को नहीं तैयार
0: है। खादिम भाई ये बताइए कि आज खासम खास दिन है गाड़ी छोड़ू डे तो क्या आप गाड़ी से अपनी इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप हर जगह उसको ले जाना चाहते हैं और अगर कभी आपको उसको छोड़ना पड़े तो आप किस चीज का इस्तेमाल करना चाहेंगे? जैसे शहजादा भाई तो स्केटिंग करके पहुंच रहे थे।
3: सबसे पहले तो मुझे मैं ये बताऊं कि मेरे पास गाड़ी बिल्कुल नहीं है। मेरी अपनी गाड़ी नहीं है मेरे साथ।
0: अच्छा
3: मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है एक बात ये हो गई।
0: इसके पीछे वजह
3: कि यहाँ कतर में मेरे पास बिल्कुल गाड़ी है ही नहीं।
0: तो आपके पास लाइसेंस भी नहीं है इसका मतलब?
2: लो सारी दुनिया को सिखा रहे हो।
3: मेरे पास माशाल्लाह ऐसे लाइसेंस है 2 लाइसेंस नहीं बल्कि 4 लाइसेंस है।
0: तो आप लेना नहीं चाह रहे गाड़ी? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ ना कि क्यों नहीं है।
3: मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। मेरे पास टाइम ही नहीं मैं सिखाता हूँ।
0: तो गाड़ी तो चला रहे हो यार हद हो गई।
3: नहीं बात तो सुनिए ना। और जो मुल्क में मेरे साथ जो गाड़ी है मेरे पास है गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बाइक भी है कार भी है अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मैं ज्यादा पैदल घूमता हूँ।
2: पैदल ज्यादा चलते वॉकिंग इनका
3: मैं ज्यादा पैदल चलता हूँ।
2: अच्छा
3: अगर मैं एक जगह

0: किसी जगह जा रहा हूँ पैदल ऐसे वॉकिंग कर रहा हूँ और कोई मुझे बोले कि आप आ जाओ हमारे साथ, मैं बोलता हूँ नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि मुझे पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा पैदल ही घूमता हूँ।
1: अच्छा, कतर में आप कहाँ से कहाँ तक पैदल जा सकते हैं?
0: कतर में अभी मैं ऐसा हूँ कि तकरीबन मैं एक घंटा कंटिन्यू।
1: आपकी रिहाइश कहाँ है?
0: किलोमीटर से मेरी रिहाइश अभी जो अर्जेंटीनियन नेबरहुड है उधर है मेरी रिहाइश।
1: वहां से कितनी दूर तक आप पैदल जा सकते हैं?
0: वहां से पैदल अगर ऐसा है ना कि टाइम, अभी टाइम की बात है, टाइम मतलब
2: गर्मी
0: ये
2: है, अभी विंटर्स में तो लंबा जा सकते हैं। हाँ।
1: अभी गर्मी की बात करें अगर फिल वक्त नाउ,
0: मैं एक सांस पे अगर चलना चाहूँ तो 9 किलोमीटर तक मैंने 10 किलोमीटर में सफर किया।
2: अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा चल लेते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: लेकिन मैं चलता हूँ बिल्कुल, उसमें ये नहीं, कभी रनिंग और कभी वॉक, ऐसे ये नहीं, चलता हूँ ऐसे,
1: दोनों चीजें मिला के
0: बिल्कुल 10 किलोमीटर तक में।
1: तो इसका मतलब ये कि अगर गाड़ी इस्तेमाल नहीं करना करनी है तो आप पैदल ही जाएंगे, बाकी आप किसी चीज का इस्तेमाल करेंगे नहीं?
0: मैं कहता हूँ कि ये नहीं, अक्सर लोग मैंने से देखे कि वो तकरीबन अगर 500 मीटर भी जाना हो उनको तो वो गाड़ी स्टार्ट करके चलते हैं, लेकिन
2: ये सर्वर भाई का तो यही
0: गलत है।
2: ये दो कदम के लिए भी कहते हैं अरे क्यों ही चलूं।
0: भाई
1: देखिए, जैसा कि हमने कल जिक्र किया था कि ये पूरा हफ्ता चल रहा है शुक्रगुजारी का, तो मैं कम से कम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ नादिया जी के सवालों पे और तोहमतों पे। बहरहाल खादिम भाई ने अच्छा बताया और ये बड़ी अच्छी यार, देखो एक साहब तो स्केटिंग से भागे चले जा रहे थे, अब ये वॉकिंग से 9 किलोमीटर।
2: लेकिन वॉकिंग बहुत ही हेल्दी है, ये जो इन्होंने ऑप्शन पिक किया है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इट्स वेरी हेल्दी।
0: लेकिन हेल्थ वाइज भी देखिए अच्छा है, सिर्फ वॉकिंग ऐसे अच्छा है, वॉकिंग वो तो ऐसा है ना, वो जब अगर आप मिसाल के तौर पर आप टायर पे घूमते हैं ना वो भी गलत है,
1: टायर पे
0: अच्छा नहीं है। वॉकिंग जो ये मतलब मिसाल के तौर अगर हाँ वो भी तो टायर लगे हुए हैं नीचे सही है, लेकिन अगर आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो वो भी अच्छा है, पैदल घूमना ये सबसे अच्छा, सबसे बेहतर वॉकिंग, वॉकिंग
2: बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा ऑप्शन, जबरदस्त।
0: और उसमें ये होता है कि उसमें एक चीज और भी ऐड करना चाहिए कि अगर आप थोड़े से थक गए तो आप बैठो मत, आप थोड़ा सा यानी ऐसे जैसे एक्सरसाइज बाजू का, हाथ ऊपर नीचे, थोड़ा सा कमर का, ये करना चाहिए तो उसमें ये होता है, तो उसमें आप थोड़े से
1: रिलैक्स हो, 200 ग्राम अपना उड़ा दूं मैं, अननेसेसरी जमा कर रहा आदमी एक तो सही है। खादिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया,
0: मैंने 38 बार कल मैंने 38 बार कॉल किया था किसी ने,
1: मैंने देखा था फोटो आपने भेजा था,
2: नहीं बड़ा अफसोस हुआ सर्वर, आपने भाई क्यों नहीं उठाते भाई की कॉल,
0: ये सर्वर भाई मेरे साथ मालूम नहीं क्या ज्यादती कर रहे हैं कैसे।
2: नहीं भाई हम सच बताएं, आप ना मैसेज कर दिया कीजिए हम लोग को कि आप कॉल कर रहे हैं तो हमें
1: मैसेज भी कहां पढ़ने देती हैं आप,
2: क्यों आप तो भरपूर पढ़ रहे हो।
0: असल में 107 के जो चाहने वाले माशाल्लाह इतने हैं कि ये ऐसे नहीं, मैं नाराज नहीं होता कभी भी।
1: अरे अरे अरे
2: माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात,
0: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अगर आप हो भी जाते हैं नाराज तो कुछ नहीं कर पाते आप, क्योंकि हम आपको मना लेते प्यार मोहब्बत से, डर लगता है मुझे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया हाजिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच,
2: अल्लाह हाफिज। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जो है वो जुड़ रहे हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कौन है हमारे साथ? आसिफ अंसारी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी खैरियत?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों भी खैरियत से हैं। सरवर भाई बोल क्यों नहीं रहे, आप हंसी क्यों आ रही है?
1: जी आसिफ भाई कैसे मिजाज, खैरियत से है?
3: अरे अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी खैरियत है?
1: अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं, कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका?
3: बहुत अच्छा
1: माशाल्लाह। तो क्या कहते हैं यार भाई, आसिफ भाई आज एक दिन के लिए अगर गाड़ी छोड़नी पड़े तो क्या आप कैसे अपनी जो सफर है उसको पूरा करेंगे, अपने सफर को
2: किस ट्रांसपोर्ट को आप पिक करेंगे?
3: मेरे को बाइक ही पसंद है।
2: बाइक? ओहो, कहते
3: हैं कार है, सारी बाइक है, सिर्फ बुलेट।
2: अच्छा सिर्फ बुलेट, ओहो یعنی انہوں نے کلیئر رکھا کہ میں جو ہوں اور آپشن سے ادھر ادھر دیکھوں گا ہی نہیں.
1: اچھی بات ہے, کم سے کم
2: آپشن نمبر ٹو میرے لیے سیٹ ہے.
1: اچھا اور اگر قطر میں ایسا کرنا پڑ جائے, یہاں پہ تو بلٹ ہے نہیں آپ کے پاس,
2: اور
3: یہاں پہ نہیں ہے
1: تو کیا کریں گے؟
3: میٹرو ہے نا,
1: یہ بات یہی تو سننا چاہ رہے, کسی نے تو میٹرو پکڑی, خالی جا رہی میٹرو, بتائیے کوئی جا ہی نہیں رہا.
3: سب سے بیسٹ آپشن میٹرو, دو ریال میں کہیں بھی جائیے آپ.
1: بالکل بھائی بالکل, ہماری آپ کی سہولت کے لیے فالتو میں میرا 200 گرام کم کروا رہی ہیں کہ 9 کلومیٹر چلو کہ 5 کلومیٹر چلو,
3: چل کے پتا ہی
1: کیا فائدہ ہے. ارے یار آج کے جاتے کل جا رہا ہے آدمی, کچھ بتائیں. ارے بتائیے بھائی, اگر کل نکل جائے انسان کو تو کم سے کم بریانی کھا کے گیا اور قورمہ کھا کے گیا.
2: آپ کہیں جائیے ایک بار ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے.
3: ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ دبلے ہوتے ہیں وہ لوگ سوچتے ہیں یار میں موٹا ہو جاؤں موٹا ہو جاؤں.
2: اچھا
3: پریشان ہے وہ,
2: ایسے لوگ بھی ہیں جو موٹے ہونے کے لیے پریشان ہیں. اچھا
3: بہت لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں.
1: نہیں بالکل صحیح بول رہے ہیں, میں آصف بھائی کے ساتھ ہوں.
2: آپ کا تو
1: ایک ہی طرف سے تھوڑی, ایک ہی طرف سے تھوڑی بات ہو سکتی ہے. آپ سبزیاں کھا کے بتائیے, اگر کل نکلنی ہے آپ, میں کہنے کا مطلب چھٹی چلی گئی تو آپ کیا حاصل وصول ہوا تھا؟ سرور مرزا گیا بھائی, بریانی کھائی, قورمے چمکائے, ناند کی روٹیاں سیکھی, کیا زندگی گزاری, کیا زندگی گزاری بھائی, واہ واہ واہ.
2: نہیں
1: شاکاہاری ہونے کے لیے بھی تو بہت, تو دیکھیے آپ بھی جو ہیں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں نازیہ جیسے کرتی ہے, ایسی بات نہیں ہے.
2: سرور بھائی آپ نے کہا کہ نہیں تو سبزی تو میں بھی گزاری گزاری نہیں گزری.
1: یار دیکھیے سبزیاں میں بھی کھا رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے, بہت اچھا سا طریقہ ہے.
2: آپ بیچ بیچ میں جان بھی تو کھا رہے ہیں.
1: نہیں نہیں آپ کسی بھی بکرے کو, چھوٹے جانور کو, بڑے جانور کو, مرغی کو سبزی ترکاریاں کھلائیے, اس کے بعد اس کو ماشاءاللہ حلال کر کے اس کو کھائیے. جا رہی ہیں سبزیاں, دیکھیے ساری میرے اندر بھی جا رہی ہیں, ایسی بات تھوڑی ہے. خالی آپ ہی کھا رہے ہیں سبزیاں, ہم نہ کھائے
2: تو ہم کیا چاہ رہے ہیں, میں شیر مار کے
1: نہ وہ بکرا کھائے نہ ہم کھائے ہیں, ایسے ہو سکتا ہے؟ چلیے بھائی آصف بھائی, مگر بڑا افسوس ہوا یار آصف بھائی آخر میں یہ سن کے کہ آپ شاکاہاری نکلے.
2: نہیں مجھے خوشی ہوئی, مجھے تو اچھا لگا تھا.
3: میں اتنا جو ہے شروع سے نہیں اوائڈ کرتا ہوں زیادہ تر.
1: اچھا
2: تو آپ فٹ ہوں گے ماشاء اللہ. جو ہے
1: ادھر ہے بس تھوڑا سا,
2: آپ کے آگے ون اور لگ گیا. لیکن چلیے بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور یہ جان کے کہ آپ نے اپنے لیے
1: کم سے کم آپ نے ماشاء اللہ تھوڑا ہاں ذہن بھی چلایا, اپنا دماغ چلایا, آپ نے میٹرو پکڑ لی, لوگ پیدل بھاگ رہے, اسکیٹ پہ بھاگ رہے,
3: کوئی
1: فائدہ نہیں ہے. بتائیے دبا دی ذرا سا درد ہو رہا ہے, ہاں بتائیے بھائی.
2: ارے نہیں نہیں یہ تو اچھی بات ہے, ہیلدی بھی ہے نا آپ تو.
1: چلیے کوئی بات نہیں یار, آپ میٹرو مت, آپ گدا کر لیے گا, آپ میٹرو میں مت جائیے گا نازیہ, کیا مشکل ہے. اوکے آصف بھائی بہت بہت شکریہ,
2: تھینک یو سو مچ,
1: تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. ارے ایک بریک تو بنتا ہے یا میسجز, یہ ایک کنٹل ایک کنٹل میسج.
2: اچھا میرے پاس کالز بھی آ رہی ہیں بہت ساری,
1: یہ کون پڑھے گا میسج؟ نازیہ توفیق بھائی ہیں, سرور ہیں نازیہ. السلام علیکم توفیق البدرا سے. السلام علیکم سرور بھائی اور نازیہ میم, کیسے ہیں آپ دونوں؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے, اللہ آپ کو خوش رکھے اور ہم کو بھی, دعا میں یاد رکھیے. شوکت علی خان صاحب اور یہاں ان کی گڑیاں ہیں جو فوٹو دیکھ رہا ہوں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ نظر سے بچائے بھائی. اس کا نام بتائیے گا کیا ہے, مہندی لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. یوسف بھائی ہمارے ساتھ, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ آفٹر نون جی, اور سرور بھائی کیسے ہیں آپ دونوں؟ ہوپ ویل, ویلکم ٹو انرجی آر دل سے دیتی. یوسف خان ٹیوزڈے ایوننگ, سب کو مبارک. نادیہ جی آج ایلیفینٹ ہیلدی ڈے ہے تو آپ سرور بھائی کو دیکھ کے ہنس کے مبارکباد کیوں دیے؟ یوسف خان قریب رہا تو بائی واک, اچھا اب یہ جواب پہ آ گئے, دور رہا تو بائی میٹرو. یوسف خان
2: नाइस देखो वॉकिंग भी और
1: किसी और ने भी इस्तेमाल करी
2: नहीं उन्होंने देखो अकल इस्तेमाल भरपूर की पास रहा तो वॉक भी करेंगे
1: हेलो
2: अच्छा खासा मेट्रो
1: कहते हेलो आई वुड लाइक टू ड्रॉप एन एडवर्टाइजिंग अच्छा बिल्कुल आप कर सकते हैं और जैसा कि आप सुनते हैं आप हमारा जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आप बात कर सकते हैं वाई नॉट बिल्कुल आपके लिए ये आसानी भी है कतर मीडिया कॉरपोरेशन की जानिब से नंबर आप अभी हमारे बीच बीच में सुनते ही हैं थोड़ी सी देर में अभी
2: एक
1: हाँ तीन मिनट बाद
2: व्हाट्सएप पे आप फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा नाउ अब हम कॉल ले लें क्या आर यू डन और स्टिल
1: ओके नहीं मैसेज तो हमारे पास अभी 50 और हैं बट कोशिश करेंगे अभी कॉल ले ली हमने हाँ कनेक्ट कर दिया है
2: हेलो
4: सलाम अलैकुम
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ये तो तौफीक जी हैं
1: अल्लाह तौफीक
4: yes.
1: हम सब को अल्लाह ताला तौफीक दे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक भाई कैसे हैं कैसा लग रहा है अभी अभी आंख खुली आपकी किसी ने पानी डाल के उठाया या खुद खुल गई अलार्म से
4: आप होती कोई आंख बंद कर सकता है
1: हाय हाय हाय हाय हाय मेरे होते आंखें कोई बंद कर सकता है क्या बात है यार ये है आज का देखिए पंच
4: नाजीबन एक बात आप कैसी लगी आपने सर्वर को एलिफेंट बोला
1: बताइए नाजी आपने बोला क्या
2: कब बोला कब
1: आप ये नहीं देखिए सबूत मिल गया मुझे अब मैं सीधा जा रहा हूँ अदालत
2: कब बोला
4: एलिफेंट नहीं मैं उसके साथ है कोई कम नहीं हुआ आप सही बोल रहे हैं
1: दो हो गए एक दिन लग रहा है तो बना ही लूंगा
4: मैं उसके साथ अभी क्या है अभी चल जाओगे अदालत नहीं जा सकोगे
1: क्यों
2: बीच में वॉकिंग तो कराएगा
1: आज गाड़ियां वैसी बंद है
2: आज आपको इतना वॉक कराएं इतना वॉक कराएं
1: क्या बात है भाई तौफीक भाई बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी का आते ही आपने दो तीन बातें बड़ी अच्छी करी बड़ी अच्छी लगी माशाल्लाह अल्लाह तौफीक दे
2: पूछते हैं इनसे भी तौफीक जी से आप किस ऑप्शन को पिक करेंगे
4: मैं सर्वर की तरह बेड से नहीं उतरूंगा
2: बेड से ही नहीं उतरूंगा
1: ओ जाएंगे ही नहीं
2: आज का दिन कार फ्री डे
1: अच्छी लाए अच्छी लाए हाँ क्यों क्यों जाए भाई अपने आपको क्यों गलाए अंदर से सरी आदमी खाली बैठा घर में वाह
4: जब किस चीज के अड्डे होते तो वही पूरा करना पड़ेगा ना तो घर में ही बैठो किधर भी मत लेको ना पैदल ना कुछ
1: बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे
2: आज की बेस्ट रही है तो कि मैं बाहर ही
1: नहीं सबके माशाल्लाह मुख्तलिफ जवाब आए यार ये बड़ी बड़ी अच्छी रही बात कि सब अपने अपने हिसाब से काम चला रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है अननेसेसरी किसी के कहे पे नहीं
2: तौफीक जी का तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे अच्छा गया है कि हम जाएं
1: क्यों जाएं क्यों घूमो
4: वैसे विलन लोग तो दूसरे लोग को चलाता है ना सर्वर बाय की तरह दूसरे लोग को चलाता है
1: समझ में नहीं आई
4: विलन यू आर गब्बर
2: गब्बर इज बैक
1: हंसना था हंस देता हूँ चलिए साहब तौफीक भाई
2: इसमें समझना
1: बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए
2: थैंक यू जी बहुत शुक्रिया
1: आंखें खुलते ही आपकी आंखें खुलती हैं अल्लाह की शुक्र है आपकी आंखें खुल गई मतलब कहने का ये है कि आपकी आंखें खुलते ही आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं ये आपकी मोहब्बत है यार ये आपकी मोहब्बत है अल्लाह ताला आपकी आंखें खोली रखे और ऐसी जब भी आपकी आंख खुले आप हमारे साथ जुड़े मिले बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक भाई
2: थैंक यू सो मच
1: ये थे हमारे प्यारे से तौफीक भाई हमारे साथ और यहाँ पर बड़े बड़े लेटर भी हैं मेरे पास
2: एक और कॉलर भी हमारे साथ है
1: मुझे लगता है कि हमें अच्छा आपने कॉल रिसीव कर ली है इसी से फोन को मैं अपनी तरफ रखना चाह रहा था हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: जी
5: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू
2: कितनी अच्छी कॉल इतने टाइम के बाद मुबीन जी से बातचीत मबरूक कॉल करने के लिए
5: नहीं मैंने कहा नाजिया मैम एलिफेंट डे भी मनाने लग गए आजकल
1: बना रही हैं आप
2: मैं तो बता रही
1: हूँ अबे मेरा मतलब भाई एलिफेंट डे नहीं है आज उसका एप्रिसिएशन डे है आप अच्छी अच्छी बातें करें मुझसे
2: अब आप इनको एप्रिशिएट करें
1: आप अच्छी बातें करें तारीफ करें
5: मैं चक्कर में पड़ गया ना कि ये डे वो डे
2: कौन सा डे ये कह रहे मैं तो कंफ्यूज हो गया कि एलिफेंट डे सर्वर डे मतलब कितने
5: दिन मैं लास्ट टाइम सैलून वालों का था टोपी मत बनाना चारों तरफ बाल रखना क्योंकि चाहे यहाँ हो या वहाँ हो ऐसे बैठ गए सलूनों पर जो सिर्फ टोपी बनाते हो प्रॉपर बीच साइड में बिल्कुल गंजा ये बहुत बड़ा दुखद
2: अच्छा ये मैं समझती हूँ आप लोग पर्पसली इस तरह का फैशन अडॉप्ट कर रहे हैं
5: अरे नहीं मैं पैर पकड़ने पड़ते भाई अल्लाह की तुझे मालूम है
2: ये गड़बड़ हो जाती है
1: हेयर कट तो घर पे भी अम्मा कर दिया करती थी, कटोरी रख के ऊपर सर पे,
5: कोई तो परेशानी नहीं है। कौन बैठ के?
1: अच्छा गाड़ी के हवाले से भी बात कर लो मोमिन भाई। आज गाड़ी नहीं है, बंद है गाड़ी, फिर क्या करेंगे?
5: हाँ तो वही मैं कह रहा था सर, मगरिब के बाद अगर मुझे मौका मिलेगा तो एक सांस के अंदर 20 किलोमीटर तो कंफर्म है।
2: पैदल?
5: ढाई घंटे के अंदर
2: पैदल?
5: बिल्कुल पैदल, ढाई घंटे में 20 किलोमीटर कंफर्म।
2: अरे बाप रे,
5: किसी को जासूस के लिए पीछे लगा दो मेरे
1: इतने पैदल, मतलब मेरे इतने पैदल चल पा रहे यार, कमाल यार।
5: और एक बात बताता हूँ मैं आज 4-3 साल पहले जिनके लिए आया था जैसे नए एकदम ब्रांड
1: आए वो घिस गए, बताइए पुराने हो गए 4 साल में यार, ये कोई बात
5: नहीं।
2: चल चल
5: पड़े मेरे पास जूते।
1: अच्छा अभी बहुत पड़े हैं जूते में, मतलब वो पड़े वो जूते घर में पड़े हुए हैं ये कहना चाहते हैं मेरा ख्याल में।
5: अरे सर वो याददाश्त में रखे हैं आप ही, ना मेरा खून पी जाते हैं तो वो जूते रखे हैं ऐसे मैंने देखने के लिए। मैं मुश्किल से चला, हाँ और क्या, मैं मुश्किल से डाउनटाउन जल्दी ब्रिज पर से ही।
1: अच्छा
5: वहाँ हमारा रूम था जहाँ पे नंबर लिखा ना ब्लू, उसके अंदर वहाँ से मैं पैदल चला स्पायर गार्डन।
1: अच्छा
5: उससे भी आगे तीन के तकरीबन 20 किलोमीटर
1: उसके बाद चार आदमी पहुंचे, मतलब इन्होंने कॉल करा कि भाई मुझे यहाँ से आके ले लो कोई, अब यहाँ तक पहुँच तो गया।
5: दूसरे दिन क्या हुआ? हाँ दूसरे दिन मैं वॉशरूम में गया था।
1: अच्छा दूसरे दिन वहाँ से वापस आए, फिर इतना चल के निकल गए 22 किलोमीटर, दूसरे दिन ही वापस आए होंगे पैदल लगाए
2: शहर।
5: नहीं नहीं
1: नहीं वो
5: अरे जवान आदमी को थोड़ी पता चलता, आप भी ऐसी बात करते हैं राजा भाई, ये समझते नहीं है।
1: अच्छा है भाई, अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है मोमिन भाई, अल्लाह ताला आपको सेहतियाब रखे और इतना लंबा लंबा आप चलते भी रहे।
2: अच्छा लगा, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा लगा कि आप इतना वॉक कर लेते
1: और आप आज तशरीफ लाए, आपने सोचा कि आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू,
5: चेंज कर दो सर, 11 बजे वाला टाइम तो बहुत अच्छा रहेगा,
1: टाइम होता है अभी करवा रहा हूँ, बस आपकी कॉल रखते ही अभी चेंज
2: हो जाता
1: है। ठीक है
5: नादिया में
1: ओके
2: आते टाइम मिले
1: आते अल्लाह हाफिज़। तो भाई एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यूं गए हम और यूं वापस आए।

0: यहाँ कतर में पैदल चलना थोड़ा कम ही हो पाता है।
1: बताइए ने वॉक
0: शौक है आपको, स्की का शौक? अरबाज खान, सलमान खान के छोटे भाई, भाई हमारे साथ भाई। जुड़े हुए हैं, कितनी बड़ी बात है नादिया। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, एंड सरोज भाई कैसे हो आप? नादिया जी आज पूरा शो सरोज भाई की करेंगे क्योंकि आज बहुत खास और एप्रिसी तो बनती है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ, और फोटो भेजा हुआ, कह रहे हैं ये बंदा कौन है सरोज भाई? ये वही है जो और सब परेशान करके जाते हैं, ये उन्हीं का ही फोटो है। बस ये है कि ये थोड़ा 30-40 साल पुराने हो गए हैं इसके अंदर, अब पता नहीं कितने बाकी हैं और कितने नहीं। कह रहे हैं मैं टांगे में जाना पसंद करूंगा।
1: कहाँ पे?
0: एहतराम।
1: कहाँ?
0: नहीं टांगा, टांगा यार घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी,
1: टांगा बोलो या टांगा,
0: टांगा टांगा
1: हैंगर पे टांगा,
0: टांगा अच्छा टांगा। मुझे पैदल चलना बहुत पसंद है लेकिन 9 किलोमीटर नहीं, 1-2 किलोमीटर तक बस। मुमताज भाई
1: हाँ 1-2 तो मैं भी चलती
0: हूँ। क्यों जा रहे हो मुमताज भाई, आपको परेशान कर रहे हो नेसेसरी, 2 किलोमीटर क्यों? असमर भाई प्लीज डोंट शेयर दिस मैसेज ऑन एयर, ये तो मैंने पढ़ दिया कादिम भाई।
1: था क्या? अब हम लोग ले लें कॉल्स के? नहीं ले सकते हैं सरवर भाई,
0: ले लीजिए ले, मुझे मैं पड़ेगा।
1: थैंक गॉड आपने इजाजत तो दी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए। हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि
1: वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये तो नसीम जी लग रहे हैं।
2: नहीं
1: नहीं फिर आपका नाम?
2: मतलब सरवर भाई समझ गए।
1: अरे जयस भाई होंगे फिर तो। सही पहचाना मैंने? अरे भाई बोल दीजिए। हाँ ना सरवर भाई आपसे मुखातिब है।
2: सरवर भाई इसलिए खामोशी, एक बात बताइए सरवर भाई का तो आज टॉपिक लग नहीं रहा है, आप आपका ही टॉपिक लग रहा होगा, आप ही ने पिक किया होगा ये टॉपिक आज। हाँ
0: जासीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कैसे हैं आपका, कैसा दिन
1: गुजरा? मुझे लगता नहीं क्या मुरादाबाद से, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रामपुर से हैं।
2: नहीं क्यों?
1: मशहूर जो है रामपुर।
2: नहीं हम इतने मशहूर नहीं है ना।
0: नहीं नहीं अरे जासीम खान साहब क्या बात कर रहे हैं आप?
1: अरे चलिए आसपास से है ना, मुरादाबाद के पास में है रामपुर,
0: ये भी वहीं की हैं जसीम भाई,
1: इसीलिए तो पूछ रही हूँ।
0: ये भी आपके पड़ोस की हैं, मसला ये है सारा का सारा।
1: अच्छा आज का मुद्दा
0: तो क्या कहते हैं जसीम भाई के, अगर गाड़ी बंद हो जाए तो क्या करना होगा आपको?
2: क्या करना होगा भाई साहब, रूम में चला निकलना का बिल्कुल
0: ये भी नहीं निकलेंगे। नहीं फिर भी अगर मतलब
1: कोई डांट वाट के बुलाई ले,
0: मतलब अब जाना है, कोई जरूरी है, दावत है, दोस्त बुला रहा है, टीम बुला रही है, कहीं है जाना है,
1: घर में ही है?
0: नहीं घर पे नहीं है, फिर क्या?
2: अगर गाड़ी की सुविधा है तो भेज दीजिए, नहीं तो हम आएंगे ही नहीं बिल्कुल भी।
0: अरे नहीं फिर भी जाना पड़ जाए, समझा करो, जाओ निकलो जरा सा घर से बाहर तो क्या करोगे?
1: व्हीलचेयर, व्हीलचेयर
2: पैदल चलने की आदत ही नहीं है बिल्कुल भी भाई साहब, जाएंगे नहीं।
0: नहीं सही कह रही है बेगम ने बुलाया, अगर नहीं गए तो व्हीलचेयर पे ही जाना आना पड़ेगा, फिर कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास बचेगा नहीं।
2: दूसरा कुछ ना कुछ जो है ना जुगाड़ निकाल लेंगे भाई साहब, अच्छा कर देंगे, टेंशन मत लो।
0: अच्छा हाँ। गाड़ी के अलावा फिर भी क्या पसंद है? घोड़ा हाँ, गाड़ी
1: तो व्हीलचेयर पे
2: व्हीलचेयर
1: पे मतलब बीवी बुलाए नहीं अगर आप पहुंचे तो फिर व्हीलचेयर पे जाए,
2: सरवर भाई को कहा और हमें कहा?
1: सरवर भाई को नहीं मैं आपको बता रही हूँ, बीवी बुला रही है, आप कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे,
0: साइकिल
1: किस पे जाएंगे?
0: मोटरसाइकिल है, गाड़ी नहीं है,
2: अगर फोर व्हीलर।
1: अरे मेट्रो, मेट्रो पे क्यों नहीं जाते?
0: मेट्रो पे क्यों नहीं?
1: क्या मसला क्या आपका?
0: क्यों नहीं जा रहे भाई? हमारे कथन ने इतनी बनाई है, इतनी अच्छी सर्विस है,
1: क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं?
2: हमारे मुरादाबाद में है नहीं मेट्रो।
1: आप यहाँ से मुरादाबाद के मेट्रो से जाने की सोच रहे थे?
0: हाँ हो सकता है,
2: यहाँ के लिए मैं यहाँ पे भी नहीं जाऊँगा मेट्रो।
0: अच्छा वैसे मेट्रो में सफर किया आपने जसीम साहब?
1: ये कह रहे मैं जाऊँगा ही नहीं,
2: कतर में नहीं किया
0: जब ही। ये देखिए मैं जानना चाह रहा था क्यों आपने
1: क्यों किया,
0: क्यों रखा?
2: नहीं भाई क्योंकि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कार है अपने पास रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कार तो यार छोड़ के भी जाना चाहिए यार, आप एक बार करके देखिए, आप इतना खुश हो जाएंगे कि मैं बता नहीं सकता, आपका इतना वक्त बचेगा, कोई इवेंट वगैरह है अगर तो उसमें जाके देखिए, कोई मॉल वगैरह के पास आप जाकर

0: चलना चलिए आप कभी कभी पैदल चलना चाहिए।
1: अरे ना हमारे अंदर वैसे ही वजन कम
0: होगा। अरे वजन कम नहीं होगा आपका, आप हेल्दी रहेंगे, अच्छा फील करेंगे। चलिए थोड़ा
1: नहीं, मैं वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हेल्दी हूं, फिट फाट हूं।
2: क्या बात है, मेरा भाई कहना,
0: मेरा कहने का मतलब दूसरे भी
2: भाई जैसा,
0: दूसरे भी आपसे बात करके अच्छा फील करेंगे। थोड़ा सा मौके
1: नहीं नहीं दूसरे
2: इनकी बात सुन लो, ये इनको अच्छा लगेगा, बस ये है मामला।
0: नहीं हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बोल रही।
2: चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया जसीम भाई, बड़ी प्यारी बात
0: है
2: और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे भाई।
0: थैंक यू सो मच।
2: इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात और बात होती है। कुछ मैसेजेस यहाँ पर
0: अभी एक बहुत देर से कॉल,
2: बिल्कुल बिल्कुल हम अभी ले रहे हैं। कह रहे हैं ओ मेरे भाई भाइयों जल्दी कॉल करो, मैं आप दोनों को बहुत मिस करता हूँ। फ्रॉम करीम शाह, बहुत टाइम हो चुका है कॉल कर रहा हूँ, लग नहीं रहा लाइन बिजी है, मैं आप दोनों को बहुत मिस करता हूँ। करीम शाह कह रहे हैं करीम भाई कहाँ हो आखिर यार,
0: जैसे हमें टाइम मिलता है मतलब जैसे फ्री होता है।
2: ओके
0: लाइन फ्री होती है
2: सरोवर भाई की। कबीर साहब एक मैसेज का कह रहे हैं कि मैं प्लीज पढ़ो सरोवर भाई, प्लीज पढ़ो, हाथ पैर जोड़ रहे हैं मेरे सामने, गिरगिरा रहे हैं जमीन पे, लेट रहे हैं मेरे सामने हाथ जोड़ जोड़ के, कह रहे मैं सरोवर भाई की पिड्डी पे सफर करता अगर मेरे पास गाड़ी नहीं होती। लीजिए साहब पढ़ दिया आपका मैसेज कबीर साहब, और मैं बहुत खुशी से आपको घुमाता अपनी पिड्डी पे बिठाल के, आज ही इंशाल्लाह आज आपको आज आपको पिड्डी पिड्डी करवाता हूँ। देखिए आ रहा हूँ मैं आज, और आज मुंतजा और मंसूरा और जितने लोग उधर हैं जरा सा ये देखिएगा कि क्या हो रहा है एक आदमी के साथ जो पिड्डी पे बैठना चाहता है।
0: कहाँ पे बैठना चाहता है?
2: पिड्डी
0: पिड्डी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं। हेलो।
3: हाँ जी
0: हाँ जी। ओ गाबा जी कैसे हैं आप?
3: वेरी वेल जी, उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों भी बहुत खुश हो गए जी।
0: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुश हैं, और आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं जब है नो या फ्री कार डे।
3: जी
0: तो अगर आपको कहा जाए कि आपको आज गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप जो हैं वो किस ट्रांसपोर्ट को पिक करेंगे और क्यों?
3: सबसे तो पहले
0: सरवर भाई पहले तो अंडरले हल्का कर दीजिए थोड़ा सा। थैंक यू जी।
3: हाँ जी सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सरवर भाई से।
0: अच्छा वो अभी बिजी हैं।
3: हंसी बंद होगी इनकी या नहीं? अभी
0: इनकी बंद हो गई है, इनकी उंगलियां जल रही है, धड़ाधड़ मैसेज कर रहे हैं धड़ाधड़ लोगों को।
2: जी जी गब भाई मैं आपके साथ ही हूँ।
3: सरवर भाई एक बेनती थी आपसे।
2: हाँ।
3: अगर आपकी पिड्डी पे ये अपना कबीर भाई के साथ यार मुझे भी थोड़ी सी जगह मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी यार, ये तो बहुत हसीन होगा,
0: हेल्दी होगा ये सफर।
2: आप पहले देख लीजिएगा कि उनका सफर हुआ कैसा है, उसके बाद फिर आप डिसाइड करिएगा।
0: आप ये देखिएगा उन्होंने सफर किया कि सफर किया।
2: हाँ ये जरा तो देख लिए एक बार, आज मौका तो दिया उनको एक बार और मुझे भी मौका दिया।
3: आई कैन एडजस्ट विद कबीर भाई।
2: अच्छा
0: अरे ये तो पता कीजिएगा
2: ना, बहुत प्यारा ना लगता है, बहुत प्यारा ना लगता है। वाह भाई वाह।
0: वो ही कह रहे हैं ये दिन एक ही बार तो आएगा, भाई कुछ अगले साल आएगा,
2: कुछ नई ही लेकर आएंगे मुझे पता है।
0: हाँ, भाई कुछ तो नया होगा। हाँ।
3: बिल्कुल सर्वर भाई, एक्चुअली चक्कर पता क्या है?
2: हाँ।
3: यहाँ पे अपने विदाउट कार बहुत सारे ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर यही सफर हमें इंडिया में करना पड़े विदाउट कार तो मैं प्रेफर करूंगा एक चीज है जिसको हम लोग टेम्पो बोलते हैं सर, जिसका वो नाक निकला है ना,
2: और क्या कह नहीं सकता
3: उसके फायदा आपने भी खाया
2: जुगाड़ की जो बात कर रहा हूँ, हमारे यूपी वाले समझ रहे होंगे, दिल्ली वाले समझ रहे होंगे जुगाड़ क्या होता है और क्या कहते हैं।
3: इतनी इतनी मस्त चीज है ना वो यार, उसका इंजन भी बिल्कुल स्टेयर के साथ में ही होता है
0: और आगे वाले टायर पे बैठा जाता है सर्वर भाई।

0: आप यकीन मानिए पुराने समय में ना
1: जी
0: हमारे वहाँ पे जो बराती जाते थे ना उसी का यूज किया जाता
1: बिल्कुल,
0: था
1: बिल्कुल
0: उसके पीछे स्पेस बहुत होता
1: एग्जैक्टली जगह होती है बहुत बैठने की उसके अंदर और आराम से चले भी जाते हैं उसमें झटके इतने ज्यादा नहीं लगते एक्चुअली जितने हमारे टेम्पू में लगते
0: ज्यादा नहीं लगते क्योंकि एक तो थोड़ा सा बड़ा होता है और उसमें बंदे बैठने वाले ज्यादा होते हैं और सर्वर भाई पहले पता क्या सिस्टम होता था पहले पेड़ वगैरह बहुत ज्यादा होते थे क्योंकि वो तो ओपन रहता है ना ऊपर से इतना गर्मी का भी एहसास नहीं होता था
1: यस क्या बात कही यार वेरी गुड देखिए कितना इन चीजों पे असर पड़ा है अब नादिया ये बड़े लोग आप ये बात समझ नहीं पाएंगी अब जो मखमल के गद्दे पे तो कभी उतरा ही ना हो वो कहाँ समझेगा जुगाड़ और ट्रैक्टर और टेम्पो
2: ट्रैक्टर तो समझती हूँ जुगाड़ नहीं समझ पा रही
1: आप देख के समझती है ना आपको पढ़ाया टी फॉर ट्रैक्टर आप ये समझ तो जानती है आप ट्रैक्टर के बारे में कहाँ जानती
2: नहीं मैंने टी फॉर ट्रक भी पढ़ा है
1: वो भी वही पढ़ा अच्छा तो गाबा भाई खुद काय पे सफर करते वैसे टेम्पो अगर नहीं है देन
0: नहीं यहाँ पे बोल रहे हो या इंडिया में
1: यहाँ ऑब्वियसली इंडिया में तो बहुत जुगाड़ है यार
0: यहाँ पे तो सर्वर भाई मेट्रो जिंदाबाद
1: कतर मेट्रो जिंदाबाद बिल्कुल सही
0: सर्वर भाई मेट्रो को डिजाइन ही उस हिसाब से किया गया है देखिए ये 2025 के बाद में जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन थी ना लुसेल में
1: जी
0: उसमें पॉसिबल था ही नहीं भी आप अपनी गाड़ी लेके जा सको वहाँ पे
1: ऐसे काफी इवेंट्स हैं गावा भाई
2: फीफा के टाइम
1: हम जिसमें जाते हैं हम जिन इवेंट में पहुंचते हैं नादिया उसमें हमें एहसास होता है कि वाकई इसके बगैर मुमकिन
2: नहीं था
1: ये सारे के सारे इवेंट कतर में माशाल्लाह से जिस तरीके से अरेंज होते हैं मैनेज किए जाते हैं
0: सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है ना यार आप देखो अगर आपके पास कार नहीं है मोस्टली हर घर के 500 मीटर के पास शहर में मेट्रो का स्टॉपेज है सबसे बड़ी फैसिलिटी तो यही है
1: सही
0: आपके ये पैसे बच गए स्टेशन तक जाने के उसके बाद दो रियाल तो क्या यार बड़ी अमाउंट है सर्वर भाई
1: बिल्कुल
2: और आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं ये भी मैंने देखा आप गाड़ी से जाइए आपको टाइम लगेगा अच्छा खासा लगेगा आप आराम से मेट्रो से जल्दी पहुंचते हैं तो और सुकून से पहुंचते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है
0: जी नाजिया जी आपने वाकरा से मॉल ऑफ कतर जाना है ना बाइक ऐप तो आपके 30-40 रियाल इजीली लग जाएंगे
2: आराम से ज्यादा ही लगते
0: अगर अप एंड डाउन करना है तो और ऐड कर लीजिए इसमें अगर मेट्रो में जाना है तो 4 रियाल
2: बताइए कितना आसान है और यहाँ पे गवर्नमेंट कितनी अच्छी फैसिलिटी हम सबको दे रही है मेट्रो देखिए कितनी अच्छी मेट्रो है हर एक का ख्याल रखा जाता है सबके लिए सीट्स हैं फैमिली हो चाहे वो हो मतलब बहुत ही कन्वीनियंट है तो हमें इसका मैक्सिमम इस्तेमाल करना भी चाहिए
0: नाजिया जी लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा आज के दिन के हवाले से
2: जी जी
0: सर्वर भाई के बहुत ही अजीज दोस्त हैं दो उन्होंने इनको अपनी तरफ से पैगाम भेजा है आज के दिन के हवाले से
2: अच्छा
0: उनका नाम है रुद्रा काली और खजेंद्र प्रसाद
1: मेरा भाई खजेंद्र प्रसाद मेरा भाई मेरे ऐसा भागा आया मुझे देख के ऐसा भागा कि बस गले लग जाऊं किसी तरह मैंने कहा रुको मेरी जान रुको मैं आ रहा हूं उस तरफ फिर रुद्र काली भी आई और अच्छे से मुझे ग्रीट किया उन्होंने बोले कहाँ थे जेठ जी आप अभी तक मैंने कहा कि बस
0: जेठ जी
1: और
2: रिश्ता तो हर जगह निभा लेते
1: हैं देखिए ऐसे नहीं करते हम
2: अक्सर वो आपसे कह रहे हैं कि आइए रहिए जूम में आप कहाँ घूम रहे हैं
1: भाई बहुत बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी का और प्यारी प्यारी बातें करने का काबा भाई इंशाल्लाह मुलाकात होगी पिड्डी पे जरूर घुमाऊंगा अब तो मैं तो
0: छोड़ूंगा
1: दिल तो करता है सबसे ज्यादा से ज्यादा बात करें मगर नाजिया क्या करें मजबूरी होती है एक घंटा में साथ जो होते हैं दोनों एक घंटा करें अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को कैसे हैं आप दोनों वैसे रामपुर से मैं हूँ पर वो नेपाल वाला रामपुर से हूँ अच्छा उधर भी मैं 10 से 12 साल पैदल ही चल के पढ़ने जाता था लगभग डेली 4 किलोमीटर चलना पड़ता था यार अरे भाई
2: दोस्तों अपनी पीठ थपथपाओ सीरियसली जो बेचारे इतना चल पाते हैं जिनका इतना स्टेमिना है हैट्स ऑफ है भाई ये रखिएगा अपना
1: ये तो बहुत ही कमाल की बात है और
2: पढ़ाई
1: के लिए जाना ये वाकई अपने
2: सैल्यूट है आपको
1: भाई वाह यहाँ पर कुछ और मैसेजेस भी शामिल कर लेते हैं मुमताज भाई ये कह रहे हैं कबीर भाई सौरभ भाई की पीठ पे मत बैठना वरना मगरमच्छ के आंसू रोने पड़ेंगे हैं के पास छोड़ आएंगे ओ ये तो उन्होंने पुरानी वाली कहानी से मिला दिया कहते हैं इफ आई एम इन मुंबई इट वुड ओनली बी लोकल ट्रेन द विंग्स ऑफ मुंबई ओ विंग्स ऑफ मुंबई कहती हैं ये हैं हमारे साथ सना मलिक फ्रॉम मुंबई और बॉम्बे
2: वैसे सना मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग है वहाँ पे लोकल ट्रेन्स में जाना ट्रैवल करना उसमें
1: ये सना अपने आप

0: आगे अंदर
1: सना अपने आप में एक सुपर
0: ये वो सना तो नहीं है जो हम समझ रहे
1: सुपर हीरोइन है एक्चुअली मैं आपको बता दूं
0: ये हमारी वाली सना है
1: ये हमारी वाली सना है
0: तो आप पहले क्यों नहीं बता रहे
1: जितने भी मतलब सुपर गर्ल हैं सुपर वुमेन हैं वंडर वुमेन हैं सब इनसे ट्रेनिंग लेने आते हैं
0: ये बात तो सच
1: सना से ट्रेनिंग लेने आते हैं मैंने भी इनसे ट्रेनिंग ली है
0: अच्छा अभी वुमेन में
1: ये तुम्हारी वाली सलाह कहती है
0: ये हमारी वाली
1: सलाह है सना मुझे पता है बिल्कुल और मुंबई में कभी सफर करना हो तो फिर आप ही के साथ सफर किया भी जा सकता है क्योंकि नादिया के साथ बैठ के घंटे का जितना मैं सफर कर रहा हूँ
0: मैं तो सफर ही कर रही हूँ आपके साथ सफर ही सफर हूँ
1: यूसुफ भाई हसना है ट्रक वाली बात सुन के आपकी और बड़ा ही मजे ले रहे हैं कह रहे हैं नादिया जी वे वाह टेम्पू को या ये बात कहनी मैं खुद मतलब
0: मैं टेम्पो तो मैं समझती हूँ
1: नहीं नहीं मैं बताऊंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के एक्चुअली मैं गाबा भाई से ये तो कह रहा था मैं नादिया को सुन के और भी अच्छा लगेगा मैं ये कहना चाह रहा था
0: क्या है क्या मुझे भी बताइए
1: ऑन एयर थोड़ी बताऊंगा अभी बाद में बताऊंगा आपको आप खुश रहिए इसी बात पे तो भाई ये हो रहा है कुछ आज वैसे नादिया आपने अपना नहीं बताया कि आप पैदल का नाम मत लीजिए
0: क्यों मेरा है
1: अच्छा पैदल के अलावा फिर भी
0: मैं वॉक करूँ
1: नहीं चलिए मत आज
0: और अगर कहीं मुझे जल्दी पहुंचना है देन आई विल प्रेफर योर टंग आपकी जबान बहुत तेज चल रही
1: है ओम ओम बो
0: सही जे
1: ओम बो देखो कैसे दरात काट रही है भाई अच्छा है यार अच्छा जवाब दिया आपने यार ये नहीं सोच रहा था मैं माशाल्लाह कल आ रही है आपके अंदर यार लादे मेरे साथ बैठ बैठ के यार
0: जा रही है बैठ बैठ के
1: अल्हम्दुलिल्लाह कहीं तो काफी मिल रही है
0: मुझे भी
1: भाई आखिरी कॉलर हाँ बिल्कुल हम मतलब आज के लिए वक्त की कमी की वजह से वैसे अल्लाह ना करे आखिरी हेलो सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम हेलो गाइस आई एम हियर
1: हेलो भाई चाय पी लो ये है आसिफ भाई हमारे साथ फ्रॉम बॉम्बे बॉम्बे की अभी बात हो रही थी सना जिक्र कर रही थी भाई ट्रेन वगैरह का
0: बट बहुत चैलेंजिंग है अगर लोकल ट्रेन में कोई फिट हो जाए
1: ट्रेन
0: जैसे हमने सुना है मैं तो
1: और मैं फिट हो जाऊं ये तो बहुत ही चार पांच उस तरफ से बाहर निकल जाएंगे वो देखिए आप हेरा फेरी दरवाजा जो गाड़ी गाड़ी इधर से घुसे उधर बाहर आसिफ भाई ऐसे ही होगा क्या ये
2: नहीं नहीं भाई आप पहले बात ही कर लो फिर हम तो कॉल ही
0: करेंगे
2: आपको समझ में नहीं आता है
1: नहीं ये बताओ कि आपने सफर तो किया होगा बॉम्बे की लोकल ट्रेन में ऑब्वियसली
2: अरे मैं पैदा होने के बाद डायरेक्ट सफर पे लग गया था उधर ही
0: मतलब हॉस्पिटल ही इनके पेरेंट्स ने लोकल ट्रेन से लाए थे
2: हाँ समझ गए नाज़िया बहन अरे सल्यूट है बहन तुम्हारे को सरोवर भाई को थोड़ा समझाओ काजू बादाम खिलाओ
1: अच्छा है मतलब आज हमारे पास सारे कलाकार माशाल्लाह शामिल हुए हैं प्रोग्राम के अंदर माशाल्लाह भाई माशाल्लाह नहीं ये तो
2: और क्या हाल चाल है सफर भाई आपके
1: 1:40 की लास्ट लोकल देखी थी मैंने आसिफ भाई और उसमें उसमें आदमी मालामाल हो गया था यहाँ हमारी अभी हम रेक्स को ना ढूंढ पाए पूरे 3-4 महीने
2: गुजारिश है सरोवर भाई आपसे गुजारिश है कभी भी ना भाई मॉर्निंग की 6 बजे गाड़ी मत पकड़ना भाई
1: मॉर्निंग की 6 मतलब शो के लिए कह रहे हैं
0: नहीं ये कह रहे हैं
2: नहीं नहीं
0: ट्रेन
2: ट्रेन
0: लोग जा रहे हैं
2: मॉर्निंग में 6 बजे की जो जाती है ना गाड़ी भर के चर्चगेट की तरफ उसमें कभी गलती से मत चढ़ना भाई
1: अच्छा बहुत पब्लिक होती है
2: आपको मसाज मिल जाएगा फ्री में
1: मैं वहां तक मुझे लग नहीं रहा था ना कि ओले यार आप ऐसी बात भी कर सकते ओके चलिए भाई आसिफ भाई इजाजत लेंगे वक्त पूरा हुआ आज का इंशाल्लाह ताला कल आपसे बात होती है
2: रजिस्टर में नाम चढ़वाने आया था भाई कि मैं भी जिंदा
0: हूं अरे यहां पर नहीं आप बताइए यहां पर अगर आपको कुछ पिक करना है ऑप्शन तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे
1: गाड़ी नहीं है तो
0: हां मतलब कौन से ट्रांसपोर्ट को आप पिक करेंगे अगर आज आप कार यूज ना करें कतर में अगर आज आपको कार यूज नहीं करनी है तो आप किस ट्रांसपोर्ट का जो है वो इंतखाब करेंगे
2: ऑप्शन मतलब पहले किधर जाना है मुझे दूर या नजदीक
0: तो आप बताएंगे मैं कैसे बताऊं कि आपको कहां
1: जाना है इनको 3 ऑप्शन दे दीजिए क्या क्या है 3 ऑप्शन आपको पहला ऑप्शन देता हूं मैं मेट्रो का ठीक है
2: ओके
1: दूसरा देता हूं बस का
2: ओके
1: ठीक है और तीसरा देता हूं स्कूटर का जो आजकल हमारे कतर में बहुत चल रही तीनों चीजें
2: मैं तो स्कूटर में जाऊंगा भाई
1: क्या बात है आप मानो कबीर भाई भी ज्यादातर स्कूटर पे ही घूमते फिरते हैं
2: अरे वो अपना भाई है तो जाएगा ही ना भाई अपना भाई कैसा पैसा ही पैसा
1: मास्क लगाए हुए होते हैं वो ताकि लोग उनको पहचाने ना मास्क चलो भाई आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिए भाई

0: बाय।
1: ऑलराइट देन, तो भाई आज का दिन भी हुआ पूरा और आपको फिलहाल है
2: दूध उबालोगे दूध उबालोगे तो झाग लगेगी,
1: समझ रही हो नाजिया,
2: और जो सावन में ऐसे नाचोगी
1: तो आग लगेगी बीकाबाजी,
2: आग लगेगी।
1: तो भाई एंजॉय कीजिए ट्रैक, फिलहाल हम कहते हैं आपको अल्लाह हाफिज़। पायल देव, मीका सिंह, नेहा कक्कड़ एक साथ निभा रहे हैं, आप भी इस गाने के साथ जुड़ जाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और कल इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। इस अधूरे दिन को एक पूरा दिन बनाने के लिए कोशिश ये रहती है मेरी नादिया की, आप लोग हंसते रहें, वरना अपना मजाक कौन उड़वाता है यार, ये तो आप नादिया कितना अच्छा होगा, सॉरी लूंगा अब ये प्रोग्राम खत्म होते ही, याद रखिएगा। तो भाई फिलहाल इजाजत दे दीजिए,
3: उधार में से
1: ट्रैक, अपना ख्याल रखिए, सुनते और देखते रहिए FM 107
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसे ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक अराबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को बोसा देते हैं। उसने हैरत से कहा, आप लोग बच्चों को बोसा देते हैं, हम तो उन्हें बोसा नहीं देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहमत निकाल दी है तो मैं उसका क्या इख्तियार रखता हूँ। सामईन किराम, जो चीज़ उस शख्स के लिए शायद मामूली थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रहमत कल्ब से जोड़ दिया। बच्चे को प्यार करना, उसे गले लगाना, उसके साथ नरमी करना, ये दरअसल दिल की रहमत का इजहार है। कभी वालिदैन कहते हैं कि मोहब्बत तो दिल में होती है, हर वक्त बताने की क्या जरूरत है। बिल्कुल बात तो सही है, मोहब्बत दिल में होती है, लेकिन बच्चे तो दिल नहीं पढ़ सकते, वो आपका रवैया पढ़ते हैं, आपके अल्फाज समझते हैं, मजीद आपके वक्त से भी वो अंदाजा लगाते हैं कि वो आपके लिए कितने अहम हैं। इसलिए मोहब्बत का होना जरूरी है और मोहब्बत का नजर आना ये भी बेहद जरूरी है। इस मफहूम की एक और रिवायत में यह आता है कि अकरा इब्न हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को बोसा देते देखा। उन्होंने कहा, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने इनमें से किसी को कभी बोसा नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो ये बात, ये उसूल यहाँ वाज़ेह है कि रहमत एक इस्लामी मिजाज है। बच्चों के साथ नरमी कोई इजाफी खूबी नहीं, जिसे चाहे तो इख्तियार करें और चाहे तो छोड़ दें। ये दरअसल रहमत का इजहार तरबियत का बहुत बड़ा एक अहम उसूल है। बाज़ घरों में एक तसव्वुर पाया जाता है कि बच्चे के साथ ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया तो वो बिगड़ जाएगा। उसकी ज़्यादा तारीफ न करो, उसे ज़्यादा प्यार न दिखाओ, उसके सामने जज्बात जाहिर न करो। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमें एक मुख्तलिफ तवाज़ुन सिखाता है। बच्चे की तरबियत ज़रूर कीजिए, उसे हुदूद भी सिखाइए, सही और गलत का फ़र्क भी बताइए, ज़रूरत पड़े तो उसकी गलती की इसलाह भी कीजिए, मगर इसलाह से मोहब्बत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। कभी वाकई हम मसरूफ़ होते हैं, लेकिन अगर हर रोज़ यही बाद में होता रहे तो एक दिन बच्चा भी बात करना छोड़ देता है और फिर वालिदैन शिकायत करते हैं, अभी हमें तो कुछ बताता ही नहीं। हालांकि कभी इस खामोशी के पीछे बहुत से लम्हे होते हैं जिनमें बच्चा बात करना चाहता था और हमारे पास वक्त नहीं था। और मोबाइल के हवाले से ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। इस मसरूफ तरीन दौर का या इस मसरूफियत का एक अहम हिस्सा हमारे मोबाइल में खर्च होता है। हर वक्त नजरें मोबाइल पर होती हैं, बच्चा कुछ बता रहा है और जवाब आ रहा है, हाँ जी अच्छा ठीक है, मगर आंखें वही स्क्रीन पर। तो यहाँ दरअसल बच्चों से रहमत और शफकत का तकाजा ये है कि कुछ वक्त मोबाइल एक तरफ रख दीजिए, बच्चे की तरफ देखिए, उसकी बात पूरी सुनिए, ताकि उसे भी ये महसूस हो कि वो आपके लिए अहम है। सामईन किराम, बाप की शफकत के हवाले से आज की इस रूह परवर सुन्नत में हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। खास तौर पर मर्दों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत बहुत खूबसूरत पैगाम रखती है कि कभी ये समझ लिया जाता है कि बाप का किरदार सिर्फ कमाना, नज़म कायम रखना और फैसले करना है, लेकिन नबवी नमूना हमें ये बताता है कि बाप मोहब्बत भी करे, मोहब्बत का इजहार भी करे, वो बच्चे को उठाए, करीब लाए, प्यार करे, नरमी से बात करे। यानी शफकत मर्दांगी के खिलाफ नहीं, शफकत ये किरदार की पुख्तगी है। हाँ, एक तवाजुन तो जरूरी है कि बच्चे से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, हाँ ये रहमत नहीं। बाज़ औक़ात बच्चे से हकीकी मोहब्बत यही होती है कि उसे नहीं कह दिया जाए, उसे नज़म सिखाया जाए, उसे जिम्मेदारी दी जाए। तो इस्लाह भी ज़रूरी है, नज़म सिखाना भी ज़रूरी है, मगर बेहतरीन ताल्लुक वो है जिसमें एहतराम के साथ एतमाद और रहमत हो। अल्लाह ताला हमारे दिलों को रहमत से भर दे और हमें अपने बच्चों के साथ मोहब्बत, शफ़क़त और हिकमत से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, हर एक मोटर व्हीकल को उसकी रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद अथॉरिटी की जानिब से दो नंबर प्लेट्स इशू की जाती हैं, जिनको मोटर व्हीकल की ऑपरेशन से पहले यानी एक नंबर प्लेट को आगे की तरफ और एक नंबर प्लेट को पीछे की तरफ लगाया जाता है। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि मोटरसाइकिल्स पे भी मेटल लाइसेंस प्लेट्स होना जरूरी है, खास तौर पर जब आप कैंपिंग वाले इलाकों में हों। ये इकदाम कानून की तामील को जाहिर करते हैं और खिलाफ वर्जियों से बचने में आपकी मदद करते हैं।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
3: FM 107 presents Tech Update.
4: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। जैसे हमने कहा था, कल भी बात करी थी इस बारे में कि अभी जो टेक अपडेट है ये हमारी रह गई थी, पेंडिंग थी, और इसमें रिव्यू मैं कर रहा हूँ लगातार। और आईफोन के फोल्ड के बारे में, डुओ के बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी बात करूंगा उसकी प्रो और प्रो मैक्स के बारे में। देखो, जो बेस मॉडल है आईफोन 18 का, वो बड़ा बाकमाल है। कलर्स इस बार लॉन्च किए गए हैं, जो बर्गंडी कलर आप देख रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी कतर टाइप, तो अच्छी बात है कि कतर का उसमें कलर है। उस जोश में आके सबसे ज़्यादा बिक्री मुझे लगता है कि आईफोन के इस नए रंग की कतर में होने वाली है, डेफिनेटली। ये तो मेरे से लिखवा लो आप। अब ज़रा एक एक सीरियस रिव्यू पर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो लोग देखते हैं, जो कि सिर्फ नहीं देखनी चाहिए, मगर सिंस एवरीबडी इज गोइंग टू टॉक अबाउट कैमरा कैसा है, तो सबसे पहले कैमरे के बारे में बात करें। तो कैमरे के अंदर जो आईफोन में इस बार फीचर्स दिए गए हैं बहुत अच्छे हैं। हालांकि बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो बाकी फोन्स ऑलरेडी कर चुके हैं, मगर आईफोन, सिंस आईफोन ये कर रहा है तो थोड़े अलग अंदाज से कर रहा है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने अपने एआई को इंटीग्रेट किया है फोटो की प्रोसेसिंग में। जैसे कि अगर आप अपने फोन में कोई फोटो खींचते हैं और उसके बाद उसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट, थोड़ा सा स्लाइटली राइट करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। दे आर कॉलिंग इट अ न्यू फीचर, हालांकि बाकी लोग कर चुके हैं, आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल अबाउट इट, बट दे आर डूइंग इट नाउ, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दे आर नाउ यूजिंग द अपर्चर। अपर्चर बेसिकली कैमरे का वो फीचर जिसमें लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, कितनी लाइट आए कितनी लाइट ना आए, विच इज नाउ ऑन एप्पल, जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, इट्स फाइनली देयर। बैटरी को उन्होंने इंक्रीज किया। इस बार का जो प्रो मैक्स है, आईफोन 18 का प्रो मैक्स, उसकी बैटरी इज लार्जर देन एनी अदर फोन इन द लाइनअप, और पिछली बार से कहीं गुना ज्यादा है। सो आई एम रियली हैप्पी दैट दिस टाइम दे हैव केप्ट इट हायर। तो ये लाइनअप डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ प्रो मैक्स की और पिछले वाले एक प्रो मैक्स से कंपेयर करूँ 17 से, तो डेफिनेटली अ बेटर मॉडल। और इस बार के प्रो और प्रो मैक्स में उन्होंने डिफरेंस जो रखा है वो एक्चुअल डिफरेंस है, वरना पहले मुझे कहना पड़ता था कि यार कोई फर्क नहीं है, स्क्रीन बढ़ी है और क्या करोगे, लेकिन इस बार एक्चुअल में फर्क है। तो मेजर फर्क, जैसे मैंने कहा कि बैटरी का है, दूसरा मेजर फर्क है साइज का, एंड तीसरा जो उन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस किया वो कलर्स, एंड देयर एआई इज नाउ बीइंग रूटेड इन विद इन द फोन मोर इन अ बेटर वे बेसिकली। तो अभी सीरी कैसा काम करेगा, वो हैंड्स ऑन जब फोन हाथ में आएगा तब उसके बारे में अच्छे से रिव्यू किया जा सकता है। अभी जो उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिस कर दिए विद द न्यू चिप, उसमें उन्होंने कहा है कि मच मोर कूलेंट इस बार फोन होगा, गर्म वरम नहीं होगा, तो ये बातें कर तो दी है उन्होंने। 35% बैटरी की हाइक के बारे में भी बात कर दी है। आई एम नॉट सेइंग डू नॉट ट्रस्ट देम, मगर एप्पल कई मरतबा कुछ चीजें बहुत ही 10 गुना आगे जाके अपनी चीजों को बेचता है, तो उसमें से कितना ट्रस्ट करना है कितना नहीं, आई कैन नॉट से, मगर जो कमिटमेंट के हिसाब से है तो डेफिनेटली दिस कैन बी द बेस्ट लाइनअप। मतलब आईफोन 18 कैन बी द बेस्ट लाइनअप आफ्टर सो मेनी इयर्स। मुझे याद है जब 5S लॉन्च हुआ था, सबके सब दीवाने हो गए थे। आपको याद है 5S आया था, जो नया मॉडल आया था, लोग दीवाने हो गए थे भाई, हर किसी के हाथ में था। उसके बाद से वो रेज एक मरतबा देखने को मिला था जब

0: आईफोन ने अपना थोड़ा डिजाइन बदला था, 10 जब आया था बीच में, और उसके बाद से देखने को नहीं मिला। 11 हालांकि बहुत बिका, फिर वो एक एक स्लाइड ड्रॉप आया। अभी 17 के डिजाइन के बाद, ऑरेंज के बाद वो उम्मीद जागी है, एंड 18 ने डेफिनेटली वो काम किया जिसका लोगों को इंतजार था। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आईफोन क्या करेगा वो तो मार्केट में आके पता लगेगा। द बेस्ट पार्ट इज के रेट जो है आईफोन्स के, प्राइसेस जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ाए गए हैं। दोनों के बीच में $100 का फर्क है अगर आप प्रो और प्रो मैक्स की बात करें, और मुझे लगता है कि ये काफी जेनरस है एप्पल के लिहाज से, बिकॉज उनका स्टैंडर्ड जो है ना शायद कहीं ना कहीं इजाजत नहीं देता है कि वो सिर्फ $100 का फर्क छोड़े। बस इन दी डन इट, गुड जॉब डन एप्पल। साथ साथ मैं जो हूँ बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में एप्पल की बात करता रहूंगा, मगर आपको अगर हैंड्स ऑन अभी तक कोई रिव्यू मिल जाए तो मुझे जरूर जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। FM107 Qatar, ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, एंड प्लीज प्लीज आइए, जरा इस बारे में बात करनी बड़ी जरूरी है। ऑफकोर्स वी आर लेट एट द पार्टी, लेकिन रिव्यू तो करना बनता है। दिस वॉज दी अपडेट, मैं दुहा वाला कबीर FM107 पे, एंड स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज नए जमाने के नए स्कैम के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस स्कैम के शो से आप सीख रहे होंगे, और साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर्स या फिर आप नए स्कैम से बचने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर ये शो सुनकर बच भी रहे होंगे। तो आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये आपके साथ किसी भी दिन हो सकता है, क्योंकि ये ग्रोसरी के कूपन या ग्रोसरी कूपन से रिलेटेड एक स्कैम है। वेल, इसका नाम है फेक ग्रोसरी कूपन स्कैम। काम कैसे करता है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। स्कैमर्स जो बहुत ही ज्यादा फेमस शॉप्स होती हैं, स्टोर्स होती हैं, उन लोगों का नाम लेके आपको फेक डिजिटल कूपन्स या $100 के या 100 कतरी रियाल के या हजारों रुपए के फ्री ग्रोसरी वाउचर्स का लालच देते हैं। ये ऑफर्स सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स या स्पैम ईमेल्स के जरिए शेयर किए जाते हैं। जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपसे एक सर्वे फिल करने को कहा जाता है, जिसमें आपका पूरा नाम, घर का एड्रेस और फोन नंबर मांगा जाता है। आखिर में एक छोटी सी शिपिंग फी पे करने के लिए आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगी जाती हैं। फ्री फूड मिलने के बजाय या फ्री की डिटेल्स या फ्री कोई चीज मिलने के बजाय या वाउचर मिलने के बजाय आपके कार्ड पर हिडन मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस लग जाते हैं और आपका अकाउंट धीरे धीरे खाली होता रहता है। लेकिन इस स्कैम से बचने के कुछ तरीके हैं जिससे आप बच सकते हैं। वेल, अगर आप इस तरह के स्कैम में सेफ रहना चाहते हैं तो इन कुछ ऑफिशियल या कहें इन कुछ टिप्स को फॉलो जरूर करिए। सबसे पहला है, ऑफिशियल वेबसाइट को या एप्स को चेक करें। किसी भी ऑफर या कूपन पर आंख बंद करके कभी भी ट्रस्ट ना करें। हमेशा उस ग्रोसरी स्टोर, जैसे कि आपके आसपास जो नजदीकी आपके स्टोर है, उस स्टोर पर जाएं या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर जाकर ही चेक करें कि क्या सच में ऐसा कोई ऑफर चल रहा है जहां पर वाउचर वगैरह मिल रहे हैं। उसके अलावा यूआरएल्स और लिंक्स को केयरफुली वेरीफाई करें। स्कैमर्स आमतौर पर फेक वेबसाइट्स बनाते हैं जो बिल्कुल असली जैसी दिखती है। हमेशा चेक करें कि यूआरएल सही है या नहीं। असली वेबसाइट हमेशा से https/ से शुरू होती है और उनका डोमेन नेम सिंपल और करेक्ट होता है। पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा शेयर कभी भी किसी से ना करें। ये सबसे ज्यादा अहम बात है और इस पर ही आपको फोकस करना है। कोई भी जेन्युइन कंपनी फ्री कूपन देने के लिए आपसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या CVV नंबर या बैंक की डिटेल्स नहीं मांगता, और अगर ऐसा करे तो आप खास तौर पे बैंक पे शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सर्वे आपसे सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो ये आप समझ जाइए कि वो 100% स्कैम है। उसके अलावा हर बार जो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ वो है टू गुड टू बी ट्रू। ऐसा कोई भी ऑफर जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे कि यार वो सच हो ही नहीं सकता, ऐसे में हमेशा आपको शक की निगाहों से देखना चाहिए। अगर कोई ऐड या पोस्ट आपको सिर्फ एक सिंपल सर्वे भरने के लिए या फिर सिंपल से काम को करने के लिए $1,000 कतरी रियाल या 500 तक का फ्री वाउचर वगैरह दे रहा है, तो समझ लें कि ये एक ट्रैप है, इंटरनेट पर कुछ भी फ्री में नहीं।

0: ये सच है। उसके अलावा एंटीवायरस और स्पैम फिल्टर का यूज करें अपने मोबाइल और लैपटॉप में। एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें। अपने ईमेल अकाउंट का स्पैम फिल्टर ऑन रखें ताकि ऐसे फिशिंग और स्कैम ईमेल्स आपके इनबॉक्स तक पहुंच ना सके। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ इन सब बातों को या फिर स्कैम से बचने के लिए जो सॉल्यूशंस मैंने दिए उन सब के बावजूद आपके साथ कभी स्कैम हो जाए तो क्या करना है, बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। अगर आपने गलती से फेक वेबसाइट पर कार्ड डिटेल्स डाल भी दी हैं तो तुरंत अपने बैंक को कॉल करके कार्ड ब्लॉक करवाएं। पासवर्ड चेंज करें अपने ऑनलाइन बैंकिंग और इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के पासवर्ड को फौरन बदल दें। रिपोर्ट करें इस फ्रॉड की कंप्लेंट अपनी लोकल साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करें ताकि बाकी लोग इससे बच सके। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स हैं जिनके बारे में हमने बात करी और इन सॉल्यूशंस को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% श्योरिटी है या फिर अगर आपके पास से पैसे कट भी जाएं तो बैंक को इत्तला करना, पासवर्ड चेंज करना, साइबर सेल में रिपोर्ट करना, ये कुछ ऐसी चीज हैं जिनसे आप आसानी से बच सकते हैं फ्रॉड होने से, आपके पैसे दोबारा आ सकते हैं। इसके साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट यानी कि कल एक नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
1: आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
3: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स की। माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट है? देखिए माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स आप जानते हैं कि छोटे छोटे अमाउंट्स और उनको रेगुलरली इन्वेस्ट करना ताकि वक्त के साथ इन्वेस्टमेंट ग्रो हो सके। इसमें आपको हजारों या लाखों रुपयों की जरूरत नहीं होती। आप छोटी सी रकम जैसे 10, 20, 50 या 100 डॉलर से भी शुरुआत कर सकते हैं। माइक्रो इन्वेस्टिंग का मकसद लोगों को इन्वेस्टिंग की आदत डलवाना और धीरे धीरे उनके वेल्थ को बिल्ड करना है। देखिए आजकल कई इन्वेस्टमेंट एप्स और प्लेटफॉर्म्स फ्रैक्शनल शेयर्स की सहूलियत देती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी का एक शेयर बहुत महंगा हो तो आप उस शेयर का छोटा हिस्सा भी खरीद सकते हैं। अब माइक्रो इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है? देखिए माइक्रो इन्वेस्टिंग का बेसिक आइडिया ये है कि आप छोटे अमाउंट्स को बार बार इन्वेस्ट करते रहते हैं और ये अमाउंट्स डेली, वीकली या फिर मंथली हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अली हर वीक 20 कतरे रियाल इन्वेस्ट करता है, एक मंथ में 80, एक साल में 960। अगर ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी जनरेट करे तो टाइम के साथ अमाउंट और ज्यादा बढ़ सकता है और इस प्रोसेस को लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। देखिए माइक्रो इन्वेस्टिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये फंड होते हैं जो कोई भी कंपनीज में जो है वो इन्वेस्ट करता है। अगर आप मंथ में 50 कतरियाल किसी ETF में इन्वेस्ट करते हैं जो 100 कंपनीज का पोर्टफोलियो रखता है, इससे आपका रिस्क कम हो जाता है क्योंकि पैसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं रहा और आपकी इस तरह से छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। वहीं एक और चीज है फ्रैक्शनल शेयर्स। मान लीजिए किसी फेमस कंपनी का एक शेयर 1000 कतरी रियाल का है। अगर आपके पास सिर्फ 100 कतरी रियाल है तो आप उस शेयर का 10% हिस्सा खरीद सकते हैं और ये हैबिट कहलाती है माइक्रो इन्वेस्टिंग। वहीं एक और टेक्निक है राउंड अप इन्वेस्टिंग। कुछ ऐप्स हर परचेज को राउंड अप करती हैं और बाकी पैसा इन्वेस्ट कर देती हैं। आप कॉफी पीते हैं जो कि है 8.5 कतरी रियाल की, आप अमाउंट को 9 कतरी रियाल कर देते हैं और 50 कतरी रियाल इन्वेस्ट हो जाते हैं आपके। और देखा जाए तो 0.50 कतरी रियाल जो है वो आपके इन्वेस्ट हो गए। रोजाना ऐसा करने से महीने के आखिर तक अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट हो जाती है। वही एक और टेक्निक है गोल्ड माइक्रो इन्वेस्टमेंट। आप फिजिकल गोल्ड खरीदने की बजाय छोटे अमाउंट से डिजिटल गोल्ड या गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर मंथ 25 कतरी रियाल गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना और इस तरह धीरे धीरे गोल्ड एक्सपोजर मिलता जाता है। देखिए माइक्रो इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें ये एक बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन इसका फायदा तब मिलता है

इन्वेस्ट करते रहते हैं इसके बेशुमार फायदे हैं लो स्टार्टिंग अमाउंट है ये बिगनर्स के लिए बड़ा आसान है सेविंग हैबिट्स को डेवलप करता है डाइवर्सिफिकेशंस मिलते हैं वहीं लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना आसान हो जाता है तो बस दोस्तों जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगी कि माइक्रो इन्वेस्टमेंट एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप छोटे छोटे अमाउंट्स को रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं चाहे ETF हो फ्रैक्शनल शेयर्स हो गोल्ड फंड्स हो माइक्रो इन्वेस्टिंग बिगनर्स के लिए इन्वेस्टिंग की दुनिया में एंट्री का एक बहुत ही आसान तरीका है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कंसिस्टेंसी जी हाँ छोटे अमाउंट भी अगर रेगुलरली इन्वेस्ट किया जाए तो वक्त के साथ बड़े इन्वेस्टमेंट बन सकते हैं चलिए आज के लिए बस इतना ही मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी

0: बुरा वक्त एक शफाफ आईने की मानिंद है, जिसकी वजह से बहुत से चेहरे वाजे नजर आने लगते हैं। जिंदगी में इंसान के लिए सबसे बुरा वक्त वो है जब आपकी नाराजगी और गुस्से के डर से आपके वालिदैन अपनी ख्वाहिश और जरूरत का इजहार और नसीहत करना छोड़ दें। मुश्किल वक्त में दुनियावी तदाबीर जरूर कीजिए, लेकिन अल्लाह ताला से इल्तजा और दुआ भी कीजिए, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म हो जाता है वहां से अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल शुरू हो जाता है। मुश्किल वक्त में साथ देने वाला कोई अजनबी क्यों ना हो दिल में उतर जाता है, जबकि मुश्किल की घड़ी में किनारा करने वाला अगरचे अपना ही क्यों ना हो दिल से उतर जाता है। याद रखिए कि जिंदगी में अगर हम मुश्किल हालात से दो चार ना होते तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने हमें कैसे नजर आते।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107,
3: दिल से देसी।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा Generation Talks।
4: तो अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और जनरेशन टॉक का जो दूसरा एपिसोड है उसमें सभी का स्वागत है, क्योंकि आज जो है मेरा एक भाई मेरे साथ है और इनका नाम है करण। करण भाई से मैं कुछ टाइम पहले जो है हमने बातचीत शुरू करी थी, ही इज आल्सो इनटू म्यूजिक एंड ये जो फेमिलैरिटी है हम दोनों को जोड़ती है, मैं बहुत खुश हूँ। वेलकम बैक करण भाई, वेलकम बैक इसलिए करूँ कि अब आए, कैसे हैं करण भाई?
5: ठीक है कबीर भाई, पहले तो मैं सभी को हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहता हूँ 107 लिसनर्स को। और मेरा नाम करण लिंग लेने और मैं नेपाल से हूँ।
4: अच्छा, नेपाल से कब आना हुआ कतर करण भाई?
5: मैं सबसे पहले बार तो 2017 में आया था कबीर भाई, अभी हाल चाल ये कंपनी में 2 साल हो रहा है अभी।
4: अच्छा, तो इससे पहले आप कहाँ थे? हमने तो कभी आपके मैसेज देखे नहीं, मुझे अब जाके दिखे आपके मैसेज इतने सालों से, कहाँ से कहाँ थे?
5: अभी मेरा पहला प्रोफेशनल अलग था कबीर भाई, इसलिए अभी प्रोफेशनल ड्राइविंग का है, इसलिए अभी थोड़ा रोड में लॉन्ग ट्रिप जाना पड़ता है, इसलिए

0: मैं तो आपका फैन जैसा हो गया इसलिए आपको कॉन्टेक्ट कर पा।
1: बहुत प्यार करना, बहुत प्यार। थैंक यू।
0: हाँ जी, मैंने इंस्टाग्राम भी नहीं था कभी तो भाई, सच्ची बताऊँ तो आपने देखा भी होगा मेरा जीरो फॉलोअर, जीरो कंटेंट है पूरा।
1: अच्छी बात ये कि आपने इस बारे में जिक्र किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जो हैं, हम दोनों हम उम्री हैं, थर्टीज में ही हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ करण भाई के जनरेशन जो है वो दोनों से हम हमारा रापता है ना, जेन जी से भी बात हो रही है हमारी और हम खुद मिलेनियल्स हैं, तो अभी नेपाल में क्या सिचुएशन है? नेपाल में भी जेन जी थोड़े तेज हो गए, आगे निकल गए, या वहाँ माहौल थोड़ा सा अलग है? क्या कहना चाहेंगे वहाँ की जेन जी जनता के बारे में?
0: नेपाल का जेन जी का सभी तरफ तो वैसा ही होगा कबीर भाई, लगता है मुझे।
1: अच्छा,
0: क्योंकि अभी पहले जैसा था हमारा टाइम पे अभी वैसा नहीं है। एग्जांपल के लिए ले सकते हैं अभी डिजिटल साइड, इसको अभी लैंड लाइन जो रहता है।
1: तो मैं जैसे आपसे पूछूं, जैसे आपने कहा कि आपके कोई फॉलोअर्स वगैरह कुछ नहीं रखे हुए आपने, जो कि बड़ी कमाल की बात है, ऐसे ऐसे लोग दिखते भी नहीं है आज की तारीख में, बहुत ही रेयर ब्रीड है ये। तो इतने टाइम से सोचा नहीं, ख्याल नहीं आया, और अचानक से क्यों किया ऐसा? मतलब पहले क्यों नहीं था और अब क्यों किया?
0: ऐसा हुआ था कबीर भाई, मैं पहले पूरा सोशल मीडिया जितना भी था एप्लीकेशन पूरा यूज करता था पहले, लेकिन अभी बाद में जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आए सिर पे, तो उसके बाद से धीरे धीरे करके सब मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, कोई डिलीट कर दिया ऐसे करके, सब थोड़ा सब चीजों से थोड़ा दूर रहना अच्छा लगा इसलिए।
1: और अचानक से क्यों वापस आ गए?
0: ये तो आपको फॉलो करने के लिए कबीर भाई, सच बताऊँ तो अभी मेरा फ्रेंड्स कुछ भी कोई भी नहीं है ना, तो फिर अभी ऑनलाइन फ्रेंड में अभी आप थोड़ा अभी मिले तो नहीं है, लेकिन जो बात करने का आपका तरीका है, जो हमारा बीच में बात होता है, मैसेज आप पढ़ते हो, रिप्लाई करते हो, तो वो पॉजिटिविटी जो है वो थोड़ा अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपको फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम ओपन किया।
1: अरे बहुत प्यार करण भाई, बहुत प्यार करण भाई को। करण भाई अच्छा, अब जरा ये बताएं कि आप आज की जनरेशन से क्या सीखते हैं, क्या कैसी लगती है आपको जेन जी जनरेशन जो बहुत रफ्तार से दौड़ रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे?
0: ये अभी कबीर भाई आज का जनरेशन बहुत ज्यादा ही रफ्तार से दौड़ रही है, थोड़ा हौसला होना चाहिए बोलता हूँ मैं तो।
1: पर इनकी अच्छी बात क्या लगती है आपको? कुछ पॉजिटिव साइड भी तो होगी ना इनकी?
0: अच्छी बात ये है कि हमसे थोड़ा तेज है सोचने में, और वो लोग का यूनिटी अच्छा रहता है, अभी कुछ करने के लिए वो लोग मान लिए तो अभी कुछ भी कर सकते हैं। अभी जैसे कि रिसेंटली नेपाल में हुआ पहली बार वैसे एग्जाम्पल में।
1: ओके,
0: लेकिन अभी बुरी बात ऐसा भी है कि अभी पहला का जैसा अभी नहीं रहा, जैसे कि अभी पहले हमारा गांव पे लैंडलाइन रहता था, अभी लैंडलाइन मतलब टेलीफोन जो रहता है, अभी उसमें एक बार 10-5 मिनट बात करने के लिए महीनों हफ्तों तक रुकना पड़ता था, अभी वो नहीं है, अभी क्योंकि फोन पे सब हो जाता है ना।
1: पर आप पे इस जनरेशन का कोई असर पड़ा है? क्योंकि जैसे लोग कहते हैं ना कि यार अभी जो जनरेशन है उसके पास टाइम की बड़ी कमी है, और उसे देखते देखते हमें भी ऐसा हो गया कि हमसे भी ज्यादा देर तक कोई चीज देखी नहीं जाती, हम भी भागने लगते हैं, तो आप पे भी ये असर है कि आपके भी टेंशन जो देने का टाइम है वो कम हो गया?
0: टेंशन तो पता नहीं कबीर भाई, वो जनरेशन गैप के से ज्यादा तो मुझे लगता है अभी कौन सा सिचुएशन में है उसी से वो होता है।
1: आपके भाई बहन कितने? अच्छा बताओ, भाई बहन कितने आपके? भाई बहन है
0: मेरा भाई एक भाई है और बहन बड़ी बहन एक है।
1: कितने आप सबसे छोटे हैं? क्या क्या एज है, उम्र क्या है उन दोनों की?
0: मुझसे 2-3 साल बड़ी है मेरा बड़ी बहन।
1: ओके,
0: और मेरा छोटा भाई तो बहुत ज्यादा ही छोटा है, वो लगभग 7-8 साल का ही छोटा होगा।
1: तो भाई 7-8 साल का, तो फिर तो वो एक तरीके से जैन अल्फा ही कहते हैं ना उन्हें, जैन अल्फा वो, तो घर पे अभी तो उसी का राज चल रहा होगा ना, वो उसके कैरेक्टर के बारे में बताओ तो, कैसा है वो घर पे, कैसा है मतलब आप लोगों से कितना अलग है वो?
0: वो अभी दूसरे के साथ को तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत अच्छा है वो, मैं कुछ भी बोलूं वो नहीं, कभी नहीं बोलता वो, अभी मैं कुछ काम लगाएगा उसको तो फिर ठीक है करके वो सब काम करके देता है।
1: अच्छा, तो आप क्योंकि अभी ड्राइविंग की लाइन में है, आपका कितना सामना होता है जेन जी से? सफर जो आप करते हैं इतना तो मिलते होंगे ना आपको जेन जी और ये मिलेनियल, दोनों ही मिलते होंगे, तो कैसा रहा अभी तक एक्सपीरियंस?
0: अभी तक तो अच्छा भी है बुरा भी है, अभी बहुत सा इंसिडेंट हुआ है इधर कबीर भाई, अभी कतर में ही बोलूं भी, कोई बच्चे लोग गाड़ी के अंदर आके सीट के ऊपर नाचने लगते है, कोई गाड़ी के ऊपर थूक के भी जाता है, ऐसा हुआ था कोई कोई एरिया पे ऐसा हुआ है, लेकिन पता नहीं वो क्या है, वो बच्चे लोग अभी पता नहीं किधर से सीख रहे हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा अभी।

0: नेगेटिव ये ज्यादा लग रहा है
1: ये भाई, ये रील का मामला है, रील वगैरह से सीख रहे हैं सबके सब अभी। उसका अच्छा फायदा भी है, बुरा फायदा भी है। आपका कितना रहता है, मतलब कितने कितने रील देखते हैं इंटरनेट पे, कितने टाइम तक रहते हैं आप डेली?
0: मैं इंटरनेट में भाई गेम खेलता हूँ, मैं भी आपके जैसा कबीर भाई।
1: अच्छा,
0: मैं वो फुटबॉल वाला गेम या तो पबजी वाला गेम खेलता हूँ, बाकी मेरा ये रील वील देखना तो कभी कभी ये यूट्यूब में देख लेता हूँ कबीर भाई, क्योंकि मेरे पास अभी टिकटॉक भी नहीं है मेरे पास, सच बताऊँ तो।
1: अच्छा, वो भी
0: अभी फेसबुक भी नहीं है, अभी रिसेंटली यही ओपन किया है इंस्टाग्राम।
1: अरे भाई, मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है मलिन बिली, आप तो मतलब 70s के बने हुए हैं, अंदर की जो आत्मा है वो 70s 80s वाली है, कुछ यूज ही नहीं करना भाई को। अच्छा, तो नेपाल में तो दोस्त होंगे ना जो सब कुछ यूज करते होंगे, सारे सोशल मीडिया पे होंगे, हैं वहाँ पे दोस्त?
0: है, बहुत बहुत दोस्त लोग हैं, लेकिन अभी किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं है कभी।
1: किसी के साथ भी कॉन्टेक्ट नहीं, क्यों मेरा भाई, ऐसा क्यों?
0: किसी के साथ भी अभी थोड़ा ज्यादा मनी माइंडेड हो गया कभी, सीधा बात बताऊँ तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गए, अभी पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा वाला सीन हो गया अभी अक्सर।
1: तो अगर मैं पूछूं आज की तारीख में एक मिलेनियल होने के नाते करण भाई के सबसे करीब कौन है, कौन है आपके करीब सबसे ज्यादा?
0: अभी के लिए तो मेरा वाइफ है सबसे।
1: अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात है। आप दोनों में एज डिफरेंस कितना है, अगर बुरा ना माने तो पूछूं मैं?
0: एज डिफरेंस है थोड़ा, 7-8 साल ऐसा।
1: अच्छा, तो फर्क पड़ता है इस चीज से, क्या आप मानते हैं कि इस एज डिफरेंस से आपको कितना फर्क पड़ा है?
0: इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अभी छोटा है तो बच्चों की तरह वो सहलाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, गुस्सा बहुत ज्यादा गंदी आ जाता है छोटी छोटी बात पे, तो वो सीन होता रहता है।
1: तो क्या सीखा आपने, क्योंकि आपसे अगर 7-8 साल का फर्क है तो फिर तो ये अच्छा खासा फर्क है, तो क्या सीखा आपने उनके गुस्से के अलावा?
0: मैंने बहुत कुछ सीखा कभी भाई मेरा वाइफ से, वो एज में कम है लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा है उसका। अभी वो छोटे उम्र से ही स्कूल पढ़ाती थी, अभी छोटे उम्र से ही डांसिंग सिखाती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व थी, तो फिर मैंने उससे बहुत ज्यादा सीखा। अभी मैं पहले इधर आने से पहले, शादी से पहले नॉर्मल लड़के लोग का जैसा था, घूमना, इधर जाना उधर जाना, सोशल मीडिया इधर उधर, अभी उसी के बाद से अभी मैं थोड़ा लाइन पे आए होंगे।
1: अच्छा, लाइन पे वो लाइन जबकि आपसे छोटी है माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई काफी अच्छी बात है। तो वो भी एक तरीके से जेन ज़ी के करीब ही हो गई, क्योंकि उनका जब आपसे छोटी है तो 7-8 साल, तो इट्स गुड पीरियड ऑफ टाइम। तो करण भाई, आप जो है रैप वगैरह भी करते हैं और आपको म्यूजिक में भी बड़ा शौक है, ऐसा सुना था मैंने, क्या ये सच है?
0: हाँ जी, सच है ये। मैंने अभी जब मैं पहले बार कतर आया था 2017 में, तब फिर मेरा प्रोफेशन सिक्योरिटी गार्ड का था कबीर भाई शुरू में, तब फिर सिक्योरिटी गार्ड में अभी एक रूम होता है सिक्योरिटी गार्ड का, अभी उधर बैठा रहना होता है दिन भर। तो जब मेरा ड्यूटी शुरू होता था तो ऑफिस क्लोज हो जाता था, तो फिर मैं अकेला रहता था, तब फिर मैं थोड़ा बीट्स प्ले करके कुछ लिखने का ट्राई करता था, तो फिर इतने इतने में फ्लो में निकल गया थोड़ा, तो फिर लिख के करके आधा कंप्लीट करके मैंने रखा था। फिर मैं 2019 में नेपाल गया, फिर आधा जो बाकी था वो दूसरा भाई ने लिखा था, अभी वो दोनों पार्ट में अकेला नहीं गा सकता था, इसलिए दूसरा रैपर चाहिए था, तो फिर मेरा गाँव का ही एक भाई है वो भी रैप करता था, उसका नाम अभिषेक AK बैक्सो करके,
1: ओके।
0: और उसने तो 7-8 म्यूजिक भी बनाया है ये जोश ने अभी।
1: अरे सही, ये जोश अच्छा है, ये जोश अच्छा है, काफी अच्छा है भाई ने।
0: हाँ जी, वो भाई ने हाफ पार्ट उसने कंप्लीट किया है, हाफ पार्ट मैंने कंप्लीट किया है सर।
1: हाँ ओके, तो म्यूजिक का टेस्ट भी बड़ा फर्क हो जाता है ना, क्योंकि आजकल की जनरेशन है उसका म्यूजिक का टेस्ट थोड़ा अलग है, आपका म्यूजिक का टेस्ट अलग है, तो क्या आप आज के जेन ज़ी वाले गाने भी सुनते हैं या फिर अभी ओल्ड स्कूल चल रहा है पुराने गाने सुनते हैं, क्या सीन है आपका?
0: मैं आजकल नया वाला गाना भी सुनता हूँ कबीर भाई, अब सीधा बात बताऊँ तो ये जो स्लैंग वर्ड यूज होता है ना वो इतना नहीं सुनता मैं, क्योंकि वो बाहर प्ले करने में गुनगुनाने में भी वो तो शर्म होगा ना, किसी के आगे बैठ के अभी वो गाली दे रहा है जैसा वैसा लगता है ना, इसलिए वैसा वाला गाना नहीं सुनता है, लेकिन जो मीनिंगफुल रहता है जो अच्छा उससे, तो फिर वैसा वाला गाना सुनता हूँ अभी नया वाला भी।
1: अच्छा, तो लिरिक्स चाहिए, मतलब आपको लिरिक्स होने चाहिए, यही तो मिलेनियल्स गाए है, हमको लिरिक्स चाहिए, म्यूजिक पे थंपिंग नहीं करना। अच्छा, इस बात पे कुछ रैप की लाइंस याद है, गा पाओगे तो बता दो।
0: मेरे वाला की दूसरा वाला कबीर भाई?
1: नहीं, आपका मेरे भाई, क्योंकि देखो नेपाली जनता भी आपको सुन रही होगी अभी, तो कुछ भी आपके एक दो लाइन सुना दो, एक दो वर्सेस सुना दो, एक ही वर्स सुना दो।
0: मेरा गाना एक एक बताए, अपना कॉलम बुक ही अपनों बारे लिखना सोच देशु एकले।

0: तलाई म दिन्छु आज अन्तिम पोलीबाट खानुहुन्न गाजा भन्ने चिज म त छुँदा पनि छुन्न।
1: अरे भाई भाई ए भो भाई फील तो है वाइब तो है तालिया भाई के लिए यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करण भाई क्या किस बारे में रैप किया आपने क्या क्या थीम क्या थी है?
0: ये इसका क्या है कि अभी जब मैं राइटिंग करने के लिए बैठा था तो हाथ में पेन था तो उसी से शुरू किया हाथ में कलम बोकी यानी कि हाथ में पेन लेके कुछ अपने बारे लिखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ अपना पास्ट बारे सोच रहा हूँ तो फिर मैंने इतना गलती किया उसके वजह से मैं दुख और पीड़ा भी भोग रहा हूँ ऐसा वाला और तेरा ये स्वार्थी संसार ना पराई पराई पनी चीनियो मतलब कि स्वार्थी ये दुनिया पे अपना कौन पराई कौन वो भी मैं पहचानने आ गया ऐसा वाला
1: लगता है। करण भाई बहुत दुख खाए बैठे हो कहीं ना कहीं से ये बात निकल के सामने आ रही है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है भाई।
0: थोड़ा थोड़ा वो भी है कबीर भाई लेकिन थोड़ा 75% ज्यादा दूसरों को देख के लिखा है मैंने मैं क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल पहला ऐसा ही था ना
1: अच्छा
0: वो जो स्मोकिंग करते थे ऐसा वैसा इसलिए मैं अभी वो सब लोग से दूर होने का कारण ही है कबीर भाई।
1: ओके ठीक है सारी जो बातें हैं जरा अभी होल्ड करके रखिएगा बिकॉज वी नीड टू टेक अ ब्रेक।
2: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा Generation Talks. Generation Talks.
1: अच्छा आपको क्या लगता है करण भाई मैं आपसे अगर पूछूं कि दोस्ती में बड़ा फर्क आ गया है ना पहले की दोस्ती में कुछ अलग बातें थी आज की दोस्ती में कुछ अलग बातें आपको क्या फर्क नजर आता है आजकल?
0: सच्ची बात बताऊं तो कबीर भाई अभी मेरा दोस्ती नहीं है।
1: नहीं आपको तो नहीं पर आपको फर्क क्या नजर आता है ऐसे आपने तो आपके पास तो चलो रीजन है कि दोस्त क्यों नहीं है पर आपको क्या फर्क लगता है?
0: पर तो अभी यही है आप कौन सा लाइन पे चलते हो वही लाइन पे आपको मिल जाता है ऐसा वाला।
1: अच्छा मतलब सेम चीजें होनी चाहिए तभी दोस्ती हो सकती है।
0: दो पाथ में चल रहे हो आप लोग तो फिर वही मिलता है जो बोलते हैं वही मिलता है ऐसा बोलते हैं ना वैसे टाइप का।
1: करण भाई मेरा सवाल ये नहीं था मैं ये जानना चाह रहा था कि लोगों की दोस्ती जो है उसका नेचर काफी बदला है ना पहले दोस्ती थोड़ी अलग किस्म की हुआ करती थी अभी दोस्ती थोड़ी अलग किस्म की हुआ करती है मैं वो पूछ रहा हूँ कि आपने इस बारे में कुछ नोटिस किया कि नहीं किया?
0: हाँ जी सेल्फी लेने से जा रहा होगा यार।
1: अच्छा
0: अपना फायदा ज्यादा देख रहे हैं अभी पहले पहले तो दोस्त के लिए जान दे सकते थे ऐसा वैसा सीन था अभी अपना लिए फायदा क्या है इसको दोस्त बना लिया तो वो देखते हैं ना ज्यादा।
1: अभी दोस्ती थोड़ी तराजू में तोली जा रही है कि ये मेरे कितने काम आ सकता है आ सकती है पहले ऐसा नहीं था
0: अभी ये कड़वा लगता है लेकिन सच बात सही है कबीर भाई।
1: अच्छा ओके तो आपका पैगाम क्या होगा जेन ज़ी के लिए अच्छा मतलब एक एडवाइस अगर आप देना चाहें तो क्या एडवाइस दें?
0: एडवाइस तो अभी डिसिप्लिन ले रहा हो सबसे बड़ी बात यही है।
1: ओके
0: डिसिप्लिन ले रहे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा अभी डिसिप्लिन जैसे कि हेल्थ को लेके जिम ज्वाइन किया रनिंग मॉर्निंग वॉक किया ऐसा एक्सरसाइज किया तो हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। डिसिप्लिन में रहोगे तो गलत बात नहीं बोल सकते मुंह से गलत बात नहीं निकलेगा। डिसिप्लिन में रहोगे तो अच्छा दोस्त लोग बनेगा जो खुद डिसिप्लिन में।
1: और करण भाई चलो यार ये तो बात हो गई अब मैं क्योंकि जानना चाहता हूँ आपको कुरेदना बड़ा मुश्किल है तो करण भाई बचपना आपका कैसा था आप कैसे बच्चे थे अभी तो आपने बहुत डिसिप्लिन की बात कर ली अपना बताओ यार कैसे थे बचपन में आप?
0: बचपन में गुस्से वाला था करण भाई का बताऊँ तो बचपन में नहीं अभी रिसेंटली मेरा वाइफ के जब मेरा शादी हुआ तब तक मैं गुस्सा वाला था बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कोई अगर कुछ गलत शब्द बोल दिया मुझे पसंद नहीं है तो सीधा जाके उसको मार के
1: मतलब
0: इसलिए वो जो फेस करके आया हूँ मैं अभी यहाँ तक उसका और इसका क्या फर्क है वही देख के सीख के अभी मैं ऐसा करो करके बोल रहा हूँ।
1: हाँ ओके हाँ तो वो तो आपको तजुर्बा हो गया ना अभी तो सब कुछ हो गया चलो ठीक है भाई लेकिन तुमको अपडेटेड रहना पड़ेगा भाई मतलब इतना पीछे नहीं रहने का कोई बात नहीं अगर उस पे किसी से बात नहीं कर रहे वो ठीक है पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कम से कम होना तो चाहिए यार तुम्हारा तो बनता है होना मेरे भाई
0: इसीलिए तो 107 सुन रहा हूं कबीर भाई को अपडेटेड करने के लिए।
1: क्या बात है बीच भाई ने प्रमोशन मार दिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा करण भाई क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि जयंती की बड़ी अच्छी बात है वो लोग हर चीज में है ना, हर चीज में एक्टिव रहते हैं. एंड आजकल तो कुकिंग को लेकर भी छोटी छोटी बात हो तो दे आर वेरी फॉरवर्ड इनटू इट.

0: और बहुत अच्छे से उसको क्राफ्ट कर लेते हैं। आपको खाना बनाना बनाना था, मतलब हमारे टाइम पे कुछ ना फोकस नहीं कर रहे थे लोग।
1: आता है कभी कभी, मुझे पहले तो नहीं आता था ये खाना बनाना भी, मेरा वॉइस नहीं सिखाया मुझे।
0: अरे भैया यार क्या बात है यार मतलब बहुत ही माशाल्लाह मुकम्मल शादी करी है भाई ने।
1: मेरा वाइफ ने मुझे सब कुछ सिखाया है, खाना बनाना, सब्जी बनाना। पहले मैं खाना बनाता था लेकिन गल जाता था, सब्जी बनाता था लेकिन नमक ज्यादा ऐसा होता था। वो कितना उसमें नमक डालना है, कितना टाइम पे मसाला डालना है, वो ऐसा नहीं मालूम था मुझे अभी, लेकिन आता है। अभी मैं अकेला खाना बना के खाता हूँ। अभी पूरे लोग इधर मांस मछली खाते है ना, नॉन वेज है, इसलिए अभी मैं तो वेजिटेरियन हूँ। अभी मेरे साथ वो नहीं होता, नहीं मिलता।
0: मतलब बीवी ने बदल दिया तुमको पूरा है, पूरा का पूरा मतलब वाइफ के आदि चेंज हो गए, हृदय परिवर्तन नहीं हर किस्म का परिवर्तन हो गया तुम्हारे अंदर।
1: अच्छा वाला परिवर्तन है, लेकिन
0: भाई खुश रहो यार, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। मैं तो ये दुआ करता हूँ करण भाई, जान के मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। अच्छा कितनी आदतें आप दोनों की मिलती है, क्योंकि आपके तो घर के अंदर ही, क्योंकि आपकी शादी का जो आप जिस तरह आपने सिनारियो बताया है अपने आप में, ये जेन ज़ी और मिलेनियल चल रहा है घर के अंदर ही। तो आपने क्या कुछ अभी सीखा है ये खाना वाना बनाने के अलावा, किरदार के तौर पे, कैरेक्टर के तौर पे आप में क्या बदलाव आया? गुस्सा गुस्सा हटा दो, और क्या चीज सीखी उनसे?
1: सबसे ज्यादा तो घूमना होता है कभी भाई, उसके बाद मेरा एक साथ घूमने निकल जाते हैं कभी भी किधर भी। रात को 2 बजे हो गया
0: तो पहले नहीं निकलते थे?
1: पहले मैं निकलता था लेकिन अभी पहले बहुत लोग के साथ, लेकिन वो यूज सुन नहीं रहता था वो जो घूमने का इधर उधर जाने का। अभी का जो है अभी दोनों एक साथ है ना, इसलिए दोस्त लोग के साथ घूमना और अपना फैमिली के साथ घूमना थोड़ा।
0: और क्या मतलब भाभी से परमिशन लेनी पड़ती है बाहर जाने के लिए, या फिर निकल जाते हो कभी कभार अकेले भी?
1: अकेले में नहीं निकलता कभी कभार, पहले पहले निकलने का मन लगता था जब आदत नहीं था, लेकिन जब समझ गया कि बाहर का दुनिया कैसा है, कौन कैसा है इधर, अभी होता है ना थोड़ा, तो फिर वो देख के सीख के अभी जो है उसी में खुश रहने का अभी आदत हो गया है।
0: यार कतई पंकज उदास हो गए हो यार ऐसे क्या यार करण भाई हिप हॉप कर रहे हो दूसरी तरफ, थोड़ी सी ये एक अलग साइड में देख रहा हूँ आज करण भाई की। देखो हर किसी का ना एक होता है ना, अगर जैसे एज डिफरेंस हो या ना हो, बट एवरीबॉडी लाइक वांट्स टू गो आउट, वो तो चलो ठीक है, कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं कुछ लोग बाहर नहीं जाना चाहते। आप तो भाई एकदम डेडिकेटेड हस्बैंड है माशाल्लाह, इस बात की तारीफ तो भाई करनी पड़ेगी। एक एक चीज का क्रेडिट भाई ने सीधा वाइफ को दिया, वेरी गुड यार क्या बात है। करण भाई कितना टाइम हो गया शादी को?
1: शादी को अभी 7 साल हो गए करण भाई।
0: 7 साल हो चुके हैं?
1: हाँ जी
0: भाई, उसके बाद भी उनका तारीफ कर रहा है मजस के लिए यार, अच्छी बात है माशाल्लाह, वेरी गुड। आपकी आपकी जोड़ी यूं ही सलामत रहे, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो शादी का सिलसिला है, आज की तारीख में जो शादियों का सिस्टम है उसमें थोड़ा सा बदलाव आया, राइट? लोग अभी थोड़ा सा जेंजीज कह रहे हैं भाई पहले लेट मी बिल्ड माई करियर और फिर मैं बाद में देखूंगा या देखूंगी। आपने किस उम्र में करी थी और आप क्या मानते हैं कि कितनी जल्दी, आज की तारीख के हिसाब से बताना, आज की तारीख में कितनी जल्दी शादी हो जानी चाहिए, कितने टाइम में होनी चाहिए?
1: अभी लड़की के एज के हिसाब से कम 20 रहना चाहिए, लड़का का 25 से 27 ऐसा रहेगा तो अच्छा है। अभी का अभी अर्ली मैरिज भी अच्छा नहीं है कभी भाई, क्योंकि वो लोग का थोड़ा टर्म नहीं मिलता ना।
0: हाँ हाँ
1: तो फिर ऐसा ही लगता है। मेरा तो ठीक ठाक टाइम पे हुआ था, जो टाइम पे होना चाहिए वही टाइम पे हुआ है।
0: तो यार मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बोला कि 20 साल कुछ ज्यादा कम नहीं, मतलब लड़की के लिए और लड़के के लिए चलो 25-27 समझ में आता है, 20 आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है भाई, हर जगह अप्लाई होगा नहीं आपको नहीं लगता?
1: ओ बस ऐसा होगा तो अच्छा है करके मैं बोला, लेकिन आप भी आप जो लड़का और लड़की का दोनों का एक आपस में वो हो गया मन मिल गया तो फिर कभी भी कर सकते हो।
0: अच्छा
1: लेकिन रहना चाहिए पॉजिटिव, ये नहीं कि आज गर्लफ्रेंड बना लिया कल शादी कर दिया परसों छोड़ दिया ऐसा वाला फील।
0: यार क्या बात है यार, मतलब मैंने तो ओल्ड स्कूल बंदा ढूंढ लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कतई ओल्ड स्कूल इंसान है मेरे साथ कॉल पे। अच्छा करण भाई ये भी बताओ यार, क्योंकि आप अपने बच्चों को किस तरीके से उन्हें आगे ले जाना चाहते हैं, उन्हें क्या अपने वो 90s के हिसाब से या आज के जमाने के साथ साथ चलना चाहते हैं, या उन्हें थोड़ा ओल्ड स्कूल रखना चाहते हैं कि भाई देखो जमाना चलता रहेगा तुम यार ऐसे रहो, कैसे चलाना चाहते हैं उनको?
1: अभी पहली बात तो मेरा बच्चा लोग नहीं है,
0: नहीं कभी इंशाल्लाह जब भी हो,
1: कभी अभी जब हो गए तो फिर मैं चाहता हूँ कि अभी वो लोग को जो करना मन लगे सही लगे, घूमना खाना पीना।

0: में गाइडेंस डालता रहूंगा मैं, ये अच्छा है ये बुरा है, तो ये गलत है, ऐसा करके।
1: अच्छा ठीक है। और करण भाई, मैं अक्सर पूछता हूँ कि आज सब कुछ सीखना पड़ता है, मतलब एक एक चीज़ नई नई आ गई है मार्केट में और कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है, और उसमें से एक टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप कदम से कदम नहीं मिला रहे हैं तो दिक्कत होती है। चलो आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, लेकिन आप AI वेआई यूज़ करते हो, नहीं यूज़ करते हो बिल्कुल भी?
0: AI तो ये जेमिनी वाला AI
1: यूज करते हैं,
0: जो मेरा फोन में ही था। बस बताऊं तो आपने जब मैसेज किया था मुझे, भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम आ रहा है, कुछ करते हैं ऐसा, रिकॉर्डिंग करते हैं करके आपने जब बोला, उस दिन से मैं AI में ढूंढ रहा हूँ कि मुझे इनविटेशन आया है कबीर भाई ने ऐसे ऐसे करके 107 से, अभी उधर पे टॉपिक ये है, अब कैसे बात करना है, क्या बात करना है, वो मैं ढूंढ रहा था उधर पे AI पे, लेकिन नहीं मिल रहा था, वो बस दिखा रहा था ट्रेडिशनल एंड कुछ ये और कुछ, वो मैं उसको जोड़ ही नहीं पाया कैसे बात करते
1: हैं। पर अच्छा है भाई, आप कोशिश कर रहे हैं, पता है करण भाई मैं यही कहूंगा, और आपकी मेरी एज के जितने भी लोग हैं, हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी शाये हुए नहीं होना चाहिए। आई थिंक हमें सीखते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें भी बड़ी ज़रूरी हैं, आगे जाके हमारे काम आएंगे, और आगे आगे चलने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा करण भाई, जो हमारी जनरेशन है उनको क्या कहेंगे, जो आपके हम उम्र हैं, जो सेम एज के हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है, क्या बोलना चाहेंगे?
0: हमारा उम्र वालों को अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट अपना फैमिली को दे पहले, अभी पैसा का इधर उधर नहीं हो रहा हूँ मैं, इधर पे बहुत लोग को देखता हूँ, कोई वो थोड़ा कंट्रोल करके नहीं बैठेगा तो इधर पे ऐसा है कि दलदल होता है ना जो गीला मट्टी, उसमें फंसा हुआ इंसान जैसा बन जाएगा, तो वही बोलता हूँ मैं तो।
1: अच्छा।
0: थोड़ा डिसिप्लिन ले लेके जो कमाया उसको बता के उसको कुछ काम में लगाने के लिए।
1: आज के जमाने में करण भाई सेविंग्स करना जरूरी है या कमाओ उड़ाओ वैसा वाला सिस्टम है आपका, आपका कैसा सिस्टम है?
0: मेरे हिसाब से तो कभी भाई मैं जो कमाता हूँ, मैं थोड़ा बहुत वो COVID-19 के जमाने का लोन भी है मेरे था अभी तक, तो उसको पे कर रहा हूँ, हाफ फैमिली को दे रहा हूँ, और बाकी जो रहा है इधर मैं थोड़ा खर्च करके थोड़ा सेविंग और थोड़ा शेयर मार्केट में लगा रहा हूँ कभी भाई।
1: अरे भाई यार, मतलब काफ़ी मतलब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू करण भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मैंने जाना है, और आई थिंक बहुत सारे नेपाली भाइयों ने सुना होगा, आपके अपने कम्युनिटी वालों ने सुना है, तो एक अलग साइड देखने को मिली, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा करण भाई जो है काफ़ी आज का मतलब एकदम हिप हॉप लौंडा है, लेकिन भाई कहता ही ऑपोजिट भाई अपना एकदम ओल्ड स्कूल सोल जो है भाई की ओल्ड स्कूल है, भले ही मिलेनियल हैं, तो ये एक अलग साइड देखने को मुझे मिली है। अच्छा करण भाई, घर पे आप मम्मी पापा में से किसके ज्यादा करीब रहे हैं, भाई बहनों के अलावा? अभी तो खैर माशाल्लाह शादी हो चुकी है,
0: मेरा थोड़ा ज्यादा करीब तो मैं मेरा बाबा से हूँ।
1: अच्छा बाबा से ज्यादा करीब है, बड़ी हैरानी है मुझे, क्योंकि लड़के अक्सर माओं के ज्यादा करीब होते हैं, ऐसा क्यों भाई, ये बड़ा अलग कॉम्बिनेशन है,
0: पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा ही है कभी भाई मेरा।
1: अच्छा।
0: कुछ भी काम हो गया तो अभी फादर ही हेल्प करते थे, अभी किधर भी जाना हो तो लेके जाते थे, ऐसा दिन था मैं, इसीलिए होगा शायद। मम्मी तो बस घर पे कुकिंग इधर उधर ज्यादा काम करती थी, लेकिन इतना क्लोज वाला वो सीन नहीं होता।
1: ओके, ये पहली मर्तबा किसी ने ऐसा रिप्लाई दिया, मैं बड़ा हैरान हूँ भाई इस बात पे, बट ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा करण भाई, मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये हर किसी से पूछ रहा हूँ मैं, इस शो से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आपके हिसाब से जो पॉकेट मनी वाला सिस्टम है, चलो नेपाल के हिसाब से बताओ मुझे, नेपाल में एक 16 साल के बच्चे को कितना पॉकेट मनी मिलना चाहिए, ये बताओ।
0: पॉकेट मनी तो समझ रहे हैं, हाँ मालूम नहीं ये तो मैंने क्योंकि मैंने पॉकेट मनी तो नहीं मिला मेरे को।
1: अरे हमें भी नहीं मिला, लेकिन आज के जमाने की डिमांड है ना, तो अब ऐसे ही बता दो ना कुछ भी मन हो, मतलब इंशाल्लाह जब आपके बच्चे होंगे तो आपसे बोलेंगे कि अब्बा बताओ यार कितने दोगे महीने के, तो कितने महीने के मिलने चाहिए बच्चे को, 16 साल के बच्चे को नेपाल में?
0: मैं तो बोलता हूँ पॉकेट मनी नहीं देना चाहिए, थोड़ा टाइम लगा के डिसिप्लिन रखना सिखा के फिर वो लोग को दे दिया जाए तो पैसा का इतना जरूरी भी नहीं पड़ेगा, अगर वो लोग को ओपन जैसा वो लोग आपने कुछ भी करके ऐसे पैसे दे दिए तो वो लोग गलत चीज में लग जाते हैं।
1: अच्छा, तो पैसे के बारे में सिखाओगे कैसे किसी बच्चे को, कब जाके आपको लगता है कि कौन सी एज में किसी को पैसे के बारे में सिखाना चाहिए?
0: पैसे का चीज ऐसा है कबीर भाई, मैंने तो खुद अपने आप सीख लिया, वो भी सीख लेगा लगता है।
1: अच्छा, मतलब दुनिया के भरोसे छोड़ रखा।

0: आप देख लेगा भाई।
1: मैंने तो खुद सीख लिया कभी भाई, मैं एक टाइम पे जितना भी पैसा था मैं पूरा स्पेंड करता था, कभी टैक्सी में घूमने चला जाता था, कभी ऐसा था मेरा पहले पहले। अभी वो इतने ऐसा आ गया कि अभी चलने सिखा दिया मैं कौन हूँ करके, ऐसा ने खुद सिखा दिया। अगर मुझे नहीं बताएगा तो मैं तुझे नहीं बताएगा, ऐसा वाला हो गया।
0: अब भाई ने एंड में लाइन दे दी भाई, क्लाइमेटिक लाइन। और ठीक है, आखिरी में करण भाई मैं चाहता हूँ कि आप कतर के लिए कुछ बोलें। कतर में हैं आप इतने सालों से, माशाल्लाह 2017 से आए हुए हैं, तो क्या पैगाम है आपका कतर के लिए, कतर में रह रहे आप, अपने नेपाली भाइयों के लिए क्या मैसेज है आपका?
1: कतर में क्या बोलूं भाई, अच्छा है, दोनों ही चाहिए, अच्छा भी है बुरा भी है।
0: नहीं भाई देखो अभी क्या है, अच्छा ही बोलोगे ना तुम रिकॉर्डिंग में, बुरा तो बोलोगे नहीं है ना, तो जो अच्छा ही है वो बोलो और एक मैसेज दे दो अपने नेपाली भाइयों के लिए जो नेपाल के हैं और यहाँ पे सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: उनके लिए क्या कहूँ कभी भाई, आप वही जो पहले बताया, फैमिली को देखो, अपना काम करो, दूसरा का तब काम पे तान नहीं बढ़ाओ, झगड़ा नहीं करो, डिसिप्लिन में रहो, बस वही
0: डिसिप्लिन में रहो कुल मिला के। ठीक है करण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कि आपने वक्त दिया। आई होप आपको इंटरव्यू देके मजा आया होगा, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे मेरे भाई। पहली कोशिश कामयाब रही आपकी, अच्छा लगा आपसे बात करके भाई, जानने को मिला। थैंक यू सो मच भाई,
1: थैंक यू सो मच।
0: ख्याल रखो मेरे भाई, फिर मैसेज करता हूँ, ठीक है? ओके मेरे भाई, टेक केयर। तो भाई ये थे हमारे करण भाई, जिन्होंने कई सारी बातें करी, आप इनके बारे में कुछ कहना चाहें? बहुत सारे नेपाली हमारे भाइयों ने सुना होगा ऑफकोर्स। सो 666-22107 नंबर है, बताइएगा, क्योंकि ये मुझे सीरियस साइड देखने को मिली है, मुझे मैंने सोची नहीं थी। बट नॉनदलेस हैविंग सेड दैट, कोई मैसेज हो और आप भी शो का हिस्सा बनना चाहें तो 666-22107 पे जरूर बताइएगा। दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम जनरेशन टॉक। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। Assalam.
2: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107.
4: FM 107.
2: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी बैटिंग या विकेट कीपिंग की वजह से मशहूर नहीं होते बल्कि अपनी लीडरशिप टेम्परमेंट और मैच विनिंग एबिलिटी की वजह से एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाईलाइट। और आज हम बात इंडिया के एक लेजेंडरी क्रिकेटर की हम करेंगे और सबको पता चल ही गया होगा उनका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। एमएस धोनी का इंटरनेशनल करियर 2004 में शुरू हुआ जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया। शुरू में उनका एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल और लॉन्ग हेयर इन लंबे बालों पर उनकी पहचान अपने लोगों ने बोला यारे लंबे बाल वाले क्रिकेटर कौन है वो, अच्छा धोनी है, कोई धोनी आया है रांची से, इंडिया का एक शहर है झारखंड में है और वहाँ से ये लड़का आया है, काफ़ी यंग है, एक्सप्लोसिव है, यानी एक्सप्लोसिव बैटिंग में बड़ा एक्सप्लोसिव है और काफ़ी कुछ उनके जो बैटिंग का स्टाइल है कुछ डिफरेंट है। लेकिन बहुत जल्द दुनिया को समझ आ गया कि ये खिलाड़ी सिर्फ स्टाइल नहीं सब्सटेंस भी रखता है। 2005 में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट सीरीज में अपनी बैटिंग का इम्प्रेशन जो था ना दोस्तों वो छोड़ा और वो सबको मुतासिर किया। टेस्ट क्रिकेट में धोनी ने 90 मैचेस खेलकर 4876 रन बनाए और उनका हाई स्कोर 224 था जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। टेस्ट करियर में उनके नाम 6 सेंचुरीज और 33 फिफ्टीज रही। लेकिन धोनी की असली पहचान बनी वनडे क्रिकेट में। 350 ओडीआईस में धोनी ने 10773 रन स्कोर किए, उनका बैटिंग एवरेज 50 से ज्यादा रहा और स्ट्राइक रेट तकरीबन 87.5 था। उनके नाम 10 सेंचुरीज और 73 फिफ्टीज हैं और उनकी सबसे मशहूर ओडीआई इनिंग्स में से एक थी श्रीलंका के खिलाफ 183 नॉट आउट जो विकेट कीपर के लिए उस वक्त एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन धोनी की बैटिंग का सबसे यादगार चैप्टर आया 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ 275 रन का टारगेट मिला। धोनी ने प्रेशर में खुद ऊपर आकर बैटिंग की, यानी अपने आप को प्रमोट किया बैटिंग ऑर्डर में और 91 नॉट आउट की मैच विनिंग पारी खेली। That was a captain's knock. और फिर वो मोमेंट, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट और गेंद स्टेडियम की बाउंड्री के पार। इंडिया 28 साल बाद वर्ल्ड कप चैंपियन बना और धोनी वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने वाले कप्तान बन गए। लेकिन दोस्तों धोनी की ग्रेटनेस सिर्फ बैटिंग तक महदूद नहीं थी। 2007 में उन्हें इंडिया की T20 टीम का कप्तान बनाया गया। ये सुनिए, ये वो वक्त था जब T20 क्रिकेट अपनी शुरुआत के दौर में था। साउथ अफ्रीका में पहला T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जो हुआ था और धोनी ने एक यंग इंडियन टीम को लीड किया। इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त देकर इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। यहीं से दुनिया ने धोनी को एक नए नाम से जाना, कैप्टन कूल। 2008 के बाद धोनी इंडिया के ऑल फॉर्मेट कप्तान बन गए। उन्होंने इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर वन रैंकिंग तक पहुंचाया और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी जबरदस्त सक्सेस हासिल की। उनकी कप्तानी में इंडिया ने 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 ओडीआई कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ओवरऑल इट वाज अ फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू इज वन ऑफ द मेजर एजेंट्स, यानी धोनी क्रिकेट हिस्ट्री के वाहिद कैप्टन बने जिन्होंने 3 मेजर ICC व्हाइट बॉल ट्रॉफी जीती हैं। T20 इंटरनेशनल्स में धोनी ने इंडिया के लिए 98 मैचेस खेले, 1617 रन बनाए, उन हाई स्कोर 56 था। लेकिन T20 क्रिकेट में उनकी वैल्यू सिर्फ बैटिंग से नहीं बल्कि विकेट कीपिंग, फिनिशिंग और प्रेशर हैंडलिंग, विकेट के पीछे भी धोनी एक मास्टर थे। उनकी लाइटनिंग फास्ट स्टंप्स और उनका यूनिक ग्लोव वर्क बैट्समैन के लिए नाइटमेयर था। ODI क्रिकेट में उन्होंने 130 स्टंपिंग्स किए जो उनकी विकेट कीपिंग को समझने के लिए काफी है। और फिर आते हैं IPL, यानी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ धोनी 2008 से IPL का सबसे आइकॉनिक फेस बन गए। उनकी लीडरशिप में चेन्नई ने कई टाइटल्स जीते और धोनी खुद IPL के सबसे सक्सेसफुल कप्तानों में। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद धोनी का फैन बेस कम नहीं हुआ। उनकी सब क्वालिटी शायद ये थी कि वक्त घबराते नहीं थे,
चाहे वर्ल्ड कप फाइनल हो, लास्ट ओवर हो या एक बहुत ही डिफिकल्ट रन चेस, धोनी हमेशा काम नजर आते थे। इसीलिए उन्हें सिर्फ एक क्रिकेटर, फिनिशर, विकेटकीपर, कप्तान और लीडर के तौर पर याद आया। एमएस धोनी ने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, ट्रॉफीज, रिकॉर्ड्स, मेमोरेबल इनिंग्स और सबसे बढ़कर एक लेसन, प्रेशर में भी अपना दिमाग ठंडा रखो, अपने फैसले पर भरोसा करो और आखिरी गेंद तक फाइट। यही था कैप्टन कूल एमएस। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का स्पोर्ट्स हाईलाइट का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स से तब हाजिर के लिए मुझे नहीं मतलब साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को इजाजत।

0: कुछ हस्तियां होती हैं जिनका होता है उनकी मेहनत उनकी हजारों लाख इंस्पायर करती है और ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स है जिसकी कहानी लाना चाहते हैं और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल बहुत सारी पर्सनल तो सुनिएगा जरूर एम्बेसडर ऑफ द मंथ आज नाजिया के साथ हर महीने के पहले जो शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: The most heard radio station, FM 107. FM 7. Dil Se.

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक। चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए शाम के 4:01 यानी इट्स टाइम फॉर।
0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम वेलकम। मैं हूँ आपकी फॉर अमिता, द रिक्वेस्ट शो पर हाजिर हो चुकी हूँ। तो कैसे हैं आप, कैसा गुजरा अब तक का आपका दिन। वैसे ये जो पूरा एक घंटा है ना, ये हमारा म्यूजिकल आर है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पसंद के गाने हम प्ले करते हैं, लेकिन हर दिन कुछ थीम होती है। आज नहीं, मैंने सोचा कि हम ब्यूटीफुल डिवास को सेलिब्रेट करें, यानी कि पॉप डिवास एंड सिंगिंग आइकन्स। हाँ जी, जैसे कहा जाता है ना कि अगर एक फील आवाज ना हो जिंदगी में तो वो कहते हैं जिंदगी अधूरी सी लगती है। उसी तरह अगर हम अपनी फिल्मी दुनिया की बात करें, ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने हर फिल्म में अपनी खूबसूरती से, अपनी एक्टिंग से एक अलग तरह का ऑरा, एक अलग तरह का मैजिक क्रिएट किया हुआ है। और वहीं अगर हम सिंगर्स की बात करें तो उनकी आवाज़

दिल को सुकून मिलता है. तो आज की हमारी थीम है पॉप डिवास एंड सिंगर्स. यस, तो बताएं कि आपको कौन से गाने पसंद हैं, कौन सी वो फीमेल सिंगर है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, उनकी आवाज आपके दिल को छू जाती है, या कौन सी वो एक्ट्रेस है जिनकी फिल्मों के गाने आपको बहुत पसंद है. 6222077222107 पर, और क्यों पसंद है वो भी बता सकते हैं और अपने डेडिकेशन भी दे सकते हैं. फिलहाल शो की शुरुआत करते हैं एक पावरफुल वॉइस के साथ, एंड दिस इज ऑफ सुनिधि चौहान. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। द रिक्वेस्ट शो पर क्या हाल चाल है जनाब? तो आपने सोचा कि अभी कौन से गाने आप सुनना चाहते हैं, वो भी वॉल्यूम बढ़ाकर। देखो आज का थीम बहुत सिंपल है, आज हम फिल्मी डीवास को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर चाहे

वो फीमेल सिंगर्स हो या फिर फिल्मी एक्ट्रेसेस हो जिनकी फिल्मों के गाने आपको बहुत पसंद है. क्यों पसंद है वो भी आप बता सकते हैं. किसी खास को डेडिकेट करना है तो वो भी कर सकते हैं. नंबर नोट कीजिए 666-22-107 666-22-107. और अभी सबसे जो पहली रिक्वेस्ट आई है वो आई है कविता कृष्णमूर्ति और श्रेया घोषाल की आवाज़ में. ये गाना सुनना चाहती हैं अफसाना और कहती है कि दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी देवदास. और न जाने जितने बार भी ये गाना प्ले हो जाए मैं हमेशा इसको सुन सकती हूँ. ओके सो डेफिनेटली ये गाना आपकी राहों में आएगा एक पूरे कहते हैं ना कि बंगाली सेटअप के साथ. इट्स वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक. माधुरी और ऐश्वर्या क्या कमाल की लगी है. तो ये गाना आपको आगे सुनने मिलेगा पूरा पूरा. और उसके बाद यहाँ पर मुझे नूर की रिक्वेस्ट है एंड शी सेइंग कि अमिता ये तो सॉन्ग है शिल्पा राव एंड सचेत एंड लव शिल्पा वॉइस एंड सॉन्ग इज मेरे महबूब. क्या बात है, बहुत कमाल की चॉइसेस है एंड दोनों ही बहुत ही डिफरेंट है. तो चलिए आने वाले हैं बी प्रिपेयर्ड और को अपनी प्लेलिस्ट में कौन सा गाना है जो सुनना है, कौन सी ब्यूटीफुल फीमेल सिंगर की आवाज सुनी है ब्यूटीफुल एक्स गाना. 666-22-107 666-1 इज पर स्टे ट्यून्ड.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the QMC now.
2: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया. सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अनत एवरी थर्सडे फ्रॉम 15 PM ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी
3: गेम सीजन 2.
4: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए. बहुत डिस्टर्ब कर दे
5: पर कुछ मिस हो गया तो इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन आई ना बेचैनी रही.
4: उफ, पर दिमाग से चाहिए ना.
6: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग से बनाना बेहद जरूरी क्योंकि हन डज. सुनिए हमारा खास एनर्जी आर हर संडे से डेढ़ से ढाई आरजे नाथ और जिस सब के साथ ओनली FM 107 से देसी. द रिक्वेस्ट के साथ ओनली ऑन FM 107.
7: Yes, now welcome once again FM 107. So, yeah, I'm here for a meet.

कहना द रिक्वेस्ट पर आज की जो खास थीम ऑन डिवास या की सारी टैलेंटेड लवली लवली एक्ट्रेसेस जिनकी फिल्में देख के काफी खुश होते हैं, एंटरटेन भी होते हैं और वो सिंगर्स जिनकी आज हमारे गांव में गूंजती यस आज के गाने आप सुन सकते हैं. तो कौन से वो गाने आप छूते हैं डू शेयर विद अस, किसी को डेट कर वो भी कर सकते हैं 6622107 पर. ठीक है और अभी जो रिक्वेस्ट ने उस गाने की रिक्वेस्ट की है दैट इज नफीस अब्दुल एंड मोहम्मद यू खान एंड द सॉन्ग इज सो ब्यूटीफुल अगर तुम साथ हो. अलका याग्निक अरिजीत सिंह की आवाज ग्रेट कॉम्बिनेशन. ऐसा लगता है कि ये गाना जब प्ले होता है तो किस रूठे हुए को बड़े पर से मना सकता है कि नहीं. तो डेफिनेटली मैं सिर्फ डिवास लेकर अपने कह रहे हैं कि हमें डिवास के साथ खेल कर भी चाहिए चलिए हम थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट किए बट आई वांट फुली डिवा ही सेलिब्रेट करें. ठीक और उसके बाद जो रिक्वेस्ट आई है वो साजिद गिला जो कि ना चाहते हैं क्या बात है श्रेया घोषाल की आवाज बाजीराव मानी तुरंत फॉल करिए. आपको पता है स्पेशली इस गाने सेट था उसमें 20,000 गायक है एंड दिस सॉन्ग वॉज अ ट्रिब्यूट टू द रेट्रो मूवी जो कहते हैं ना ये लेवी बन चुकी है मुगल आजम जो की फिल्म थी. जनरली ये दोनों आपकी राह में आ रहे हैं और आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं उसके बारे में ना 6622107 पर हम शेयर कीजिए और अभी लेट्स एंजॉय द म्यूजिक. स्टे ट्यून्ड 107 दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर, ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
3: एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे थर्सडे सुबह 6 बजे सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी. आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: Yes, and now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी A for Amita. और द रिक्वेस्ट शो पर आज की प्लेलिस्ट बड़ी कमाल की है. मतलब हमारे लिसनर्स बहुत सोच समझ कर एकदम चुन चुन के गाने ढूंढ के निकाल रहे हैं कि नहीं. वाला भी अगली रिक्वेस्ट है अरमान की, जो कि सुनना चाहते हैं एक बेहद बेहद खूबसूरत गाना, इश्क सूफियाना, सुनिधि चौहान की आवाज. एंड आई शुड टेल यू कि सुनिधि ने अपना फिल्मी करियर या यू कह सिंगिंग करियर 13 साल की उम्र में

शुरू किया था और फिल्म थी शस्त्र जिसमें उन्होंने अपना सबसे पहला गाना गाया था. तो यस, उनकी आवाज में ये गाना हम सुनने वाले हैं और पिक्चराइज्ड है विद्या बालन के ऊपर. उसके बाद जैद की रिक्वेस्ट आई है और वो ये गाना सुनना चाहते हैं एंड द सॉन्ग इज जिया जिया रे. नीति मोहन की आवाज और ये गाना वो डेडिकेट कर रहे हैं अपनी बहन रिहाना को. कहते हैं कि दिस अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए ये प्ले करें. सो डेफिनेटली ये दोनों खूबसूरत गाने आपकी राहों में आने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड. और आपकी प्लेलिस्ट का कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहते हैं, आज का थीम है हमारी फीमेल आर्टिस्ट के लिए, तो जरूर बताएं 6622107 6622107 पर. अभी बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी.

0: Arthur Harris Show. Efar Amita ke saath. Only on FM 107. Till see.
1: Welcome FM 107 se. Main Efar. हमारे आज फीमेल्स का पार दिख रहा है, क्या बात, इट्स अ ब्यूटीफुल आज की थीम है, ब्यूटीफुल सी होती जा रही है क्योंकि फीमेल सिंगर्स ये ब्यूटीफुल की बातें कर रहे हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती से अपनी आवाज से हर किसी जीता है. और अगली रिक्वेस्ट की तरफ तो असलम की अटेम्प्ट करें कि अमिता मुझे शाहजाल की आवाज में प्लीज सुनिए. ओहो हो, हमारी अधूरी कहानी फिल्म का नाम है और ये गाना है, वाह बात है. श्रेया घोषाल की बात करूं, इनकी आज हम फ्लॉलेस पर सिर्फ 4 साल की थी तब से गा रही है, क्या बात है. ये क्वेस्ट पूरी पूरी आएगी और उसके बाद ये तो बिल्कुल पावर की रिक्वेस्ट है. कहते हैं कि मुझे नेहा भसीन की आवाज बहुत ज्यादा पसंद है, तो धुन की इज अ सॉन्ग जो कि आप चाहोगे. And I should tell you, नेहा भसीन तब से पसंद है जब वो तरह रेडियो प्रेजेंट किया है. Yes, so I love her. लोगों में आएंगे आप जल्दी से, आपको कौन सुन वक्त भाई 6221 जल्दी जल्दी अपनी रिक्वेस्ट भी. अभी लेट्स एंजॉय श्रेया घोषाल की वॉइस में गाना. Stay tuned to FM 107 दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और द रिक्वेस्ट शो पर अब वक्त हो चला है

0: क्विज टाइम.
1: यस, तो क्विज टाइम पे क्या करना है, बस एक गाना है जो आपको बीच से सुनाने वाली हूँ, स्पेशली उसका फीमेल वर्जन. आपको सुन के आवाज पहचाननी है कि ये आवाज किसकी है. बताइए बताइए बताइए ये आवाज किसकी है. सो 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ इस आवाज को पहचानिए. और ये गाना पूरा पूरा आपके नाम में आगे प्ले करने वाली हूँ. लेकिन अभी रिक्वेस्ट आई है हमारे सोशल मीडिया से आफरीन की, और वो सुनना चाहती है ओहो श्रेया घोषाल की आवाज में एक और पावरफुल सॉन्ग, एंड दैट इज आमी जे तुमार. मतलब एक तरफ माधुरी दीक्षित है, दूसरी तरफ विद्या बालन, और दोनों का परफॉर्मेंस सल्यूट करने लायक है कि नहीं. सो लेट्स एंजॉय. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

पाते हैं, कुछ तो एकदम गूज बम्स होते हैं। मैं हूँ आपकी फॉर ना, और बिल्कुल आ रहा है तो द रिक्वेस्ट शो आज का खत्म होने वाला है। कुछ गाना बिना की गाना मतलब इसको पहचानो। लोगों ने मुझे लिखा है, देखो खुशहाल नहीं है, नेहा भी नहीं है, और सब अलग अलग तरह के जगह है, बहुत कम लोग हो, लोग इन्होंने भी चौहान लिखा है। सो द राइट आंसर इज सुनिधि चौहान, और जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम है आदिल फारूक रिजन एंड मोहम्मद यूसुफ। सो डेफिनेटली ये गाना आपके नाम होने वाला है। एंड ऑन दिस नोट अब आप मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त है मेरे जाने का। आपकी मेरी मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे। तो क्या करना है, तब तक हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, और 666-2107 इस नंबर याद रखिए, क्योंकि इसके जरिए हमारी बातचीत होती रहेगी। और अभी जाने से पहले ये कहना तो बनता है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन

हर एक क्वालिफिकेशन सिक्योर कर ली। कतर बास्केटबॉल फेडरेशन ने 2026-2027 मेंस जनरल लीग चैंपियनशिप का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है। 9 क्लब्स 10 अक्टूबर से खिताब के लिए मुकाबला करेंगे। यदि स्पोर्ट्स न्यूज और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स और अब अपना प्रोग्राम शो गेम चेंजर शुरू करते हैं। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे क्रिकेट की तारीख के एक ऐसे बैट्समैन के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ लीडरशिप कंसिस्टेंसी बल्कि एक अनोखा स्टैटिस्टिक्स के जरिए आज भी क्रिकेट फैंस के दिलों में राज कर रहा है और इनका नाम है सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। सीजन 2 डोनाल्ड ब्रैडमैन। इनफैक्ट देखा जाए क्रिकेट के रेफरेंस में डोनाल्ड ब्रैडमैन का नाम हमेशा बड़े ही इज्जत के साथ लिया जाता है। क्रिकेट की तारीख में कई रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो फैंस और एक्सपर्ट्स को हैरान कर देते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स वक्त के साथ टूट जाते हैं जबकि कुछ इतने मुश्किल होते हैं कि उन तक पहुंचना भी नामुमकिन लगता है। इन्हीं रिकॉर्ड्स में सबसे नुमाया नाम ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी बैट्समैन सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का है जिनका टेस्ट क्रिकेट बैटिंग एवरेज 99.96 था। यह सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि तमाम स्पोर्ट्स हिस्ट्री के अजीम तरीन रिकॉर्ड्स में शुमार किया जाता है। आज भी जब क्रिकेट के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स की बात होती है तो ब्रैडमैन का 99.96 बैटिंग एवरेज सबसे ऊपर नजर आता है। ये ऐसा रिकॉर्ड है जो तकरीबन एक सदी गुजरने के बावजूद अपनी जगह पर कायम है और शायद आने वाले कई सालों तक कायम रहेगा क्योंकि डोनाल्ड ब्रैडमैन के बाद कई ऐसे मारूफ बल्लेबाज आए, बहुत स्कोर्स किए इंक्लूडिंग ज़हीर अब्बास, रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, आई मीन कितने भी लीजिए, सब आए गए। ये रिकॉर्ड 99.96 जो एवरेज है किसी ने भी तोड़ नहीं पाया, छू तक नहीं पाया। अच्छा ये थोड़ा सा आप तारुफ करवाते हैं। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की पैदाइश 1908 में ऑस्ट्रेलिया में हुई। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट से गहरा लगाव था। कई फुटबॉल के ऐसा किस करते थे जिसने उनकी रिफ्लेक्सेस हैंड आई कोऑर्डिनेशन को गैर मामूली दिया था। जब उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो क्रिकेट तारीख के सबसे अजीम बल्लेबाज बन जाएंगे। उन्होंने अपने करियर के दौरान जो कंसिस्टेंसी दिखाई आज तक किसी दूसरे बल्लेबाज के लिए मिसाल बनी हुई है। That's the hadaf, that's the target. Every batsman tries to touch that record of Donald Bradman. कहते हैं कि एवरेस्ट में के लिए आप बहुत सारी चीजों के नॉट दैट कि आप बहुत ही इंजीनियर हैं, ग्रेट स्किल्स हैं आपके पास, साथ साथ बहुत से फैक्टर्स होते हैं आपको है कि आप पहुंच पाएंगे या नहीं पाएंगे। सेंचुरीज के नॉट नेसेसरी आपने फुल रन बनाते जा रहे हैं, वो तो सभी किया है, सुनील गावस्कर ने किया है, विराट कोहली ने भी किया, लेकिन ये एवरेज इज डिफरेंट। 99.9 एवरेज है। ये आपको थोड़ा सा तफसील से बता देता हूँ। क्रिकेट में बैटिंग एवरेज किसी बल्लेबाज की परफॉर्मेंस को नापने का एक अहम पैमाना होता है। इसे टोटल रन्स को डिसमिसल्स की तादाद पर डिवाइड करके निकाला जाता है। आमतौर पर अगर किसी बल्लेबाज का टेस्ट एवरेज 50 हो तो उन्हें वर्ल्ड क्लास माना जाता है। अगर एवरेज 60 के करीब हो तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझा जाता है। मगर डोनाल्ड ब्रैडमैन का एवरेज तो 99.96 था जो दूसरे तमाम ग्रेट बल्लेबाजों से बहुत बहुत आगे है। ये सोचिए कि एक बल्लेबाज हर मर्तबा क्रीज पर आकर तकरीबन सेंचुरी स्कोर कर रहा हो। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ब्रैडमैन का रिकॉर्ड क्रिकेट का सबसे मुश्किल रिकॉर्ड है। गावस्कर ने भी तो सेंचुरीज पे सेंचुरीज, सचिन तेंदुलकर ने भी सेंचुरीज पर सेंचुरीज, विवियन रिचर्ड्स ने भी सेंचुरीज, ज़हीर अब्बास ने भी सेंचुरीज, विराट कोहली भी सेंचुरीज, बहुत सारे सेंचुरीज, लेकिन एवरेज इज समथिंग डिफरेंट। डोनाल्ड ब्रैडमैन ने सिर्फ 52 टेस्ट मैचेस खेले। इन मैचेस में उन्होंने 6,996 रन स्कोर किए। उनका हाई स्कोर 334 था और उन्होंने अपने करियर में 29 टेस्ट सेंचुरीज बनाई और डोनाल्ड ब्रैडमैन का ही रिकॉर्ड

सुनील गावस्कर ने तोड़ा था टू बिकम द हाईएस्ट टेस्ट सेंचुरियन इन द टेस्ट क्रिकेट. 29 सेंचुरीज तोड़कर 30th सेंचुरी स्कोर किया था सुनील गावस्कर 1987, लेकिन एवरेज को पकड़ नहीं पाए. सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उन्होंने सिर्फ 80 इनिंग्स में 29 सेंचुरी स्कोर की. आज के दौर में कई बल्लेबाज 150 या 200 इनिंग्स खेलकर भी इतनी सेंचुरीज नहीं बना पाते. अच्छा, एक बात यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि ब्रैडमैन की बैटिंग सिर्फ रन्स तक महदूद नहीं थी, उनकी स्ट्राइक रोटेशन, शॉट सेलेक्शन और कंसंट्रेशन भी लाजवाब थी. वो बॉलिंग अटैक्स को इतनी आसानी से डोमिनेट करते थे कि कई दफा बॉलर्स उनके खिलाफ बेबस नजर आते थे. दैट वॉज द मास्टरी ऑफ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, इज द फास्टेस्ट बॉलर ड्यूरिंग हिज टाइम, जहां पे ना तो चेस्ट गार्ड ना तो एल्बो गार्ड, कुछ भी नहीं था. अब बात करते हैं कि ये 4 रन का फासला क्या. डोनाल्ड ब्रैडमैन के जो 99.96 एवरेज की कहानी का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है उनका आखिरी टेस्ट मैच, और ये जो 4 रन का फासला है, वो सोचे कि 100 एवरेज भी हो सकता था लेकिन नहीं हुआ. 1948 में इंडिया के खिलाफ अपनी आखिरी टेस्ट मैच में ब्रैडमैन को अपना करियर एवरेज 100 तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 4 रन की जरूरत थी. पूरी दुनिया की नजरें उन पर लगी हुई थी, फैंस को यकीन था कि वो आसानी से ये माइलस्टोन हासिल कर लेंगे, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर एरिक हॉलिस ने उन्हें दूसरे ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया. एंड ये दैट वाज अ शॉकिंग थिंग केम फ्रॉम एवरीवन इंक्लूडिंग इंग्लैंड प्लेयर्स भी चौंक गए कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन आउट हो गए. ब्रैडमैन बिना कोई रन बनाए आउट हो गए. एंड दैट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग दैट हैड हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे. उनको सिर्फ 4 रन की जरूरत थी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया. कभी कभार होता है कि आपको सेंचुरीज पे सेंचुरीज आप स्कोर कर जाते हैं, कभी कभार ये भी होता है कि 99 रन पर भी आप आउट हो जाते हैं. किस्मत किस्मत की बात है, और इसी वजह से उनका फाइनल एवरेज 100 के बजाय 99.96 रहा. ये क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे मशहूर लम्हों में से एक माना जाता है. तो चलिए अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं ब्रैडमैन और उनके मुकाबले के बल्लेबाजों के साथ. जब हम ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दूसरे ग्रेट बैट्समैन के एवरेज के साथ कंपेयर करना जरूरी है. आज के दौर के अजीम बल्लेबाज भी आमतौर पर 50 से 60 के दरमियान एवरेज रखते हैं. कुछ एक्सेप्शनल खिलाड़ी जो हैं वो 60 के करीब पहुंचते हैं, लेकिन ब्रैडमैन का 99.96 एवरेज इन सबसे बहुत बहुत ज़्यादा है. यानी ब्रैडमैन और दूसरे लेजेंड्स के दरमियान जो फर्क है वो उतना ही बड़ा है जितना एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और एक एवरेज इंटरनेशनल प्लेयर के दरमियान होता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुनील गावस्कर से एवरेज और सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली या बाबर आजम ये एवरेज बल्लेबाज है. वो जो क्लास है, क्लास इज डिफरेंट. वो जो कंसिस्टेंसी है, तो कंसिस्टेंसी का ही एक फैक्टर है, और इसीलिए कई स्पोर्ट्स एनालिस्ट कहते हैं कि ब्रैडमैन का स्टैटिस्टिकल डोमिनेंस किसी भी स्पोर्ट के एथलीट से ज्यादा इंप्रेस. और आज मैं भी हैं एक्सपर्ट्स की, नॉट दैट ही प्लेड क्रिकेट, आई मीन स्पोर्ट्स की एंगल से बात करें तो जो कंसिस्टेंसी, स्पोर्ट्स पर्सन को कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत होती है. विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एनी स्पोर्ट, चाहे एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जो लगातार मुसलसल आप खेलते जाते हैं और एक टारगेट लेकर, एक मुसलसल एक आपके सामने एक गोल है कि इसी गोल को अचीव करना है. जो गोल सेंचुरीज का भी हो सकता है, वो गोल यू नो परफेक्शन का भी हो सकता है, वो गोल रन्स का भी हो सकता है. और यहाँ ब्रैडमैन ने अपने स्टैटिस्टिक्स यानी बैटिंग एवरेज को मुसल मजबूत बनाए रखा है. दैट इज समथिंग वेरी इंप्रेसिव. अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बॉडीलाइन का जो चैलेंज था, बॉडीलाइन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एशेज सीरीज को बॉडीलाइन सीरीज कहा गया था. और उस वक्त इंग्लैंड वांटेड टू डोमिनेट ऑस्ट्रेलिया बिकॉज इंग्लैंड को हमेशा हार मिलती रही है, और हमेशा एशेज सीरीज में दे वर ऑन द बैक फुट. सो जब वो दौरा कर रहे थे एंड ऑस्ट्रेलिया में, तो इंग्लैंड के पास एक नया तरकीब आया, इंग्लैंड के कप्तान के पास, डगलस जर्डन के पास, कि अब ऑस्ट्रेलिया को कैसे हम हराएं. ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए डॉन ब्रैडमैन को रोकना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनके जितने भी यू नो सबसे टॉप बैट्समैन हैं उनको भी रोकना पड़ेगा. तो फास्ट बॉलिंग, बॉडी लाइन यानी बॉडी को अटैक करो, यानी आपके जिस्म में हर तरह की गेंद फेंक दो, आप शॉर्ट पिच, बाउंसर्स, कुछ भी. और बाउंसर्स के कोई रूल वगैरह उस टाइम होता नहीं था, आईसीसी डिडंट एग्जिस्ट देन. एंड इसी वजह से दैट सीरीज, पर्टिकुलर सीरीज,

0: was infamously called the Bodyline series. और ये बैटमैन के करियर का सबसे मुश्किल 1932-1933 की ये बॉडीलाइन सीरीज थी. इंग्लैंडर ब्रैडमैन को रोकने के लिए एक नई बॉलिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, जिसे अभी जो मैंने आपसे कहा बॉडी लाइन कहा गया है. मतलब जिस्म को निशाना बनाकर आपको रोका जाएगा. हमें जबरदस्ती है. आई मीन इट्स लाइक फिजिकली यू आर असॉल्टिंग समवन, लेकिन विद अ गेंद, विद अ बॉल, विद अ रेड चेरी जो क्रिकेट में हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम रेड चेरी भी बोलते हैं. और इस स्ट्रेटजी में बॉलर्स बैट्समैन के जिस्म को टारगेट करते थे और लेग साइड पर फील्डर्स लगाए जाते थे. मतलब थोड़ा सा निक लग जाए, थोड़ा सा आपकी एल्बो लग जाए, एंड दैट विल गिव देम अ कैच और समटाइम यू नो स्क्वायर लेग पर या गली पर विकेट कीपर के पास कुछ भी हो सकता था और हुआ भी था. ये टैक्टिक इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि दोनों ममालिक के दरमियान सियासी तनाव तक पैदा हो गया था. इस सब के बावजूद ब्रैडमैन ने सीरीज में रन स्कोर किए और साबित किया कि वो किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं. बॉडीलाइन सीरीज क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे मशहूर चैप्टर्स में से एक है और ब्रैडमैन उस कहानी के मरकजी किरदार थे. अच्छा, हम बात कर रहे हैं गेम चेंजर की, और गेम चेंजर में आज हम डोनाल्ड ब्रैडमैन के बारे में बात करें. इनफैक्ट डोनाल्ड ब्रैडमैन के बैटिंग एवरेज के बारे में हम बात करें, 99.96 के बारे में, जो कि आज भी अनब्रोकन है. तो अभी जानते हैं कि ब्रैडमैन की बैटिंग का राज क्या था. कई लोग ये सवाल करते हैं कि ब्रैडमैन इतने कामयाब क्यों थे. एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कॉन्सेंट्रेशन थी, फोकस. वो घंटों तक बैटिंग कर सकते थे बिना किसी गलती के, और इसके अलावा उनकी फुटवर्क बहुत तेज थी और वो गेंद की लाइन को बहुत जल्द ही समझ लेते थे. सचिन के लिए भी कहा जाता था, आई मीन सचिन को कंपेयर भी किया गया विद सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, बट वही है, एवरेज आपके पास नहीं है तो सचिन तेंदुलकर कैनॉट बी अ डोनाल्ड ब्रैडमैन. फॉर मी पर्सनली आई फील सो. ये जबरदस्ती का एक यू नो इक्वेशन कर देते हैं, हाँ सचिन इज लाइक डोनाल्ड ब्रैडमैन, मीडिया का एक अंदाज है. तो ब्रैडमैन का शॉट सिलेक्शन भी लाजवाब था. वो रिस्क और रिवॉर्ड के दरमियान बेहतरीन तवाजुन कायम रखते थे. इसी वजह से वो ना सिर्फ रन स्कोर करते थे बल्कि लंबी पारी भी खेल सकते थे. आप लोगों का सवाल ये हो सकता है कि क्या ये रिकॉर्ड कभी टूट सकता है. आज के क्रिकेट में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये ब्रैडमैन का 99.96 एवरेज कोई भी तोड़ देगा, तोड़ सकता है. अक्सर एक्सपर्ट्स का जवाब होता है नहीं तोड़ सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं तोड़ सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है. और हमने देखा भी है, देखिए ब्रैडमैन के बाद मैंने जैसे शुरू में कहा कई ऐसे मारूफ बल्लेबाज आए हैं, क्लासी बैट्समैन, रन्स पे रन, बैक फुल ऑफ रन्स, हर कोई आए गए, लेकिन 99.96 आज भी इंटैक्ट है. मॉडर्न क्रिकेट में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स खेलने पड़ते हैं. टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ ओडीआई और टी20 भी मौजूद हैं. इस वजह से खिलाड़ी के लिए सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना मुश्किल हो गया है. इट्स अ वेरी यू नो आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अहम इम्पॉर्टेंट रीजन है कि क्यों आज के बल्लेबाज डोनाल्ड ब्रैडमैन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा. बिकॉज तीन डिफरेंट फॉर्मेट्स है क्रिकेट में, फोकस करना हर एक डिफरेंट फॉर्मेट्स को इट्स डिफरेंट, इट्स अ चैलेंज. इसके अलावा बॉलिंग अटैक्स भी बहुत मजबूत हो चुके हैं और टीम्स वीडियो एनालिसिस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं. इसीलिए ब्रैडमैन का एवरेज आज के दौर में और भी ज्यादा नामुमकिन नजर आता है. कई स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रैडमैन का 99.96 एवरेज सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि तमाम स्पोर्ट्स का सबसे इम्प्रेसिव स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है, और है भी. आई मीन वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस और गोल्फ में भी लेजेंड्स ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन किसी एथलीट ने अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स से इतना बड़ा फर्क कायम नहीं किया जितना ब्रैडमैन ने किया. इसीलिए जब भी ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स की बात होती है तो डोनाल्ड ब्रैडमैन का नाम हमेशा सबसे आगे नजर आता है. अच्छा सर, डोनाल्ड ब्रैडमैन की लेगेसी के बारे में थोड़ा हम जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे. सर डोनाल्ड ब्रैडमैन सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे दोस्तों, बल्कि एक्सलेंस की मिसाल थे. उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ने उन्हें दुनिया भर में एथलीट्स के लिए रोल मॉडल बना दिया. ऑस्ट्रेलिया में तो वो उनको माना जाता है. ऑस्ट्रेलिया में तो बाकायदा उनके उनके जितने भी नो क्रिकेटिंग ग्लोरीज हैं, जितने भी क्रिकेटिंग अचीवमेंट्स हैं, उसको याद किया जाता है एंड विथ रिस्पेक्ट. एंड साथ ही साथ इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने, बैट्समैन ने, लोग तो क्या बैट्समैन क्रिकेटर, सुनील गावस्कर, यू नो ही वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल ऑफ डोनाल्ड ब्रैडमैन. ज़हीर अब्बास, ही वॉज वेरी रेस्पेक्टफुल. ज़हीर अब्बास को एशिया का डॉन ब्रैडमैन कहा जाता था बिकॉज रन बनाते थे, भर भर के रन बनाते थे हर पिचेस पर. वहीं गावस्कर, सुनील मनोहर गावस्कर, जो इंडिया के मारू बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज रह चुके हैं, उन्होंने डोनाल्ड ब्रैडमैन का 29th टेस्ट रिकॉर्ड सेंचुरी जो था उसको भी तोड़ा था. एंड साथ ही साथ ही स्कोर्ड, यू नो, एक टाइम तक ही रिमेन द हाइस्ट रन स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट, सुनील मनोहर गावस्कर, जो कि एलन बॉर्डर ने तोड़ा. एलन बॉर्डर ने भी बहुत सारे रन बनाए. एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के थे, उसके बाद सचिन तेंदुलकर आते हैं, उसके बाद विराट कोहली भी आते हैं. सब आते हैं, सब देखते हैं, सब रिटायर भी हो जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड ऑफ डोनाल्ड ब्रैडमैन आज भी अटूट है, यानी अनब्रोकन है. 99.96 द मैजिकल स्टैटिस्टिक्स, 99.96 का जो बैटिंग एवरेज है आज भी अनब्रोकन है. एंड आई थिंक अगले 100 साल तक भी अनब्रोकन रहेगा बिकॉज इट्स बीन लॉन्ग. जब तक यू नो टेक्नोलॉजी भी आ जाए, बेहतरीन बल्लेबाज भी आ जाए, मैं अपने ओपिनियन जो है, अपना ओपिनियन जो है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने सालों तक अभी हुआ नहीं कुछ, अब आने वाले टाइम में क्या होगा. बिकॉज क्रिकेट हैज़ बिकम वेरी बिजी, क्रिकेट हैज़ बिकम सो फास्ट, सो टेक्निकली सुपीरियर, क्योंकि आप एक गेम नहीं खेल रहे हैं, आप दूसरे और गेमों में आपको ध्यान देना पड़ता है. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ओडीआई भी है, टी20 क्रिकेट भी है. ऑस्ट्रेलिया में उनका मकाम इतना बुलंद है कि उन्हें नेशनल आइकॉन माना जाता है. क्रिकेट के हर दौर में नए बैट्समैन उनके रिकॉर्ड से कंपेयर किए जाते हैं. क्रिकेट के हर दौर में नए बल्लेबाजों के उनके रिकॉर्ड से कंपेयर किए जाते हैं, लेकिन कोई भी उनके करीब नहीं पहुंच सका. आपको एग्जांपल दिया मैं थोड़ी देर पहले.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें market2mc.qa.
2: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने. और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया. सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए. ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी. देसी. स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर. आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं.
3: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर. यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है. ट्यून टू FM 107, दिल से देसी.

पास नहीं कोई भी, बिकॉज बैटिंग एवरेज ही एक्चुअली एनालाइज और ओपन इन बेस्ट क्रिकेट. जब 2000 में व्हेन ही पास्ड अवे फरवरी 92, दुनिया भर में रिस्पेक्ट दिया, ने ओबिचुरी भी लिखी और ओबिचुरी में ये भी बताया गया कि कैन बी अनदर डोनाल्ड ब्रैडमैन, चाहे वो क्यों ना हो, चाहे वो इंडिया से क्यों हो, इस तरह का लिबास आशा है. इस ओबिचुरी पॉइंट बेस्ड ऑन हिज क्रिकेटिंग एबिलिटीज, उनके क्रिकेटिंग हॉलमार्क को याद किया जा रहा था. तो ये भी एक सवाल था कि क्या हमें ब्रैडमैन से कोई एक बल्लेबाज का, लेकिन भाई डिफिकल्ट सवाल है कि बल्लेबाज आते तो, लेकिन जैसे मैंने शुरू से किया यू नो अभी तक मैं बता रहा हूं, कौन सी प्लेयर शायद में जो फासला है, that thread जो है, जो thin line जो है, वो है consistency. Not just आप कितने runs बनाना, बहुत ही लिए बहुत ज़्यादा तरह के चीज़ें, लेकिन जिस बारे में कहते हैं consistency, वो कि हर किसी बल्लेबाज में नहीं है. अगर मैं definitely we've seen गा करके था consistency, उसको score run, सचिन तेंदुलकर के पास, यादव के पास, जयमास के पास भी consistency. लेकिन कम innings ज़्यादा runs बना, एक एक एक एक एक ड्राइवर पास, लंबी innings में सो क्या क्या runs उन्होंने बनाए, उसी के बलबूते पर उनका इतना मजबूत रहा. अच्छा अब ये था उनके को थोड़ा सा और मजीद हम अगर यू नो चले तो लास्ट मैच में 28,000 रन चुके थे, उसमें भी 95.14 वो भी 105.4 क्या कमाल निकलता था. फर्स्ट गेट में सेंचुरीज 69 हाफ सेंचुरीज, इंटरेस्ट क्रिकेट में तो रुका हूँ कि 29 सेंचुरीज और हाफ सेंचुरी एंड उनका 326 इंटरेस्ट क्रिकेट. बल्लेबाजी तो और साथ साथ बोलिंग विंग भी करते, हम बैटिंग की बात कर रहे भी वो काफी राइट आर्म लेग लाइक ब्लॉक करते, उसमें उन्होंने दो विकेट लिए इन विकेट और फर्स्ट क्लास में 36 विकेट, बड़ी बात नहीं है विकेट लेना, एक बहुत बड़ी बात. एंड क्रिकेट में आप टेस्ट क्रिकेट में विकेट ऑब्वियस बात है, सर डॉटमैन बॉल करने आके थे, तो दैट इज अनदर काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ऑफ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की बॉलर भी रह चुके हैं और ले चुके हैं इंटरेस्ट क्रिकेट, तो दैट बात. एंड टोटल कैच उन्होंने लिए है 32, सो इट ऑल्सो शो एन एस्ट्यूट. And this is what makes Sir Donald Bradman a unique athlete. जिसके बारे में आज भी क्रिकेट राइटर्स एक्सपर्ट्स सोचर्स डिसएडवांटेज दिया जाता है सर डोनाल्ड ब्रैडमैन जैसा कोई नहीं. बैट लाइक सर डोनाल्ड ब्रैडमैन. अच्छा सबसे मजेदार बात कहते हैं सचिन तेंदुलकर दिया हमने कि भाई ये सर डोनाल्ड ब्रैडमैन जैसे हैं. सुनील गावस्कर को भी कर दिया गया था एक जमाना पहले कि ये डोनाल्ड ब्रैडमैन हैं. लेकिन दोस्तों एक बात याद कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को उस टाइम फ्लाइट्स यानी एरोप्लेन में बैठ के टीम जो टेस्ट टीम्स जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाती थी तो दे नेवर टुक द फ्लाइट्स, जहाज यानी पानी वाली जहाज में बैठ के जाते थे. अब सोचिए कितना टाइम लगता था, सी सिकनेस और क्या क्या क्या क्या क्या क्या. तो डोनाल्ड ब्रैडमैन यू नो इन फैक्ट वन ऑफ द टूर्स में सर डोनाल्ड ब्रैडमैन बिकेम सिक. एंड शायद ये भी रीजन रहा होगा कि 52 टेस्ट मैचेस, जस्ट 52 टेस्ट मैचेस, एंड उस 52 टेस्ट मैचेस में ना कमाल कर दिया दोस्तों, कमाल कर दिया. आज के दौर में सर डोनाल्ड ब्रैडमैन खेलते और 150 या 100 से ज्यादा टेस्ट मैच, अगर सोचिए कि वो एवरेज मेरे ख्याल से अराउंड 200, बिकॉज क्वालिटी इज परमानेंट. हमेशा ये बात को याद रखिएगा. और 20 साल वो खेले टोटल, यू नो 20 साल क्रिकेट खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट मिलाकर, उस कंसिस्टेंसी को उस लेवल तक रखना नामुमकिन है, दैट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एक कहानी वक्त के साथ मशहूर हुई कि ब्रैडमैन की आंखों में आंसू आ गए थे जिसकी वजह से वो गेंद को मिस कर गए. लेकिन ब्रैडमैन ने अपनी पूरी जिंदगी इस दावे की तरदीद की. उनके लिए ये सिर्फ गलत फहमी नहीं थी बल्कि उनके करियर के आखिरी लम्हे के हवाले से

0: वाली एक ऐसी कहानी थी जो हकीकत से ज्यादा लोगों की इमेजिनेशन का हिस्सा बन गई। जी मैं बात कर रहा था ब्रॉन ब्रैडमन की आखिरी इनिंग्स के बारे में, जहां पे वो बोल्ड आउट हो गए थे फॉर अ नॉट यानी जीरो पर। लेकिन दोस्तों डॉन ब्रैडमन की कहानी सिर्फ उनके क्रिकेट करियर या उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैटिंग एवरेज तक महदूद नहीं थी। वो एक कॉम्प्लेक्स और बहुत पुरअज़म शख्सियत थी। उनकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सी संजीदगी और खुद पर सख्त कंट्रोल नजर आता था। वो ज्यादा करीबी जाती ताल्लुकात रखने वालों में से नहीं थे और अपनी जाती जिंदगी को भी अगर देखा जाए काफी हद तक प्राइवेट रखते थे। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी डॉन ब्रैडमन ने खेलों की दुनिया से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया। वो तीन दिहाइयों तक एडमिनिस्ट्रेटर, सिलेक्टर और राइटर की हैसियत से क्रिकेट में अपना नुमाया मकाम बरकरार रखने में कामयाब रहे। यानी बैट और बॉल से उनका सफर खत्म होने के बाद भी उनका असर क्रिकेट के फैसलों, टीम सिलेक्शन और खेल के हवाले से होने वाली बहस में जारी रहा। ब्रैडमन की सबसे खास बात यह थी कि रिटायरमेंट के बाद भी उनकी राय को इंतहाई अहमियत दी जाती थी। बिकॉज डॉन ब्रैडमन, सर डॉन ब्रैडमन, जब क्रिकेट के किसी अहम मसले पर उनकी ओपिनियन सामने आती तो फैंस, खिलाड़ी और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स उसे तवज्जो से सुनते। वो सिर्फ एक रिटायर्ड क्रिकेटर नहीं थे, वो क्रिकेट की एक अथॉरिटी बन चुके थे। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में जब वो लोगों से कुछ दूर और गोशा नशीन हो गए थे, तब भी उनका मकाम कम नहीं हुआ। उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस कम होती गईं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से उनकी इम्पोर्टेंस बरकरार रही। ऑस्ट्रेलिया में उनका मकाम एक कौमी आइकन के तौर पर मजबूत होता गया। 1997 में टेस्ट क्रिकेट से उनके रिटायरमेंट के तकरीबन 50 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड ने उन्हें ग्रेटेस्ट लिविंग ऑस्ट्रेलियन करार दिया। यह सिर्फ एक सियासी शख्सियत का बयान नहीं था, ये इस बात का इजहार था कि सर डोनाल्ड ब्रैडमन ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट से कहीं ज्यादा मानी रखते थे। उनका नाम ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी, स्पोर्टिंग एक्सलेंस और नेशनल प्राइड के साथ जुड़ चुका था। ब्रैडमन की शोहरत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी तस्वीर डाक टिकट्स और सिक्कों पर भी शाया हुई। उनकी जिंदगी और करियर को लेकर भी एक म्यूजियम भी कायम किया गया और ये म्यूजियम उस वक्त बनाया गया जब डॉन ब्रैडमन खुद इस दुनिया में थे। फिर 27 अगस्त 2008 को उनकी पैदाइश की 100th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर रॉयल ऑस्ट्रेलियन मिंट ने उनकी तस्वीर वाला $5 का कमेमोरेटिव गोल्ड कॉइन जारी किया। ये भी इस बात की निशानी थी कि ब्रैडमन का मकाम सिर्फ क्रिकेट रिकॉर्ड्स की किताबों में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन कल्चर और हिस्ट्री में भी था। और फिर 2009 में उन्हें उनकी वफात के बाद ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के पहले मेंबर्स में शामिल किया गया। यानी डॉन ब्रैडमन का असर सिर्फ उनके क्रिकेट खेलने तक महदूद नहीं था, रिटायरमेंट के बाद भी वो क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसी शख्सियत रहे जिनकी राय, विरसा और मकाम को ऑस्ट्रेलिया और पूरी क्रिकेट दुनिया में इंतहाई अहमियत दी जाती रही। दोस्तों उनका करियर खत्म हो गया था, उनका बैट खामोश हो चुका था, लेकिन उनका नाम क्रिकेट की तारीख में और भी बुलंद हो चला गया और शायद इसी को कहते हैं असल लीगसी। एक ऐसा क्रिकेटर जो अपने दौर में रिकॉर्ड्स बनाता है लेकिन रिटायरमेंट के कई सालों बाद, कई डेकेड्स बाद भी लोग उनका नाम मिसाल के तौर पर लेते हैं। डॉन ब्रैडमन सिर्फ एक बैट्समैन नहीं थे, वो एक बेंचमार्क थे, एक ऐसा मायार जिसके साथ क्रिकेट की अजीम तरीन बैटिंग परफॉर्मेंसेस को आज भी कंपेयर किया जाता है। तो इसी के साथ आज हमारा ये गेम चेंजर प्रोग्राम यहाँ पर खत्म होता है। अगले बार एक और दिलचस्प स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया।

कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
2: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
3: हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील। 6:16 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और सवाल पर जल्दी से वापस आते हैं और हो सकता है कुछ देर में आपको यहाँ पर साहिब समूह शेख तमीम बिन हमाद अल थानी की स्पीच भी सुनने को मिले। लेकिन अगर ये स्पीच अगर यहाँ से सुनाई जाएगी तो आपको इत्तला भी बाकायदा किया जाएगा। लेकिन अब आ जाते हैं हल्के हाथ से सवाल पर। सवाल बड़ा ही सिंपल सा है। सवाल यह है कि आपको घर से बाहर निकलने पर बड़े ही अजीब लोग दिखते हैं। कभी जी वो बाइक पे दिख जाते हैं, कभी वो स्कूटर पे दिख जाते हैं, कभी वो कार में दिख जाते हैं, कभी नियम फॉलो नहीं करते, कभी वो गलती से गलती कर बैठते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने कार का हॉर्न चेंज करना चाहें और कोई बॉलीवुड सॉन्ग लगाना चाहे तो वो क्या हो सकता है? वेल, कुछ लोगों ने इसमें भी लिबर्टी ली है और लिबर्टी लेते हुए उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं जो हूँ बिहार का जो एक सॉन्ग है भोजपुरी वो लगाना चाहूँगा। अपनी अपनी चॉइसेस हैं। जीशान अहमद ने ये कहा है मैं ये गाना सोच रहा था कि अगर मुझे मिल जाता तो मैं खुश हो जाता, लेकिन ये गाना मिला नहीं, बट अब मुझे गा के ही बताना पड़ेगा। तो जीशान भाई कहते हैं भाई मैं चेंज करूँगा भोजपुरी सॉन्ग से, चेंज करूँगा भाई कमरिया लगे लाली पाप लागे लू। अरे भाई साहब ये वाला गाना देखो है तो बढ़िया, लेकिन फिर ये उन लोगों के लिए आपको सेट करना पड़ेगा जो कार चलाते हैं लेकिन वो नागिन की तरह चलाते हैं, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, उनके लिए कमरिया तोरी लापुल। ओके जीशान भाई ये वाला वैसे बड़ा याद है, आपने थोड़ी लिबर्टी ली लेकिन आपकी लिबर्टी एक्सेप्टेड है। फिर इमरान भाई ने भी बहुत बढ़िया लिखा और मुझे लगता है कि इमरान भाई ने जो लिखा है वो कचरा ड्राइवर्स के लिए लिखा है भाई साहब। मतलब ऐसा नहीं कि जो कचरा उठाते वो वाला नहीं, जो कचरा गाड़ी चलाते ही है भाई। ऐसे मेरे कई जानकार हैं जो जिनको आप 3-4 बार टेस्ट दिलवा लीजिए उनका टेस्ट बढ़िया गुजरेगा नहीं, उनसे पार्किंग नहीं हो पा रही भाई, रिवर्स छोड़ो सामने से पार्किंग नहीं हो पा रही है, एल वेल पार्किंग तो और क्या ही कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि भाई उनके लिए मैं हॉर्न चेंज करवाना चाहूंगा। इमरान खान कहते हैं गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मुझे लगता था कमी क्रिएटिविटी की है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे खासे क्रिएटिव लोग हैं इमरान भाई, आपने तो गदर काट दिया। सलाम आया वालेकुम अस्सलाम तौफीक भाई की तरफ से। फिर उसके बाद एक तो हो चुका है, ये वाला मुझे समझ नहीं आया लेकिन ठीक है, अशफाक भाई की रिक्वेस्ट है तो मैं तो सोचता हूँ कि बिल्कुल सही है। अगर उनको हॉर्न चेंज करना हुआ अपने कार का तो वो ये वाला हॉर्न लगवाएंगे।

0: क्या बात है,
1: ये दर्द डिस्को क्यों? दर्द हो सकता है, उस दर्द में डिस्को, ये हो सकता है एफएम 107 का थर्सडे नाइट चल रहा हो, डिस्को वाले गाने हो, और आपको दर्द इस बात का है कि कैसे कैसे लोग गाड़ी चला रहे भाई, ये मैं मान सकता हूँ इश्फाक भाई। लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हुए एक और ये मैसेज है, किस भाई का है, मैं होता तो बोलता, अच्छा ये अगर होते तो हॉर्न इनके कार का हॉर्न ऐसा होता।
2: आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया,
1: ऐसी गाड़ी चलाओगे कि
2: आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया।
1: वाह, देख रहे हो, ड्राइवरों से ये कहना चाह रहे हैं कि
2: आशिक

0: ठीक है, महफूज रॉबिन साहब का अपना शौक है तो उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, उनका अपना शौक है, आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको बस चुप रह के सुनना ही पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद एक और ये मैसेज है मोहम्मद फैयाज भाई का है, लेकिन इनका जो हॉर्न है कार का वो एकदम परफेक्ट होगा, अगर इजाजत मिल जाए कतर में कि आप बॉलीवुड सॉन्ग लगा सकते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट होगा उन लोगों के लिए जो बगैर दाएं बाएं देखे सिर्फ सीधा चलाते हैं, उनको लगता है ओ लेफ्ट मोड़ना था, खटाक से मोड़ लेते हैं, तो उनके लिए ये हॉर्न सबसे परफेक्ट है।
1: ए भाई दर्द देख के चलो।

दैट्स इंटरेस्टिंग. फिर उसके बाद ये मैसेज है, कह रहे हैं कि अमिता जी के शो का मैसेज होगा. अच्छा वो नहीं यार, वो 6:05 पे आया था, क्या नाम है यूसुफ भाई, तो इसलिए यही होगा. लेकिन मेरे को भी उसका इतना कोई लॉजिक नहीं लगा. रियाज भाई का मैसेज है, जो स्पीड ज़्यादा करें उनके लिए है. बाबूजी ज़रा धीरे चलो. आया है यार ये वाला, तो नहीं मैं नहीं बोलूँगा यार, के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन है बहुत बढ़िया, बाबू जी जरा धीरे चलो. कैमरा लगा यहाँ, कैमरा लगा, क्या बात है. स्पीड पार नहीं करने का, 80 का है तो 80 पे चलने का. अगर आप 95 चलेंगे तो बढ़िया सी फोटो क्लिक होगी, और ये इकलौती ऐसी फोटो होगी जो अच्छी नहीं होगी, क्यों बगैर फिल्टर के भाई साहब आजकल किसी की फोटो अच्छी नहीं है. तो चाहे बाबू जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बेबी खाला हो. खाला लगाना जरूरी था भाई, नहीं लगाते तो फिर रिस्की हो जाता. आगे बढ़ते हैं. और ये मैसेज है फैयाज सैयद का, ठीक है मैं कुछ देर में पढ़ूंगा. गाड़ी बोल रही है, सीटी बजा रही है. ये कोई गाना था क्या बॉलीवुड का, मेरे को नहीं याद भाई. ये इतना पुराना भी नहीं हूं मैं, इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है. ओके एक और ये मैसेज है. अगर सर मैं गाड़ी में और चेंज कर तो मैंने तो डैश डैश लगाना है कि सामने वाली गाड़ी को पता चले. अरे भैया ये तो बहुत ही दबंग वाली हॉर्न का सिलेक्शन कर लिया है मेरे भाई.

घर से निकलते हुए जब आप बाहर निकलते हैं और देखते हैं लोगों को उल्टी तिरछी गाड़ी चलाते हुए, अजीबो तरह से गरीबो तरह से गाड़ी चलाते हुए, और चाहे वो लेफ्ट टर्न को लेकर हो, चाहे वो रेड लाइट को क्रॉस करने को लेकर हो, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो, रूल ना फॉलो करने को लेकर हो, तो ऐसे लोगों के लिए अगर आप अपने कार का हॉर्न चेंज कर सकते तो आपके कार का हॉर्न बॉलीवुड सॉन्ग में क्या होता? ठीक है, नंबर 8666221107, वहां पर आकर बताइए। बाकी एक छोटा सा ब्रेक, अभय की आवाज में ये हसी वादियां आपके लिए, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: गानों के पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती, आपका

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
1: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर आरजे सफा आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
3: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: जी इकबाल है आप सभी का FM 107 पे। एक्स मिल गई हो तो मुझे अपना पार्टनर बना लेना दोस्त, प्लीज प्लीज। एक ही मौका है, हम साथ साथ बैठ के एक ही टेबल पे खाना खा सकते हैं, रेक्स बगल भी उसको दोगे, और ज्यादा से ज्यादा कितने का बिल आएगा मेरा भाई? आप सोचो, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा 100 रियाल का बिल आएगा। 1,00,000 का रिवॉर्ड मिल रहा है, 99,900 कतरी रियाल आपके जेब में जाएगा। भाई को कुछ खाना खिला देना, बाकी अगर पार्टनर बनाना हो तो।

0: मैं तैयार बैठा हूँ यार, मेरे पास चेक भी रखा हुआ है, ठीक है। एक गाड़ी लेकर तो निकलना बनता है दोस्तों, आज तुम्हारे स्टूडियो में। और इसी के साथ बाकी लोगों के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और एक मैसेज तो बहुत लंबा है, थोड़ा सा रुक कर पढ़ते हैं। और एक भाई ने कहा है, रिक्स मिल गया है, क्या बात कर रहे हो, अरे मुबारक, किसको देना है फिर? अगर तुम्हें मिला है रिक्स मेरा भाई, तो मैं साथ में चलना चाहूँगा रिक्स देने के लिए। जब पेमेंट होगा तो अपन लोग आधा आधा कर लेंगे, कह देंगे साहब 50,000 इसको दे दो, 50,000 मेरे को दे दो, इनका अकाउंट अलग है। अगर मिल गया बहुत अच्छा है। नाम है इनका, आई गेस रिफत नाम है, हाँ। और उसके अलावा एक और है मैसेज, इंस्टेंट ऑफ आजा आजा तू है प्यार मेरा, आई विल हैव, हट जा तू है प्यार मेरा। हाँ, क्रिएटिविटी की हद पार करी है शेख साहब ने, और इनका नाम भी शेख है, क्या बात है। आजा आजा तू है प्यार मेरा, ये वाला भी अपन लगा सकते हैं, लेकिन तब जब आपके कार का ब्रेक फेल हो जाए, नहीं। जो भी आए तो फिर तो गाड़ी के बोनेट से हो ही जाएगा, लेकिन अगर जब तक आपकी गाड़ी में ब्रेक है तो आप ये हॉर्न लगवा सकते हैं। जो 70 की स्पीड पे चलते हैं और 70 की स्पीड पे चलने के बावजूद उनको हॉर्न दो तो नहीं हटते, तो उनके लिए यह हॉर्न होना चाहिए, हट जा तू है प्यार मेरा। फिर उसके बाद एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब कहते हैं, जो स्पीड ज्यादा करे उनके लिए ये गाना मैं प्ले करना चाहूंगा, और गाना है भाई पूरे कतर का माहौल चेंज हो जाएगा अगर हॉर्न की बजाय ये गाने हो। कोई अगर सुन रहा हो तो प्लीज ये वाला तो ऑप्शन रख दीजिए। फिर कोई मैसेज एमके साहब का है, मुस्तफा कासिम कहते हैं, गाना होना चाहिए आपके हॉर्न में ये,
1: गोली मार भेजे मैं कि भेजा शोर करता है।
0: बड़े ही दबंग लोग हैं भाई साहब, ऐसे दबंग लोगों से तो दूरी रखे यार। फिर एक और मैसेज है किस भाई का, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फजील साहब, खुशी मंदियान का है, हेलो फजील जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फजील, आज के थीम के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा लंबा मैसेज है भाई, टाइम लगेगा, ठीक है। अगर मुझे अपनी कार का हॉर्न किसी बॉलीवुड सॉन्ग में चेंज करना हो तो मैं आज फिर जीने की तमन्ना है रखूंगी, ट्रैफिक में हॉर्न बजेगा और लगेगा गाड़ी भी लाइफ एंजॉय कर रही है। ओहो भाई साहब, अभी तक हम बात कर रहे थे बाकी लोगों के बारे में कि लोग जिस तरह से गाड़ी चला रहे हैं उनके क्या हॉर्न होना चाहिए, लेकिन गाड़ी के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। इससे पता चलता है एक महिला ही होती है दोस्तों जो समाज के साथ साथ अपने करीब के लोगों के बारे में भी सोचती है। सोचिए भाई साहब आप, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, दूसरों को उल्टा सीधा कह रहे हैं, लेकिन ये महिला जो है वो कार के बारे में भी सोच रही है, बहुत ही उम्दा। फिर आगे भी कुछ इन्होंने बात लिखी है, ट्रैफिक में हॉर्न बजेगा लगेगा, हाँ ठीक है आगे है। और एक छोटा सा जोक भी है, टीचर तुम लेट क्यों आए, स्टूडेंट, सर बोर्ड पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, तो मैं स्लो ही आ गया। इस जोक के लिए एक जहर की गोली अगर होती है। लेकिन दैट्स क्यूट, ओके ये बढ़िया था, ये वाला मैंने जोक सुना नहीं था लेकिन अच्छा है। ये खुद से लिखा है या फिर कहीं से कॉपी किया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अस्सलाम वालेकुम फजील, आगे भी सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम। आज के थीम ने तो हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया, अगर मेरी गाड़ी का हॉर्न बजे बॉलीवुड गाना होता तो मैं आज फिर जीने की तमन्ना रखती, सेम मैसेज है। आपके शो का एक अलग, अच्छा नहीं ये दूसरा मैसेज है, एडिट, ये एडिट वाला वर्जन है भाई। फसील साहब आपके शो का एक अलग नशा है, अच्छा जी। बस आपकी आवाज़ सुनते ही लगता है हॉर्न की क्या ज़रूरत है, आप खुद को ही ट्रैफिक क्लियर करवा देते हैं, करवा देंगे। एक छोटा सा अर्ज है, देखो मैं समझ रहा हूँ ये वो वाली बात है कि सुनो आप काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन एक मेरा सॉन्ग प्ले कर देते साहब। छोटा सा अर्ज है, हॉर्न धीरे बजाइए जनाब, दिल का मामला है पड़ोसी का नहीं, इतना कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आखिर में लिखा भी है इन्होंने, आप इतनी अब इतनी तारीफ के बाद एक गाना तो बनता है, वरना अगली रिक्वेस्ट में आपके लिए बेवफा भेज दूंगी। भाईजान देखें, मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने मर्जी का गाना चलवाना हो तो लोग क्या क्या करते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हल्के हाथ से इस्माइल साहब कहते हैं, धूम मचाले रखूंगा, धूम मचाले तो बहुत लोगों ने, ट्रक पे ये गाना अच्छा भी लगता है, धूम मचाले वो तेज चले तो लगता भी है भाई कोई बड़ी गाड़ी जो है वो निकल रही है, छोटी गाड़ी तो एकदम ही अजीब लगेगी। फिर आगे

सजय उनका दिमाग डैश डैश में होता है, ये गलत बात है भाई साहब, गलत बात नहीं करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपन? अपन, अच्छा अपन मतलब मैं खुद। आई गेस इट्स नॉट करेक्ट उर्दू वर्ड। इरफान हेयर, सलाम फजील। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान ने पहले दर्ज कराया है अपना विरोध, उन्होंने कहा कर लूं फिर सलाम करूंगा। ओके, तो मेरे भाई का नाम है इरफान, तो इरफान साहब मैं अपन, हम यार ये कैसे बताऊं, अपन अपन वर्ड मतलब के हम ऐसे करते हैं, हैं अपन ऐसे ही करते हैं, तो उसका मतलब है अपन अपन। फिर आम तौर पे ये मुंबई में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ होती है कि अपन ऐसे ही करते, ठीक है। फिर एक और है कि आपको कई बॉलीवुड मूवीज़ ऐसी दिखेंगी अपन वर्ड लेकर, और ऐसे कई लफ्ज़ हैं भाई, लफ्ज़ों पर तो अपने को जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि लफ्ज़ ऐसे ऐसे हैं जिनके कोई मतलब नहीं है लेकिन आम जनता, आम आवाम उसे इस्तेमाल करती है क्योंकि वो खुद भी बनाए हुए होते हैं ना, और रीजनली आपके लव्ज इम्पैक्ट करते हैं आपके रहन सहन को भी। अगर आप यूपी से नहीं हैं, अगर आप यू नो बिहार से हैं या फिर बेंगलुरु से हैं या फिर मुंबई से हैं, तो उर्दू के लव्ज वही होते हैं लेकिन एक दो चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, कई बार एक्सेंट चेंज हो जाते हैं, इस वजह से आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि हाँ लव्ज ही जो है वो कुछ और है, है ना। तो जैसे अगर आप देखें सेम उर्दू लैंग्वेज आप यूपी में बोलें या फिर आप दिल्ली में बोलें या मुंबई में बोलो, लेकिन आप हैदराबाद के एक्सेंट में बोलेंगे तो पूरा मतलब भी चेंज होता है। कई बार ऐसा लगता है यार ये लफ्ज़ तो है ही नहीं अपना, बट वो उर्दू के ही होते हैं। खैर मैं कौन सा उर्दू का बहुत ज्ञान ज्ञाता हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई। फिर उसके बाद अच्छा भाई ने भाई एग्री भी कर गए, वैसे कराची के लोग भी ये वर्ड यूज़ करते हैं। हाँ मतलब आप तो कितने भी मूवी में देखेंगे, जो गुंडे वाली मूवी आई है ना उसमें ए अपन बोल रहे ना तेरे को। तो ये वही वाली बात है। और दोस्तों फाइनली रेक्स जो है वो मिल गई है, हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया इस्माइल साहब। अरे यार रेक्स मिल गई, बाकायदा एक वीडियो भी है, अब ये पता नहीं है फॉरवर्डेड मैसेज है, मैं यकीन कैसे मान लूँ। रेक्स तुम्हारा बहुत इंतज़ार, क्या यार सेलिब बन गई है रेक्स तो यार। सलाम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम। अपन यानी मैं, हाँ मैं, थैंक यू बताने के लिए, मैंने ऑलरेडी कुरैशी साहब बता दिया जितना मेरे को था पता, तो मैंने बता दिया। अब खत पर आते हैं क्योंकि ऑलरेडी 9:41 हो गए, क्योंकि घर से आप निकलते हैं तो बड़े ही अजीब लोग आपको हर रोज़ मिलते हैं, तो आप आज आपको ख़त लिखना है उन ड्राइवर्स के लिए जो रोड पर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं। डियर ड्राइवर लिखने के बाद एक ख़त लिखिए, और ये अपने मर्जी का आपके दिल का ख़त हो सकता है उन ड्राइवर्स को जो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहते, एकदम से ब्रेक मार देते हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं है ब्रेक की वहाँ पर भी मार दे रहे हैं, है ना, हैज़ार्ड लाइट ऑन कर दे रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, गाड़ी बीच रोड में रोक दे रहे हैं, या फिर बाइकर्स के लिए जिनको नहीं है कि 500 मीटर के पहले आप जो है लेफ्ट लेन पे चलें अगर सिग्नल आपको क्रॉस करना है तो, है ना। उसके अलावा कई और भी नियम कानून हैं, चाहे वो कैब के लिए हो, चाहे वो लिमोजीन के लिए हो, चाहे वो कैब ड्राइवर्स के लिए हो, तो उनको अगर एक ख़त लिखना हो और आप जेन्युइनली कुछ कहना चाहते हो कि प्लीज़ ड्राइवर्स इस तरह से चलो या फला गलती आप करते हैं इस गलती को ना करो।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। 6:47 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और इख्तिताम को पहुंच ही रहा है अपना शो, लेकिन उससे पहले आप लोगों के खत। ये खत उन ड्राइवर्स के नाम, उन बाइकर्स के नाम, किसी ने लिमो वाले भाई भी लिखा है। खैर, ये खत सुनने के बाद कई ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनको पता चल जाएगा, हाँ यार ये तो मेरे लिए बात हो रही है। और कईयों के लिए तो ये भी होगा कि हाँ देखो तुम्हारे लिए बात हो रही है, या उनको पता होगा कि किसके लिए बात हो रही है। ये एक्चुअली ज़रूरी वाले खत भी हैं, क्योंकि इनसे पता चलेगा कि हमारे आसपास किस तरह के ड्राइवर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये मैसेज है इस्माइल साहब का। डियर ड्राइवर्स, लाइसेंस को सलामत रखना चाहे तो रूल्स फॉलो करें। लाइसेंस को सलामत रखना चाहते हो तो रूल्स को फॉलो करें, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल समझो। इस्माइल खान, ऐसा क्यों लग रहा है कि इस्माइल भाई शूरता है यार। भाई साहब आप ही हैं क्या जो लाइसेंस देते हैं यार, मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो कैब ड्राइवर्स हैं ना, लिमोजिन वाले, वो ही सही चला रहे हैं भाई। बाकी जिनके पास अपनी प्राइवेट वाली है ना, वो गंदा चला रहे हैं, उनके साथ कोई मसला है। हमारे एक दोस्त हैं, एक मित्र हैं, उनकी भाई इतनी पिद्दी गाड़ी है, लेकिन अच्छा वो पिद्दी गाड़ी मुड़ती भी बहुत तेज है, उनको कहीं पर भी ले जाओ वो पिद्दी एक, अब तो नहीं है उन्होंने, अब दूसरी नई वाली ले लिया, लेकिन यार वो बहुत तेज भगा रहे थे। उनका तो ये था कि अगर ऐसी एक रिक्शा जो होता है ना, रिक्शा अगर उतनी जगह है तो ये आदमी निकाल लेता था कटवट मार के, है ना। तो अगर एक आदमी जो है एक से लेकर दूसरे लोकेशन तक जाने में किसी को आधा घंटा लग रहा है और दोनों एक साथ निकले, तो एक जो मेरा भाई है, नाम नहीं लूंगा, अगर वो गाड़ी चलाए, अब तो नहीं चलाता वैसे, अगर वो गाड़ी चलाए और दूसरा आदमी गाड़ी चलाए एक ही स्पीड पे शुरू करें, तो जो पहला वाला जो मेरा दोस्त है वो 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा यार, ऐसे गाड़ी चलाता था। लेकिन बड़े खतरनाक लोग होते हैं यार ऐसे लोग। उसके अलावा रिफत भाई का शायद ये मैसेज है, कहते हैं डियर ड्राइवर्स डैश डैश डैश सुधर जाओ। अबे भाई ये कैसी लैंग्वेज है भाई साहब, मैं पढ़ नहीं सकता यार, मन तो बहुत करता है, लेकिन आगे लिखा है वरना कभी ऐसा मारूंगा पूरी जिंदगी अरिजीत का गाना सुनते रहोगे। दर्द दिलों के कम हो जाते यार, ये बड़ा गुंडा आदमी है यार। डियर ड्राइवर्स डैश डैश डैश सुधर जाओ, ये मुझे तरीका जो है वो अच्छा लगा आपका धमकाने का। आगे फिर एक और मैसेज है और इनका नाम है क्या, मोहम्मद नाम है। डियर डिपर लवर्स ड्राइवर्स, ओफो इतना लंबा खत, रुको जरा सबर करो। अच्छा ये मैसेज ही है, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ और लिखने की कोशिश कर रहे थे, रुको जरा सबर करो। ठीक है, फिर एक और मैसेज है आफ्ताब, कहते हैं डियर बाइकर्स, दो लेन चेंज करने से पहले देख लिया करो। अरे भाई यार क्या गाड़ी ही बात कर दी, ये बाइकर्स को क्यों लगता है कि पीछे इनके कोई नहीं होता है भाई, ये ऐसा क्या नागिन डांस कर लेते हैं रोड पे, एक नहीं दो दो लेन एकदम से चेंज कर लेते हैं, और खास तौर पे जब इनको लेफ्ट टर्न करना होता है, इनको लगता है कि जल्दी मुड़ लेते हैं यार, जल्दी पहुंचा देते हैं, डिलीवरी भी तो करनी है फूड की, ये मालूम है रेस्टोरेंट से ज्यादा फूड डिलीवरी ऐप से ज्यादा इनको जल्दी होती है, वो खाना खाना है जिसको ना, उनको इतनी जल्दी नहीं होती है, लेकिन इनको जल्दी है कि अरे वो आदमी भूखा होगा ना भाई साहब, हमको जल्दी गाड़ी मोड़ना है, उसकी गुस्साई होगी, खाना जल्दी डिलीवर करेंगे तो पैसा एक रियाल ज्यादा, ए मेरा भाई लू हल्लू चलाओ। आफ्ताब भाई ने बहुत सी बात कही है, मुझे बहुत डर लगता है कई बार, तो ऐसा होता है कि क्योंकि अपनी कार क्या है कि जिस लेन में खड़ी है आगे थोड़ी जगह छोड़ते हैं अपन, बट बाइकर्स को लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, रेस लग रही है चलो इसके आगे खड़े हो जाते हैं इनका वो हो जाता कि आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ अरे भैया तुम्हारे तूफानी में ना सहीम तूफान हो जाएगा भाई, और निकलते भी है हमारे बगल से तूफान की तरह है कई बार।

ऐसा नहीं होता कि आपको लेफ्ट लेन में लेना है, ग्रीन हो गई लाइट, आपकी कार धीमी हो गई, लेकिन ये बगल से निकलते हैं और ये भाई कहीं हल्का स्टेयरिंग दाएं बाएं हुई फिर आप एक भाई प्लीज ये काम मत करो, बहुत रिक्सी है। आगे बढ़ते हुए फिर शेख साहब ने लिखा है, डियर लिमो ड्राइवर्स, ओ लिमो ड्राइवर्स, पैसेंजर को पार्किंग में ले जाके उतारा करो। आई नो कुछ पैसेंजर गाड़ी पास वाले लेन में ही रुक के उतारना होता है। आई नो कुछ पैसेंजर गाड़ी पास वाले लेन में ही रुक के उतरना होता है, उतारना होता है। कभी कभी शूरता पकड़ा, कभी पकड़ा तो आपको फाइन लगेगा। शेख साहब कितने नेक दिल आदमी है पहले खत में टॉन्ट मार रहे हैं, ए पार्किंग में ले जाके उतारा करो, समझे। लेकिन कुछ पैसेंजर ऐसे होते हैं जो मेन जगह पे उतारना चाहते हैं और लेन जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा ये मेरे भी कुछ ऐसे जानने वाले हैं, जब मैं बैठता हूँ ना तो कभी कभार पता चलता है कि अरे उनको एक जगह लोकेशन पे उतरना है, भाई दाएं बाएं नहीं, अपने को चलने को ज़्यादा पड़ेगा, धूप ज़्यादा लगेगी, तो ये सब नखरे होते हैं। शेख साहब आपने बहुत ही बेहतरीन बात बताई है। फिर एक और मैसेज है, क्या है, नदीम साहब कहते हैं, डियर क्रेजी स्पीडर, क्रेजी स्पीडर नाइस, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक लेन छोड़कर ओवरटेक किया करें, हमारी कार हिल जाए अरे हाँ यार ये भी होता है यार, अगर आप भारी कार से किसी को ओवरटेक करें तो हल्की वाली ऐसा शेक कर जाते हैं ऐसा लगता है कोई क्रिश निकला है क्या बगल से। ओके कहते हैं फयाज सैयद कहते हैं, बाइकर्स आर वेरी डेंजर ड्राइविंग, दे शुड गिव ट्रेनिंग। अरे भाई वो ट्रेनिंग देंगे तो और खतरनाक हो जाएगा, उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए फिर ईशान साहब लिखते हैं, डियर ड्राइवर्स प्लीज ड्राइव करते वक्त मोबाइल कम इस्तेमाल किया करें, बहुत दिक्कत होती है। आपको मैसेज रिसीव करना होता है क्या, कह रहे दिक्कत होती, उसको दिक्कत होनी चाहिए जो ड्राइवर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। कई बार ऐसा भी है कि आप ड्राइविंग करते हुए जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो आपको पता नहीं चलता है, सीधी रोड आप जाते हैं, ऐसे में आपका कुछ नहीं होता है, दूसरा वाला पीछे ठुक जाता है। तो जीशान भाई की बात बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद अजीब बात लिखी है लेकिन समझ नहीं आया। खैर 6:54 हो गए हमारे स्टूडियो की घड़ी में, इसी के साथ हमारा यहां से निकलने का वक्त आ गया। देखो कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है, 55 भी हो गए भाई साहब, अरे जल्दी निकलो जल्दी निकलो इंशाल्लाह आप मुलाकात होगी कल शाम को 6 और बेहतरीन से टॉपिक के साथ हमारा और आपका राबता होगा। लेकिन फिलहाल एक बेहतरीन से गाने के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ, असीस कौर और पैपन की आवाज में तुझे कैसे पता ना चला, ये गाना आपके लिए। और खत तो आपके बड़े तगड़े रहे, मजा आया बात करते हुए, कल थोड़ा सा वक्त और कल शाम 6 आपसे मुलाकात। सुनते रहे FM 107 और अपना ख्याल रखे दिल से, देसी।

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: News at 7 PM only on FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का दूसरा नशरिया इस्माइल खान की ज़ुबानी और पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा के सदर दफ्तर में शुरू होने वाले अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास के आम मुबाहसे के इजलासों में शिरकत की है। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी कुछ ही देर बाद अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असम्बली के सामने एक जामे खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने आज न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास के मौके पर मुतअद्दिद ममालिक के अहदेदारों से अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने गज़ा से मुतअल्लिक 8 अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा के राबता इजलास में शिरकत की। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ और अब समाअत कीजिए मुफ़स्सल नशरिया।

0: पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल, जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर जो अक्सर हमारी नजरों से छुप जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा और आज का हमारा टॉपिक है स्किल्स दैट मैटर मोर देन टाइटल्स, कम्युनिकेशन, अडैप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग। इसके आपको सिर्फ एक डेजिग्नेशन से ऊपर ले जाती हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सिर्फ अपने जॉब टाइटल पे ही डिपेंड करते हैं या हमारी असली पहचान कुछ और है। अक्सर हम अपनी जिंदगी को एक कुर्सी, एक कंपनी के नाम से या एक डेजिग्नेशन से डिफाइन करते हैं, लेकिन असल सवाल ये है हम कौन हैं बियॉन्ड वर्क। जॉब टाइटल एक लेबल है, लेकिन आपकी असली वैल्यू आपकी स्किल्स, आपके एटीट्यूड और आपके कैरेक्टर से बनती है। कम्युनिकेशन आपको लोगों से जोड़ता है, अडॉप्टेबिलिटी आपको हर चैलेंज के लिए तैयार रखती है और वहीं इमोशनल इंटेलिजेंस आपको इंसानी जज्बात समझने का हुनर देता है और क्रिटिकल थिंकिंग आपको हर मुश्किल का हल ढूंढने की ताकत देती है। आज हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये सिर्फ करियर का टॉपिक नहीं, ये जिंदगी का टॉपिक है। अगर आप अपने टाइटल से ज्यादा अपनी स्किल्स पर फोकस करते हैं तो आप हर जगह सक्सेसफुल हो सकते हैं, चाहे ऑफिस हो, घर हो या सोसाइटी। तो दोस्तों अपने दिल से जवाब दीजिए, आप अपने टाइटल से ज्यादा अपनी स्किल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, और अगर हाँ तो कौन सी स्किल्स ने आपकी जिंदगी बदली है। दोस्तों अक्सर सोसाइटी हमारी वैल्यू को हमारी जॉब टाइटल से जोड़ देती है। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं तो आपको इज्जत मिलती है, लेकिन अगर आप होम मेकर हैं, फ्रीलांसर हैं या अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। और ये मिसकंसेप्शन सिर्फ एक सोच नहीं, ये हमारी जिंदगी के डिसीजन को भी इफेक्ट करता है। हम करियर चूज करते वक्त अक्सर ये सोचते हैं, यार लोग क्या कहेंगे, क्या ये टाइटल मुझे रिस्पेक्ट दिलवाएगा। लेकिन असल सवाल ये है, क्या एक टाइटल आपकी असली पहचान है? आप सोचिए, एक माँ जो अपने बच्चों की तरबियत करती है, क्या वो काम वैल्यूएबल है? बिल्कुल नहीं, वो सोसाइटी का फाउंडेशन है। एक वॉलंटियर जो कम्युनिटी सर्विस करता है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर एक दोस्त जो अपने नेबरहुड में बच्चों को फ्री ट्यूशन देता है, उसका इम्पैक्ट किसी कॉर्पोरेट जॉब से कम नहीं। एक इंसान जो एल्डरली पेरेंट्स का ख्याल रखता है वो सोसाइटी के लिए एक साइलेंट हीरो है। एक आर्टिस्ट जो अपनी आर्ट से लोगों के दिल को छू लेता है वो भी तो सोसाइटी को ब्यूटी और होप देता है। भाई सोचने वाली बात ये है, टाइटल्स टेम्पररी होते हैं। आज आप मैनेजर हैं, कल आप रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आपकी स्किल्स, आपका कैरेक्टर और आपके एक्शंस ये आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं। दोस्तों कम्युनिकेशन, अडैप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग ये वो स्किल्स हैं जो आपको हर जगह सक्सेसफुल बना देते हैं। दोस्तों अपनी पहचान को सिर्फ एक टाइटल तक लिमिटेड मत कीजिए, ये सारी बात करने का लुब्बे लुबाब ये है। आपकी असली वैल्यू आपके एक्शंस, आपकी कैरेक्टर और आपकी कंट्रीब्यूशन से होते हैं। जब आप अपनी स्किल्स पर फोकस करते हैं तो आप हर रोल में शाइन करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या सोसाइटी हो। चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से कौन सी स्किल्स आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है? आप अपने आप से सवाल कीजिए, सोच के देखिए। और क्या आपने कभी ऐसा मोमेंट फील किया है कि जब

आपका टाइटल मैटर नहीं करता। बिल्कुल, ये वाकयात हमारी जिंदगी में डेली बेसिस पे होते हैं। क्या वो छोटा भाई, छोटी बहन या बच्ची या बच्चा जो जानते नहीं कि अब्बा क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं या एक्स वाई जेड क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, क्या वो आपके काम से आपसे मोहब्बत करते हैं? नहीं, देखिए कितना सिंपल एंड सोबर एग्जाम्पल है, लेकिन आपके एक्शंस ने सब कुछ बदल दिया। तो दोस्तों याद रखिए, टाइटल्स आपको एक कुर्सी दे सकते हैं, लेकिन स्किल्स आपको एक लेगेसी देती है। अपनी जिंदगी को एक डेजिग्नेशन तक लिमिटेड मत रखिए। आपकी असली पहचान वो है जो आप दुनिया को देते हैं, और वो क्या है? रेस्पेक्ट, काइंडनेस और इम्पैक्ट। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल सरवर मिर्जा के साथ। कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइटल से बाहर निकलकर दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं।

0: इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: दोस्तों, पर्पस और ग्रोथ के हवाले से बात करें तो जब हम अपने टाइटल से बाहर निकलते हैं तब हम अपनी असली स्किल्स डिस्कवर करते हैं, वो स्किल्स जो हर फील्ड में काम आती हैं। भाई, कम्युनिकेशन, अडॉप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग, ये सिर्फ करियर के लिए नहीं जिंदगी के हर पहलू के लिए जरूरी है। सोचने वाली बात यह है कि अगर आप अपने टाइटल को लूज कर दें तो आपके पास क्या बचेगा? जवाब है आपकी स्किल्स, और ये स्किल्स ही आपको हर चैलेंज से निकलने की ताकत देती हैं। दोस्तों, डिस्कशन के इस पॉइंट पे कुछ स्किल्स हैं जो ट्रूली मैटर करती हैं, तो उसके हवाले से, जो मैं बार बार मैंने रिपीट किया है, उसके हवाले से थोड़ी सी ज्यादा बात करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन। हर रिलेशन और करियर का फाउंडेशन कम्युनिकेशन है। अगर आप इफेक्टिवली बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं तो आप हर जगह सक्सेसफुल हो सकते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं, ये सुनने का हुनर भी है। वहीं अडॉप्टेबिलिटी की बात करें तो आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में अडॉप्टेबिलिटी सर्वाइवल का की है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स इवॉल्व हो रही हैं और दुनिया हर दिन नए चैलेंजेस ला रही है, तो जो इंसान अडॉप्ट कर सकता है वो कभी फेल नहीं होता। इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करें तो लोगों को समझना, एम्पैथी रखना और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये लीडरशिप का असली टेस्ट है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको बेटर रिलेशनशिप्स, बेटर टीम वर्क और बेटर डिसीजन मेकिंग देता है। वहीं क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से बात करें तो हर डिसीजन को वाइसली लीजिए, ये सक्सेस की गारंटी है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको हर प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढने की ताकत देती है। मिसाल के तौर पे अगर रियल लाइफ सिनेरियोस में देखें, एक एंटरप्रेन्योर जो फेलियर के बाद अडैप्ट करता है और नई स्ट्रेटेजी बनाता है, वो अडैप्टेबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल है। वहीं एक स्टूडेंट जो अपने इमोशंस को मैनेज करके स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स देता है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पावर है। एक लीडर जो हर डिसीजन से पहले फैक्ट्स एनालाइज करता है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का रोल है। भाई, आप सोच रहे होंगे तो चलिए स्किल्स तो हैं, मगर इसको मजीद पॉलिश कैसे कर सकते हैं? तो कम्युनिकेशन में रोजाना एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करें। जब कोई बात करे इंटरप्ट ना करें और उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए, सुनने की नहीं। अडॉप्टेबिलिटी के हवाले से हर नए चैलेंज को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझिए। चेंज से डरने के बजाय उसे कबूल कीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो डेली जर्नलिंग कीजिए। अपने इमोशंस को लिखना आपको सेल्फ अवेयरनेस देता है। क्रिटिकल थिंकिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस कीजिए। हर डिसीजन से पहले व्हाई और हाउ का जवाब ढूंढिए। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से कौन सी स्किल्स आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं? और क्या आपने कभी ऐसे मोमेंट फील किए हैं जब आपकी स्किल्स ने आपको टाइटल से ज्यादा पावरफुल बनाया है? सोच के देखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। याद रखिए, टाइटल्स टेम्परेरी होते हैं, स्किल्स परमानेंट। जब आप अपनी स्किल्स पर फोकस करते हैं तो आप हर रोल में शाइन करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या सोसाइटी। अपनी पहचान को एक डेजिग्नेशन तक लिमिट

मत रखिए, आपकी असली वैल्यू आपके एक्शंस हैं, आपका कैरेक्टर है और आपकी कंट्रीब्यूशन से होती है। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल सरवर मिर्जा के साथ। कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइटल से बाहर निकलकर दुनिया में

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर रोज नए जमाने के नए स्कैम के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस स्कैम के शो से आप सीख रहे होंगे और साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर्स या फिर आप नए स्कैम से बचने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर ये शो सुनकर बच भी रहे होंगे। तो आज जिस स्कैम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये आपके साथ किसी भी दिन हो सकता है, क्योंकि ये ग्रोसरी के कूपन या ग्रोसरी कूपन से रिलेटेड एक स्कैम है। वेल, इसका नाम है फेक ग्रोसरी कूपन स्कैम। काम कैसे करता, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। स्कैमर्स जो बहुत ही ज्यादा फेमस शॉप्स होती हैं, स्टोर्स होती हैं, उन लोगों का नाम लेके आपको फेक डिजिटल कूपन्स या $100 के या 100 कतरी रियाल के या हजारों रुपए के फ्री ग्रोसरी वाउचर्स का लालच देते हैं। ये ऑफर्स सोशल मीडिया,

व्हाट्सएप ग्रुप्स या स्पैम ईमेल्स के जरिए शेयर किए जाते हैं। जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपसे एक सर्वे फिल करने को कहा जाता है, जिसमें आपका पूरा नाम, घर का एड्रेस और फोन नंबर मांगा जाता है। आखिर में एक छोटी सी शिपिंग फी पे करने के लिए आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगी जाती हैं। फ्री फूड मिलने के बजाय या फ्री की डिटेल्स या फ्री कोई चीज मिलने के बजाय या वाउचर मिलने के बजाय आपके कार्ड पर हिडन मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस लग जाते हैं और आपका अकाउंट धीरे धीरे खाली होता रहता है। लेकिन इस स्कैम से बचने के कुछ तरीके हैं जिससे आप बच सकते हैं। अगर आप इस तरह के स्कैम में सेफ रहना चाहते हैं तो इन कुछ ऑफिशियल या कहें इन कुछ टिप्स को फॉलो जरूर करिए। सबसे पहला है, ऑफिशियल वेबसाइट को या एप्स को चेक करें। किसी भी ऑफर या कूपन पर आंख बंद करके कभी भी ट्रस्ट ना करें। हमेशा उस ग्रॉसरी स्टोर, जैसे कि आपके आसपास जो नजदीकी आपके स्टोर है, उस स्टोर पर जाएं या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर जाकर ही चेक करें कि क्या सच में ऐसा कोई ऑफर चल रहा है जहां पर वाउचर वगैरह मिल रहे हैं। उसके अलावा यूआरएल्स और लिंक्स को केयरफुली वेरीफाई करें। स्कैमर्स आमतौर पर फेक वेबसाइट्स बनाते हैं जो बिल्कुल असली जैसी दिखती है। हमेशा चेक करें कि यूआरएल सही है या नहीं। असली वेबसाइट हमेशा से https/ से शुरू होती है और उनका डोमेन नेम सिंपल और करेक्ट होता है। पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा शेयर कभी भी किसी से ना करें। ये सबसे ज्यादा अहम बात है और इस पर ही आपको फोकस करना है। कोई भी जेन्युइन कंपनी फ्री कूपन देने के लिए आपसे आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या CVV नंबर या बैंक की डिटेल्स नहीं मांगता। और अगर ऐसा करे तो आप खास तौर पे बैंक पे शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सर्वे आपसे सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो ये आप समझ जाइए कि वो 100% स्कैम है। उसके अलावा हर बार जो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ वो है टू गुड टू बी ट्रू। ऐसा कोई भी ऑफर जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे कि यार वो सच हो ही नहीं सकता, ऐसे में हमेशा आपको शक की निगाहों से देखना चाहिए। अगर कोई ऐड या पोस्ट आपको सिर्फ एक सिंपल सर्वे भरने के लिए या फिर सिंपल से काम को करने के लिए हजारों डॉलर, कतरी रियाल या 500 तक का फ्री वाउचर वगैरह दे रहा है तो समझ लें कि ये एक ट्रैप है। इंटरनेट पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, ये सच है। उसके अलावा एंटीवायरस और स्पैम फिल्टर का यूज करें। अपने मोबाइल और लैपटॉप में एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें। अपने ईमेल अकाउंट का स्पैम फिल्टर ऑन रखें ताकि ऐसे फिशिंग और स्कैम ईमेल्स आपके इनबॉक्स तक पहुंच ना सके। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ इन सब बातों को या फिर स्कैम से बचने के लिए जो सॉल्यूशंस मैंने दिए उन सब के बावजूद आपके साथ कभी स्कैम हो जाए तो क्या करना है, बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। अगर आपने गलती से फेक वेबसाइट पर कार्ड डिटेल्स डाल भी दी हैं तो तुरंत अपने बैंक को कॉल करके कार्ड ब्लॉक करवाएं। पासवर्ड चेंज करें, अपने ऑनलाइन बैंकिंग और इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के पासवर्ड को फौरन बदल दें। रिपोर्ट करें इस फ्रॉड की कंप्लेंट अपनी लोकल साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करें ताकि बाकी लोग इससे बच सके। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स हैं जिनके बारे में हमने बात करी और इन सॉल्यूशंस को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% श्योरिटी है या फिर अगर आपके पास से पैसे कट भी जाएं तो बैंक को इत्तला करना, पासवर्ड चेंज करना, साइबर सेल में रिपोर्ट करना, ये कुछ ऐसी चीज हैं जिनसे आप आसानी से बच सकते हैं फ्रॉड होने से, आपके पैसे दोबारा आ सकते हैं। इसके साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट यानी कि कल एक नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से दही से स्कैम अलर्ट 107.1

दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी बैटिंग या विकेट कीपिंग की वजह से मशहूर नहीं होते बल्कि अपनी लीडरशिप टेम्परमेंट और मैच विनिंग एबिलिटी की वजह से एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाईलाइट। और आज हम बात इंडिया के एक लेजेंडरी क्रिकेटर की हम करेंगे और सबको पता चली गया होगा उनका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। एमएस धोनी का इंटरनेशनल करियर 2004 में शुरू हुआ जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया। शुरू में उनका एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल और लॉन्ग हेयर इन लंबे बालों पर उनकी पहचान अपने लोगों ने बोला यार लंबे बाल वाले क्रिकेटर कौन है वो, अच्छा धोनी है, कोई धोनी आया है रांची से, इंडिया का एक शहर है झारखंड में है और वहाँ से ये लड़का आया है, काफ़ी यंग है, एक्सप्लोसिव है, यानी एक्सप्लोसिव बैटिंग में बड़ा एक्सप्लोसिव है और काफ़ी कुछ उनके जो बैटिंग का स्टाइल है कुछ डिफरेंट है। लेकिन बहुत जल्द दुनिया को समझ आ गया कि ये खिलाड़ी सिर्फ स्टाइल नहीं सब्सटेंस भी रखता है। 2005 में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले ही टेस्ट सीरीज में अपनी बैटिंग का इम्प्रेशन जो था ना दोस्तों वो छोड़ा और वो सबको मुतासिर किया। टेस्ट क्रिकेट में धोनी ने 90 मैचेस खेलकर 4876 रन बनाए और उनका हाई स्कोर 224 था जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया। टेस्ट करियर में उनके नाम 6 सेंचुरीज और 33 फिफ्टीज रही। लेकिन धोनी की असली पहचान बनी वनडे क्रिकेट में। 350 ओडीआईस में धोनी ने 10773 रन स्कोर किए, उनका बैटिंग एवरेज 50 से ज्यादा रहा और स्ट्राइक रेट तकरीबन 87.5 था। उनके नाम 10 सेंचुरीज और 73 फिफ्टीज हैं और उनकी सबसे मशहूर ओडीआई इनिंग्स में से एक थी श्रीलंका के खिलाफ 183 नॉट आउट जो विकेट कीपर के लिए उस वक्त एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन धोनी की बैटिंग का सबसे यादगार चैप्टर आया 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ 275 रन का टारगेट मिला। धोनी ने प्रेशर में खुद ऊपर आकर बैटिंग की, यानी अपने आप को प्रमोट किया बैटिंग ऑर्डर में और 91 नॉट आउट की मैच विनिंग पारी खेली। दैट वाज अ कैप्टन्स नॉक और फिर वो मोमेंट धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट और गेंद स्टेडियम की बाउंड्री के पार। इंडिया 28 साल बाद वर्ल्ड कप चैंपियन बना और धोनी वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने वाले कप्तान बन गए। लेकिन दोस्तों धोनी की ग्रेटनेस सिर्फ बैटिंग तक महदूद नहीं थी। 2007 में उन्हें इंडिया की T20 टीम का कप्तान बनाया गया। ये सुनिए आप, ये वो वक्त था जब T20 क्रिकेट अपनी शुरुआत के दौर में था। साउथ अफ्रीका पहला T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जो हुआ था और धोनी ने एक यंग इंडियन टीम को लीड किया। इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त देकर इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। यहीं से दुनिया ने धोनी को एक नए नाम से जाना, कैप्टन कूल। इंडिया के ऑल फॉर्मेट कप्तान बन गए। उन्होंने इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर वन रैंकिंग तक पहुंचाया और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भी जबरदस्त सक्सेस हासिल की। उनकी कप्तानी में इंडिया ने 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 ODI वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ओवरऑल फ्रॉम अ कैप्टन्स पॉइंट ऑफ व्यू इज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स। यानी धोनी क्रिकेट हिस्ट्री के वाहिद कैप्टन बने जिन्होंने ये तीन मेजर ICC व्हाइट बॉल ट्रॉफीज जीती हैं। T20 इंटरनेशनल्स में धोनी ने इंडिया के लिए 98 मैचेस खेले और 1600 उनका हाई स्कोर, लेकिन T20 क्रिकेट में उनकी वैल्यू सिर्फ बैटिंग से नहीं बल्कि विकेट कीपिंग, फिनिशिंग और प्रेशर हैंडल कर एबिलिटी थी। विकेट के पीछे भी धोनी एक मास्टर थे, उनकी लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग और उनका यूनिक ग्लोव नाइटमेयर था। ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने 123 स्टंपिंग्स किए जो उनकी विकेट कीपिंग लेगेसी को समझने का काफी है। और फिर आते हैं आईपीएल की कहानी। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ धोनी 2008 से आईपीएल का सबसे आइकॉनिक बन गए। उनकी लीडरशिप में चेन्नई ने कई टाइटल्स जीते और धोनी खुद आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कप्तानों में शामिल हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी धोनी का फैन बेस कम नहीं हुआ। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी शायद ये थी कि वो प्रेशर के वक्त घबराते नहीं थे।
चाहे वर्ल्ड कप फाइनल हो, लास्ट ओवर हो या एक बहुत ही डिफिकल्ट रन चेस, धोनी हमेशा काम नजर आते थे। इसीलिए उन्हें सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक फिनिशर, विकेटकीपर, कप्तान और लीडर के तौर पर याद किया जाएगा। एमएस धोनी ने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, ट्रॉफीज, रिकॉर्ड्स, मेमोरेबल इनिंग, सबसे एक लेसन, प्रेशर में भी अपना दिमाग ठंडा रखो, अपने फैन पर भरोसा करो, एंड तक फाइट करो। यही था कैप्टन कूल एमएस धोनी। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का स्पोर्ट्स हाईलाइट का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे नी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

नगर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
1: आज ही राब्ता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहां हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में मौसीकी और लोक गीत खुशी, मेल जोल और वर्से की खूबसूरत पहलू हैं। पुराने वक्त में जब लोग सफर करते, समंदर में काम करते या खानदानी महफिलों में जमा होते तो गीत और धुने उनकी जिंदगी का हिस्सा बनती थी। ये धुने खुशी का इजहार भी थी और एक दूसरे से राबता मजबूत करने का जरिया भी। कतरी रिवायती मौसीकी में आवाज, ताल और जज्बे वाला अंदाज अहम होता है। गीत अक्सर किसी मौके, सफर, खुशी या सामाजिक मुलाकात से मुतालिक होते हैं। इनमें इंसानी जज्बात, उम्मीद, मेहनत और रिश्तों की खूबसूरती का इजहार होता है। कतर का समंदरी वर्षा गीतों के बगैर मुकम्मल नहीं होता। पुराने जमाने में कश्तियों पर काम करने वाले अफराद मिलकर गीत गाया करते थे। एक शख्स आवाज शुरू करता और दूसरे उसके साथ अपनी आवाज मिलाते। इस तरह गीत का जारी रहना लोगों में हम आहंगी और एक दूसरे का साथ देने के जज्बे को मजबूत करता था। समंदरी गीतों में सफर, मेहनत और उम्मीद का पहलू नजर आता था। कश्ती चलाना, जाल तैयार करना और मुश्किल मौसम का सामना करना टीम वर्क का तकाजा करता था। ऐसी सूरत में मिलजुल कर गाना हौसला बढ़ाने और वक्त को पुरकशिश बनाने का जरिया बनता था। कतरी लोकगीत सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं, खानदानी खुशियों, शादियों और दूसरी समाजी तकरीबात में भी गीत और धुने मेहमानों की तवज्जो का मरकज बन सकते हैं। ऐसी महफिलों में लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं और वर्से से जुड़े हुए अंदाज को जिंदा रखते हैं। कतरी रिवायती मौसीकी में तब और तबल जैसे सांस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन सांसों की ताल गीत और समाजी महफिल को ज्यादा दिलकश बना देती हैं। ताल के साथ हमांगी पैदा होती है और सुनने वालों को भी महफिल का हिस्सा बनने का एहसास होता है। लोक परफॉर्मेंसेस अक्सर एक से ज्यादा अफराद मुश्तमिल होते हैं। कुछ लोग गीत की बुनियादी आवाज पेश करते हैं, कुछ जवाब में अल्फाज दोहराते हैं और कुछ ताल के साथ महफिल में रौनक पैदा करते हैं। ये अंदाज मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे का साथ देने की खूब

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ रहिए अपडेटेड सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
2: हेलो हबीबी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों मेरा नाम है और आप सुन रहे हैं कतर 2026 वेल धीरे-धीरे हम महीने के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं कुछ ही दिन एक ही हफ्ता बाकी रह गया उम्मीद है सैलरी आ जाएगी और इस बार तो लॉ चेंज हो गया बाबा ड्यू डेट से 7 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में नहीं आए तो दूसरा रेल आ जाएगा एम्प्लॉयर ठीक है तो ये तो अच्छी बात है और इसी अच्छी बात के साथ आज का शो शुरू करते हैं क्योंकि इस हफ्ते बहुत ही बेहतरीन कुछ इवेंट्स हैं एग्जीबिशन है मॉल की एक्टिवेशंस कल्चरल कुछ स्टेजेस जो है वो आपके लिए सजाए जा रहे हैं तो इस हफ्ते क्या कुछ है जल्दी से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कतर एयरवेज विंटर नेटवर्क एक्सपेंशन के बारे में क्या है ये चलिए नजर डालते हैं Well, ये शो है कतर 2026 और मेरा नाम है फजील कतर एयरवेज ने ऑफिशियली एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया दोस्तों जिसमें उन्होंने विंटर स्केड्यूल को एक्सपेंड करने का प्लान बताया है और अगर आप कतर से फ्लाइट ले रहे हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा डिपेंड के आपका डेस्टिनेशन क्या है और ये और भी ज्यादा डबल अच्छा हो जाता है कि जब कतर एयरवेज ने ऑफिशियली अनाउंस भी किया है कि हमारा जो स्केड्यूल है वो एक्सपेंड हो रहा है और साथ ही साथ आपको मिल रहा है बेहतरीन डिस्काउंट दोस्तों अब कतर एयरवेज का नेटवर्क 170 से ज्यादा डेस्टिनेशंस तक पहुंच चुका है ये मैसिव एक्सपेंशन उनके फ्लाइट्स को एशिया पैसिफिक यूरोप और अमेरिकाज के रीजन में बढ़ाएगा सबसे बड़ा विजुअल हाईलाइट ये है कि ये पूरी मैसिव कनेक्टिविटी हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए ऑपरेट होगी जहां से हफ्ते 186 से ज्यादा वीकली फ्लाइट्स को इस एक्सपेंशन का बेसिक मकसद पूरे दुनिया को आपस में कनेक्ट करना है विंटर सीजन में ट्रेवल डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है इसी वजह से एयरलाइन ने इतने बड़े पर फ्लाइट्स को इंक्रीज किया है ताकि पैसेंजर्स को सीमलेस कनेक्टिविटी और मल्टीपल रूट ऑप्शन मिल सके वेल अब हम बात कर लेते हैं दोहा जूलियन एग्जीबिशन के बारे में क्योंकि जब शुरुआत करते हैं ना ज्यादा से ज्यादा बातों के बारे में फोकस करते हैं वेल दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन यानी कि DJWE ये बहुत ही ज्यादा फेमस हमारा एग्जीबिशन है जो कि 21वां एडिशन होने वाला है और ये 28 सितंबर को स्टार्ट होगा ये कतर का सबसे बड़ा और प्रीमियर लग्जरी एग्जीबिशन है जो दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यहाँ महंगे महंगे वॉचेस ज्वेलरी और तमाम ऐसे होते हैं जहां से आप लग्जरी के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइस में लग्जरी खरीद सकते हैं इस साल के इवेंट में बहुत बड़े इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके साथ साथ इमर्जिंग यंग कतरी डिजाइन टैलेंट्स को भी एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ताकि वो अपना टैलेंट दुनिया के सामने दिखा सके वेल DECC यानी कि दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जो कि वेस्ट बे के पूरे दिल में है यानी कि दिल माना भी जाता है और वेस्ट बे हमारे कतर का दिल है ये जगह इतनी बड़ी और हाई टेक है कि यहाँ दुनिया भर के सबसे महंगे और प्रीमियम डायमंड्स वॉचेस एंड ज्वेलरी प्राइसेस को बहुत सिक्योर एनवायरमेंट में डिस्प्ले किया जाता है तो महंगे से महंगे आपको प्रोडक्ट और लग्जरी से भी लग्जरी आपको प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके अलावा सिड श्रीराम लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो रही है कतर में और ये है इंडियन प्लेबैक सिंगर सिड वेल एक जबरदस्त लाइव कॉन्सर्ट होने जा रहा है जो फ्राइडे 25 सितंबर को हॉल में स्केड्यूल किया गया है सिड अपनी बहुत ही यूनिक सोलफुल और एनर्जेटिक वॉइस के लिए पहचाने जाते हैं उनका ये लाइव परफॉर्मेंस लोकल म्यूजिक फैंस के लिए बिल्कुल कंटेम्प्रेरी और कल्चरल ट्रीट होने वाला है जो पूरी शाम को एक जबरदस्त वाइब के साथ सेट कर देगा वेल उनके गाने क्लासिक कार्नेटिक म्यूजिक और मॉडर्न इंडी पॉप का एक परफेक्ट ब्लेंड होता है इसलिए फैंस इस एनर्जेटिक कल्चरल नाइट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये

ही लाजवाब होने वाला है, जहां पर मैसिव फैन बेस होगा, कल्चरल इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा और इवेंट की वाइब तो जबरदस्त होने वाली है। वेल, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने एग्जीबिशन, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कुछ मेजर अनाउंसमेंट के बारे में बात करी। अब हम बात कर लेते हैं कल्चरल हेरिटेज के बारे में, उज्बेकिस्तान के कल्चरल हेरिटेज के बारे में। वेल, इस वक्त दो चीजें हैं, पहले तो है उज्बेकिस्तान का ये कल्चरल हेरिटेज, दूसरा है एक ऐसा वर्चुअसिटी गेम चैलेंज जिसमें बेहतरीन आपको मजा आने वाला और जो गेम के शौकीन है उनके लिए। वेल, फैमिलीज वीकेंड पर म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट जा सकती हैं, जहां पर अभी उज्बेकिस्तान हेरिटेज इन मोशन नाम का एक अमेजिंग एग्जीबिशन चल रहा है। ये एग्जीबिशन खास तौर पर उज्बेकिस्तान के रिच कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को सेलिब्रेट करता है। इस इवेंट में आपको यूनिक हिस्टोरिकल टेक्सटाइल्स यानी कि पुराने जमाने के कपड़े और कपड़ों की हिफाजती जो आर्ट है वो आपको देखने को मिलेगी, रीजनल फोटोग्राफी, उज्बेकिस्तान के पुराने और नए दौर की खूबसूरत तस्वीर और बहुत से नायाब कल्चरल आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिलेंगी जो कि उज्बेकिस्तान की चीजें हैं, निशानियां। देखने को आपको ये सब तो मिलेगा, लेकिन अगर आप वीकेंड पर फ्री नहीं है तो फिर क्या करेंगे यार। अगर आपको गेमिंग का शौक है तो आपके लिए कुछ अलग है, लेकिन हेरिटेज यानी कि अगर आपको उज्बेकिस्तान से मोहब्बत है, अपनी फैमिली के साथ इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाना चाहते हैं, कल्चरली रिच उज्बेकिस्तान देखना चाहते हैं, तो ये स्पॉट है विच इज उज्बेकिस्तान कल्चरल हेरिटेज एग्जीबिशन। इसी के साथ जो एक और इंटरेस्टिंग जगह है वो होने वाली है आपके लिए गेमिंग के लिए, गेमिंग के शौकीन के लिए, वो है वर्चुअसिटी गेमिंग चैलेंज। वेल, दोहा के लोकल यूथ और ई स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि वो दोहा फेस्टिवल सिटी जा सकते हैं, जहां वर्चुअसिटी बैटल ग्राउंड 2026 गेमिंग चैंपियनशिप चल रही है। ये चैंपियनशिप पूरे वीकेंड पर चलती है और यहाँ पर गेमर्स या खुद इस गेमिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर बड़े मैचेस को लाइव बैठकर स्पेक्टेट यानी कि देख सकते हैं। ये टूर्नामेंट लोकल गेमिंग कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म देने और गेमिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, जो यंग जनरेशन के लिए एक हाई एनर्जी और एक्साइटिंग वीकेंड प्लान है। साथ ही एक खास और बड़ी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है वर्चुअसिटी यानी कि दोहा फेस्टिवल सिटी क्या है। वर्चुअसिटी रीजन का सबसे पहला और सबसे बड़ा डेडिकेटेड गेमिंग और ई स्पोर्ट्स हब है, जो दोहा फेस्टिवल सिटी मॉल के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास गेमिंग पीसीज, अरेना सीटिंग, रेसिंग सिमुलेटर्स और हाई स्पीड इंटरनेट सेटअप लगा हुआ है, जो एक प्रो गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। ई स्पोर्ट्स चैलेंज मोड, वर्चुअसिटी बैटल ग्राउंड में कंपिटिटिव गेम्स, ब्लर मल्टीप्लेयर ऑनलाइन कॉम्बैट, टेक्टिकल शूटर्स या स्पोर्ट्स गेम के टूर्नामेंट्स होते हैं। इसमें लोकल टीम्स और इंडिविजुअल प्लेयर्स बड़े प्राइज पूल्स और ब्रैगिंग राइट्स के लिए एक दूसरे के खिलाफ बहुत इंटेंस मैचेस खेलते हैं। तो ये बहुत ही लाजवाब, इंटरेस्टिंग, साथ ही साथ फाइटिंग वाला माहौल आपको देता है, तो जरूर जाइएगा, मजा आएगा आपको इस जगह। साथ ही अब दोस्तों नजर डालते हैं कि कतर में फूड फेस्टिवल को लेकर क्या है, फूड का कुछ माहौल बन रहा है या नहीं है, फिर उसके बाद फैमिली इवेंट्स क्या है दोहा के, दोहा शहर में स्पोर्ट्स मैचेस को लेकर क्या अपडेट है, FM 107 पे सारी जानकारी आपको मिलेगी। वेल, दोस्तों दोहा के रेसिडेंट्स के लिए एक मजेदार फूड फेस्टिवल होने जा रहा है, जहां लोग फूड एंड फीस्टिंग इन द इस्लामिक वर्ल्ड शोकेस के थ्रू रीजनल कल्नरी हिस्ट्री यानी कि खाने पीने की तारीख को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये इवेंट वीकेंड पर म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में चल रहा है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लोग ये समझ सकें कि इस्लामिक वर्ल्ड में पुराने जमाने से लेकर अब तक खाना पकाना, परोसना और साथ बैठकर खाने या खाने का कल्चर कैसा था। खाने के शौकीन जो लोग हैं और हिस्ट्री लवर्स जो हैं, उनके लिए ये एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। MIA का ब्यूटीफुल व्यू भी होगा, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट का स्पेक्टेकुलर बैकग्राउंड और सी साइड व्यू के साथ इस तरह का फूड हेरिटेज इवेंट अटेंड करना वीकेंड को और भी ज्यादा स्पेशल बनाता है, तो ये जगह आपके लिए लाजमी है। एंड देन फैमिली इवेंट्स जहां पर बच्चे वगैरह जा सके, देखो खाने के शौकीन बड़े ज्यादा होते हैं, बच्चे थोड़ा कम,
बच्चे तो खाते नहीं, उनके पीछे दौड़ना पड़ता है। लेकिन फैमिली इवेंट अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको जाना चाहिए सुक्वाकिप। फैमिलीज के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग आउटडोर इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस मिल रहा है, जहां वो एक दोहा डिटेक्टिव मर्डर मिस्ट्री गेम बुक कर सकते हैं। इस गेम में आपको अपनी फैमिली के साथ मिलकर अलग अलग क्लूज ढूंढने होते हैं और एक मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे हो रहा है ये रास्ता आपको दोहा के मशहूर और हिस्टोरिक फैल्कन सूक और सूक वाकिफ के बीच से लेकर गुजरेगा। ये बोरिंग ट्यूशन या मॉल से हटकर बच्चों और बड़ों के लिए एक बहुत ही एडवेंचरस और फन फिजिकल एक्टिविटी है। वेल, इसको बुक कैसे करना है, इसकी डेट क्या है? वेल, ये पूरे साल आपके लिए ओपन है। क्या चीज है इसके बारे में अगर डिटेल में समझे तो दोहा डिटेक्टिव मर्डर मिस्ट्री गेम को बुक करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक सेल्फ गाइडेड गेम है। ये एक डिजिटल लेकिन सेल्फ गाइडेड गेम है जिसे आप अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हैं। ये गेम मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करती है, जैसे कि इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच। आप इसे अलग अलग वेबसाइट से या एप्लीकेशन के थ्रू बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट आप दोहा मिस्ट्री गेम ऐसा करके डालेंगे ना तो आपको दुनिया भर की वेबसाइट मिलेगी, आप वहां से बुक कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोकल पार्टनर जैसे कि लोकली ऐप दोहा टूर पर भी बुकिंग के लिए लिस्टेड है। सो आप जब मर्जी बुक करना चाहें आप बुक कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपके लिए हो जाता है। उसके अलावा एक और खास इवेंट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, और वो इवेंट नहीं, वो स्पोर्ट्स इवेंट है या स्पोर्ट मैच है। स्पोर्ट्स और एडवेंचर के जो दीवाने हैं ना, उनके लिए एक बिल्कुल ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस है, और वो है शाहनिया का कैमल रेसिंग ट्रैक, जहां विजिटर्स कतर के वेस्ट कोस्ट पर ट्रेवल करके थ्रिलिंग कैमल रेसिंग और रोबोट जॉकी ट्रेनिंग सेशंस देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक्टिविटीज वीकेंड पर अल शाहनिया ट्रैक्स पर होती है। यहाँ पर आपको उन रसम और रिवाज वाले ऊंट यानी कि कैमल्स की तेजी देखने को मिलेगी, जिनको छोटे छोटे रिमोट कंट्रोल रोबोट्स जॉकीज ऑपरेट करते हैं। ये कतर के सबसे आइकॉनिक और पुराने कल्चरल स्पोर्ट्स में से एक है। लेकिन आजकल कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा, आमतौर पे अक्टूबर से लेकर फरवरी तक टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, लेकिन फिलहाल सितंबर के महीने में इस कुछ हफ्ते अभी ट्रेनिंग चल रही है। और सबसे बेस्ट है कि आप सुबह इस ट्रेनिंग के लिए पहुंचे। उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा, विजिट कतर की वेबसाइट से भी आप ज्यादा डिटेल्स ले सकते हैं, और गेट योर गाइड कैमल ट्रैक टूर से भी आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं getyourguide.com से। उसके अलावा काइट के जो बहुत ज्यादा शौकीन है, वो पतंग नहीं जिसे हम उड़ाते हैं अपने घरों में, ये है फोवेरिथ काइट बीच ब्रेक। अगर आपको ब्रेक लेना है और इन सब चीजों से हटकर कुछ यूनिक आपको एक्सपीरियंस करना है तो सितंबर के आखिर तक फैमिलीज और थ्रिल के जो सीकर्स हैं, फैमिलीज के लिए, थ्रिल सीकर्स के लिए एक जबरदस्त, क्योंकि तेज हवाएं जो है वो चलने वाली हैं, और काइट सर्फिंग वगैरह आप बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको फवेरिथ काइट बीच जो है वो जाना होगा। बाकी जानकारी आपको विजिट कतर की वेबसाइट से मिल जाएगी। और अब बात कर लेते हैं सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कतर में चल रही हैं, या स्मार्ट सिटी की क्या अपडेट्स हैं, एजुकेशनल इनिशिएटिव क्या हैं, ट्रांसपोर्ट के क्या चेंजेस हैं, इन सब बारे में भी हम नजर डालेंगे, विच इज अलाइन टू कतर का नेशनल विजन 2030। दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी पर अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी नए पार्क्स और ग्रीन जोन्स बना रही है, ताकि और भी ज्यादा सुविधाएं और भी ज्यादा ऑप्शंस पब्लिक को मुहैया कराए जा सके। साथ ही रोड प्लानिंग में हेरिटेज साइट्स की हिफाजत का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। एंड देन स्मार्ट सिटी में क्या कुछ है, एडवांस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स को बेहतर किया जा रहा है, ताकि रेसिडेंट्स के लिए हर रोज रिसोर्सेस के मैनेजमेंट को आसान किया जा सके। साथ ही एडुकेशन इनिशिएटिव में देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन ने दो मेजर स्ट्रक्चरल पॉलिसीज फुल्ली लॉन्च की हैं, जो स्कूल प्रोग्राम्स और स्टूडेंट बिहेवियर को बेहतर बनाएगी। इस इंटीग्रेटेड क्लासरूम फ्रेमवर्क का मकसद क्लासरूम एनवायरनमेंट को सुधारना, डिजिटल लर्निंग टूल्स को बढ़ाना और यूथ वेलबींग को सपोर्ट करना है। उसके अलावा एक ट्रांसपोर्ट चेंज भी हुआ है। कतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान के तहत एक बड़ी कामयाबी मिली है दोस्तों, जहां 74% से ज्यादा एक्टिव पब्लिक ट्रांजिट बसेस को इलेक्ट्रिक कर दिया गया है। इस ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का टारगेट कुल कार्बन एमिशन में 25% रिडक्शन लाना है। साथ ही कतर में स्टार्टअप का इकोसिस्टम भी चेंज हो रहा है। कतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि QSTP ने अपना नया रिवैम्प्ड इंक्यूबेशन प्रोग्राम ऑफिशियली शुरू कर दिया है। फॉल 2026 कोहोर्ट यानी कि इस नए बैच में 52 हाईली स्केलेबल लोकल और इंटरनेशनल टेक स्टार्टअप्स को जगह मिली है, जो 19 मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं।
इस प्रोग्राम का मकसद इन स्टार्टअप्स को सीधे प्रोडक्ट टेस्टिंग, मार्केट एंट्री और आने वाले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ गाइड करना है। दोस्तों ये था आज का कतर 2026। उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, चाहे वो कतर एयरवेज की मेजर अनाउंसमेंट हो, दोहा जूलियन वॉचेस एग्जीबिशन की डिटेल्स हो, म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो या फिर स्पोर्ट्स की

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।
2: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJA फॉर अमिता के साथ AI लॉक्ड पर। एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI RJA फॉर अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। वज़ारते दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर।
5: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबने के नाम प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में आप सबका खैर मकदम है। आज के इस हलके का आगाज हम एक ऐसे सवाल से करते हैं जो हर इंसान को कभी ना कभी अपने दिल में जरूर पूछना चाहिए कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जो मौत के बाद भी इंसान के साथ रहती है। सबने कराम इंसान ज़िंदगी भर बहुत कुछ जमा करता है, घर, गाड़ी, माल और दौलत, अहदा, शोहरत, दोस्त, ताल्लुकात, कारोबार, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और दुनिया की बेशुमार नेमतें। लेकिन जब मौत का फरिश्ता आता है तो सबसे पहले इंसान से क्या जुदा होता है? उसका मोबाइल जुदा होता है, उसके बाद उसका घर, उसके बाद उसकी जायदाद, उसके बाद उसके अजीज़ो अकारिब, यानी सबसे पहले मोबाइल जुदा होता है। यहाँ तक कि आखिर में जाकर वो लोग भी जो ज़िंदगी भर उसके साथ रहे कब्र तक पहुँच कर वापस चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो कब्र में भी इंसान के साथ जाती है, वो है उसका कुरान से ताल्लुक़। अगर कुरान उसकी ज़िंदगी में साथी था तो कब्र में भी साथी होगा, अगर कुरान उसकी ज़िंदगी में नूर था तो कब्र में भी नूर होगा, अगर कुरान उसके दिल का सुकून था तो कब्र में भी सुकून होगा, और अगर इंसान ने कुरान से अपना ताल्लुक तोड़ रखा था तो फिर वो खुद सोचे कि कब्र की तन्हाई में उसका साथी कौन होगा। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता। मसला ये नहीं कि कुरान को वक्त चाहिए बल्कि वक्त को कुरान चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत कुरान है। हम हिदायत के मोहताज हैं, हम अल्लाह के कलाम के मोहताज हैं। ज़रा सोचिए, घंटों भर मोबाइल इस्तेमाल कर लेते हैं, घंटों सोशल मीडिया पर गुजार देते हैं, ख़बरों, खेलों, तफरी और दुनियावी कामों के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन जब कुरान की तिलावत और तदब्बुर की बात आती है तो हम कहते हैं वक्त नहीं। तो कुरान के लिए वक्त नहीं तो फिर ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ क्या है? आप सब जानते हैं कि कुरान कोई आम किताब नहीं, ये किसी फ़लसफे की तहरीर नहीं, ये किसी शायर का दीवान नहीं, ये किसी मुफक्किर के ख्यालात नहीं, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। वो रब जिसने ज़मीन बनाई, वो रब जिसने आसमान पैदा किए, वो रब जिसने इंसान को पैदा किया, वो रब जो माजी को भी जानता है, हाल को भी जानता है और मुस्तकबिल को भी जानता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ज़िक्र को नाजिल किया है और हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है। 1400 साल गुजर गए, सल्तनतें आईं और चली गईं, ज़बानें बदल गईं, तहजीबें बदल गईं, लेकिन कुरान आज भी वही है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। एक हर्फ की कमी नहीं, एक हर्फ भी ज़्यादा नहीं, ये अल्लाह की ज़िंदा मौजज़ा है। समय कराम कुरान के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, قرآن شفا ہے, رحمت ہے, نور ہے اور ہدایت ہے. سوال یہ ہے کہ یہ شفا کس چیز کی ہے؟ صرف جسم کی نہیں, سب سے پہلے یہ دلوں کی شفا ہے, مایوسی کی شفا ہے, شکوک و احاد کی شفا ہے, روحانی بیماریوں کی شفا ہے. انسان جب دنیا کے ہجوم میں دنیا کی بھیڑ میں تھک جاتا ہے تو قرآن اس کے دل نئی زندگی دیتا ہے. اس لیے قرآن یہ صرف معلومات کی کتاب نہیں بلکہ یہ انسان کو بدل دینے کا نسخہ ہے. یہاں تک کہ ہمارے غیر مسلم برادری کے جو افراد ہیں وہ بھی جب قرآن سنتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں. اس کی بڑی دلیل یوں سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے جو مسلم افراد میں بہت سے لوگ قرآن کی زبان نہیں جانتے, عربی نہیں سمجھتے, لیکن پھر بھی قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. آخر کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کے کلام میں ایسی تصدیق ہے جو دلوں کے دروازے بھی کھول دیتی ہے. قرآن دل تک پہنچتا ہے, روح تک, فطرت تک. اس لیے قرآن سن کر جنات بھی متاثر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں ان کا قول نقل فرمایا, یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی بات قبول کرو. غور کیجیے, انہوں نے قرآن سن خری بن گئے. قرآن نے سامع کو مبین بنا دیا, سننے والے کو داغنے والا بنا دیا. یہ قرآن کی تاثیر ہے. کرام تاثیر کے سب سے عظیم ترین مثال امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہی عمر جو اسلام کے سخلف تھے, وہی عمر جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا ارادے سے نکلے تھے, لیکن جب قرآن کی آیت ان کے کانوں میں پہنچی تو ان کا دل بدل گیا. سورہ طٰہٰ کی آیات سنی آپ نے اور آپ کے دل میں انقلاب آ گیا. وہ ہاتھ جو ظلم کے لیے اٹھتا تھا عدل کا نشان بن گیا. وہ دل جو سخت تھا نرم ہو گیا. وہ شخصی جو اسلام کی دشمن تھی اسلام کی طاقت بن گئی. یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن زندگی بدل دے. قرآن صرف نظریہ نہیں دیتا بلکہ حضور حیات کی طرف رہنما کرتا ہے. سامعین کرام, تاریخ میں ولید ابن مغیرہ جیسے بڑے بڑے عرب فصحاء کے سامنے پیش ہو گئے. حالانکہ مسلمان نہیں تھے, لیکن جب انہوں نے قرآن سنا تو قرآن کے بارے میں غریب کے بیٹے واللہ ان لہ لحلاو وان علطوا وان علاه لمثمر وان اسفله لمغدق ما ذا بغل بشر. حالانکہ اسلام میں ایک خاص مٹھاس ہے, اس میں ایک خاص حسن ہے. اس کا اوپر والا حصہ بھی بھلدار ہے اور نیچے حصہ بھی برکت والا ہے, اور یہ اس کا کام نہیں ہو سکتا. سامعین کرام, یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن واقعی اتنی مٹھاس ہے, وہ مٹھاس کیوں محسوس نہیں ہوتی, ہم کیوں متاثر نہیں ہوئے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar. दिल से देसी.

0: आपका दोस्त तलहा अशरफ जमान के साथ आप सुनते हैं आपका यह हफ्तावार प्रोग्राम कुरान फॉर किड्स। इस प्रोग्राम में हम हमारे नन्हे दोस्तों को ये कहना चाहते हैं कि देखो ये कुरान आप और हम सब से मुखातिब है। यूँ नहीं कि आप बच्चे हैं तो भाई कुरान में हमारे लिए क्या है, कुरान तो वो बड़ों के लिए है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान आपसे भी मुखातिब है, कुरान आपको भी बहुत कुछ सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। तो आओ बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कुरान में आपके लिए क्या एक ख़जाना है। ख़जाना ही ख़जाना है, ये सोना चांदी से भी बढ़कर इस ख़जाने की कीमत है। तो नन्हे दोस्तों, आज के टॉपिक के हवाले से शुरू में ही सवाल करते हैं, क्या आपने ये कहा है कभी, ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा? ज़रूर कहा है। कभी होमवर्क मुश्किल लगता है, कभी नमाज भारी लगती है, कभी दिल कहता है कि मैं थक गया हूँ। हाँ जी, कुरान हमें एक बहुत ही प्यारी बात बताता है, لا يكلف الله نفسا الا وسعها। अच्छा, इस आयत का मतलब क्या बनता है, यानी आयत हमें क्या बताना चाहती है? यानी अल्लाह कभी भी किसी को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देते। इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह तुम्हें कोई काम करने को कहते हैं तो अल्लाह ये भी जानते हैं कि तुम वो काम कर सकते हो। प्यारे बच्चों, अल्लाह ने हमें बनाया है, अल्लाह हमें जानते हैं, वो हमारे दिल, हमारी ताकत और हमारी कमजोरी सब जानते हैं। अगर अल्लाह हमें कहते हैं सच बोलो तो इसलिए कि हम सच बोल सकते हैं, और अगर अल्लाह हमें कहते हैं अच्छे काम करो तो इसलिए कि हम अच्छे बन सकते हैं। और अगर कभी कोई काम मुश्किल लगे तो अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ते, वो हमें हिम्मत भी देते हैं और मदद भी करते हैं। बच्चों, आज की आयत ये हौसला देने के लिए है, आपके हौसला को मजीद बढ़ाने के लिए है। ये हमें कहती है कि तुम कर सकते हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो आज के प्रोग्राम में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इस आयत से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, मुश्किल वक्त में हमें क्या करना है, अपने दिल को मजबूत कैसे बनाना है। तो हाँ जी, अपने दिल को ओपन करो, खोलो, इस तरह कुरान के इस खूबसूरत पैगाम को सुनने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मिलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है, और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
0: वेलकम बैक सामीन, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको एक मरतबा फिर प्रोग्राम कुरान फॉर किड्स में खुश आमदीद कहते हैं। अब एक मरतबा फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लो और दिल को यानी इस तरह खामोश कर लो, चूँकि हम कुरान की एक बहुत ही प्यारी आयत सुनने वाले हैं, और उसकी इस आयत के हवाले से हमने पहले भी कहा है, वैसे अब जो है ना एक मरतबा फिर हम इस आयत को पढ़ते हैं। मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करो बच्चों, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिन्होंने मेरे साथ ये आयत पढ़ी उनके लिए अल्लाह सुभान व तआला खैर आफियत का फैसला करे, और उन्हें जो है ना और भी हिम्मत बढ़ा दे उनकी, और तमाम तर मशक्क़तें दूर कर दे। एक मरतबा फिर मेरे साथ पढ़ लो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ठीक है ना, तो ये आयत यानी हमें बताती है कि अरे ज़िंदगी में जो मुश्किलात दरपेश हैं, आती हैं, इसके लिए घबराओ नहीं, क्योंकि तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो, तुम इसे सहने की ताकत रखते हो। इसी वजह से अल्लाह ने ये हालात

0: ये हो, अगर हम बच्चों को अपने बच्चों को इस तरह डांटते हैं तो उसका एक गलत असर उन पर जो है ना तारी होता है और अच्छे नतायज नहीं लेके आते। इस वजह से हमें जो है ना अपने बच्चों को सही तरीके से जो है ना रहनुमाई करनी है। तो इस सिलसिले में ये जो तरीका है, हम इसको कुरान के साथ जोड़ के उन्हें इस तरह समझा बुझा कर हम आगे बढ़ा सकते हैं। अमीन कराम और हमारे प्यारे बच्चों, आप अगर ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, तो ज़रूर ये बात भी जहन में रखना, कुरान हमें क्या कहता है कि अल्लाह ने तो यानी हमें ये ताकत दी है, इसी वजह से हमें इसकी ज़िम्मेदारी मिली है। अगर जो है ना अगर कोई काम वाकई मुश्किल हो तो अल्लाह ने ज़रूर उसमें जो है ना रुख्सत भी दी है हमें, और कहा है कि हाँ जो बीमार है, सफ़र में है, उसकी मशक्क़त है, कुछ है, तो उसके लिए आसानी है, उसके लिए कुछ ख़ास कॉम्प्रोमाइज़ है। हाँ जो सेहतमंद हैं, जो कर सकता है, सिर्फ कोताही और गफलत और सुस्ती की वजह से ये कोई काबिल कबूल और काबिल उज़्र इस रोज़ों कभी भी कोई कबूल नहीं करेगा कि हाँ भाई ये मैं सुस्ती की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, गफलत की वजह से मैं नहीं कर पा रहा। कि अल्लाह सुभान व तआला तो हर वक्त कह रहा है कि बंदा अगर तुम पर कोई जिम्मेदारी है तो मैंने तुम्हें इसी वजह से दिया है कि तुम इसे सही से निभा सकते हो। हाँ जी, तो हमें जो है ना सोचने तरीका ये बदलना है, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने हिम्मत को बढ़ाएं, कोशिश दुगनी कर दें, अल्लाह से मदद मांगें तो हमें पता चलेगा, तो उस तरह हम अपने ज़बान में भी ये कह पाएंगे कि नहीं हम ज़रूर कर पाएंगे बिइज़्निल्लाह ताला। बच्चों सबक मुश्किल हो, दिल उदास हो, नमाज में सुस्ती हो तो क्या करना है, खुद को बुरा नहीं कहना, नहीं हिम्मत भी नहीं हारनी, कहना है कि अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, और फिर आप छोटे छोटे कदम आगे बढ़ें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको मदद मिलेगी। हाँ, और ये चीज़ ज़रूर याद रखो कि ये आयत हमें सुस्त बनाने नहीं आई बल्कि हमें मजबूत बनाने आई है। ये हमें कहती है कि कोशिश करो, मेहनत करो और भरोसा रखो, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला, अल्लाह ताकत दी है इसलिए तुमसे कोशिश मांगी है। ये आयत हमें कहती है कि काम पूरा करो, भागो नहीं, वादा पूरा करो, छोड़ो नहीं, नेकी करो, सुस्ती ना करो। जब तुम कोशिश करते हो अल्लाह तुम्हारी कोशिश देखते हैं और तुम्हें मज़ीद ताकत देते हैं। तो ये बात दिल में बिठा लो, मैं कमज़ोर नहीं, अल्लाह मेरे साथ हैं और मैं कर सकता हूँ। कभी कभी कोई इंसान ये कह देता है कि मुझे ये दीनी हुक्म बहुत मुश्किल लगता है, नमाज के हवाले से हर वक्त जाना, बाजमात में से मैं जाना ही बहुत मुश्किल लगता है, मैं उस पर अमल नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसे छोड़ देता हूँ। कुरानी आयत बताते हैं माज़ल्लाह, ये कोई बात बनी? अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है नमाज जमात के साथ पढ़ने की, ये समझ कर ही कि बंदा ये सही से इस जिम्मेदारी को निभा सकेगा, अगर वो नहीं निभाता तो उसमें सुस्ती है। कुरान हमें ये सिखाता है कि अगर शरीयत ने किसी काम में रियायत या छूट नहीं दी तो उसका मतलब ये कि अल्लाह जानते हैं काम हमारी ताकत के अंदर है। असल मसला ये नहीं होता कि हम नहीं कर सकते, बल्कि अक्सर ये होता हम पूरी करते, हम दिल से मेहनत नहीं करते, हिम्मत कमज़ोर हो जाती है और जल्द हार मान लेते हैं। इसीलिए मैं कहता है कि अल्लाह की जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, यानी रियायत हमें सुस्त होने की इजाज़त नहीं देती, हमें अपनी ताकत जगाना देती है। आयत हमें कहती है कि अपनी कोशिश बढ़ाओ, अपनी हिम्मत मजबूत करो और फिर देखो कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। समझने के लिए जब इंसान वाकई दिल से मेहनत करता है तो वो खुद देख लेता है कि ये काम उसके बस में था। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला लापरवाही, गफलत और सुस्ती से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें चुस्ती और मेहनत तवानाई अता फरमाए, चाहे वह ईमानी दीन के हकाम पर चलने के हवाले से हो, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के दीगर उमूर के साथ उसका ताल्लुक़ हो, तमाम तर उमूर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें जो है ना नशात और फुल एक्टिव बना दें। आमीन या रब्बल आलमीन। मिलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए।

0: रखते हैं, शैतान से महफूज रखते हैं। अच्छा जी, और एक और बहुत खूबसूरत हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें अल्लाह के अर्श के नीचे खजाने से दी गई हैं, यानी अल्लाह के अर्श के नीचे मौजूद खजाने से दी गई हैं, यानी ये आम आयतें नहीं, ये आसमान के खास तोहफे हैं। एक और हदीस में आता है कि अगर किसी घर में ये दो आयतें पढ़ी जाएं तो शैतान उस घर के करीब भी नहीं आता, यानी जहां ये आयतें वहां हिफाजत, वहां सुकून, वहां अल्लाह की रहमत। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर कोई बेटा ये बात कह रहा है कि मुझे परेशान, मैं बड़ा परेशान हूँ, डिप्रेशन का शिकार हूँ, तो हमें उस इस सूरत हाल में किस तरह जो है ना हैंडल करना है। अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे रात को सोने जाता हूँ, नींद के बाद मुझे डर लगता है काफ़ी, मैं डिप्रेशन के शिकार हूँ, कल एग्ज़ाम में क्या करूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, तो हमें क्या कहना है? हाँ जी, तो अगर तुम्हें कुछ इस तरह की परेशानियाँ हैं तो ज़रूर ये दो आयतें पढ़ लो सूरह बकरा की। देखो इससे अगर तुम जब पढ़ते हो ना तो तुम्हें जो है ना एक काफ़ी सुकून और इत्मीनान और इस तरह जो है ना अल्लाह ताला की हिफाजत मिलती है। इससे बढ़कर और किसकी हिफाजत हो सकती है? तो ज़रूर ये आयत पढ़ लो। और इन आयात में एक ख़ास जो हिस्सा है जिस पर हमारी आज की तवील गुफ्तगू हुई और हमने बच्चों को समझाने की कोशिश की, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये वाला हिस्सा है और इसमें पूरी जो है ना रूहानी ताकत, रूहानी ग़िज़ा सब कुछ है कि हमें हिम्मत नहीं हारना, सिर्फ आगे बढ़ना है। और अल्लाह ताला अगर हमें कोई राह और कोई रास्ता दिखा रहे हैं तो हम उस राह रो उस राह पे चलने की ताकत भी अल्लाह ने हमें दी है, सिर्फ आगे बढ़ें, पीछे मुंह मोड़ने की ज़रूरत नहीं। प्यारे बच्चों, जब आपको डर लगे, दिल घबरा जाए, तो इन दो आयात का ख़ास एहतमाम करूँ। ये दो आयतें आपकी ढाल हैं और इन आयतों में एक ख़ास हिस्सा है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो इसका जो ख़ुलासा हमने आपको बताने की कोशिश की कि अल्लाह हमें जो है ना, अल्लाह ने हमें जितनी ताकत दी है उसी के हिसाब से हमें आमाल और अहकाम भी दिए हैं, और जो हमें अपने कमज़ोरी की वजह से, और ये आयत कमज़ोरी को नहीं बल्कि यानी ताकतवर बनने को और फिर हिम्मत को बढ़ाने की तरफ जो है ना हमें और भी इंस्पायर करती है। अल्लाह सुब्हानहु ताला हमें कुरान की जो आयात हैं इन्हें सही से समझने की तौफीक अता फरमाए। तो अब बच्चों, तो मेरे साथ एक मरतबा फिर वो आयत पढ़ लो जिसके हवाले से हमारी ये गुफ्तगू, ये हलका है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। याद रखना, हम कमज़ोर नहीं बल्कि अगर हमें कोई ज़िम्मेदारी मिली है तो हम उसके ताकत रखते हैं, उसके जो है ना सही उस पर उतर सकते हैं, इसी वजह से हमें ये हुक्म दिया गया है। हिम्मत ना हारो, आगे बढ़ो और यकीन रखो कि अल्लाह हमारे साथ हैं, और जहाँ अल्लाह साथ हो वहाँ खौफ नहीं, वहाँ हिम्मत होती है, हिम्मत और हिम्मत। और इसी हिम्मत के साथ एक मतलब फिर मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है, और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
0: सबरीग्राम प्रोग्राम के हिस्से में अब आते हैं वालिदैन की तरफ। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी एक अहम आयना है ये आयत, कि अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो ये आयत हमें ये बताती है कि हम दीन में जो चाहे छोड़ दे और जो चाहे कर ले, ये सही नहीं। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह जानते हैं कि हमारी औलाद क्या कर सकती है, और इसीलिए उन पर नमाज, अखलाक, सच्चाई और जिम्मेदारी रखी है, क्योंकि सब उनकी ताकत के अंदर हैं। मसला वहाँ पैदा होता है जब हम या बच्चे इस आयत को गलत तरीके से समझ लेते हैं। अच्छा, बच्चा नमाज नहीं पढ़ने जा रहा और वो सुस्ती की वजह से ऐसे ही सोया हुआ है, और फिर हम सोच रहे हैं कि हाँ

0: अब क्या कहें, बच्चा जितनी उसकी जिम्मेदारी है, ताकत है, उतना ही वो करेगा। अब क्या उसे नमाज को जाने के लिए कहें, ये वो नहीं। ये जिम्मेदारी हम पर है कि हमें उनको नमाज के लिए तरगीब देनी है, नमाज के लिए कहना है और फिर उन्हें भेजना है, और यही हमारे नजात के लिए सबब बनेंगे। तो इस वजह से हमें अपनी जो है ना औलाद का ख़ास ख्याल रखना है इस जाविये से, और इस आयत की कोई गलत तावील करके इसके गलत तरीके से बयान नहीं करें कि अगर मुश्किल है तो छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, कुरान ये नहीं कहता। कुरान कहता है कि कोशिश करो, मेहनत करो और भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें इतनी ताकत दी है। प्यारे वालिदैन, इस्लाम का कानून न सख्त है, न जालिम, न जुल्म का कोई मकाम है इस इस्लाम में, बल्कि इस्लाम में तो अदल ही अदल है और अल्लाह अल अदल है, और इस्लाम इसी अदालत को कायम करने के लिए ही आया है। अल्लाह ने मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी, बीमार को आराम दिया, कमज़ोर को रियायत दी, मजबूर को सहूलत दी, क्योंकि अल्लाह रहम करने वाले हैं। लेकिन ये रियायतें अल्लाह देते हैं, हम खुद नहीं घटते। हम ये नहीं कह सकते मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए छोड़ दिया, बल्कि हमें देखना होता है कि अल्लाह ने इस हालत में रियायत दी है या नहीं। अगर दी है तो कबूल करो, अगर नहीं तो हिम्मत करो। और बच्चों के साथ भी यही उसूल है, बच्चों पर हद से ज़्यादा दबाव नहीं मगर जिम्मेदारी ज़रूर। हर वक्त डराना नहीं मगर नज़म तो ज़रूर इसका ख़ास ख्याल रखना है, नज़्म व नसक का। कुरान को जो है ना अपना सहारा बनाएं, बच्चे के दिल में एतमाद पैदा करें। याद रखें, बच्चे अगर सीख रहे हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर गिर जाएँ तो दोबारा भी उठ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इस तरह की ताकत दी है, उन्हें काबिल बनाया है, और इसी वजह से अगर कोई अहकाम है तो उसकी पाबंदी भी लगाई गई है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा का यही है असल पैगाम है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है एक मरतबा फिर प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में। जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है, और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है, जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
0: हाँ जी प्यारे बच्चों, प्रोग्राम के अख्तितामी मरहले में हम पहुँच चुके हैं, और कुरान की ये कुछ आयतें जो अहम अहम हैं हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते रहे। तो आज जो हिस्सा हमने आपके साथ शेयर किया है ये कुरानी आयात के उन कुरानी आयात का हिस्सा है जिन कुरानी आयात के हवाले से काफ़ी सारी फजीलत की अहादीस भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें अल्लाह के अर्श के नीचे मौजूद एक ख़ास ख़जाने से दी गई हैं। तो हमने इस आयत का मतलब तो समझा, साथ साथ इस आयत पर हम अमल भी करेंगे और हम इसको याद भी करेंगे, ताकि जो है ना रात को हम सोते वक्त ये पढ़ें, या फिर रात के किसी भी हिस्से में, ज़रूरी नहीं कि सोते वक्त, हदीस में आया कि रात के वक्त आपको पढ़ना है, तो अल्लाह हमें सुनेंगे ज़रूर, अल्लाह कबूल करेंगे और अल्लाह हमारे दिल को मजबूत बना देंगे। चूँकि कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, भूल जाते हैं, सुस्ती आ जाती है, तो फिर अगर हम साथ साथ इस्तग़फ़ार करें और इस तरह जो है ना इस आयत का अहतमाम करें, चूँकि सूरतुल बकरा की आखिरी जो आयात हैं इनमें इस्तग़फ़ार भी है, इनमें इनाबा भी है, इनमें रुजू इल्लाह भी है, इसमें सब कुछ है। तो हाँ जी, अल्लाह सुभान व तआला का दरवाज़ा तो हर वक्त खुला है। वो कहते हैं कि आओ माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। तो हम दिन के आखिर में कोशिश करें कि कुरान पढ़ें, और बिलखसूस सूरतुल बकरा की ये दो आयतें, आखिरी दो आयतें, अल्लाह से बात करें, चूँकि इससे हमारा दिल भी साफ़ होगा, ईमान भी नया होगा। चूँकि ये जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जो है ना एक अहद है, इसमें इस्तग़फ़ार है, इसमें अपने ईमान की जो है ना तौहीद की एक बयान है, इसमें तौहीद और वहदानियत का इकरार है। तो दिन में अगर हमसे गलतियां हो गई हों तो यही आयत जो है ना इस तरह जब हम पढ़ेंगे तो बिदिल्लाह ताला हम अपने दिल अल्लाह से लगाएंगे, अल्लाह की तरफ लौट आएंगे और अल्लाह का प्यारा बन जाएंगे, अल्लाह हमें अपनी ख़ास हिफाजत में ले लेंगे। तो बच्चों, जाते जाते वही बात एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ कि यकीन रखो, अल्लाह पर भरोसा करो और मुस्कराते रहो, कोशिश जारी रखो। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम कुरान फॉर किड्स के आज के इस हल

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।